0: अच्छा यूपी में नहीं हो सकता ये, यूपी में यूपी का ही
1: चल जाता है। मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर वन है पेपर टू है, तो मतलब आपका चल जाता है पर वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जब फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें, क्योंकि देखिए क्या है कि इसका क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब जब आपकी वैकेंसी आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सीटेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
0: अच्छा सर, जो सुपर टेट है, यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया, उसके बाद हमने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
1: नहीं, उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे होता था, जॉब लग जाती थी
0: जी।
1: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, फिर जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाई हो, फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस है, जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है, पहली चीज। ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो, तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको टू ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है, क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ, वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक तरह से पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है, और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं, उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एक प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेजेस तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है, मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है, बट उन दो सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी पूछ रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर, देखिए क्या होता है ना प्राइवेट में भी, मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो टू टाइप के टीचर रखती है, एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो कुछ टीचर्स को वो एडवोक पे दिखाती है तो वहां पर आपका चल जाता है, मतलब तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एसटेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें, जैसे जो टीजीटी का पेपर है हाँ उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 क्वेश्चंस तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चंस में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने का आस्किंग कॉलेज रेगुलर करना चाहिए वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज, तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्वलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है, तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroots Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in that ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroots Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. So Sana, और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही हुई थी, मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने सर्कल स्टेटस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे, बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको FA करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई, और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने, वो मुझे लेकर जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही मार्च, जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है, तो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है, तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न आफ्टर टेन, बट ही सेड अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करना है. फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी ट्विंस डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू study with 3 of the kids or 2 twins ke saath, so it was very tough. So aise 10th was 12th completed hua. Uske baad hamara fir graduation, fir maine MA kiya. Is sare process ke dauran I was having my family support a lot, इंटर के बाद एम ए का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने अपनी सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रेसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठकर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे बट

0: लंच टाइम 10 क्लास में ही होता था, तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए। मैंने बोला नहीं, मेरे एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है इंट्रैक्शन, क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए, तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, मीन स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे। मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में मैम गीता मैम और नाइट सर आए, तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक, मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के विमेन से रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, तो भी वेरी ऑनेस्ट एक इमेज थी। आप न्यूज देखते हो, आप आस पास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था, हमारे सेंटर के सीमा पर। तो मैम ने बोला कि आप आइए, आप देखिए सेंटर हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे, क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है। मैम का सेंटर कहता है एक बार को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मीन्स इट वॉज लाइक, मतलब मैं देख रही थी स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीजें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है, जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक की मतलब मैंने बहुत अच्छे से
1: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहां पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
0: तो बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गोसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है, इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी सिटी है लखनऊ, which is very well known by everybody. लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गांव में जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गोसाईगंज सेंटर में है वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये बड़ा गांव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गोसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं, ये बेस्ट है जो बड़ागांव में होने वाला है. इट विल चेंज बड़ागांव, इट विल गिव आवर ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ागांव. सो वी वर लाइक ओके, मतलब मी एंड इवान वर सो सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है. तो मेरी से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा. मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है. दैट वाज सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो. मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना ही.
1: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है. ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं. लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं. जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है. ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है. करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई. तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप. सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है. सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
0: Yes, ma'am. Ma'am, being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे ना इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहती है तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है. अगर कोई कुछ बोलता भी है, कुछ रोक भी रहा है, तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा. और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबमिशन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम. और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो. कुछ सीख जाते हैं उनसे, कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, कैसे वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती हैं, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है. तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं. ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह पे. रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन है.
1: ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रासरूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं. एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे. So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है, कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ. So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
0: मैम कैलिसंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मिंट फार्मर्स. हम मिंट फार्मर्स को उतना ही टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मिंट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मिंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है. तो उन्हें सेंटर तक लाना वो बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ तो तो कभी कभी जब हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कंपोनेंट्स तब थे। अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस। हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन, 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है, तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग। तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग भी करती है और मेन फार्मर्स ही हैं। तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग से लेना स्टार्ट किया, हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं। तो वो कहती हैं मैडम हमारे पास, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं। तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिल का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं, जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं, आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर पर भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए है। एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है। लोगों को गांव से उनके घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना, 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे, तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे, क्योंकि आप पूरे गांव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है। तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई। तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ, कि मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है, आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे। इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते, इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी ने कैसे संभालेंगे। फिर ये हो चीज होती रही, फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं, फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे। उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे हैं तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते। उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स, स्पीकर्स, लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना। मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है। हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से, फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई। बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें, एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें। अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें।
1: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, सम हमने टाइप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें. वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना. आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफी काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड. थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया?
0: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशंस हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे. तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी कंसल्टेंट है, उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे. सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपने मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं. तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था. ये उनको बताते थे बच्चों को, ये डॉक्टर है स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं. तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे. मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर. मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशंस ले रही थी और मैम के सेशन से काफी बच्चे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आप टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी. तो मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी मैम सारी चीजें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी. तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पे.
1: थैंक यू सना. जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था. चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
0: चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है. तो फिर हम लोगों ने तो यही बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते. जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करें. तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, वो रिटर्न देखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे अलाउड करता है, आप पहले काम सीखो. तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें. तो मैंने बोला कि ये ही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सीविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए. आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीख कर आप कहीं काम करने लग जाओ, या चिकनकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे. तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ नाम अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैल्सियम्स के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे और वो उन्हें, और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को. मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे. तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी कि ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम हम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले हम सीखेंगे इसको.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम करें, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
0: श्योर मैम. मैम चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं. मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले. मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी. और जब उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया मैम, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है. बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे इंजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए. एंड दैट थॉट चेंज माय माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है. मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैम ये पहने ही मैम इतनी बड़ी, हम दो कुर्ते देते सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो हम शी वाज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे लिए कुर्ते पहनेंगे. मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे. तो हम शी वाज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कुर्ता खुश थी. फिर मैम उन्होंने यहाँ पर एक साल डेढ़ साल तक की जॉब की, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर एक साल जॉब किया. एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है. मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ. दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है. एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम, उसके वो यहाँ पर सीविंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीविंग का कोर्स. मैम उसने बेसिक सीविंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीविंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती. मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है. देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा. उसके बाद बोलते हैं कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मशीन खरीदनी है. मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो. तो बोलते हैं मैम आप वापस ले लेंगी? मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जॉब मशीन खरीद लो. फिर दूसरे दिन आके बोलते हैं मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है. एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पूरे गाँव के मैम वो कपड़े बनाती है. एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है, अभी जल्दी फायर हो गए. तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन. तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि लीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि लीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम. ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को. मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है,
1: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में. कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई.
0: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था. पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए. जो जो हालत मैम, जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं. मैम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था. अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम. गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज़, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था. और मैम कोविड खत्म हुआ, फिर दूसरा वेव आया. सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया. उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया. और एक बार ही हो गया, 2 बार हो गया मैम, कॉन्टिन्यूसली 15-15 दिन बारिश हुई है, 1-2 दिन बारिश हुई है. ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए.
1: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट. इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों। सो जी
0: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना ज़रूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनक्रेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती है कि जिस सेंटर पे जाए वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज़ पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिल के आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
2: Yeah, I have been listening to the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Barabanki. सना बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलेसन्स टीम इन यूएस एंड देन वी थॉट दैट वी हैव टू स्टार्ट द वर्क देयर। जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप राइट। एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ मेनी मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज यू रीच थ्रू योर इंटरवेंशंस एंड हाउ मेनी हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट।
0: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So, ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center. They are connected. They are coming to the center. They have learned the skills, and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do? So I asked him to learn computers because you're a boy, you can learn computer and do something. And you can search for a job also, but not only computer, but you should continue with your studies. So he asked, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library. Because, and when he came to the library, he was like, मैम इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पर, मैम आप ये भी किताब है, मैम ये भी बुक है, मैम अगर मैं कुछ मंगाऊँ तो मिल

0: ये सब आपकी वजह से हुआ। मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये विनिन्या ने कहा, प्लीज से थैंक्स यू। दीज आर द स्टोरीज दिस इंस्पायर मी अ लॉट।
1: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know कि बड़ा गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, तो आसपास के कितने और गांव हैं जिससे कम्युनिटी इतनी दूर दूर से चलकर आती है आपके सेंटर पे, और कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है। So I would also like to listen back to revive my memories about that.
0: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked कि ma'am आज मैं सोच रही थी कि वो जब बच्चे आएंगे तो मैंने पूछूंगी कि आप 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते हो सिर्फ सेंटर के लिए। तो अभी तो वो आए भी नहीं, बारिश होने लगी, बट मैम इतने ऐसे ऐसे विलेजेस है, दिस इज द लेटेस्ट डिस्टेंस मैं टेलिंग यू कि ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैम 25 to 30 किलोमीटर बहुत टफ है साइकिल चलाकर सेंटर तक आ पाना। एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं, और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें। तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में एंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं।
1: सना, ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं, और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज you motivate them for continuing their education and they find this space safe, protected, support itna milta hai, books unko yahan se milti hain, knowledge support milta hai, aap unke issues resolve karti hain, to yahi ek community library ka jo services hain you are providing more than what is needed actually, so that is highly appreciated. Main और भी मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, they come to UP quite often before COVID. So, aap kaise apna dono taraf balance bana ke rakhte hain?
0: Ma'am, sometimes so we have the information that they are coming and sometimes they come like this only. So, because ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office. Because I don't like taking leaves at all and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So, this is the thing that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that ki abhi wo aaye hain, so I have to give my, at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children ki aap log library mein jaake baithiye, abhi main koi session nahi lungi, abhi main in logon se baat kar rahi hu. Fir main unke saath pura unko explain karna pure center ke bare mein, kaise hum kaam karte hain. And they ask so much about everything. About Read India, about, because they are not the donors exactly, because they are coming with the donors, so they are from different companies also, so they don't know what is Read India, so I have to explain them each and everything about Read, about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in Read India. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagao center. So last year, like pandemic se to abhi tak sirf do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprise that they are saying we are sitting over here in the office and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, so means aap kaam kar rahe ho to ekdam disturb mind mein, and everybody we aage samne se khada ho jata hai, was like I take 2 minutes.

0: टू थिंक दैट हु आर देयर इज लाइक कभी कभी चेहरा ही नहीं याद आता कि कौन है ये. सो इट्स हैपन समटाइम्स विद मी.
1: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you inspire them to come to the center regularly, right? So these
0: Yes,
1: two
0: ma'am.
1: things go parallel, right?
0: Exactly, ma'am. Ma'am, I
1: एक और
0: remember one
1: जो
0: story.
1: या प्लीज प्लीज कंटिन्यू.
0: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. She was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there was continuously उसको परेशान करने जा रहा था मॉर्निंग में आने के टाइम पे मॉर्निंग शाम को जाने के टाइम पे. तो मैम शी कंप्लेन 2-3 टाइम्स टू मी कि मैम मैं नहीं आऊंगी सेंटर, मैम मुझे नहीं सिखाना बिकॉज अभी घर में पता चल जाएगा तो मैम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए. एंड शी वॉज द ट्रेनर तो इवन दैट शी वॉज अ स्टूडेंट ऑल्सो दैट आई हैड टू टेक केयर ऑफ इट. तो मैम हमारे पास एक प्रेरक था हमारा जो हमारे लिए कमेटी में जाकर सेशन लेता था. आई आंसर आई टोल्ड हर कि अभी घर पे कुछ मत बोलो. देन आई आई हैव टोल्ड दीपक आप जाओ आज मैम को लेके घर बाइक से और आप देखो कि मैम को कौन परेशान कर रहा है. फिर मैम उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया. फिर उसने मुझे आकर बताया कि मैम ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार को कि आप जाइए आप इनके घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू वेंट देयर और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गाँव में बहुत आते क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है एकदम रास्ता अंधेरा होता है बाघ होती है आसपास बहुत सारे फार्म होते हैं बाग होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते. तो हम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
1: सना, मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इन बाराबंकी एंड बड़ागाम आर मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट? एंड मेनी गर्ल्स कम फ्रॉम दीज फैमिलीज टू योर सेंटर. आर देयर एनी स्टोरीज ऑफ डिलेड एज एट मैरिज और कंटिन्यूइंग हायर एजुकेशन, कन्विंसिंग देयर पेरेंट्स दैट दे वांट टू लर्न मोर फ्रॉम द रीड सेंटर एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, देन दे विल गेट मैरिड?
0: Yes, ma'am. And there was one girl. She was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me कि मैम मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो बट मैं जब तक अपना एडवांस टीचिंग का कोर्स सेंटर से मेरा पूरा भी हो जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं चाहूंगी मुझे नहीं जाना वहाँ. तो मैम शी वॉज लाइक शी स्टेड हियर फॉर 6 मंथ शी लर्न कम्प्लीटेड हर कोर्स एंड देन शी वेंट बैक. मुस्लिम कम्युनिटीज में तो स्पेशली जैसे बच्चे 10 12th में लड़कियां आ जाती है पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज आल्सो कम हियर इन बड़ागांव. आई हैव आल्सो अर्लियर डिस्कस दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं देन दे गेट मैरिज. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है जितने मेरे कम्युनिटी विजिट से जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है. हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18 19 20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपन्स एवरी टाइम that we have to counsel the parents, we have to counsel the girls and they come and they discuss with me everything, especially the Muslim communities.
1: Very nice, very nice. It's very satisfying to know all these things because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue hain ki mentally, physically, socially, the girl should be prepared to get married, only then she should get married. Aur jo the component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also because COVID has taught us many things to be independent and be ready to support the family when any emergencies come in the family. So wo bhi hamare center ki taraf se aap hamesha unko convey karti rehti hain. Sana, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे लोग, राइट। और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाय चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं, शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कंप्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए। तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना?
0: Yes, ma'am. I would like to say that, ma'am, if we are going for the sub center or satellites, we should pay. We should make the satellites for a time period, like 6 months for year or 1 year for at one place. Then we move in other direction, in the other village. Like if it Baragao is the center, then it has it in its stages. There are many villages, so we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefit from the center, because if it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, if we definitely if it will be a very very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Free India more powerful and more accessible to people, because they will know what Feed India is and what facilities what we are giving to the children of everywhere.
1: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I'm sure under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and get collect the stories what you are sharing on this platform,
0: Sure.
1: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
2: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, सना बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनीथिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर चिल्ड्रन, कैसे आपके बच्चे, आई नो यू हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो इतनी स्ट्रांग मदर को, इतनी स्ट्रांग फैमिली को देख के हाउ दे आर फीलिंग, स्पेशली बोथ ऑफ योर गर्ल, द ट्विंस, द ब्यूटिफुल ट्विंस दैट यू हैव. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, REIT initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community?
0: Yes, ma'am. During from last year, if you talk about COVID only, हम देवर लाइक कुछ करने के लिए नहीं है मम्मा, क्या करेंगे? तो मैंने बोला कुछ नहीं, जब सेंटर खुल रहा है आप सेंटर में आके बैठो, अब बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ाओ. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि जो क्या है दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक मना लगा, देवर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए, तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. यस मैम, आई एम It helps them. Every child, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Gita, ma'am, from everybody. So, the learning is never ends. I believe that.
2: एंड आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है आज वो सना है जो शायद कहीं पे अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी और आज वो लोगों तक एजुकेशन को पहुंचा रही है?
0: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, papa ke saath aisa koi connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of us because the three of us are very, active. And my other sister, the sister who's living in Hong Kong also, she's also working for an NGO only. And
2: Very
0: she's working from
2: nice.
0: past 7 years. So we both are very social and we help each other a lot in everything.
2: Very nice. Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
0: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want you to get married early, मे बी एनी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आपको ये चाहिए कि आप गिव अप मत करो किसी भी लाइफ स्टाइल को, किसी भी लाइफ के स्टेज पर. जस्ट डोंट गिव अप एंड कीप लर्निंग, दैट विल हेल्प यू फॉर योर इंटायर लाइफ. नथिंग मच मैम.
2: On those inspiring lines, if there's nothing else, then we can, you know, close this session for today. Thank you so much, Sanna, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us. And thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Sanna. Hopefully, you reach all the communities. And whatever your satellite centers are, they will be utne hi successful as much as your present center.
0: Yes, ma'am.
2: Thank you so very much for joining us. And we thank our viewers also for patiently viewing our program. We can end the session. We will join you again on Friday with another exciting program on Culture Knowledge.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल ये practical चीजें हैं. मैंने कोई theory नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये practical day to day हमारी life में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग. तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बह रहा था. वो फ्रॉग ही बह रहा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके. टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टावर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से. बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होते हैं कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. वॉट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत simple words में पहली दो slides में बताया. ये definition है कि great leaders vision होती है. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. They can see the future. वो great leaders
विजन होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी, दे कैन सी द फ्यूचर, वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ, दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट, वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है, करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइंब कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की, मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या

होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं, क्या है ट्रस्ट है, क्या देखते हैं कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने, जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स। किसने उनको बोला करने के लिए, हम ही ने बोला, तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया। और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो, दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस। सो बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड। हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर। आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता, आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था। आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही हैं, चाहे 2000 कमाएं, चाहे 4000 कमाएं, चाहे 6000 कमाएं, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2000 से 6000 तक लेके जाए, 6000 से 12000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है, हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है। इवन बिजनेस में भी बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? It means that you have the self-confidence and self-awareness to recognize the value of others without feeling threatened. समझ में आया सबको?
मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनालिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोस, राइट? तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स, बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे। पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मींस दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए, हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ, मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर, एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं, ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन, इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं,
अब आने वाले टाइम में जो एनजीओ पॉलिसी लेवल पे काम कर रही है उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे लोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे। दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड, बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे। मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी, बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट?
और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? योर एबिलिटी एज ए लीडर टू कॉल द शॉट्स एंड मेक श्योर दैट एवरीवन इज फोकस्ड एंड कंसेंट्रेटेड ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ देयर टाइम इज एसेंशियल टू द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. मैंने जान के ये बिजनेस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे बिकॉज हमारा 1/3 फोकस ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन. गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे. रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने. बहुत इंपॉर्टेंट है विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट? लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. द स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट. दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल but also to helping group members fulfill their potential. These sentence mein maine summarize kiya hai jo last 7 points maine bataye hain ek leader ki qualities ke bare mein. ab leader ki qualities to bata di ki leader ko karna kya hai. pehle to humne goals bhi chase kare, fir humne apne wo points bhi yahan pe highlight kare best qualities ke. फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशनली इंटेलिजेंट का मींस है कि मैं दूसरों के
पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग, आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम, हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोल रहा था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन 3ों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन
हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट? हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स, ये दूसरा रिस्क।

0: बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है, इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है। आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है, एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी की हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें, दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल, आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसका, ठीक है। 5 मिनट हैं
1: यस
0: हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की। आप करके देखिए, ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा कोई
0: पर्सनल
1: चीज हो
0: लाइफ
1: जाती है, घट
0: तो
1: जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं।

0: क्योंकि हमें ना सुनने की
1: यस
0: क्षमता होनी चाहिए। हम ना
1: जी
0: सुनने
1: मैम,
0: की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं। हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
1: हाँ जी
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें, यही आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
1: मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया।
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं, आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक ग्रेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से, मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा, वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: बिल्कुल, और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे, तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी। हम तो
2: जी
0: डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
2: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज
1: राइट मैम,
0: लीडर्स आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: धन्यवाद सोनू जी।
1: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
2: सोनू जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है, और गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है, और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फोसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया इस बैठक के बाद।
1: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: गाइडेड बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिया सीक्स टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स कोऑपरेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम्स दैट आर रेसिलियंट, फ्यूचर रेडी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, environmentally sustainable and people-centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of Sarvesham Urjam, that is, energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है, और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
2: सोनू जी, देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल, छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है। एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है। और खास करके जो आपने बात की इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई या उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है अप जाती है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है। स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है खास करके ये रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो स्टोरेज की, क्योंकि सन चला गया विंड चली गई उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही बट इसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
1: जी सो बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
2: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनिए हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कॉपरेशन प्लेटफॉर्म, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की, उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है, और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
2: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं काम। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं काम। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेंजी जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना इसको, यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, आप क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, सब सीएनजी पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है, और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट थी, उससे बढ़कर आज वो 154 गीगावाट से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
2: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 गीगावाट से फाइनल फिगर अब कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है। और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग फिर कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है डीपीआई, जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सहारा है, और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद समझे।
0: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में

0: ओजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन है, नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का, मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई या किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है, मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में।
0: तो अभी तो आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती है,
0: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है। अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 पीपल आर लिसनिंग टू यू, अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही आपको?
1: तो रही थी अभी, लेकिन अब आपसे बात हुई तो कम हो गई।
0: अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको, क्या उन्होंने कहा कि यू नो यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर हम मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: पराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर लगता है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो, मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था, एकदम मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसा फियर था, इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है, किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते?
1: गुड आफ्टरनून मैम, आबिदा रामपुर कलर से।
0: अच्छा आबिदा जी,
1: जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू रीड ज्वाइन किया था उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी, बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो, तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का, और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो, ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है, और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया, ग्लॉसो फोबिया, यानी कि ये कोई, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है। इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
1: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ
0: हाँ जी,
1: मैम। एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है, और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है, और अजीब बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
1: अभी अभी मैं आपको, इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, कि मैं, यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं, कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे ही आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारे वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं, और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं, और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो, हमारा हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ, या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही 5 रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलेंटियर करेगा, हाँ बेटा तुम बोल लो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से, छोटे से ही शुरू होनी होती होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
2: नमस्ते नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ईशा जी।
2: मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में कुछ बोलने के लिए असेंबली में, कि कुछ पोयम सुनाओ, तो बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते, अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोयम आती भी है तभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है और हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सकें। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो वही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते हैं ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टो नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ना ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है। तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, वो टॉपिक कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए, बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए ताकि आप एनवायरमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाएं, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं, बैठ के आप देखें अच्छा अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी, क्योंकि ब्रीदिंग से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है, और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं, जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
2: यस मित्र जी, वेरी नाइस
1: जी मैम।
3: यस मैम।
0: लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स?
3: यस मैम,
4: काफी है मैम।
0: अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी कभी ना अगर उनको काफी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स मतलब जो सत्य है उसको कोट करना है, तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखे आपने, छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं, मतलब पेपर को छोटा छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं। कभी देखा है आपने कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं? किसी ने देखा है क्यू कार्ड? क्या होता है क्यू कार्ड?
4: नहीं, देखा नहीं कभी।
0: क्यू कार्ड क्या होता है? छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है? पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने, पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना? तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है हर किसी के पास वो ना हो, आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो, अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे पांच या छह क्यू कार्ड्स रख लेती हूँ ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है, ये पांच पॉइंट लिखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या? कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपनी ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
5: हेलो जी मैम, सुमन
0: जी। सुमन जी,
5: हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ उस चीज के लिए, हाँ जी। और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी।
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है, जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना, पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए तो वो गलत नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना? और क्यू कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है, क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था, तो अगर आपके टॉपिक में 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा ये क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो यू कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
5: की,
0: तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू, क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना है।
5: जी मैम, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ हमेशा।
0: हाँ, एब्सोल्युटली, हाँ, आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड्स का यूज करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में. अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए. तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं.
5: थैंक यू मैम.
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
4: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे, तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं कर रही थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट, आई वाज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेकर,
0: फियर ऑफ जजमेंट.
4: राइट राइट. तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं. Absolutely. और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया. दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी. तो फिर मैंने वही चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने,
0: है ही नहीं. बिल्कुल, जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके, लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आप में पैदा कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवरपावर किया. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में खवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं. दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही, अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है. तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने. कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ. जो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट. और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए. अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है. सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए. बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं. आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं. तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए। अगर आपका ड्रेसअप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेसअप में कंफर्टेबल नहीं है, आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए। अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं, तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स सेशन में टिप्स थी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा भी नहीं कि चप्पल में चले जाए, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे। कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, नहीं। तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं। अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है, लेकिन भूखे भी मत रहिए। पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताई, कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा। टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली, मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है। अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं। कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए। हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो घबराइए मत, अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है तो घबराइए मत, स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस। सो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरमेंट होगा। बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए। ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तब आप एंगेज नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट।

वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। मेरी आदत है जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूं तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है। अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजीशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा। कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है। एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कॉन्टेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ। अगर आई कॉन्टैक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, आप ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, आप ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है। अगर ऐसा है तो आई कॉन्टैक्ट मोर देन 5 सेकेंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं। आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कॉन्टैक्ट करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए, ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है। कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट है वो बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं। बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है, तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा। खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए। पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा। बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉट मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है, हमने पीपीटी पे बना लिया सब कुछ हो गया लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं। तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है। तो दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर पब्लिक स्पीकिंग। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीब

0: 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में. आई होप दिस इज हेल्पफुल. ये प्रैक्टिस से ही जाएगा. और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है. 75 से 80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पर काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं. तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन. ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है. लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है. आई होप दिस इज हेल्पफुल. मेरे पास कोई शेरोचारी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को. बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम. एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो.
1: नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली.
0: यस यस अंकल.
1: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है. और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कॉन्टेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी. अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को. रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच.
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं. और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है. इन 3 या 4 मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में. पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है. बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर. सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
2: मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मुझे याद आया अभी जब हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का. दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम. आई रिमेम्बर दैट. सो दैट आई एम फेंट मैम, बट आई कैन से दैन यू हेल्प मी सो मच. Even speak your name, your family, about all that. And after that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place.
0: कई बार ऐसा होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है. ऐसा होता है, जो मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा मुझे लगा ये क्या है. और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को. तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया है, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना है, क्यों डर लगता है?
3: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं. बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई. मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाए.
0: मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने बोल लिखे थे प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है. क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. सो यू ट्राई एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ. डोंट बी वरीड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेखा तो वैसे ही रहेगी,
3: यस
0: उसकी लाइफ
3: मैम,
0: वैसे ही चलेगी।
3: जी मैम, इस बात का डर लगता है, पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं, या मेरी
0: एग्जैक्टली
3: बात के मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती।
0: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, वो दूसरे के पास नहीं है। जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी, उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं। तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं।
3: हाँ जी मैम, ठीक
0: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे, और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, छोट दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा। अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। सो अभी आप बोले, इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई
3: यस
0: कॉन्टेक्ट से डरना नहीं है। आई कॉन्टेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो। अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है, उसकी तरफ देखो ही मत, नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं, उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो, ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
4: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल लेती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो।
0: गुड इवनिंग सलाम।
4: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था, बहुत धक धक, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ। वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी कि घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत, जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात ना। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए, क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती हैं या नोट्स में रहती है, इस पे आप अच्छा बोल पाते हैं। सेम
5: आई थिंक शायरी भी करती है
0: परा, शायरी
5: अब
0: भी
5: तो
0: करती है।
5: परा शायरी की शायरी से बंद करके अपना टॉपिक क्लोज करती है।
0: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
4: जी।
0: और उनकी जो
4: जो सुन भी नहीं रहा है ना मुझे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
0: एब्सोल्युटली, किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो। कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ। ऐसे भी
4: अवार्ड मिला था मैम हमें रमाडा में ही मिला था, फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना। मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी।
0: क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
4: हाँ मैम मैंने प्रिपेयर किया था।
0: क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मामा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी मैं कैसी लग रही हूँ
4: बहन भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था, तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था, मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने
0: अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे, तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से। तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए, तो जरूर अच्छे अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा।
4: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा। हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है।
0: Absolutely, absolutely. I like that. दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी।
6: जी मैम, जैसे ट्रेनिंग में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सदन में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे, बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी, तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के आवाज में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी। लेकिन जैसे काम किया है तो किया, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं अक्सर, शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी जो इनका लेवल बढ़ता गया, तो भी कोई भी, जब मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th की लड़कियां हैं।
0: अच्छा।
6: वो करीब 17 या 18 से ऊपर, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता कि जो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आज बताना, इसलिए शायद वो भी कुछ बातें पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए, अगर आपको टॉपिक पहले से पता है, अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। आई होप इट इज ऑफ एनी यूज। अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो इट्स माय वर्क डन। सो प्लीज मुझे शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा शीशे के सामने। मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: Surgióme.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे उस क्षेत्र की जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाला है, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई के उद्घाटन के बाद ये विषय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: सुबिमल जी, हमारे कई श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और आज की डिजिटल दुनिया में इनका इतना महत्व क्यों है।
3: देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये आज के डेट में एक एसेंशियल ड्राइवर बन गए कि स्मार्टफोन से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे हैं जिस तरीका से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आगे आ रहा है, तो हर काम में आज में ये चिप्स की महत्व इतने बढ़ गए हैं, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ गए हैं। और इसके जो बेस होते हैं ये होते हैं कि ये सिलिकॉन की एकदम पतला सा स्लाइसेस होते हैं जिसको वेफर्स कहा जाता है, और ये स्लाइस ये प्यूरिफाइड क्वार्ट्ज से बनता है और इसके बाद फैब्रिकेशन के माध्यम से ये जितने जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो सर्किट्स होते हैं उसको रेगुलरली एच किया जाता है ये इसी वेफर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। और हम सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो फ्लैट है, लेकिन एक कॉमन चिप जो हमारे सामने होते हैं जो एक मिलीमीटर थिकनेस जिसके होते हैं इसमें करीब 30 माइक्रोस्कोपिक लेयर्स कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने दिखने में छोटा सा और आसान सा लगता है उसका अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। और इसी से हर तरीका की आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स और हमारे घर की किचन के भी इक्विपमेंट्स को यही चिप्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं और इससे काम करते हैं वो।
2: जी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में एक नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उसकी परिकल्पना से निर्माण तक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली, कुछ कंपनियों से बातचीत भी की और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों से साझेदारी भी हो रही है।
4: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी, और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।
2: सुबिमल जी, पीएम ने अभी जिस साझेदारी की बात की है, कुछ देशों के नाम लिए उन्होंने, उससे सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत को किस तरह का लाभ होगा उस साझेदारी से?
3: देखिए, प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शिता है, इसीलिए उन्होंने उसी समय 20 साल पहले ये सोचा था कि किस तरीके से ये चिप्स की महत्व रहेगा, और आज जब देश में इनकी सरकार ने 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रखे हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में है, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कई सारे कंपनीज कई सारे देशों से इसमें जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि भारत, जापान, थाईलैंड ये सीजी सेमी की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो अभी जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक पहलू था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि ये जो साझेदारी है, ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग देशों की, इससे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होते हैं, देखिए हम थे तो काफी देर से शुरू किए हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में जितने सारे चीज है, जैसे लिथोग्राफी, इसके साथ सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से ये चिप्स की फैब्रिकेशन होते हैं, और इसके बाद जो पैकेजिंग होते हैं उसमें और किसी कंपनी की और किसी देश की कैपेबिलिटीज होते हैं, तो ये जो होल ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जो प्रयास है, उसमें हमें कोऑपरेशन की माध्यम से चलना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसमें लगे हुए हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ महीना पहले आपने देखा था कि नेदरलैंड्स की कंपनी ASML, जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये चिप्स बनाने के लिए, उन्होंने भी टाटा के साथ एग्रीमेंट की कि ये हमारे साथ इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी देंगे, तो मुझे लगता है कि यही माध्यम से ये कोऑपरेशन जो है, ये साझेदारी, ये कई सारे देशों का बीच में भारत के साथ चलेगा, और ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है कि आप किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सस्टेन करे, और उसको सिक्योरिटी की तरफ से भी अगर देखा जाए, उसके क्रिटिकलिटी की तरफ से भी देखा जाए, तो ये पार्टनरशिप में भारत एक देश बन रहा है पूरे दुनिया के सामने कि हम भी इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़ गए।
2: प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन हमारे देश को कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है।
4: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ, और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
2: सुबिमल जी, क्या लगता है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इस परिवर्तन के लिए देश को किन नीतिगत और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता होगी?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम समय में भारत ये जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन होते हैं एडवांस फैब्रिकेशन की तरह, उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि अब हम इस वक्त सीजी सेमी ओसेट की बात कर रहा है सनाट गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल इनोग्रेट किया, लेकिन इसके अलावा एक टाटा का प्लांट भी ओसेट की आसाम की जगी रोड में, इसमें भी काम हो रहा है, और इस साल के अंत तक इसका भी चिप प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री जिस अप्रोच से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिशा दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी और फंडिंग की तरफ से भी काफी अच्छा स्केलिंग अप हुआ है। अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया था कुछ महीना पहले, और जिसमें से हमारी जो 2026-27 की बजट में 8,000 करोड़ रुपया की बात आई थी ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, तो ये मुझे लगता है कि पॉलिसी की सपोर्ट, जितने सेमीकंडक्टर सेटअप्स आए उसमें और पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके से सरकार की तरफ से दिया जाए, और फंडिंग अवेलेबल रहे चाहे सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, बहुत सारे संस्था इस और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आज ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इकोसिस्टम जो शुरुआत में एक क्रिएशन की तरफ थे, आज वो कंसोलिडेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें से ये आईएसएम 2.0 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आपके महत्व दिया गया है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी, प्लस एक सोवरेन चिप आईपी की जो प्रयास हो रही है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डिजाइन टैलेंट हमारे देश में है, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिंक्स, ये सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो चिप्स में काम कर रहे हैं ग्लोबली, उनकी R&D सेंटर्स हमारे देश में, जैसे इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और इस सब को देखते हुए नीति आयोग के जो 10 साल के एक रोड मैप रखा गया है, 120 से 150 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हमारा 2035 होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिसी सपोर्ट जिस दिशा में जा रहा है, और प्रधानमंत्री का खुद का इस क्षेत्र को पर नजर है, और इसके साथ साथ जो फंडिंग अवेलेबिलिटी हो रहा है, ये पूरे वैल्यू चेन में मुझे लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं, तो ये सस्टेन तरीका से ये सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में रहना चाहिए।
2: जी, आपने जैसे बताया कि ये चिप डिजाइन में भारतीय प्रतिभाएं काफी समय से जानी जाती हैं, विख्यात हैं, और अब इसके निर्माण में भी कदम बढ़ाने से हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें कोई स्थान मिल सकता है। अगर आगे हम देखें, तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है भारत में।
3: या जरूर, सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा कहा गया है कि आप इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, लेकिन अगर देर से भी आए, लेकिन स्टेडीली जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हाथ दिए है, जिस तरीके से इसको डिफ्यूजन की तरह सारे देश में लेके गए, और जो डिजाइन की तरफ में जो हमारा एक प्रयास रहा है, अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी एक गोल दिया गया है कि 100 से ज्यादा एडवांस डिजाइन आईपीस इस देश में अगले कुछ साल में करना है, तो मुझे लगता है ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च जापान और EU के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्षेत्र में बहुत मैं समझता हूँ कि चेंजेस आएंगे बड़े कम समय में, क्योंकि इस पर फोकस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी बात रह जाती है कि हमारे जो स्किलिंग है इस देश में, और हम किस तरीके से ज्यादा वो ट्रेन मैन पावर उसी स्किल सेट के हिसाब से हम प्रयास करें, और उसमें भी कई सारे संस्था आज कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो यंग फोर्स है, जो अपनी हो सकता है पढ़ाई दूसरा क्षेत्र में कराए, लेकिन इसमें जो स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनको दे, और वो भी एम्प्लॉयबल रहे ये सारे प्रयास में। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच और होल ऑफ द सेक्टर अप्रोच से जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हमारी एक अर्ली स्टेज एफोर्ट बहुत अच्छे रहे, और उससे कंसोलिडेट करते करते आके हम इस क्षेत्र में अपना नेसेसिटी के अलावा भी ग्लोबली हम एक सिक्योर सप्लायर भी चिप्स के लिए बन सकता है।
2: जी, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यदि हम सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश और नवाचार करते रहेंगे, सुविमल जी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को सरल और सारगर्भित ढंग से आपने समझाया, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
0: सुर्खियों में
5: मेरा नाम मैं स्कूल से हूँ। और मैं सवाद मोहम्मदपुर के लाइब्रेरी में आता हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कुछ करना सीखे। देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित तो जिसमें, ऐसा हम कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हम सबको फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ है उसे पढ़ाए, जो चुप है उसे वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे, मेहनत का दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे।
6: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं। ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें, और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे है, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23। कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है, एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने के लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया। वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना है या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपनी लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम उनके लिए जितना करूँ, मैं जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बना है, हर काम गर्ल्स के लिए बना है। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीखे जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की हर चीज़ अच्छी है।
3: I am Priyanka Jaiswar. I belong UP, Allahabad and living Sahabad, Mohammadpur. मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गांव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे। तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।
4: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026, तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में। 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा, उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
5: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
4: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुंचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
5: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए, या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
4: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
5: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
4: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
5: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
4: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निशुल्क है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुंचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
5: मैं दिल से खिलाड़ी हूं, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूं।
4: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

0: अभिदा और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं, और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपरेल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अभिदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपरेल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अभिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अभिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अभिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अभिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलकत्त के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए हैं, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैं अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद, यहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के, खुद के पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और बस उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को फोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया, और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ फर्स्ट आई। बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया। उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ और हमारा हॉल पसंद किया, और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल। तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोका, हॉल दिया मुझे, मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया। और मेरा ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़के से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई, और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया, और मेरे बाद में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने रहने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। तो उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही, कमा भी रही।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कल घर में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
1: जी मैम,
0: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ, और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को। तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता। और जब मैं अमिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अविदा की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी। तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे। मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके

0: जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहाँ पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है या स्विमिंग का कोई काम है या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया और वो फर्क लाने के लिए आबिता ने बहुत कोशिश की है और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही हैं, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाएं और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों, लड़कों तक पहुंचे और रीड का नाम बहुत रोशन हो। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
1: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी

0: सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो हम किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है, इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ। तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ।
1: थैंक यू
0: अभी
1: मैडम।
0: मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: मैं ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली को सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है। काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद खुद उठा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा, जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
1: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है। स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है, और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंगवुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंगवुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका।
2: वो पेज बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर और क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं इस पे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो हमने उन्हें बताया, बात करते हो फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था, तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में है वो इतनी मतलब मेहनती है, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ, तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी। वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हूँ, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग खुल जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती हैं, तो सीखने के बाद जो फरा ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं, तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
1: जी मैम, हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे, लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में, लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो और दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने और अभी कर भी रही हैं, उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही हैं।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
2: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए, और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो, प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज़ उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है, चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहाँ जो भी आएंगे तो उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
0: बहुत बढ़िया फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
1: पहले मैं शुरुआत बेबी क्रॉक से करवाती हूँ, बेबी क्रॉप्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेट वगैरह, ये काफी पसंद है यहाँ पर, काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाई है, नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट फरारे और पटियाला शलवार, ट्यूलिप शलवार, धोती शलवार, और यही सारा कुछ साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब कुछ हम सिखाते हैं।
0: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है, और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
2: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशंस कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिज़ाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिज़ाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है, जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता, और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
2: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को नाम है?
0: ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सकें, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सकें आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकें फोन के द्वारा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत ज़रूरत है, तो डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो मैं जानना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
2: टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें स्विंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर पे कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन पे आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते हैं बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
0: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल रही है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
1: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सर्कमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किया।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टॉप डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री।
3: Nani karibia lo, kachinghangi paridia lo, little sing sao na choy, ding lo lo.
4: Parvato ki gaan kokila, Shrimati Kokila Lake Tipi, Padmashri 2026. Karbi Anglong, Assam ka ek sundar gaon, jahan rehta hai Karbi samuday aur Kokila Lake Tipi. गुमंतु कलाकारों के परिवार में जन्मी कोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
5: उन दिनों कार्बी गीत तो थे, पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
4: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक कोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़ा। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
5: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
4: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांधोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबीन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष 300 गीत। उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है। लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
5: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
4: श्रीमती पोकिला लेखदीपी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
6: सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आजाद आबोहवा में लहराता तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक। तिरंगा शायद कम ही लोग जानते होंगे कि देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार विदेशी धरती पर फहराने का साहस किया था मैडम भिकाजी कामा ने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने देशभक्ति के आगे सारे निजी हितों और सुखों को ताक पर रख दिया और 3 दशकों तक निर्वासित जीवन बिताते हुए भी विदेशी भूमि पर स्वाधीनता की अलख को जलाए रखा। भिकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता सुराज जी पटेल मुंबई में एक समृद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाली भिकाजी को विभिन्न भाषाएं सीखने में रुचि थी। भिकाजी के मन में लोगों की मदद करने की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। 3 अगस्त 1885 को वकील रुस्तम कामा से विवाह के बाद भिकाजी समाज सेवा के कार्यों से पूरी तरह जुड़ गई थी। 1896 में मुंबई में भयानक प्लेग फैला। मैडम कामा दिन रात प्लेग पीड़ितों की सेवा में लग गईं, लेकिन वो खुद भी इस बीमारी से बच नहीं पाई। बीमार भिकाजी को परिवार ने सेहत की बेहतरी के लिए 1902 में लंदन भेज दिया। लंदन प्रवास के दौरान वो दो बड़ी राष्ट्रवादी हस्तियों के संपर्क में आई। एक दादा भाई नौरोजी जो लंदन में ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और दूसरे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो लंदन के भारतीय समुदाय में हाइट पार्क में दिए गए उग्र राष्ट्रवादी भाषणों के लिए जाने जाते थे। मैडम कामा कृष्ण वर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़ गईं। फरवरी 1905 में ब्रिटिश सरकार ने मैडम कामा को राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिस्सा न लेने की शर्त पर देश वापस लौटने की बात कही, जिसे मैडम कामा ने सिरे से नकार दिया और लंदन से ही स्वाधीनता की क्रांति का परचम बुलंद कर दिया। साल 1906 में इंडिया हाउस की स्कॉलरशिप पर लंदन पहुंचे विनायक दामोदर सावरकर से मैडम कामा की पहली मुलाकात हुई। सावरकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गुलामी का मुद्दा उठाना चाहते थे। इसके लिए 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में होने वाली इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एक अच्छा मौका था। सावरकर ने मैडम कामा को स्टुटगार्ट जाने के लिए तैयार कर लिया और साथ ही तैयारी शुरू हुई भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की, जिसे मैडम कामा अपने साथ ले जाने वाली थी। 22 अगस्त 1907 को इस ध्वज के साथ मैडम कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लेने पहुंच गईं। भिकाजी ने ध्वज फहराया और सभा में मौजूद लोगों से भारत की स्वाधीनता के ध्वज को सैल्यूट करने का आह्वान किया। इस अपील का असर इतना था कि वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। फिलहाल मैडम कामा दोबारा लंदन लौटी। इसी बीच 1 जुलाई 1909 को सावरकर के शिष्य मदनलाल ढींगा द्वारा ब्रिटिश अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की हत्या से हड़कंप मच गया। ढींगरा पकड़े गए और लंदन की पेंटेविले जेल में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकरण के बाद मैडम कामा फ्रांस चली आईं। फ्रांस में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना में योगदान दिया और दो प्रकाशन वंदे मातरम और तलवार शुरू कर अपने क्रांतिकारी विचार प्रकट करने लगी। कई फ्रांसीसी अखबारों में इनका चित्र रोमन कैथोलिक चर्च में संत माने जाने वाली फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क के साथ आया, जिससे साफ था कि यूरोप के राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक समाज में मैडम कामा गहरी छाप छोड़ रही थीं। 1910 में मिस्र के काहिरा में एक सभा के संबोधन के दौरान नारी सशक्तिकरण को लेकर मैडम कामा का बेहद दृढ़ रवैया सामने आया। इन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ पुरुषों को ही देख रही हूँ जो मुल्क की आधी आबादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ हैं मिस्र की माताएं बहनें? आपको नहीं भूलना चाहिए जो हाथ पालना छुलाते हैं वो राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं। कई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस सरकार से मैडम कामा के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, जिसे फ्रांसीसी सरकार ने नकार दिया। हालांकि 1914 में विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और ब्रिटेन की दोस्ती के बाद मैडम कामा को फ्रांस सरकार ने नजरबंद कर दिया था और करीब 3 बरस बाद खराब स्वास्थ्य के कारण नवंबर 1917 को इन्हें छोड़ा गया। 3 दशकों तक निर्वासित रहने के बाद 1935 में 74 बरस की उम्र में भीगाजी कामा को वतन लौटने की इजाजत मिली। अब तक मैडम कामा बहुत बीमार हो चुकी थीं और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते वतन लौटने के कुछ महीने बाद 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया। 1962 में गणतंत्र दिवस के दौरान मैडम भीगाजी कामा की याद में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल ने मैडम कामा के नाम पर प्रियदर्शनी क्लास फास्ट गश्ती पोत ICGS भीगाजी कामा कमीशन की। मैडम कामा का स्टुटगार्ट में फहराया ध्वज आज भी पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए देश के आजादी के हक की मांग बुलंद करने वाली इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आज देश भर में कई मार्ग और इमारतें हैं।

नमस्कार, आज का टॉपिक है मकोई और उसके बेनिफिट। दोस्तों, मकोई ब्लैक नाइट और नाइट शेड काकमाची और भटकोइया पिलपोटन भी कहते हैं। ये एक छोटा सा पौधा है जो भारतवर्ष के छाया युक्त स्थानों में हमेशा पाया जाता है। मकोई में पूरे वर्ष फूल और फल देखे जा सकते हैं। मकोई में शाखा युक्त 1.5 फुट तक ऊंची तथा शाखाओं पर उभरी हुई रेखाएं होती हैं। इसके पत्ते हरे, अंडाकार या आयताकार, दंतुर या खंडित, 2 से 3 इंच लंबे, 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं। फूल छोटे, सफेद वर्ण रंग, बहिकक्षीय फूल दंडों पर 3 से 8 के गुच्छों में नीचे झुके होते हैं। मकोई का फल छोटे, चिकना गोलाकार, अपरिक्व अवस्था में हरे रंग के और पकने पर नीले या बैंगनी रंग के, कभी कभी पीले या लाल होते हैं। बीज छोटे, चिकने, पीले रंग के, बैंगन के बीजों की तरह होते हैं, परंतु बैंगन के बीजों से बहुत छोटे होते हैं। पकने पर फल मीठे लगते हैं। दोस्तों, अब बताता हूँ कि मकोई किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। मकोई पंचांग, जड़, तना, पत्ता, फूल और फल के काढ़े का सेवन गठिया का दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट फूलने, अपच, मूत्र रोग में फायदा पहुंचाता है। कान दर्द, हिचकी, जुकाम, आंखों के रोग, उल्टी और शारीरिक कमजोरी में भी लाभ होता है। इसके पत्ते एवं फल का सेवन से पेट का अल्सर ठीक होता है। इसके बीज भ्रम, बार बार प्यास लगने, सूजन और त्वचा रोग में फायदेमंद है। मकोई की प्रकृति डायूरेटिक होती है। अगर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी कारणवश आपको रात में नींद नहीं आती या फिर काफी डर लगने लगता है, तो मकोई का सेवन करना नियमित रूप से शुरू कर लें। इससे आपको चिंता आदि कम करने में भी राहत मिलती है। इसमें चिकित्सीय गुण होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। मकोई में फाइटोकेमिकल्स होते हैं और साथ में ही एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जिससे यूटीआई बार बार नहीं होता है। मकोई का सेवन करने से वेजिनल सेक्रेशन और यूरिन आउटपुट में इजाफा होता है। इससे शरीर के अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया बाहर आने में मदद होती है, जिस कारण सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और अगली बार यूटीआई होने का रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों, अब बताता हूँ कि किस रोग में कैसे प्रयोग करें। मकोई के पत्ते, पान का पत्ते तथा हल्दी से पेस्ट बना लें। इसका लेप करने से पुराने घाव, चोट लगने से होने वाले घाव, रोम छिद्र की सूजन, मवाद वाले घाव, दाद, खाज, हर्पीज आदि, एंथेक्स आदि में लाभ होता है। मकोई के पके फल को मधु के साथ सेवन करें। इससे टीबी की बीमारी में फायदा होता है। मकोई फलों को पीसकर सुखा लें। इसे गर्म करके लेप के रूप में लगाएं। इससे शरीर के सभी अंगों में होने वाले सूजन में लाभ होता है। मकोई के सेवन से हमारी किडनी हेल्दी रहती है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, किडनी एरिया में सूजन की समस्या हो, तो मकोई का रस या मकोई से बहुत अधिक लाभ होता है। ये फाइबर से भरपूर फल होता है, इसीलिए पेट को साफ रखने में मददगार होता है। मकोई फल खाने के साथ साथ 10 से 15 मिलीग्राम मकोई के अर्क को रोज पिलाने से किडनी में सूजन, किडनी के दर्द तथा किडनी रोगों आदि बीमारी में लाभ मिलता है। आजकल कैंसर की समस्या एक चिंता का विषय बन चुकी है। मकोई के फल में कैंसर रोधी गुण होते हैं। मकोई कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को रोकता है। ये ट्यूमर के निर्माण को रोकने के लिए भी लाभकारी बताया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में मकोई का सेवन प्रभावी हो सकता है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कई घातक स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। मकोई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। पीरियड क्रैम्प्स में महिलाओं को दर्द और ऐंठन का सामना करना पड़ता है, जो बहुत असहनीय होता है। ऐसे में वह पेन किलर्स का सहारा लेती है। दर्द निवारक दवाइयों पर निर्भर होने की जगह आप इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकती है, खासकर मकोई बेल। मकोई फल में ब्लैक नाइट शेड होते हैं, जिनमें एंटीपायरेटिक एजेंट मिलते हैं, जिनको पेन किलर में उपयोग किया जाता है। यह जल्दी दर्द में राहत दे सकते हैं। लीवर तथा तिल्ली के रोगों के लिए मकोई स्वरस, भूमि आंवला स्वरस यथा पुनर्नवा स्वरस का सेवन अति उत्तम अकाट्य उपचार है। तो दोस्तों, है ना मकोई फायदेमंद आपके और हम सबके लिए

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे देखिए अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपका एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज कि 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं।

ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है। बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है, क्योंकि एज भी आपकी कम है ना, अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया, और 4 से 5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्वलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जिसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती है, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना

17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है। तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है। आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं। प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4-5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे भी, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं, आप उस फील्ड से
रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है। मतलब ये तीन आपकी लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, स्टेट वाइज जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइल्ड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइल्ड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोगों की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे, जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था, पीछे हो गया मुझे साल सवा साल,
तो

वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेनरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया, और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया, और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइम से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था, आपका माने मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है, SEO का कोर्स किया हुआ है, तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं, जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें। ठीक है, मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब दे दे, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए, और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है। तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं। ठीक है, अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए,
और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए कहीं भी जेई की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी जेई की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक मई में, हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से, कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन पीएसयू में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं। पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये मैं, ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है, होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है। तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में, इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है। जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना, अलग अलग पूरे इंडिया में पीएसयू फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती है। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे
पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी कि क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई। आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इन टू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहां पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं, लगाइए यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं
जो डीएमआरसी है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों

0: एम्प्लॉयज ऐसे हैं डीएमआरसी के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं डीएमआरसी में, और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। आप तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि डीएमआरसी ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो डीएमआरसी के अंदर लग गए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। ठीक है जी, मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट ही हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है। जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर। अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट, तो ये एक एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC गेल इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहां पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते, जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है, तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है, तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। बाकी आप की कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक स्कोप है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: बेसिकली क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं। एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडवोक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बट एक्चुअल जो आपकी परमानेंट जॉब्स है, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान जनजातीय नायक टंट्या भील का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे

अगर तुम आना चाहो हमारी धरती पर, तो आओ बादलों की तरह और हरी कर जाओ हमारी कोख। अगर तुम आना चाहो हमारे जंगलों में, तो आओ वसंत की बयार की तरह और सूखी टहनियों में भर दो कोंपलें। अगर तुम आना चाहो हमारी नदियों पर, तो आओ पंडुकों की तरह और अपनी चोंच से इसकी धार पर संगीत छोड़ जाओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे आने पर, तो पहाड़ों से उतर आएंगे हमारे देवता आग बरसाने के लिए। हमारे पुरखों की पवित्र आत्माएं उठ खड़ी होंगी अपने सीने का पत्थर हाथ में लिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें सामने खड़ा पाओगे तीर धनुष और हाथों में कुल्हाड़ी लिए। हमारे संस्कारों में नहीं है कुछ भी धोखे से प्राप्त करना। कुछ ऐसी ही हुंकार थी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उस जनजातीय समाज की, जो उनके जल जंगल और जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र लगातार रच रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए युद्ध का शंखनाद करने वाले ऐसे ही जनजातीय महानायक थे टंटिया भील, जिन्हें अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिनहुड कहकर पुकारा। निमाड़ अंचल के घने जंगलों में पले बढ़े टंटिया भील ने निर्धन और पीड़ितों के दुख दर्द को कुछ इस तरह से बांटा कि निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जनजातीय समाज ने उन्हें एक लोक देवता की तरह अपनी चेतना में शामिल कर लिया। इन अंचलों में उनका जीवन चरित्र आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाया जाता है। टंटिया भील का जन्म सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा अहीर गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनका लालन पालन उनके पिता भाऊ सिंह भील ने किया, जो एक कृषक थे। गांव में ज्वार के पौधे को सूखने के बाद लंबा और पतला होने के कारण तंटा कहा जाता है। बचपन से ही दुबला पतला और लंबा होने के कारण भाऊ सिंह के इस पुत्र का नाम टंटिया पड़ गया। पिता ने उन्हें लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने में प्रवीण कर दिया। युवावस्था आते आते काजलबाई से उनका विवाह कराकर खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। टंटिया गांव के युवकों में अत्यंत लोकप्रिय और उनके अघोषित नेता की तरह थे। गांव में छोटे बड़े सभी लोग उन्हें हृदय से प्यार करते और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी वीरता, धीरता और न्यायप्रियता की चर्चा गांव भर में थी। टंटिया के ऊपर दुख का पहाड़ तब टूटा जब इधर पिता की मृत्यु हुई और उधर भीषण अकाल पड़ा। पेट भर भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। 4 वर्षों का लगान देना शेष रह गया। ये वो समय था जब किसान ये महसूस करने लगे थे कि सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती है। सरकार का समर्थन उन लोगों को था जो किसानों का शोषण करते, मनमाने ढंग से उनकी जमीन छीन लिया करते थे। जब कभी किसान इस दमन के खिलाफ खड़े होते, तो पुलिस और सेना कानून व्यवस्था के नाम पर उन्हें कुचल दिया करती। भाऊ सिंह के भलेपन और भोलेपन का बड़दा में बहुत सम्मान था। टंटिया के साहसी कारनामों की जानकारी भी मालगुजार को मिलती रहती थी, इसलिए वो टंटिया को अपने अधिकार की भूमि से बेदखल करने के बारे में बहुत पहले से ही सोच रहा था। भाऊ सिंह की मृत्यु को उसने इसका अच्छा अवसर जाना। टंटिया लगान देने में असमर्थ थे, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि कृषक से मजदूर बनकर इसी गांव में काम करना टंटिया को स्वीकार्य नहीं था। ऐसे कठिन समय में उन्हें याद आया कि पोखर गांव में भाऊ सिंह और उनके मित्र शिवा पाटिल की भागीदारी की कृषि भूमि है, जिस पर शिवा पाटिल ही खेती करते हैं। भाऊ सिंह और शिवा पाटिल के बीच इतना गहरा प्रेम था कि भाऊ सिंह ने कभी न तो भूमि के आय व्यय की ही जानकारी रखी और न ही उपज से कभी अपना हिस्सा ही लिया। टंटिया भील ने अपनी पत्नी काजलबाई और पुत्र किशन को अपने ससुराल घाट खेड़ी छोड़ा और पोखर गांव की ओर चल पड़े। यही वो प्रस्थान बिंदु था जहां से टंटिया के जीवन की सारी उथल पुथल आरंभ हुई।

अपनी पैतृक भूमि पर शिवा पाटिल के साथ खेती किसानी कर सुखपूर्वक जीवन यापन करने का स्वप्न लिए टंटिया भील पोखर गांव पहुंच गए। शिवा पाटिल ने उनका आदर सत्कार तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन एक सप्ताह बीत गया, टंटिया जब भी भूमि पर काम करने की बात करते शिवा पाटिल उसे टाल जाता। अंततः शिवा पाटिल की मंशा जाहिर हुई जब उसने कह दिया कि इस भूमि पर सिर्फ उसी का अधिकार है, टंटिया चाहें तो यहां मजदूरी कर सकते हैं। शिवा के मुकरने के बाद टंटिया न्यायालय पहुंचे, लेकिन झूठे साक्ष्यों के आधार पर शिवा पाटिल की विजय हुई। ये अन्याय टंटिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लाठी लेकर अपने खेत पर गए और वहां काम कर रहे लोगों को मारकर भगा दिया और इस तरह उन्होंने अपने खेत पर कब्जा कर लिया। इस पर शिवा पाटिल ने टंटिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने टंटिया को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दायर किया। टंटिया भील को 1 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। जेल में कैदियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होता था। ये सब देखकर टंटिया अत्यंत विक्षुब्ध हो गए। उनके मन में विद्रोह की भावना बलवती होने लगी। जेल से छूटने के बाद वो पोखर गांव में ही मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने लगे, किंतु वहां भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया गया। गांव में कोई भी घटना घटती तो टंटिया को उसमें फंसा देने का षड्यंत्र रचा जाता। परेशान होकर वो पोखर से हीरापुर चले आए। शिवा पाटिल के लोगों ने यहां भी गांव वालों को टंटिया भील के खिलाफ भड़काया। 2 बार चोरी के झूठे आरोप में वो गिरफ्तार किए गए। जब तीसरी बार ये हुआ तो वो भाग निकले। वो समझ चुके थे कि अगर जिंदा रहना है तो इन लोगों से डटकर मुकाबला करना होगा। इस तरह लगातार होते अन्याय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो योजनाबद्ध तरीके से अब आगे बढ़ना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो खजूरी गांव के बिजनिया भील से मिले और उनके साथ आ मिला दौलिया। इन तीनों ने मिलकर गुप्त मंत्रणा की, योजना बनाई जिसे 3 चरणों में पूरा करना था। पहला चरण था अपने शत्रुओं से बदला लेना। दूसरा चरण था मालगुजार और पटेलों से लगान की रकम वसूल कर उसे गरीबों में बांटना। और तीसरा चरण था थानों को लूटकर हथियार प्राप्त करना और क्रूर अंग्रेज अत्याचारियों की हत्या करना। तीनों ने मिलकर अपने दल में अनेक क्रांतिकारियों को सम्मिलित कर लिया। इस दल का भरण पोषण लूट की रकम से होता था। इस दल ने सबसे पहले टंटिया के पोखर बस्ती के दुश्मनों को ठिकाने लगाना आरंभ किया। जिन जिन लोगों ने टंटिया को सताया था और उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी थी, उनसे बदला लिया गया। इसके बाद शिवा पाटिल, जिसने टंटिया को ये रास्ता अपनाने के लिए बाध्य किया, उसे समाप्त किया गया। पटेलों को घर से निकालकर बेघर किया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। उनके विद्रोही तेवर ने बहुत कम समय में ही उन्हें प्रसिद्धि दिलवा दी। अब उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। टंटिया भील का दल एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता, लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनता। किसे कब कैसी आवश्यकता है, ये टंटिया को मालूम होता था। लूट का सारा पैसा वो गरीबों में बांट देते, गरीब कन्याओं की शादी करवाते, लोगों की मदद कर वो चल देते दूसरे ठिकाने पर। जनजातीय समाज उन्हें टंटिया मामा कहकर पुकारने लगा। पूरे अंचल में ये विश्वास पैदा हो गया था कि टंटिया मामा के रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। सेवा और पराक्रम की भावना ने उन्हें जननायक बना दिया। मालगुजारों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। टंटिया, बिजनिया और दौलिया को पोखर बस्ती में बुलाया और धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। हिम्मत पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई और झूठी गवाही भी दी। तीनों को खंडवा की जेल में कैद कर दिया गया। जेल की कोठरी नंबर 7 में तीनों एक साथ रखे गए। इसी जेल की कोठरी नंबर 8 में टंटिया के 10 भील सेवक पहले से ही कैद थे। टंटिया के आते ही उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जान गए कि अब जेल में होने वाली ज्यादतियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। टंटिया ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, अम तमरा आफत का दिन खत्म समझो, बखत देखी ना
हम सब यहाँ से संगात निकले चलांगा।

24 दिसंबर सन 1878 टंटिया को सजा हुए एक महीने का समय बीत चुका था। दूसरे महीने का ये चौथा दिन था जब साहस, शारीरिक क्षमता, सूझबूझ और बहादुरी की उस घटना को इन महानायकों ने अंजाम दिया जिसकी विश्व इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। टंटिया और उनके साथियों ने अपने कपड़ों और कंबल की रस्सी बनाई। दीवार के एक छोटे से छेद को नाखूनों से कुरेदते हुए इतना बड़ा सुराख बना दिया कि सभी साथी उससे निकल गए। कपड़ों की रस्सी के सहारे 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर बिना शोर शराबे के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 के सभी 12 भील कैदी फरार हो गए। टंटिया ने अपना वादा निभा दिया था। जेल में कोहराम मच गया। समस्त निमाड़ क्षेत्र में मालगुजारों की जान खतरे में पड़ गई। सन 1879 में जून महीने के अंतिम दिन टंटिया अपने दल के साथ भिनपान गांव पहुंचे और हिम्मत पटेल को उसके किए की सजा दी। इस लूट और हत्या के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा। एक के बाद एक अधिकारी नियुक्त किए गए, लेकिन सभी को निराशा ही हाथ लगी। अब ये दल अपनी योजना के तीसरे चरण में था, अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना। टंटिया को पकड़वाने पर भारी इनाम की घोषणा हुई। टंटिया ने अपने दल को कई टोलियों में विभक्त कर दिया। एक टोली आज एक स्थान पर तो दूसरी टोली अगले दिन 20 मील दूर दूसरे स्थान पर और तीसरे दिन तीसरी टोली तीसरे स्थान पर धावा बोल देती। पुलिस इस तूफानी गति से परेशान हो उठी। अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई। अब अंग्रेजों ने गुप्तचरों और सादी वर्दी में पुलिस का जाल फैला दिया। दौलिया और बिजनिया गिरफ्तार कर लिए गए। टंटिया भील को इससे बहुत धक्का पहुंचा और उन्होंने बदला लेना आरंभ कर दिया। टंटिया भील ने अनेक अत्याचारी पुलिस अधिकारियों को मारा, वेश बदल बदल कर परेशान किया। वो इतने निर्भीक थे कि एक क्रूर अंग्रेज पुलिस अधिकारी के पास हजामत करने के बहाने से स्वयं थाने में पहुंचे और उसकी नाक काटकर उसे दंड दिया और निकल भागे। पुलिस देखती ही रह गई। सन 1878 से लेकर 1886 तक उन्होंने लगभग 400 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। टंटिया का प्रभाव मध्य प्रांत से लेकर महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र तक फैल गया। 11 वर्षों तक वो अंग्रेजों और शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। अब टंटिया के पास बिजनिया, दौलिया, हिरिया और मेदिया जैसे जांबाज साथी भी नहीं रहे। वो अब शिथिल से हो गए थे। 11 अगस्त सन 1889 श्रावण पूर्णिमा राखी के दिन गणपत ने अपनी पत्नी से राखी बंधवाने के लिए बनेर में अपने घर उन्हें आमंत्रित किया। अपने 6 साथियों को लेकर जब टंटिया अपनी मुंहबोली बहन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया गया। कड़े पहरे में उन्हें खंडवा से इंदौर होते हुए जबलपुर भेजा गया। टंटिया को जहां जहां से ले जाया गया उन्हें देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। जबलपुर न्यायालय में उन पर केस चला। 19 अक्टूबर सन 1889 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जंजीरों से जकड़कर जब न्यायालय से उन्हें जेल ले जाने के लिए बाहर ले जाया गया तब न्यायालय के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई थी। अपने टंटिया मामा की सजा पर भीषण कोलाहल के बीच रुदन की आवाजें गूंज रही थीं।

एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया गया है। ग्राम गढ़ी कोटहा में उनका एक मंदिर भी स्थित है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने 1,00,000 रूपये का जननायक टंटिया भील सम्मान भी स्थापित किया है, जो शिक्षा और खेल गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रदेश के जनजातीय युवा को प्रदान किया जाता है। टंटिया मामा आज भी निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की लोक स्मृति में उसी श्रद्धा और आदर के साथ उपस्थित हैं। नमन ऐसे अमर जननायक को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसके नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए, कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया, युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

निडरता और साहस की शौर्य गाथा परमवीर चक्र, नायक जदुनाथ सिंह। एक गोली सिर में लगी, दूसरी सीने में, पर वो लड़ते रहे और देश के लिए जीत ली वो जंग। ऐसे थे परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह। 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। जनवरी 1948 में कबायली आक्रमण के समय इन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। लड़ते लड़ते इनकी टुकड़ी के सिपाही कम होते गए, पर हौसले बुलंद थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जदुनाथ सिंह ने अकेले ही स्टेन गन लेकर मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की जीत सुनिश्चित तो की, पर अपनी शहादत देकर। मरणोपरांत नायक जदुनाथ सिंह को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ साथ मध्य प्रदेश के जनजातीय महानायकों का।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: वन पर्वत बस्ती बीहड़ सागर मरुस्थल हमने पार किए, समय की नदी में काटी दुख की रातें। हम जन हैं धरती के जो सदियों से चलते आए, महाकाल के पथ पर हमारी यात्राओं के वृत्तांत बिखरे पड़े हैं, सदियों चलते रहने के हमारे निशान बिखरे पड़े हैं। ये निशान उस जनजातीय समाज के हैं जो सदियों से अपने वनों पर्वतों संग जीते रहे हैं, जो सदियों से अपनी नदियों हवाओं संग बहते रहे हैं। समय की धारा उनके ऊपर से बहती रही, लेकिन वो समय के साथ बह नहीं गए। अपने समय को, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्थाओं को जीते हुए वो बने रहे अपने संसार में और बचाए रहे अपना संसार। ऐसे अनेक जनजातीय महानायक हुए हैं जिन्होंने अपनी भूमि, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ऐसे ही महानायक थे धरती आबा बिरसा मुंडा, जो आज भी अपने लोगों के बीच एक गुरु, एक इष्ट देव की तरह पूजनीय हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को रांची जिले के उलिहातू नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी मुंडा था। चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें धर्मांतरण करना पड़ा। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने जनजातीय समाज के साथ होने वाले अन्याय और शोषण को महसूस किया और उनके भीतर का लोहा धधकने लगा। उन्होंने आनंद पांडे के सानिध्य में रामायण, महाभारत, गीता जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर एकांतवास में कठिन साधना की तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में वो जुट गए। एक महात्मा तथा समाज सुधारक के रूप में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई, उनके अनगिनत शिष्य हो गए। सन 1893-94 में सिंहभूम और मानभूम के आसपास की भूमि को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेकर मुंडा वनवासियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। ऐसे समय में बिरसा मुंडा ने प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया, अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए संपूर्ण मुंडा जनजाति संगठित हो गई। बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। 2 साल की सजा काटकर जब वो लौटे तो तूफान बनकर उन्होंने गुप्त सभाएं की। सशस्त्र क्रांति की तैयारी का निर्देश देते हुए उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशोम रे अबुआ राज, अपनी धरती हो और उस पर अपना राज हो। इस तरह बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्रांति की शुरुआत की। उलगुलान यानी असीम कोलाहल। सन 1899 में क्रिसमस के समय 7,000 लोग एकत्रित हुए और क्रांति की घोषणा कर दी गई। 5 जनवरी सन 1900 तक मुंडा जनजाति ने हथियार उठा लिए। अनगिनत पुलिस के जवान मारे गए। करीब 100 इमारतों में आग लगा दी गई और अबुआ देशों यानी स्वराज कायम होने की घोषणा कर दी गई। अंग्रेजों ने उनसे लड़ने के लिए सेना भेजी और बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा की। 9 जनवरी सन 1900 को डोम्बार पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों मुंडाओं ने शहादत दी। 3 मार्च सन 1900 को एक गद्दार की सूचना पर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगल से गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कठोर यातनाएं सही और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून सन 1900 को रांची जेल में ही उनका निधन हो गया। लेकिन बिरसा मुंडा के संदेश ने जैसे वनांचलों के संघर्ष को एक नई ऊर्जा से भर दिया और राष्ट्र को जागृत कर दिया। वो जैसे ये कहते हुए विदा हुए कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान।

देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 15 नवंबर उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जनजातीय समाज में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम डगडौआ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर जनसामान्य बड़ी श्रद्धा से एकत्रित होकर उन्हें नमन करता है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनेक जनजातीय महानायक हुए हैं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। मंडला से लेकर नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल और सिवनी सहित 52 गढ़ों में राज्य का विस्तार करने वाले पहले गोंड राजा संग्राम शाह ने गोंडवाना को अप्रतिम वैभव प्रदान किया था। इसी गोंड राजवंश की यशोगाथा में रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान की कहानी भी शामिल है। महाकौशल क्षेत्र में गढ़ा मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने पति राजा दलपत शाह के निधन के बाद 15 वर्षों तक अपनी प्रजा का पालन किया, राज्य को समृद्ध किया। उन्होंने अनेक जलस्रोतों का निर्माण करवाया, साथ ही गांव-गांव में जलस्रोतों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन्होंने ये घोषणा की कि अपने खेतों में तालाब बनवाने वाले किसानों से कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह उनके साम्राज्य में जनसामान्य द्वारा अनगिनत तालाबों का निर्माण हुआ। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु मुगलों से युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती ने आत्मोत्सर्ग किया। जब अंग्रेजों ने इन जल स्रोतों पर योजना बनाकर कब्जा कर लिया और इन पर कर लगाना शुरू किया, तब गोंडवाना में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। उत्तर में विंध्याचल से लेकर दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री के पश्चिमी घाट तक भील जनजाति का निवास स्थान था, जहां अंग्रेजों के दमन और शोषण का लंबा सिलसिला चला। परिणाम स्वरूप भीलों ने त्रयंबक जी के नेतृत्व में शस्त्र उठा लिए। सन 1817 में खानदेश के भीलों का विद्रोह हुआ। इस पर बंबई प्रेसिडेंसी के एल्फिंगस्टन ने लिखा, त्रयंबक और उसके दो भतीजे गोंडाजी दंगल और महिपा दंगल खानदेश के विद्रोही नेता हैं। खानदेश पर अंग्रेजों ने सन 1818 में कब्जा कर लिया, लेकिन भील रुके नहीं। उन्होंने सन 1819 में पुनः क्रांति कर पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न चौकियों पर कब्जा कर लिया। ये संघर्ष लंबा चला। एक भील नेता शहीद होता तो दूसरा मोर्चा संभाल लेता। सतमाला पहाड़ी के भील सरदार चील नायक को पकड़कर फांसी दे दी गई। भील नायक दशरथ ने सन 1820 में मोर्चा संभाला तो हिरिया नायक के नेतृत्व में भीलों ने सन 1822 में अंग्रेजी राज को चुनौती दी। कर्नल रॉबिन्सन ने सन 1823 में बड़ी सेना लेकर भीलों के क्षेत्र में प्रवेश किया और 2 वर्ष तक भीलों की हत्या करता रहा। बस्तियों में आग लगा दी गई, लेकिन इस अग्नि से विद्रोह की आग और भड़क उठी। सन 1824 में त्रयंबक जी के भतीजे गोंडाजी दंगलिया ने भीलों को पुनः एकत्र कर विप्लव किया। वहीं सन 1826 में दांग सरदारों और लोहारा के भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भील सेना की स्थापना कर इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी भीलों का आक्रोश खत्म नहीं हुआ। सन 1831 में धार के भीलों ने संघर्ष शुरू किया तो उधर सन 1846 में मालवा के भीलों ने क्रांति कर दी। खानदेश के भीलों ने सन 1852 में प्रबल संघर्ष किया और फिर सन 1857 में भगोजी नायक तथा काजर सिंह के साथ साथ कई भील और भिलाला नायकों ने अपने असंख्य भील साथियों को लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। सन 1857 में मुक्ति संग्राम की चिंगारी जब उत्तर भारत से होती हुई मध्य भारत पहुंची, तब मालवा निमाड़ के जनजातीय महानायकों ने भी मोर्चा संभाला। टंटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का गौरवपूर्ण इतिहास रचा।

भील जननायकों में निमाड़ क्षेत्र के टंटिया भील ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। वो अंग्रेजों को लूटते और गरीबों में धन बांटते थे। वो हवा की तरह आते और सहायता प्रदान कर अगले मोर्चे की ओर चल पड़ते। वो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रयदाता भी थे। उन्होंने तात्या टोपे से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। छल बल से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। निमाड़ अंचल के ही भीमा और खाजिया नायक अत्यंत वीर थे। सन 1857 की क्रांति के समय भीमा नायक ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। भीमा नायक बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने खानदेश भील कोर पलटन को उनके पीछे लगा दिया था, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं सकी। भीमा नायक अपने साथियों मुवासिया नायक, रेवलिया नायक और 10,000 क्रांतिकारियों के साथ डटे रहे। इस संघर्ष में भीमा नायक की मां सुरसी ने भी एक क्रांतिकारी टोली का नेतृत्व किया था। एक गद्दार की सूचना पर घने जंगल में सोते हुए भीमा नायक को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर सेंधवा घाट के खाजिया नायक ने अंग्रेजी राज को नकारते हुए अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और बड़वानी क्षेत्र में भीलों के स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाली थी। भीमा नायक और खाजिया नायक तात्या टोपे के संपर्क में थे। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए खाजिया नायक के 1500 साथी शहीद हुए और उन्हें भी छल से पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। इसी कड़ी में सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने भिलाला क्रांति की कमान संभाली और 3,000 क्रांतिकारियों का संगठित दल बनाकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। अकबरपुर क्षेत्र में सीताराम कंवर ने तीव्र हमले किए। उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा भी हुई। ब्रिटिश सेना से बंड नामक स्थान पर युद्ध करते हुए वे शहीद हो गए। रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा बरोड़ के भिलाला नायक थे। अपने अभियान के बाद वो अक्सर बीजागढ़ में ठहरते थे। यहीं उन्हें अंग्रेजों ने बातचीत के लिए आने का संदेश भेजा और जब वो बातचीत के लिए पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह भीमा नायक और खाजिया नायक की जलाई क्रांति की मशाल को लेकर अनगिनत भील और भिलाला क्रांतिवीर अपनी भूमि की अस्मिता के लिए शहीद

विश्व इतिहास में बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जबलपुर अंचल के गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने, जो वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने जबलपुर क्षेत्र का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के प्रबल विरोधी और अनन्य देवी भक्त राजा शंकर शाह वेश बदलकर जगह जगह जाते और सबको क्रांति के लिए एकजुट करते। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के सिपाही भी राजा शंकर शाह के घर आते जाते थे। यहीं मुहर्रम के दिन छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। इसकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी गई। राजा के घर की तलाशी ली गई। इसमें क्रांति संगठन के दस्तावेजों के साथ साथ राजा शंकर शाह द्वारा लिखित देवी को संबोधित एक ऐसी कविता प्राप्त हुई जिसमें अंग्रेजी सत्ता के विनाश की कामना की गई थी। इसे बड़ा आधार मानते हुए दोनों क्रांतिवीर पिता पुत्र को तोप से उड़ाने की सजा दी गई। जबलपुर में एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। जनसैलाब उमड़ पड़ा था। दोनों का चेहरा वीरता से चमक रहा था। अंत समय भी उनकी जुबान पर वही कविता थी।

तोप की आवाज गूंज उठी। उत्तेजित भीड़ चीत्कार उठी। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों के बलिदान का एक और अध्याय लिखा छिंदवाड़ा जिले के भोई जनजाति के अमरवीरों ने। बादल भोई ने 1923 में तामिया तहसील में एक सभा का आयोजन किया। उनके जोशीले भाषण से उनके अनगिनत साथी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। 4000 लोगों के साथ उन्होंने छिंदवाड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने 21 अगस्त सन 1930 को बादल भोई को गिरफ्तार कर लिया। कारावास में ही बादल भोई की मृत्यु हो गई। इस तरह बादल भोई ने सहरा भोई, अमरू भोई, इमरत भोई, लोटिया भोई, टापुरु भोई और झंका भोई जैसे जनजातीय क्रांतिवीरों के आत्म बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जनजातीय समाज ने जंगल सत्याग्रह किया था। अनगिनत लोग शहीद हुए, लाठियां खाईं, जेल यातनाएं सही, लेकिन टस से मस नहीं हुए। इसी क्रम में सिवनी के पास टूरिया सत्याग्रह सन 1930 को हुआ। चंदन बगीचे में घास काटकर सांकेतिक विरोध जताने पहुंचे लोगों पर गोलियां चला दी गईं। घटना स्थल पर ही मुड्डेबाई, रेनोबाई, देमोबाई और बिरजू भोई शहीद हो गए। टूरिया में गोलीकांड के बाद भी पुलिस की बर्बरता नहीं रुकी। ग्रामवासियों को वृक्षों से बांधकर कोड़ों से मारा गया। इसके बाद तो जंगल सत्याग्रह दावानल बनकर प्रांत भर में छा गया। इस तरह अपने धर्म, अपनी भूमि, अपने जीवन मूल्यों और अपने देश के स्वाभिमान के लिए मध्य प्रदेश के इन जनजातीय नायकों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा, जो भारत की आजादी के बाद ही थमा। नमन ऐसे अमर क्रांतिवीरों को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि यह फाइनेंशियल इरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास दो रुपए जरूर हो जाएंगे लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो फिर जब हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी दो हो जाएंगे और आपके पास भी दो हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जब तक। थैंक यू मैम।

0: I'd like to call the speakers and talk about how the role of transformative libraries are implementing this mission on ground, and where read libraries could learn further and move further on this journey. So first in this series, I'd like to call upon Dr. Shantanu Ganguly. Please, sir. A big round of applause.
1: Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Geeta for inviting me to share my experiences with all of you. Thank you very much, Geeta. I think since morning I learned a lot. I don't know what is the acronym stands for Read Word. And I did it myself. R stands for resilience. E stands for enlightenment or engagement. A stands for access to knowledge resources. And D stands for development. That is how the entire Read Word stands for. That is what I could coin.
2: After 17 years, we are getting the new name. Thank you, sir.
1: Second thing is that my colleague, Mr. Vibhutinath Jha. Vibhuti, please stand up. My colleague, Mr. Vibhutinath Jha, is there. In fact, he told me, sir, when we will go from here, तो हमें कुछ करके जाना चाहिए. I said, क्या करेंगे, अभी तो हम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. Just a one month back, I have taken over Ashoka University में. Sir, we are going to donate 2,000 children books to Read India. And that he promised, and he said, sir, let's make it and we will do it. So that is a small contribution from this conference for you. Let me tell you, I am in this profession for the last 26-27 years, and all my stalwarts are here, starting from Dr. D.B. Singh, Dr. Jagtar Singh, Dr. P.R. Goswami. They are like my mentors, and Rangashri, my predecessor from Ashoka. And I had a very interesting dialogue with Jay. And when I discussed with him regarding that, one of the important component in today's context is the sustainability of the libraries. How do you take this journey for the next 17 years or maybe next 70 years? How do you look at it? What would be the journey is that? There are a couple of ideas. I told him that I'm ready to be a part of Read India, being in this profession, because I have a very strong backbone of research. I have completed almost 41 research projects which are funded by the bilateral, multilateral organizations, Department of Biotechnology, DSIR, DST and all, where I have worked on some of the leading projects which is making a marriage between a library information system and sustainable development goals, and reaching out to those sustainable development goals. And that's where basically I come from. Let me give you a very small presentation on this. Well, this is a beautiful quote from Alvin Toffler, Future Shock. And he said that the illiterate of the century for those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. And let me tell you, all my friends here, today I have proved this and I have learned a lot from this entire session. This is a very common, platform. This is a very common platform. Can anybody tell me what is this?
3: WhatsApp.
1: I want to be an interactive. WhatsApp. Who discovered WhatsApp? Who discovered WhatsApp? That's my question is. And there is a relationship by the word which is talked about by Steve Jobs. Connecting the dots. These two guys, I don't know how many of you know, Yan Koum and Brian Acton, came out of once again a Stanford University, sitting in a garage and developed the entire model of WhatsApp. And that is what how the birth of WhatsApp has taken. And it is based on what? Connecting the dots. This This is what connecting the dots is today. It is the content. It is the context. And third is the technology. Content, what do you write? अरे यार ये क्या खड़े होके स्टेज में बात कर रहा है, खाना खाया सोना है. Somebody must be typing out on that. Context. Somebody want to escape this lecture today. And technology is that, what is the platform is. Simple thing, but has given birth to the entire information and revolution today. So, content, when we look at it, it is a multi-format in today's context. It is textual. It is the figures and the numbers. It is the images. And it is the videos which has come up, and many more formats. When you talk about context, it is the purpose, it is the objective, it is the scope, and it is the right content for the right person in the right time. And that is when you provide a service. I'll give you an example. I was doing a project in Almora, and I was trying to develop what is called as a village knowledge resource center. It is called a VKRC model. When I was in Terry, I went to their public library. It was completely in a dilapidated condition. बहुत हालत खराब था उसका. और उसको develop करने के लिए जमीन के सारे वहाँ के बच्चों से जुड़ा, उनके लोगों से जुड़ा और वहाँ पर एक village knowledge resource center बनाना. जब वहां पर पहुंचा विलेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर, तो वहां के गांव के लोग हमको ये कहते हैं, सर हमको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हम कैसे करेंगे बताएंगे हमको? हम अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम अपना सब्सिडी में गांव गेहूं लेना चाहते हैं, कहां जाएंगे, कौन सी स्कीम को अवेल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे बताएगा हमको? फिर मैंने उनको बोला कि यस, ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर सिर्फ किताबें नहीं देगा, ये यहां के लोगों को एजुकेट करेगा. वो एजुकेशन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी. एंड द टेक्नोलॉजी वॉज करेंटली देर इज अ बूम, लाइक जे ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज इन अ वेरी बिग वे, इट इज कमिंग अप. आई वॉज रीडिंग एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रूगल इनोवेशन, विच इज करेंटली सोशल एंड फ्रूगल इनोवेशन इज वन ऑफ द बिग थिंग. इनफैक्ट वन ऑफ माई इवेंट, Gita was also one of the speakers. The Professor Shorobindu Bhaduri was talking about how the frugal innovation is making a radical change in the current context. Ask frugal innovation. Frugal innovation hai kya? These are very big, big jargons. Let me easy way mein aap logon ko batata hun. Aapke paas resources ki constraint hai. जब आप rural community पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास resources की कमी है. और उसी कमी के साथ जब आप कोई सॉल्यूशन लेके आते हैं, और वो सॉल्यूशन एक दूसरे चीज पे रूपांतरित होता है, तो उसको हम फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं. इज अ वेरी सिंपल क्रूड वे. एंड सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ स्मार्ट लाइब्रेरी नाउ. स्मार्ट का मतलब ऐसा नहीं मैंने अच्छा ड्रेस पहना है, जय ने बढ़िया ड्रेस पहना है, मैडम ने पहना है, ऐसा स्मार्ट नहीं है. स्मार्ट वर्ड का मैंने कॉइन किया है. मेरे को वर्ड कॉइन करना अच्छा लगता है. सस्टेनेबल, मेजरेबल, अचीवेबल, रिट्रीवेबल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल. सस्टेनेबल, ग्रीन लाइब्रेरी लेके बहुत बातें हो रही है. आप लोगों को मालूम है कि इफ्ला ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज किया है. वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रीन लाइब्रेरी. सो मच ऑफ रिन्यूअल एनर्जी इज यूज्ड इन द ग्रीन लाइब्रेरीज. हमने अपनी HDFC लाइब्रेरी के अंदर जो है सेंसर बेस्ड लाइट्स लगाई है. अगर इस रूम के अंदर कोई नहीं बैठा है, nobody is sitting here in this room, तो क्या ये लाइट्स जलनी चाहिए? वी शुड सेव दिस एनर्जी ना. तो वो कैसे करेंगे? पेपरलेस लाइब्रेरी हमने स्टार्ट किया है अपने HDFC लाइब्रेरी में. मैक्सिमम कम्युनिकेशन हमारी ऑनलाइन में हो रही है. फ्यूचरिस्टिक, देयर आर केस स्टडीज. आई कुड हैव प्रेजेंटेड दोस केस स्टडीज. वहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का एप्लीकेशन किया जा रहा है, और वो भी हायर एजुकेशन सेक्टर में. एंड द थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. Already सर ने हमें बहुत लोगों ने बताया एसडीजीज को अगर आप नहीं बताएंगे तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते आज के डेट में. एसडीजीज इज मस्ट. और एसडीजी का जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो सारे गोल्स हैं, मैं कई गोल्स पे काम किया हुआ है मैंने. एक छोटा सी चीज आपको मैं बताता हूं. आई वॉज वर्किंग इन VHEI वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हम वहां पर एक छोटा सा न्यूज लेटर निकालते थे हमारी चिट्ठी आपके नाम हमारी लाइब्रेरी से और वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट न्यूज लेटर निकालते थे हमारी चिट्ठी आपके नाम हमारी लाइब्रेरी से और वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता था. तो आई वॉज वर्किंग विद दी सहारिया ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश की सहारिया ट्राइब्स के साथ जब मैं काम किया वहां पर तो वहां पर एक चाय वाला जो है वो शाम के टाइम एक छोटा सा अपना एक वो कैंडल टाइप लेके बैठता था और गांव वालों को साथ में बिठा देता था और साथ में वो जो हमारी चिट्ठी आपके नाम की हम जो डॉक्यूमेंट उनको देते थे जो पतला सा न्यूज लेटर देता था उसको पढ़ के सुनाता था और उसमें कौन सी स्पेसिफिक चीजें होती थी. एनवायरमेंट की नॉलेज देते थे हम लोग, पर्यावरण की नॉलेज देते थे, पानी का नॉलेज देते थे, ऐसे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे. हेल्थ का स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा देते थे क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम आ रहा है बरसात का टाइम है ये सबसे ज्यादा बीमारियों का जन्म लेता है. इन चीजों की हम देते थे. सो वी स्टार्टेड हिटिंग ऑन दीज एरियाज and in fact I have done quite a good number of projects, research projects exclusively on sustainable development goals. Measurable is the library analytics. आज के डेट में इतनी रिसोर्सेस हम खरीदे जा रहे हैं लेकिन क्या उसकी इस्तेमाल प्रॉपर हो रही है. कितने किताबें लोगों ने रैक से निकाल के खोल के देखा है. लोग तो डिजिटल वर्ल्ड में घूम रहे हैं. आजकल के बच्चे भी जेन सी जनरेशन है वो डिजिटल वर्ल्ड में है. कितने किताबें रैक से निकाल के देखते हैं. टीचिंग एनालिटिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं जो हम समझा रहे हैं. मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा रीड इंडिया जय के जय इज अ फाउंडर ट्रस्टी गीता मैम है. मैम प्लीज आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एज एन एक्सटर्नल एडवाइजर कि अगर आप कोई ऑनलाइन में लाइब्रेरी साइंस के बच्चों का कोर्स करवाना चाहते हैं आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट. आई हैव गॉट 40 रिसर्च वीडियोज इन स्वयं पोर्टल. मैंने खुद ट्रेन किया है. मैं हार्डकोर ट्रेनर. आई थिंक वन ऑफ माई स्टूडेंट मे बी स्टडिंग देयर. ऐसे कई लोगों को किया है और आज जब हम लोगों को कोई लाइब्रेरी इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम एंड वर्क विथ मी बिकॉज देयर इज अ गैप एंड वी ऑल ऑफ अस हैव टू मिनिमाइज दैट गैप. एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज सेंटिमेंट एनालिटिक्स. जो भी चीज हम खरीदते हैं जो भी चीज हम लेते हैं कुछ भी करते हैं सेंटिमेंट एनालिटिक्स उसका आपका जो फीडबैक है

in Bhopal, in one of the leading multinational NGO there. Unke wahan par mere ko, there was in the, there was something called as state climate change knowledge management system banana tha under National Action Plan on Climate Change (NAPCC) ke under me. Hume state climate change knowledge management system banana tha, so I went there along with my climate change expert. Humne wahan par banane ke liye gaya. Jab main wahan banane ke liye gaya, so there was a stakeholder workshop was taking place, and see how do we know can catch the tacit knowledge there. वहां गांव के लोग आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों को वाटर लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि कहां पर पानी का कैसा लेवल है, उसका ग्राउंड लेवल पे कैसा है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत खपत है, इतनी पानी मिलती नहीं है, बहुत जमीन के नीचे चला जाता है, बहुत ड्रिलिंग करनी पड़ती है तब जाके पानी निकलता है, देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम विद वाटर. जब हमने वहां के गांव के लोगों से, कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला हम आपको मट्टी उठा के बता सकते हैं कि यहां पर आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड दी एज एंड यू वॉन्ट इमेजिन, आई मीन आई एम हैविंग माई गूज़बम्स, दैट गाय ही पिक्ड अप द सॉयल एंड सेड यहां पर कितना पानी कितने ग्रेडियंट में आपको मिल जाएगा. ही सेड दैट, आई मीन दिस इज अनइमेजिनेबल, एंड हाउ डू वी कैप्चर दैट नॉलेज. That is actually the below the surface. We don't know these techniques. In fact, some of these areas I have also worked extensively in the northeastern belt with all the nine sisters, jahan par is tarah ki knowledge ko preserve karne ka, conserve karne ka bahut prayas kiya ja raha hai. Bahut prayas kiya ja raha hai. So, best possible way to retrieve. So, retrieval is a very important thing. कितना बढ़िया आप रिट्रीव कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेस की तो कमी नहीं है, लेकिन आज के डेट पे एक्चुअल रिसोर्स जब आपको निकाल के ले आना है, समुन्द्र में से दो बूंद पानी आपको निकाल के ले आना है, क्या आपके पास उस तरह का डीप लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है विच कैन टेक आउट दैट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्चुअल, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग. मशीन लैंग्वेज को यूज करके कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग में उस इंफॉर्मेशन को निकाल के ले आना. इनफैक्ट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव दैट इन आवर ओन लाइब्रेरी ऑल्सो. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज ट्रांसफॉर्मेशनल. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल, दिस इज अ वेरी बिग वर्ड. व्हाट इज दैट ट्रांसफॉर्मेशनल? हमें अपने आप में एक बार देखना चाहिए. हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, और वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सी एरिया पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम? डिजिटाइजेशन, आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में, हो गया आपका. डिजिटलाइजेशन इज अ प्रोसेस बेस्ड, and digital transformation takes place in the entire organization where everything goes into the digital framework, which is a very long way journey, and it is not a very easy thing also. I was reading this book 4.0 Insight, and one of the important area was knowledge 4.0. aaj ke date mein ek naya terminology, ye once again sa jargon, lekin hum sab karte hain yahan par baith ke. Main piche se bahut sari saman kharida hai aaj maine. I bought many things for my wife, my daughter, my family members. जो चीज मेरे को बाहर पीछे देखने को मिला, and I was completely flabbergasted after seeing that. Co-creative, collaborative, comprehensive, problem solving and simulation analytics based. जब तक आप करोगे नहीं, एक धागा को कैसे, अगर आप वो मूवीज को देखेंगे जो WE का मूवीज, जैसे एक धागा को कितना बारीक से वो उसको डाल रहे थे और उसके अंदर उसको स्टिचिंग कर रहे थे, ये प्रोसेस को कोई अगर नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट अंडर द NEP 2020 इन माय पास्ट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एट NIMS यूनिवर्सिटी, द फैशन डिपार्टमेंट वॉज अंडर मी, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल फैशन.
where different

kinds of reused materials in the fashion industry, how they can be further taken to a next level. I worked on that level also. So, if I look at these five laws of library science, which was coined by S.R. Ranganathan, and I relate them with artificial intelligence, I find that there is a very correlation with that. Starting from books are for use, every reader his or her book, every book its reader, save the time of the reader, and library is a growing organism. But what is most important today, we need to empower our information professionals. Hamare jitne bhi information professionals, library information professionals hai, unko sahayata chahiye, kaise wo practically apne systems mein jaye aur wahan seekhe aur wahan par implement kare cheezon ko. Ye hame chahiye. Library has come up on a robotic process automation, like data migration. Completely a data-based. It is a completely an automated-based. Ye bahut technicality hai iske andar. Hum logon ko computer science ke saath milke kaam karna pad raha hai. Hum computer science ke expert nahi hai. Shelf management, forms processing, email marketing, ye sari cheeze iske andar gayi hai. Jaise smart libraries ki maine baat ki, isi tarah patrons will engage on the personal digital assistance. मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे आप लोग Facebook या किसी भी चीज पे या Amazon में कभी भी कोई किताब खरीदते हैं, मैं एक किताब को खरीदा तो मेरे नीचे जो है वो चार पांच और किताबों का रिकमेंडेशन दे देता है कि आप इन किताबों को भी ले सकते हैं. हाउ डू आई मीन साइकोलॉजी, हाउ दे रीड अवर साइकोलॉजी एंड गिव्स अस फ्रॉम अवर ओन रिक्वेस्ट दैट व्हाट आर द थिंग्स आई शुड टेक लेटर, और वो रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली मेरा यूसेज को बढ़ाना के कोशिश करेगा. आई एम वर्किंग ऑन दिस विद माय टीम ऑन दिस. यूजर सर्विसेज लाइक चैटबॉट्स वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट वेरी सून ऑन दिस. एआई एप्लीकेशंस एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स. आई मीन लाइब्रेरी एनालिटिक्स में अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू लुक एट मेरा मिसिंग बुक कहां गया, अभी तो रैक में था, कोई लेके चला गया, कहां गया है, हाउ डू आई ट्रैक दैट. देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच हैज कम अप. We are working on towards that also. Like I am a user of a book. Mere ko ye kitab chahiye. I reserved that book from my own counter. Mere pas, mere mobile pe maine usko wo kiya. And there is a library GPS system we are trying to implement. Phir, accordingly, it will, through that technology, it will take me to that rack and will tell me, your book is here, so you can get it issued. It's a library GPS system. These kinds of technologies are available, but it is the right time to implement or not. But most of these technologies are international, but what we need is basically an indigenous technologies and all. We need to have an indigenous technologies. Same with information retrievals. I mean, I can keep on going on. These are all AI-based things. It takes a lot of time for me to describe. Data analytics has come up in a big way for decision-making process. Collaboration and knowledge sharing. आज के डेट में मैं कहे silos mentality नहीं चलता है knowledge 4.0 में. ये मेरा है, मैं अपने कंप्यूटर में रखूंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा. I know the how the corporate sector like Accenture and Ernst & Young and how they work. I have seen their work. Even their computers are also through their server. Their laptop is connected to the server. जो भी वो करेंगे वो सिस्टम पे काम करेंगे और वो सारा कुछ वहां पर कैप्चर होता जा रहा है ऑनलाइन में. सो नथिंग इज योर्स, इट इज ऑल कोलैबोरेटिव. एनीबडी कैन हैव अ लुक एट इट. आई हैव सीन देयर सिस्टम्स. एआई फॉर कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशंस. ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेटेड सिस्टम्स हैव ऑलरेडी बीन, देयर आर सेवरल लीडिंग यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दे हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड सच काइंड ऑफ अ थिंग. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू लुक एट इट ऑन दीज एरियाज. एआई फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस. मेरा एक्स प्रोफेसर वो हमेशा इस तरह की किताबें, इस तरह के रिसोर्सेज मांगते हैं, वो आगे जाके भी इस तरह का मांगेंगे. हु डज दैट प्रेडिक्शन? सो देयर आर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हैज कम अप ऑन एआई बेस्ड. वो आगे क्या मांगेंगे उसकी एनालिसिस पे हम जा रहे हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड देयर आर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल वन कॉम्पोनेंट इज दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. क्या है कि हर कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता.
That is the biggest thing. So what for that? What is the solution? We have a solution like Read India. They can launch a what is called as a technology as online skill based programs. You can earn a revenue from that too. But one of the important things is technology obsolescence. दो साल काम किया 330,000 पता चला उसका नया वर्जन आ गया. So that's a very big problem. So technological constraints and there is a privacy issues are also there. Ethical issues are there. जितना डिजिटल होता जा रहा है उतना ज्यादा आपकी ethical issues में questions raise हो रहा है. And digital rights management वगैरह पे भी बहुत ज्यादा questions raise हो रहा है. Social media is a very big thing. All of you know. You are all there. So there was I just want to end here. There is an IFLOS statement on libraries and artificial intelligence. In fact, on just a few weeks back when Geeta was also there, so we organized an open access where IFLOS president was there, Vicky MacDonald. So what she thinks is that the adoption of the artificial intelligence, that is AI and machine learning, in private and public spheres is rapidly growing. The policy statement aims to outline the key consideration for the use of these technologies in the library sector and suggest the roles which libraries should strive to take on in a society with a growing AI integration. AI integration is a very, very important thing. So thank you very much. Thanks for your patient listening.

हेलो एवरीवन, दिस इज शरीन फ्रॉम लखनऊ लाइब्रेरी एंड मैं बस कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी कि दो शब्दों को मिला के बनने वाला बहुत ही सुंदर और प्यारा शब्द है पुस्तकालय. द लाइब्रेरी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. इस लाइब्रेरी ने बहुत लोगों की दुनिया को चेंज किया. एग्जैक्टली, बिल्कुल, नो डाउट. और मैं दो लाइन्स में अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि ये बुक्स जो है ना, वो कभी हमें धोखा नहीं देती हैं, राइट. दूसरी थिंग ये है कि ये जो बुक्स हैं, वो कभी कभी हम इनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें ये हंसा रही हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के जुड़े हुए इतने इमोशंस होते हैं जो उन स्टोरीज में निकल के आते हैं. कभी कभी ये बुक्स हमें रुला भी देती हैं, राइट. लेकिन कभी हमें इन बुक से, लाइब्रेरी से कभी धोखा नहीं मिला. और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग कर रही हूं जहां पे हमारा सेंटर है, वहां पे लाइब्रेरी की मतलब नहीं पता थी. मैंने कल भी बात बोली तो एक छोटा सा आइडिया मैंने लिया कि जब हम औरतों को जो कि 60 अबव हैं, 60 से भी ऊपर 70 ईयर्स की हैं, उन्हें मैं बोलती थी कि लाइब्रेरी आइए, लाइब्रेरी आइए, तो वो ये बोलती थी कि मैं क्या करूंगी आगे लाइब्रेरी. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब वो बूढ़ी औरतें लाइब्रेरी आई जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये आइडिया अपनाया कि मैं उनको बैठाती थी अपने सेंटर में और बैठा के स्टोरीज को चूज करती थी. जस्ट लाइक कि वो ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं कि जहां पे थोड़े से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो मैंने जस्ट लाइक झांसी की रानी, मैं उसकी स्टोरी सुनाती थी. टीपू सुल्तान, मैं उनकी स्टोरी सुनाने लगती थी. तो जो बुजुर्ग लेडीज होती थी काफी इंटरेस्ट लेके वो सुनती थी क्योंकि वो पढ़ नहीं पाती थी. इससे रिजल्ट क्या मिला कि उन लेडीज ने जो लाइब्रेरी आने से डरती थी, लाइब्रेरी का मतलब नहीं समझती थी, उन्होंने क्या करा कि मैम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बुक से देख के पढ़ती हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज हमारे घर के बच्चे भी जाएं और जाके उस बुक्स को रीड करें. जो बच्चे क्लास 9th और 10th के आते हैं हमारी लाइब्रेरी में, उनको ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं हिस्टोरिकल बुक्स में. तो आज हमारी लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे करीब 70 से ऊपर हैं. थैंक यू सो मच एंड माय प्लेजर कि आज मुझे रीड ने इस लाइफ समझा कि मुझे इस अवार्ड को दिया. थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू ऑल.

0: Now I would like to invite Dr. Jagtar Singh for his views. Thank you.
1: सूचना के बिना हम कोई भी डिसीजन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के साथ दो प्रॉब्लम्स और भी हैं, एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और एक इन्फॉर्मेशन स्ट्रेस। अब मतलब सुबह से जितना चल रहा है मेरे को लगता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तो लेकिन मैं पटियाला से चलकर आया हूं, थोड़ा सा मैं इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में कंट्रीब्यूट तो जरूर करूंगा। तो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डीपली ग्रेटफुल टू रीड इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई 40 ईयर्स ऑफ लर्निंग इन दिस प्रोफेशन। तो मैंने अपनी पीपीटी में ये टाइटल, जब मैं पीपीटी बनाने लगा था तो मैंने सोचा क्या टाइटल होना चाहिए। तो फिर मेरे को वो जे रूसो की वो कोटेशन याद आई कि मैन इज बॉर्न फ्री बट फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स। तो वो लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस से लिबरेट कैसे कर सकते हैं हम या रीड इंडिया। तो इसीलिए मैंने अपनी पीपीटी का टाइटल रखा था बियॉन्ड लिमिटेशंस। अभी मैं यहां बैठा ही सोच रहा था कि पीपीटी तो फिर कभी प्रेजेंट कर लेंगे, मैं प्रॉब्लम लिमिटेशंस क्या है इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में, उसके बाद मतलब डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग एडिक्शन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्राइम है और माइग्रेशन है। माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं एक गांव में गया था, वो उस फादर की क्या परसेप्शन थी कि मेरा बेटा मतलब कनाडा चला गया है। तो जब मेरे पास मेरा बेटा आया, मैंने उसको कहा अब तो चार वक्त इंडिया आएगा, चार टाइम्स पे इंडिया आएगा, फर्स्ट टाइम जब तेरी शादी होगी, दूसरी दफा जब मेरी डेथ होगी, तीसरी दफा जब तेरी मां की डेथ होगी, चौथी दफा तो तब आएगा जब तूने ये सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करके फाइनली कैनेडा या यूएसए में सेटल होना है। तो ये मतलब ये दिस इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कुछ मर्जी करें, मैं पैराडाइम शिफ्ट की भी आपसे बात करूंगा, कर ही लेता हूं कि मतलब जो मैंने प्रसीव किया है व्हाट इज हैपनिंग, वी आर मूविंग फ्रॉम लाइब्रेरीज टू नेटवर्क्स, वी आर मूविंग फ्रॉम प्रिंटेड पब्लिकेशंस टू डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, वी आर मूविंग फ्रॉम ओनरशिप टू एक्सेस। पहले हम लाइब्रेरी में बुक खरीदते थे, हमारी प्रॉपर्टी होती थी, वी कुड यूज। अभी वी आर बाइंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम डेटाबेसेस, वी आर लूजिंग द कंट्रोल फ्रॉम टाइमली एक्सेस टू रियल टाइम एक्सेस। सो ये जो जितनी भी फ्रॉम 9 बाई 5, पहले हमें लगता था कि 9 बजे लाइफ शुरू होती है और 5 बजे खत्म हो जाती है, अभी है 24/7/365 days of the year. You are never alone. You are never lonely. YouTube है, उसको खोल लीजिए, there is a plenty of choice. लेकिन ये benefit जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है elite individuals, elite institutions, elite nations के पास। कितनी organizations हैं Read India की तरह जो ground zero की तरफ जिसका रुख है, वहां जाकर वो एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं उन हैव नॉट्स को। किताबें पढ़कर बोलना, मतलब टेक्नोलॉजी की बातें करना, वेयर इज द स्टेबिलिटी इन द टेक्नोलॉजी। ये फोन मैं ले लेता हूं, 3 साल के बाद मेरे को नया फोन खरीदना पड़ता है, लेकिन मैं एक किताब मतलब ले लेता हूं साहिर लुधियानवी की या मतलब किसी की भी, या टीएस एलियट। अभी मेरे को यहां ध्यान आ रहा था कि टीएस एलियट ने कहा दी जरांशन में, वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। वहीं पे मेरा ब्रेक लग गया कि जे टीएस एलियट इसमें क्या कह रहा है, वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। हम अपनी एडी के द्वारे मतलब पूरे जोर से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मटीरियल सक्सेस विदाउट ए स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम डज नॉट मीन एनीथिंग। ये टेक्नोलॉजी आपको ठीक है, टेक्नोलॉजी की बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन मेरे को क्या लगती है कि इट हैज गिवन द डेथ ब्लो टू द ट्रेडिशनल कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब हम कनेक्टेड हैं, लेकिन उस कनेक्टिविटी उस टेक्नोलॉजी से हम कर क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आई रीड, इंपॉर्टेंट है व्हाट आई रीड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आई लिसन टू म्यूजिक, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट आई लिसन। मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। मैं गीता जी से बात कर रहा था कि जितनी भी ये शिफ्ट हो रही है, जो चेंज हो रही है, आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी की बात करो, ना तो बुक ना लाइब्रेरी, इट रिफ्यूजेस टू रिक्लाइन इनटू द ऑब्लिवियन। क्योंकि जब हम कहते हैं ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, पॉलीमीडिया लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी तो है, उसका फॉर्मेट ही चेंज हुआ है, उसके एवेन्यूज बड़े हैं। तो इसी तरीके से बुक जो है, बुक मतलब इज ए हॉट मीडियम, इट फायर्स योर इमेजिनेशन। जब ये एलियट कहता है कि वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, तो मैं सोचता रहा कि क्या कहना चाहता है। फिर आगे जाके उसने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की भी बात कर दी, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। यहां उसने फुल स्टॉप लगाया, मैं इसको आगे ले जाता हूं, वेयर इज द इंफॉर्मेशन वी हैव लॉस्ट इन डाटा और बिग डाटा। बस यही कुछ हो रहा है ना, क्या आप मतलब सेंस मेकिंग कर पा रहे हैं? जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो मतलब क्या हम अपने मतलब जो लर्नर्स हैं उनको ये सिखा पा रहे हैं कि वो डाटा को मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करेगा? हमें तो यही नहीं पता कॉमन सेंस और विजडम में क्या फर्क है। और हम साइंस की बातें कर रहे हैं, साइंस इज सिंपली ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉमन सेंस, लेकिन वैल्यू सिस्टम नहीं है। एटम बम बना लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको यूज तो कंस्ट्रक्शन के लिए कीजिए। कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है या कोई रेलवे लाइन पहाड़ों में बिछानी है, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर फेंक कर आदमी मारने के लिए अगर आप साइंस बना रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लाइब्रेरी बेसिकली मतलब लाइब्रेरी जो है इट्स ए मेटाफर ऑफ मेमोरी ऑफ मैनकाइंड। रंगनाथन अगर ना लिखता किताबें मर जाता तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी ने उसको प्रजर्व किया। तो लाइब्रेरी का मैंडेट क्या है, टू प्रिजर्व द पास्ट, टू सर्व द प्रेजेंट एंड टू बिल्ड फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ नेशंस, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी। ये लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो मैंने मतलब इसको रिड्यूस किया है, इसका मतलब थीसिस बनाया है, लाइब्रेरी बेसिकली इज टू थिंग्स। फर्स्ट, इट इज ए साइलेंट प्लेस फॉर रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। सेकेंड, इट्स ए लोकल गेटवे फॉर वर्ड्स, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो अब मतलब हम कहते हैं कि रीडिंग कम हो रही, रीडिंग क्यों करनी चाहिए, कोई रीडिंग का बेनिफिट क्या, प्लेजर्स ऑफ रीडिंग? मैं कहता हूं बीइंग, आपके पोटेंशियल को सबसे बड़ा चैलेंज है टू बी। विलियम शेक्सपियर ने मतलब ये कह दिया था 16th century में, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द रियल इशू। मेरे लिए ये है कि टू बी ए गुड टीचर और नॉट टू बी ए गुड टीचर, टू बी ए गुड स्पीकर और नॉट टू बी ए गुड स्पीकर, टू बी ए गुड हस्बैंड और टू बी ए बैड हस्बैंड, टू बी ए गुड फादर और बैड फादर, टू बी और नॉट टू बी इज द रियल इशू। रीड इंडिया इज डूइंग इट एट द ग्रास रूट लेवल, उनको लिबरेट करने की कोशिश कर रहा है, जो मतलब उसमें फोकस चिल्ड्रन के ऊपर है, यूथ के ऊपर है, विमेन के ऊपर है। यहां मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं कि एक बेटी है, मतलब वो 20-22 साल अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, सडनली उसको मतलब शादी के बाद जाकर एक एलियन एनवायरनमेंट में मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, कितनी बड़ी सैक्रिफाइस है। हमने कभी सोचा है कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बिल्ड करनी है? तो मैं कह रहा हूं कि देयर आर वेरी मेनी गैप्स एंड डिवाइड्स। जो बिगेस्ट मतलब गैप है, दैट इज कैपेसिटी गैप, कम्युनिकेशन गैप है। मतलब अभी मतलब जनरेशन गैप आ रहा है उसमें कम्युनिकेशन है, वो जो ग्रैंड फादर है, फादर है, ग्रैंड सन है, उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हमारा एलीट इंस्टीट्यूशंस का नॉन एलीट इंस्टीट्यूशन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अब वैल्यूज का ही क्वेश्चन है ना, आपके पास सरप्लस मनी है, क्या आप मतलब हैव नॉट्स को पावर करने के लिए यूज कर रहे हैं या अपनी मनी का जो मटीरियल सक्सेस का डिस्प्ले कर रहे हैं, कैबरे करवा रहे हैं? बस इतना ही फर्क है। वो वैल्यू सिस्टम जो है, जब तक हमारे पास वो गोरमैन ने एक किताब लिखी थी अवर एंड्योरिंग वैल्यूज, वो सभी को पढ़ना चाहिए, वो वैल्यूज आज भी वैलिड हैं। तो ये मतलब जो है इसमें मैंने भी पंजाबी में एक लिखा था, पता नहीं बहुत से लोगों को पंजाबी में समझ नहीं आएगा, मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। उसमें था धुप दरीचे थानी बोले कहंदी पौन बनेरे तो वेख कदों दा वड्डियां छत्तां अंबर खोलिया तेरे तो। ये जो मटेरियल सक्सेस है ना, इसमें जो हमारा ह्यूमन फेसेट खत्म कर दिया है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो वो कहता मतलब ये सनशाइन फ्रॉम द रूफ टॉप एंड द विंड फ्रॉम द वेंटिलेटर्स इज कम्युनिकेटिंग विद यू दैट दिस मैन मेड प्रोग्रेस हैज डिस्कनेक्टेड यू विद द मदर नेचर, कॉस्मोस से आपको तोड़कर रख दिया है। ये हाल के अंदर बैठा हूं, रात को भी बैठूंगा, मेरे को वो तारे आसमान चंद्रमा नजर नहीं आएगा। तो मतलब ऐसे हमारा जो नेचर से कनेक्ट हो गया, नेचर को तो छोड़ो, हमारा अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो गया। हम लोगों की बात करते हैं, हमारे मतलब अपने बारे मतलब समझ नहीं है। तो ये है, तो मैं ये कह रहा हूं, ये बुक की बात हो गई है, लाइब्रेरी की बात हो गई, मैंने कहा कि बुक इज हॉट मीडियम, इसलिए हमें बुक कल्चर पैदा करना चाहिए। लेकिन टीवी इज ए कूल मीडियम। क्यों कूल है? इट किल्स योर इमेजिनेशन। आप कोई सीरियल देख रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट, वेयर इज द टाइम टू स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट कि ये जो मैं देख रहा हूं इसमें अच्छा है जो बुरा है, व्हाट इज द टेक ऑफ इट। तो इसलिए मैं कहता हूं, और मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है इसका तो गूगल हैज बिकम गॉडफादर कि जो कुछ भी है, या विकिपीडिया है या गूगल, मतलब एक मिनट में आप सर्च करो तो मतलब चाहे वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, अब गूगल मैप्स में कहेंगे तो वो कहेंगे कि पता नहीं अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ दिस चाइना, तो कैन यू ट्रस्ट दैट इन्फॉर्मेशन? ये भी तो कैपेसिटी वैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो गैप्स एंड डिवाइड्स में मैं मतलब ये कह रहा हूं, दो गैप्स की तो मैंने बात की है, कैपेसिटी गैप, तो वो उसके ऊपर तो रीड इंडिया फोकस कर रहा है, टू बिल्ड कैपेसिटी एंड टू एनहांस कैपेसिटी ऑफ द रूरल। और कम्युनिकेशन गैप, मतलब ये मैं मतलब ये कहता हूं कि हमारे पास, मेरे ख्याल इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, यहां नेशनल नॉलेज कमीशन बना, यहां नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है, हमारे पास राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहां है? जैसे मतलब संधु साहब ने कहा था कि मतलब रीड का इम्पैक्ट है 6 लाख लोगों के ऊपर, लेकिन ये जो हमारी एजेंसीज हैं इनका रूरल कम्युनिटी में इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, कितना बेनिफिट हो रहा है? तो वो जो कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है ना, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो मैं मतलब अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं पहले ही फील कर रहा हूं कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मतलब हमें फोकस करना पड़ेगा। तो वे आउट में मैं कह रहा हूं कि ये मतलब ठीक है, मतलब हम अपने दीवार के साथ पीठ लगाकर लगे हुए हैं, रीड इंडिया लगा हुआ है कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, लेकिन ऐसे मतलब कितनी देर चलेगा? हमारे पास नेशनल और मतलब स्टेट लेवल पर कमिटमेंट होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। 1948 में मतलब तमिलनाडु में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हो गई थी, इतने साल हो गए, सारे इंडिया या यूनियन टेरिटरी में। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब कितनी देर हम एनजीओज के पास, कारपोरेट सेक्टर के पास जाकर पैसा मांगेंगे? ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट, जब वो मेरे से 34% टैक्स ले रही है सेस लगाकर, तो ये मेरी मतलब कम्युनिटी को फैसिलिटी क्यों नहीं दे सकती? ये वोट पॉलिटिक्स कब तक चलेगा कि ये मतलब लाइब्रेरियों का मतलब वोट्स का इतना मैटर नहीं करता है, वो फ्रीबीज देकर आप मतलब करो। तो ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से कमिटमेंट होनी चाहिए, तभी जाके ये नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज होगा, और तभी जाकर कम्युनिटी के लिए वो लाइब्रेरी एक साइलेंट प्लेस फॉर रिफ्लेक्शन और लोकल गेटवे फॉर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बनेगी। दूसरा मेरे को लगता है कि मतलब ये कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म से रीड इंडिया को रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब में जो हमारे एनजीओज ने लाइब्रेरीज खोली हुई हैं या पंचायत लाइब्रेरीज हैं या और वॉलंटियर्स ने की है, आप मैं आपसे मतलब मैं प्रॉमिस करता हूं कि आई विल कनेक्ट रीड इंडिया विद देम, उनके साथ नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप होनी चाहिए। रीड इंडिया को जो बाहर वाले मतलब पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है या एनआरआईज हैं, उनसे भी कनेक्ट करना चाहिए। आप मेरे साथ जब जाएंगे पंजाब में बताऊंगा लोगों, और मतलब वहां ग्रीन लाइब्रेरी बनाई हुई है, इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है, लेकिन वो कब तक यहां आकर कर सकते हैं? अगर रीड इंडिया उनसे पार्टनरशिप कर लेता है, उनसे पैसा आएगा, वो कार एंड ड्राइवर का सिंड्रोम है ना, हम तो ड्राइवर है, रीड इंडिया ड्राइवर है, लेकिन कार तो उनके पास है ना, पैसा उनके पास है, हम उनसे पैसा लेकर मतलब यहां से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप का। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एनहांसमेंट की मैंने पहले बात कर ही दी है, और उसके बाद कम्युनिटी फोकस, मैं ये मेरे को लगता है यू आर योर फोकस, आपका जो फोकस है, जब मैं आई एम माई फोकस, मेरा फोकस जो है, तो वो पहले मैं रीडिंग किताबों की बहुत करता हूँ, आज मेरे को लगता है कि मैं मतलब आई एम ऑन क्लाउड 9, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरे पास बहुत चॉइस है। कई दफा मैं वो पाकिस्तानी ड्रामा में आपको कहता है कि बागी ड्रामा है, वहां देखना एक वुमन कैसे स्ट्रगल करती है, मतलब उन क्लचेस को मतलब क्लचेस से लिबरेट करने के। जब मैंने पहली एपिसोड देखी तो मेरे से रहा नहीं गया कि जितनी जल्दी हो 28 एपिसोड्स दे दूं, इतना मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट वेयर इज द अफोर्डेबिलिटी? कितने जो रूरल पुअर लोग हैं वो मोबाइल फोन खरीद सकते हैं और मतलब उसका मतलब ये मतलब दे सकते हैं आपका एयरटेल का चार्ज मतलब 400-500 रुपए जो भी है, तो ये मतलब वो पैसा मनी मेक्स द मेयर गो, तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, कोलैबोरेशन, और देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये जो अभी गुजरात से भाई साहब बोल रहे थे, तो वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ना, आप कैसे कन्विंस करो, अपने कल्पना दास गुप्ता जी कह रहे थे मेरे सफेद बालों का भी बेनिफिट हुआ कि लोगों ने कहा कि ये सीनियर हैं तो ये सही ही कह रहे हैं, हमें मिस गाइड नहीं करेंगे। तो मैंने ये सारी बातें हैं, मेरे को आजकल लेक्चर मोड ये अच्छी नहीं लगती, मेरे को होता है कि बैठकर टेबल पर टॉक करें, डायलॉग मोड में होना चाहिए, लेकिन देयर आर अदर पीपल इन द क्यू एंड आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू मोर विद इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वांट टू, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू इन्फो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज द साइलेंट किलर। थैंक यू वेरी मच।

0: I would like to call Dr. D.V. Singh, former chief librarian, Delhi University, for sharing his views.
1: पहले तो धन्यवाद. मेरा टॉपिक है जो मुझे बताया गया वो है ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल ऑफ द लाइब्रेरीज. एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, वो कैसे होता है पता नहीं चलता, लेकिन जैसे हम कई बार कहते हैं कि पानी में आग है, कई लोग एग्री नहीं करते, लेकिन है. पानी को हमने रोका, हमने टरबाइन में डाला, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, हीटर में लगाया, आग पैदा हो गई. कहां थी? पानी में. लेकिन हमने उस चैनल को क्रिएट किया, तो लाइब्रेरी भी ये काम करती है. जिन्होंने एटम बम बनाया था, दो लोग थे, एक आर्मी के जनरल थे. वैसे तो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार, बट उन दो लोगों को माना जाता है, ओपेनहाइमर और वो दोनों ने कहीं लिखा है, मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि ये गलती हो गई, बट गलती लाइब्रेरी में बैठ के हो गई. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वहीं देखते थे, वहीं से लाते थे, स्टडी करते थे, सोचते थे. और जब वो ड्रॉप किया, वो भी कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी में कि वर्ल्ड वॉर एटम बम से नहीं जीता गया, लाइब्रेरी से जीता गया. कि लाइब्रेरी में तय किया गया कि जापान के किस शहर में कितने बजे, क्योंकि डाटा वही था, उसका बम गिरा जाए. कहने का मतलब है ह्यूज एडमिशन. अब बहुत सी बातें, लाइब्रेरी तो बहुत कुछ करती है. पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं, श्वेत लाना का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े डिक्टेटर, वर्स्ट डिक्टेटर ऑफ दी नोन हिस्ट्री, उसका नाम स्टालिन था. उसकी एक लड़की थी, वो इंडिया गई, यहां ब्रिजय सिंह से शादी की, वहां नहीं मानी. बड़े उस डिटेल में मैं नहीं जाता. उसे पूछा, आप उसने स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहां आपके पिताजी किसी पर विश्वास नहीं करते थे, आप एक शब्द विपरीत नहीं बोल सकते, आप सर्वाइव कैसे की? बोले एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी. वो कैसे? कि बस मैं जाती थी लाइब्रेरी में, किताब पढ़ती थी, कुछ लिखती थी, और बस वहीं से मुझे स्ट्रेस मेरा निकल जाता था, अब मैं सर्वाइव की. इसका मतलब तो तय हुआ कि लाइब्रेरी स्ट्रेस को खत्म करती है, तो फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस को भी खत्म करती है. और आजकल तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस है. शाम को देखो यहां चौराहे पे क्या हाल होता है. मेरी समझ में आता है, ये आदमी दौड़ रहे हैं कि कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं? ये कहां जाएंगे, क्या होगा? मेरे गांव का आदमी आया, बोला दिल्ली तो खाली हो जाएगी मां, क्योंकि इतने लोग दौड़ रहे हैं निकलने के लिए, तो कहां जाएगी ये दिल्ली? लेकिन कहीं कोई नहीं जाता, वहीं दिल्ली में है और यूं ही दौड़ रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, बस एक ही बात कहूंगा. रंगानाथन जी ने 67 में वो लेक्चर कोई दिया था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है. उन्होंने कहा था कि ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस काम का? जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब हो. बाकी ह्यूमन टच अगर चला गया तो लाइब्रेरी की भी इंतजार मत कीजिए, वो भी चली जाएगी, प्रोफेशन भी चला जाएगा. और हमने सरेंडर कर भी दिया इसी चक्कर में. रिपीटेटिव जॉब क्या है? क्लासिफिकेशन. वो आप नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कभी टच कर पाएगी, वो अलग बात है. कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आपको इश्यू रिटर्न करना है कर सकते हैं. लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज देनी है, वो आपको केवल ह्यूमन टच के द्वारा देनी है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं. एंड विच इज इन क्वालिटेटिव नेचर, इट रिक्वायर्स द ह्यूमन टच ऑल द टाइम. कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मां भी पैदा कर देगी, लेकिन मेरी मां ने जो मुझे छाती से लगा करके थपकी दी है, और उससे जो मेरे अंदर इमोशंस डेवलप हुए हैं, वो मशीन उनको खत्म कर देगी और आदमी मशीन बन के रह जाएगा, उस तरफ मत जाए. डिटेल में पढ़ना है तो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी नौहारी की किताब है, प्लीज डू रीड दैट बुक. हिस्टोरियन है, इसराइल के हैं, और टाइम गड़बड़ ना हो जाए तो टाइम बता दीजिए. कि ऑर्गेनाइजर की सबसे बड़ी समस्या समय होती है, और बोलने वाले की सबसे बड़ी भी समस्या भी समय की. उसे पता ही नहीं होता मैंने कितना खा लिया, उन्हें समझ नहीं आता कि कब चुप होगा, तो वो स्थिति ना पैदा हो. खैर, तो वो जो बात है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके फाइन, लेकिन एक सीमा से परे नहीं. ह्यूमन इज ह्यूमन, यू कैन नॉट ट्रीट ए ह्यूमन थ्रू द मशीन. मशीन कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन. डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जा सकते हैं, किताब बता दी और रेफरेंस लीजिए, उसको पढ़िए. अब लाइब्रेरी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है वो घटना मैं बार बार सुनाता हूं, फिर भी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है. गांधी जी की सेंटिनरी मनी थी 1969 में, तो हम अपने गांव में पढ़ते थे, शायद थर्ड फोर्थ में थे, और मेरे गांव में ही एक थोड़ी दूर पे मुल्ला जी कुछ कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और वो आपने कभी देखना मदरसे में जाके कुरान शरीफ पढ़ने वाले को यूं यूं यूं यूं गर्दन करके वो लगे रहते हैं, रुकते नहीं, बस यूं यूं यूं जो भी कुछ उनका है उस पर. मुझे कुछ आता भी नहीं तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा. तो मैं सोचा यार ये सिर हिला हिला के इतनी बड़ी कुरान शरीफ याद कर लेते हैं, ये थोड़ी सी तो चीजें हैं जो मुझे एग्जाम में देनी है, मैं कैसे सीख लूंगा क्योंकि इससे जल्दी सीखा जाता है. बच्चा था, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वेद में तीन बात कही है, उसको बताते हुए आगे बढ़ूंगा. स्वर्ण मन निधि ध्यास, सुनना. कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आंख से सुनते हैं, तब कान से नहीं सुनते, आंख से सुनते हैं उस लेखक को, या आप मुझे सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं आप, तो मुझे सुनना है. उसके बाद विचार होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, अन्य दिध्यासन तब उस पर आचरण होना चाहिए. क्योंकि बच्चा था, आंख से देख लिया, विचार नहीं कर सकता था कि विचारिक शक्ति उतनी विकसित हुई नहीं थी, और मैंने आचरण कर लिया. अब रिजल्ट क्या निकला, घर में सबने डांटा, पिटाई सिताई भी, उन दिनों थोड़ा पीटना एक अधिकार और साधन समझा जाता था सुधार का, आजकल तो सजा का साधन है. वो कहते हैं इंग्लैंड में तो अपने बच्चों को पीट दे तो जेल चला जाता है, वो अलग विषय है, सुना है ऐसा, देखा भी है कई बार. नहीं मामा, स्कूल में उस दिन सारे टीचर नहीं आए थे, तो हमें किताब दे दी, और किताब मैंने जब पढ़ी, बच्चों की किताब थी, वो आई थी उस समय सेंटिनरी ईयर में, पिक्टोरियल थी, तो उसमें लिखा था गर्दन हिला के पढ़ने से बुद्धि भी खराब होती है और आई साइट भी खराब होती है, और मैंने वो बंद कर दिया. तो किसका प्रभाव था, लाइब्रेरी की किताब का. और मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत से लोगों जो बहुत गर्दन हिला के कुछ याद करते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो पा रही दुनिया में, बहुत कोशिश हो रही है सारी दुनिया में, किसी का नाम तो मैं क्या लूं. तो लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करती है. और एक चीज मैं क्या बताऊं आपको, हिंदुस्तान है, यहां उन चीजों पे बहुत खर्च कर देती है सरकार जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जिनका मतलब होता है उन पे विचार नहीं करते हैं, तो जानते नहीं या वो करना नहीं चाहते. वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इनिशिएट किया कि इंडिया का यूथ लीडरशिप सर्वे होना चाहिए, अप्रूव हुआ. होते आते 2009 में जाकर के ये काम एनसीईआर को, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो है आईटीयू पे, उसको दिया गया, और एनबीटी के कोलोबोरेशन में वो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट 11 में आई. बहुत फैंटास्टिक रिपोर्ट है. अमेरिका में तो अल्टरनेटिव ईयर पर यूथ लीडरशिप सर्वे होता है, यहां तो एक ही बार हुआ. उसमें यही जो बात पहले कही गई, किसने कही थी कि जहां रीडिंग बढ़ी वहां पे क्राइम घटा, उसने यही बात कही कि जो जो एरिया डिस्टर्ब थे वहां रीडिंग जीरो थी, जिन एरिया में रीडिंग अच्छी थी वो एरिया कम डिस्टर्ब थे, और जहां पहले से रीडिंग हैबिट्स अच्छी थी वहां डिस्टर्बेंसेस कम हुए और सोशल लॉस कम हुआ. ये हमारी इंडिया की रिपोर्ट है, एनबीटी से मिल जाएगी, नेट पे भी पड़ी हुई है, इस पे काम होना चाहिए. सैंपल ही सही, इंडिया बहुत बड़ा है, हम किसी डिस्टर्ब एरिया में थोड़ा सा एक सैंपल कर सकते हैं. कई बार हमारे पास रिसर्च की थीसिस भी आ जाती है तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता, तो हम कहते यार ये क्यों नहीं करते, लीडरशिप सर्वे क्यों नहीं दे देते, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द मूच वाला, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या क्या क्या, एक ही चीज रिपीट होती रहती है. मैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल में क्यों रखते हो, लेट हैव द न्यू वाइन इन न्यू बोटल, अर्थात कुछ नए एरिया लेने चाहिए. जो हम बात करते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट तो नहीं हूं, बट इसके फेवर में नहीं हूं. अनइंप्लॉयमेंट के बारे में एक चीज समझ लीजिए, उसकी एक सोशल कॉस्ट होती है. व्हाट इज दैट, ये जो आज चेन छीन रही है ना, आप थ्री व्हीलर में महिला का पर्स छीन लिया क्योंकि उसके पास जेब होती नहीं, उसके कपड़े कुछ इस तरह के हैं, तो सब उसी में होता है, छीन के भाग गए. और जब वो पकड़े जाते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि अनइंप्लॉयड है. अब उस क्राइम को रोकने के लिए आपने पुलिस बढ़ानी पड़ती है, उस पुलिस के लिए आपको थाने बढ़ाने पड़ते हैं, पोस्ट तो पे करनी पड़ती है। जैसे एक जोक भी है और सच्चाई भी है। मेरे एक मित्र थे हरिद्वार में, मैं पढ़ता था, बहुत विद्वान आदमी थे सारे शास्त्र, उनको सच में मैं उनकी धूल हो जाऊं तो भी जीवन सार्थक समझूं। एक लंगोटी खाली पहनते थे, पेड़ के नीचे सोते थे सर्दी में, अदरवाइज खुले में। एक टाइम किसी के घर जाके मिल गया, जो मिल गया वो उसने खा लिया, वो कोई संपत्ति नहीं थी। वो अमृतसर गए और उन्होंने कहा मैं माथा टेकूंगा गुरुद्वारे में और गुरु महाराज के यहाँ। जब वो गुरुद्वारे में गेट पे गए तो उन्होंने कहा भाई सिर पे कपड़ा रखो। उसने कहा कसम खाई है एक ही कपड़ा रहेगा, चाहे इसको यहाँ बंधवा लो चाहे इसको यहाँ बंधवा लो। गुरुद्वारे से रोक नहीं सकते, जाऊंगा मेरे भी गुरु हैं। चलो अलग विषय। तो कहने का मतलब है तो जस्ट हंसने के लिए थी कि एक ही रास्ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट पे कर लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट लेस कर लो, ये आपका डिसीजन है। इसलिए लाइब्रेरी में कंप्यूटराइजेशन की उतनी सीमा रखो जितना जरूरी है। किसी की आंख बंद कर करके पूंछ पकड़ करके नदी पार नहीं होती, नदी तैरने से पार होती है। आगे एक चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, एक दो चीज मैं लेके जाऊंगा, एक दो उतनी जरूरत नहीं है जितना उनकी लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं वो चीज यहां खरीदूंगा तो कहीं दूर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिस जो हैव नोट्स की कैटेगरी में आता है कुछ रोजगार मिलेगा, उसको साहस मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। मैं मंदिर मंदिर में दान नहीं देता हूं, मैं रस्ते में भिखारी को तो बिल्कुल भी नहीं देता हूं, और अगर किसी को रेफरेंस मिल जाए मैं रेफरेंस देता हूं। आर्टिकल सब पढ़ना, 1980 में लिस्टेड वीकली एक मैगजीन आती थी, उसमें एक आर्टिकल आया था जेआरडी टाटा और पीएन अक्षर का। पीएन अक्षर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इफ यू गिव टू वन बैगर यू क्रिएट 10 मोर, आफ्टर रीडिंग दैट आई हैव स्टॉप्ड इट। हर चौराहे पर 10 खड़े किसको दीजिए तो वो गलत है। तो मैं कहता हूं डोंट गिव ए ब्रेड टू ए पर्सन, गिव देम द आर्ट टू अर्न योर ब्रेड एवरी डे। रीड इंडिया उस काम को कर रही है। एक दिन रोटी खिला दी कब तक, लेकिन स्किल दे दी, वो स्किल से रोज आपकी रोटी खाएगा। एक भंडारा करते हैं मुंह चेरते हैं, हमने 100 लोगों को खाना खिला, बड़ा काम किया, और जब खिला कर चले गए वहां कुत्तल पड़ी है, यहां ग्लास पड़ा है, यहां कुत्ते चाट रहे हैं, यहां मक्खी घूम रही है, हमने पुण्य का काम कर लिया। पुण्य का काम होता है जो दूसरे को कभी भी कष्ट ना दे। वो पुण्य का काम नहीं हो सकता किसी को कष्ट दे के आप कोई कार्य करें। तो एनवायरमेंट इतना सा भी ध्यान दे ले तो काम चले। मैं कई बार देखता हूँ अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज है, हमारी गाड़ी की टोटल को उसके बराबर इंश्योरेंस देते होंगे, शीशा को दे भाई खाते ही क्यों, तुमने तो थूक दिया। तो खैर बहुत सी चीजें हैं तो एंडलेस बातें हैं। तो रीड इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है जो सब काम हो रहा है, और लाइब्रेरी को डाइवर्सिफाई करना होगा। उसका उदाहरण है वो एसेंचर के लोग से चले गए, डाइवर्सिफिकेशन का क्या लाभ होगा लाइब्रेरी को, एक छोटा सा उदाहरण। आर्थर एंडरसन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी थी, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट कंपनी थी। लेमन ब्रदर्स को गलत सलत रिपोर्ट दी, लेमन ब्रदर बैठ गए अमेरिका में 2008 में, कौन भी बैठ गई, रोना धोना मच गया, आर्थर एंडरसन भी मर गई। लेकिन एसेंचर भी उन्हीं की कंपनी थी, अलग थी, और उसने ठीक से काम किया, एसेंचर सर्वाइव की। क्यों? क्योंकि आर्थर एंडरसन ने डाइवर्सिफाई किया। एक पार्ट मर गया, दूसरा फिर भी जिंदा है। अगर लाइब्रेरी डाइवर्सिफाई करेंगी, लाइब्रेरी का डाइवर्सिफिकेशन ये है जो रीड इंडिया कर रहा है। खाली किताब पढ़ा तो कुछ नहीं। बहुत सारी बातें हुई हैं। एक बहुत बड़ा आदमी है, मैम टाइम ओके नाउ आई क्लोज इट, जस्ट लास्ट है, शुड आई कंटिन्यू और क्लोज इट ओके। एलन ग्रांट नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उसने कहा ये बिगड़ क्यों गया, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बैलेंस। उसने अल्टीमेटली ही केम बैक टू इंडिया। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा उसी बात को, उसने दूसरे तरीके से कहा। आपने कभी देखा बिच्छू किसी को काट ले तो वो क्या होता है, उसका उछलता है, उछलता है, लहर सी चलती, मुझे एक बार काटा हुआ है, बहुत परेशानी होती है, कई बार जीवन भी चला जाता। बंदर देखे आपने कभी, बंदर को देखा होगा, यहां बैठा, अब यहां बैठा, यहां बैठा, एक सेकेंड रुकता नहीं कहीं भी, देखा ना, अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? तो हमारा जो मन है बंदर है, इस पे एक्स्ट्रा एम्बिशन का बिच्छू काट गया इसलिए उछलते फिरते हैं, इसलिए टेंशन है। इस बिच्छू को अनावश्यक पुकारने, मैं मानता हूं एम्बिशन के बिना जीवन कैसे होगा और कल्पना के बिना एम्बिशन पूरी कैसे होगी। लेकिन यशपाल एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनकी किताब दिव्या है, वो महिला एसेंटिक उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है। सोशल इश्यू को उसने कहा, कल्पना की उड़ान के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कल्पना के दौर में जमीन से पैर नहीं उठने चाहिए। हम तो पैर ही उठाए फिर रहे हैं जमीन से, जब नशा टूटेगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता। और फिर लोग कहते हैं कि वो तो 10 मंजिल से गिरा था इसलिए मर गया, मैं तो 7 मंजिल से कूदूंगा बच जाऊंगा कि 3 मंजिल कम हूं, चाहे 10 से कूद लो चाहे 7 से कूद लो मरना तो पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ओवर एम्बिशन का, और यही वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में रहे, बहुत किताब पढ़ी है, बहुत किताबों से डील किया है, अब बोलने को तो कितना भी बोल सकते हैं, बट समाप्त भी करना होता है। अब हो क्या गया है जो रीड इंडिया कर भी रही और करना भी चाहिए। हम अभी तक हिंदुस्तान की लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। गांधी ने बहुत विरोध किया था कि हर चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में मत ले जाना, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल कॉस्ट होगी, सोशल हार्मोनी खराब होगी। अब जूते हमारे गांव में लेते थे हम लोग, गांव के आदमी आज भी गांव जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने गांव को, वहीं की वजह से यहां खड़े हैं। अगर वहां नहीं होते तो यहां भी नहीं होते, यहां होते तो नकली होते, क्योंकि यहां पड़ोसी का पड़ोसी से लेना देना नहीं। मेरे गांव में तो मैं किसी कोने में खड़ा होकर पेशाब कर दो, उस कोने में चर्चा होगी उनका लड़का पढ़ा लिखा होकर कि खड़ा होकर पेशाब करता है। मैं उस समाज से आया हूं और उसी में जाना पसंद करूंगा जहां हर किसी को एक दूसरे का कंसर्न है। यहां तो मेरे सन्मुखी है, पंजाबी में एक सब बड़ा यूज होता है, दिल्ली में सन्मुखी हमें क्या है, कोई मर गया तो मर गया। गांव में ऐसा नहीं है, आज भी कोई मरगा पूरा गांव जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती भोजन नहीं करता, जब उसकी तेरवी होती है चाहे दुश्मन हो आके खड़ा होता है, अभी भी बचा हुआ है वो, हारमोनी बची हुई है, क्योंकि अभी सारा गांव ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आया है। हम जूती गांव में लेते थे, गांव में जूती बनती थी, हमारे गांव के पशु मरते थे उसी चमड़े से होती थी, उसका रोजगार था, हमारे पास एक साधन था, वो बाटा पे चला गया, एडिडास पे चला गया एटसेट्रा, और वो बाटा एडिडास का 10,000 का जूता पहन के अगर मैं अपने खेत में निकल जाऊं तो वो शाम को खराब हो जाएगा। लेकिन आज भी वो जूती पहन के मेरे गांव के किसान लोग खेत में घूमते हैं, जब वो सख्त हो जाती है थोड़ा सरसों का तेल डाल के रख देते हैं फिर पहनते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाना पड़ेगा और लाइब्रेरी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कहीं कहीं ये पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट के एक बाबूजी के कब्जे में, ये जो भी आई है सोते मैंने बाबूजी कहता हूँ, ये बड़े बाबू छोटे बाबू के कब्जे में है, उसने एक रूल बना दिया, उसके बाहर चलोगे आप सस्पेंड हो जाओगे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाइब्रेरी रही ना लाइब्रेरी पढ़ने वाले रही। अब ये प्रयास हो रहा है रीड का, ये इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर को ले जाया जा रहा है, हर गांव में ले जाएंगे, वहां केवल किताब नहीं होगी, वहां की लोकल स्किल पे ध्यान देंगे, किसी को कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी को कुछ देंगे, यानी एक होलिस्टिक सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, जिसके बारे में योगीराज अरविंदो ने कहा था इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज द ओनली डेवलपमेंट विच कैन सस्टेन दिस सोसाइटी। व्हाट इज दैट, ये मेरा हाथ बहुत मोटा हो जाए, एक बीमारी होती है एलिफेंटाइस, पैर बहुत मोटा हो जाता है, बाकी तो बुरा लगता है आदमी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पैर मोटे हो प्रोपोर्शनेटली वो आदमी कितना सुंदर कि क्या यार फिटनेस है कि वो उसका इंटेग्रल डेवलपमेंट है। वो इंटेग्रल डेवलपमेंट में केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, आपका मेंटल सोशल भी है इमोशनल भी है, वो इंटेग्रल डेवलपमेंट इसी तरह से होगा जब लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगी कि तभी वो ट्रांसफॉर्मेट करेगी। आज भी जगताजी ने बड़ा सही कहा, हैव नोट्स और जिन पे बहुत है जिन पे नहीं, अंग्रेजी आती नहीं है थोड़ी सी आती है काम चलाओ, तो जिन पे नहीं है और जिन पे बहुत है दोनों की एक ही समस्या है, एक भूखे मारे शुगर का मरीज है, एक बहुत ज्यादा के मारे भूखे शुगर का मरीज है। क्यों, तो हमें इसको हैव एंड हैव नोट्स, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनका शोषण हो रहा है, जिनके पास नॉलेज है उनका भी शोषण हो रहा है। जैसे एक एक उपनिषद है हमारे यहाँ ईशो उपनिषद, तदे जति तन्ने जति तद, नहीं भूल गया, गलत हो गया, अभी अभी एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान आएगा। वो लोग जो केवल विद्या की उपासना करते हैं दंडम तम प्रविशंति, वो अंधकार में जा रहे हैं। बोले क्यों? कि उसका अभ्यास नहीं करते। राय बहादुर है, अभी बुला लीजिए आप। जो अंधम तम प्रविशंति ये विद्यान उपासते, अब ठीक से याद है, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। अगली लाइन का क्यों? क्योंकि उस पर व्यवहार नहीं करते। तो वो विद्या, वो जो नॉलेज है जिस पे हम व्यवहार नहीं करते, वो अंधकार में ले जाती है। लास्ट में कह के खत्म करूंगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइब्रेरी ले जाए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, हैव नोट्स का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ अनिता बहन जी हमारी जो आदिवासी ड्रेस में है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, नहीं कि वहां बहुत काम करते हैं, इसके लिए करता हूँ, अपनी संस्कृति में अथाह विश्वास रखती है और हमने वो छोड़ रखा है। हम पैंट पहन के खड़े हैं और वो अपनी आदिवासी ड्रेस पहन के खड़ी, उनसे कुछ सीखो और रन, मैं उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए। आदमी को अपने में विश्वास रखना चाहिए। मेरे सिर पे चोटी है, एक दिन एक सरदार जी मेरे मित्र है, ये क्या है? मैं गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, मैं क्या करूं? बोले वो कैसे? मगर वो इन मुगलों से ना लड़ते तो मेरा नाम इब्राहिम मोहम्मद होता, तो चोटी कहाँ होती? तो गुरु सिंह गुरु जी की देन है, मैं इसे फेंक कहां सकता हूं? सच में उनकी देन है। तो कहने का मतलब है अपनी संस्कृति में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए, अपने समाज में विश्वास रखिए, तो फिर राष्ट्र के सबसे बड़े एसेट आप हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत करी जा सकती है, लेकिन एक बस लास्ट छोटी सी बात है। 88 में मेरे एक दोस्त थे केरल के, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी, उन्होंने मुझे एर्नाकुलम में बुलाया कोचिंग। हमने कहा यार यहां आदि शंकराचार्य जी, एक वहां से 60 किलोमीटर पर अलो एक जगह है, उससे थोड़ी दूर जाएंगे कोई 8-7 किलोमीटर कालडी गांव में जहां आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। मैं यार थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, गांव वाव भी देख लेंगे और वहां जाएंगे, उधर से गाड़ी। बोले ठीक है चलो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो जगह जगह लोग बीड़ी बना रहे थे और ग्रुप में बैठे हुए थे, अब पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं वो चीज। एक आदमी किताब पढ़ रहा था, 10 जगह ऐसा हुआ। मैंने पूछा ये क्या? बोले हाँ ऐसे ही होता है, एक आदमी

था, ये देखा वो देखा, यहाँ से वहां गए, बढ़िया जी अंग्रेजी अंग्रेजी बोली, पीपीटी बनाई, और हमने कहा हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता, जुड़ना पड़ता है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी, टाइम दिया इसके लिए, इंडिया का धन्यवाद। बहुत सारी मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, दो बात लास्ट में, बहुत छोटी सी है, ज्यादा टाइम नहीं उसमें। गीता का एक 18वें श्लोक 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है, उसमें कहा गया, हिंदी में मैं बता देता हूँ, कि जो मेरे पास अर्जुन गहरे से गहरी जानकारी थी, गंभीरतम ज्ञान में रखता तो आपको दे दिया। और दूसरी लाइन में गुह्यतम गुहामया, जो मेरे पे गहरे से गहरा गूढ़ से गूढ़ ध्यान ज्ञान था वो तुम्हें दे दिया, जो मेरे पे था, उसने कहा, और की बात नहीं करता मैं। और दूसरी लाइन में कहा अभिमन, हिंदी में इस पे आप क्रिटिकली विमर्श एतद विशेषण यथेसिद्धि तथा करु, इस पे विशेष प्रकार से विचार करना, सुन लिया विचार करना तो आचरण, यथेसिद्धि तथा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, तो जो मेरे पास अच्छे से अच्छी जानकारी अकॉर्डिंग टू मी वो आपको दे दे, इस पे आलोचना पूर्वक विचार करना, और जो अच्छा लगे उस पर आचरण करना, नहीं लगे छोड़ देना। अगली लाइन बसीर बद्र की, इन सब लोगों ने ज्ञान के दीपक जलाए, अभी भी और जलेंगे, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग समझते हैं ना दीपक, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक अंधेरी रात ही रात होगी। जिंदगी में अंधेरे बहुत आते हैं, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूं, ना जाने फिर किस मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू।

0: I would now like to call upon Mr. Harsh Arora. He is a knowledge partner and he continues to, you know, help us build our capacities and help us build soft skills. So please, sir, share your views.
1: Thank you, Smita. Thank you, Geeta ji. Thank you, Air India, for inviting me for this conference, and congratulations for completing 17 years. So being a leadership coach and trainer, I think मैं वही skills use करते हुए अगले 5 से 10 मिनट आपसे बात करूंगा. और क्योंकि हम एक theme के ऊपर बात कर रहे हैं जो है partnership, तो partnership के कुछ elements होते हैं और उनमें से कुछ elements के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूं. पहला element है trust, right? और हम बहुत सारे लोग बहुत loosely इस word को use करते हैं. क्या हम किसी के ऊपर भी पूरी तरह से कभी भी आज तक trust कर पाए? कितने लोगों को लगता है कि आप पूरी तरह से किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? ओके, वेरी फ्यू, राइट? लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट नाउ. यूजुअली हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं फॉर समथिंग. मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरे पैसे नहीं चुराएंगे. मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरे ऑफिस में कोई धोखा नहीं करेंगे. मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे, राइट? हम हर किसी पे ट्रस्ट किसी चीज के लिए करते हैं कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर है. क्या वो ट्रस्ट है या एक सौदेबाजी है? वो एक बाटा सिस्टम है कि अगर आपने ये किया तो ट्रस्ट खत्म. जबकि ट्रस्ट की डेफिनेशन क्या है? ट्रस्ट एक गिफ्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं, और वो सिर्फ गिफ्ट तब काम नहीं आता जब आप कुछ गलत नहीं करते. वो काम तब आता है जब आप एक्चुअली कुछ गलत कर देते हैं. सो इंग्लिश में इसकी सेइंग है, ट्रस्ट इज अ गिफ्ट बिस्टाउड ऑन द अदर फुली नोइंग दैट द अदर पर्सन कैन हर्ट. ट्रस्ट एक ऐसा गिफ्ट है जो हम दूसरों को देते हैं ये जानते हुए कि सामने वाला मुझे हर्ट कर सकता है. आपके पास हमेशा चॉइस है कि जब आपसे कोई गलत करे, झूठ बोले, धोखा दे, आप उसके ऊपर ट्रस्ट मत करिए. लेकिन अगर आपने चूज किया है कि आप उसे दोबारा ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट फुली होना चाहिए. आई थिंक दैट्स द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप. यू नो, जब हम सब किसी जॉब में आते हैं, नौकरी में आते हैं, तो आपको ना कुछ 2-3 महीने की प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, राइट? तो ऐसे ही जब कोई हमारा ट्रस्ट तोड़ता है ना, तो हम उस इंसान को यूजली प्रोबेशन पीरियड पे डाल देते हैं. हम एक सीसीटीवी बनकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं. अरे देखो, ये कुछ कर तो नहीं रहा, अरे गलत तो नहीं कर रहा. हम उसे हमेशा शक की नजर से देखते हैं फॉर सम टाइम. दैट्स नॉट ट्रस्ट. जब भी आप किसी पर ट्रस्ट करें, चाहे गलत करने के बाद या पहले, वो 100% अनकंडीशनल करें. एंड माय इनविटेशन टू यू इज ट्राई एंड स्टार्ट लिविंग लाइफ विद योर पार्टनर्स, वेंडर्स, विद योर एम्प्लॉयज, विद योर टीम मेंबर्स एंड इन योर फैमिलीज एंड सी हाउ लाइफ इज. सेकेंड, वी ऑल हैव हर्ड द वर्ड फॉर ऑनेस्टी. सबको पता है ऑनेस्टी क्या होती है? क्या है ऑनेस्टी? ईमानदारी. और ऑनेस्टी, बिल्कुल नेकेड ट्रुथ, राइट? बिल्कुल सच. एक और वर्ड है जिसका नाम है इंटेग्रिटी. कौन बताएगा मुझे इसका मतलब? इंटेग्रिटी, व्हाट इज इंटेग्रिटी? जी,
2: विश्वास.
1: ओके, सॉरी, बेस्ट क्वालिटी, बेस पॉलिसी. ओके, एनीथिंग एल्स? व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी इज कि जो मैं इस समय बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूं अपने बारे में. इसको एक उदाहरण की तरह समझते हैं, राइट? स्मिता, कैन आई टेक यू एज एन एग्जांपल? ओके, डिंपल आपको भी ठीक है, एंड आपको लेते हैं, ठीक है? सो आपकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है कैंसर या किसी भी एक डिसीज के लिए, ठीक है? और स्मिता जो है वो आपके मदर की बेस्ट फ्रेंड है, तो आपकी भी बेस्ट फ्रेंड है और आपकी मदर को बहुत अफेक्शनेट है, तो वो हॉस्पिटल आती है देखने के लिए। आप उन्हें बोलते हैं स्मिता मम्मी को ना बताना नहीं कि क्या हुआ, ठीक है, उनको डर लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, जितने दिन है उनको खुशी से जीने, तो प्लीज बताना मत उनको कैंसर हुआ है या उनके पास कुछ ही दिन है, ठीक है। तो स्मिता आप जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो मदर पूछती है कि स्मिता मेरी बेटी तो मुझे बता नहीं रही कि क्या हुआ, तू बता मुझे क्या हुआ है, क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे आप?
2: नहीं बताएंगे,
1: राइट। सो सबकी लगभग यही सोच है। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाकर मदर को सच नहीं बताएंगे? ऑलमोस्ट सभी, राइट। जब आप उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आ रहे हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग गिल्टी भी महसूस करेंगे ऑब्वियसली, पर जितने भी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं क्या आप ऑनेस्ट थे? यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप ईमानदार नहीं थे वहां पर, लेकिन आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर उस मोमेंट पे आपको वो सही लगा। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, जब वो इंसिडेंट में कोई भी इवेंट होता है आपकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस, वो ट्रिगर करती है आपको, आपकी चॉइस है कि आप उसको सुनिए या फिर ना सुनिए। अगर आप उसे सुनकर काम करते हैं तो यूजली जब आप वो इवेंट ओवर हो जाता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको अंदर से गिल्ट महसूस होता है, एक लॉस ऑफ वेलबींग महसूस होता है। बस वही एक पैरामीटर है ये जानने के लिए कि आप इंटेग्रिटी में हैं या नहीं है। और किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप सब लोग रिमोटली काम करते हैं, आप इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में डिफरेंट जगहों के सेंटर्स चलाते हैं और रीड इंडिया का ऑफिस गुड़गांव में है, वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर नहीं रख सकते। मैं भी कुछ महीने पहले एक रिटेल चेन जो मेरी क्लाइंट है जिनके साथ मैं ट्रेनिंग्स करता हूं, उन दो मैं उस एडमिन रूम में पहुंचा एक ब्रेक में और वहां दो लोग आपस में बात कर रहे थे और उस पर्सन के पास, एक पर्सन के पास उसी टाइम पे स्टेशनरी का स्टॉक आया था उस महीने का, तो जो दूसरा पर्सन था सर तेरे बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं इसी में से कुछ निकाल ले बाहर मार्केट में क्यों खरीदोगे, तो ये सर नहीं नहीं गलत है ये, एंड दिस गाय सेड कौन देख रहा है, ये सर मुझे तो पता है ना गलत है। आपको पता होता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अगर आप किसी भी पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के स्पेस को अगर आप समझ लेंगे तो वो पार्टनरशिप हमेशा लंबी चलेगी। एट सम मोमेंट्स यू कैन बी डिसऑनेस्ट बट एंश्योर दैट यू आर इन इंटेग्रिटी, आप हमेशा उस इंटेग्रिटी में रहे। मेक सेंस? एंड थर्ड, एंड इसके बाद आई लैंड इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एनी पार्टनरशिप इज लिसनिंग। हमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग्स में सुना होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग क्या होती है? व्हाट इज हियरिंग? हियरिंग भी सुनना होती है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। हियरिंग मीन्स जब हम सब कुछ सुन रहे होते हैं, बाहर क्या साउंड आ रहा है, आसपास कोई शोर मच रहा है, हम सब कुछ सुन रहे हैं, वो हियरिंग है। और लिसनिंग है जब हम सारे साउंड्स को इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ एक साउंड पे फोकस करते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो है लिसनिंग। इन एनी पार्टनरशिप, इन एनी रिलेशनशिप, क्या आप अपने कोवर्कर को, क्या आप अपने पियोन को भी, क्या आप अपने बॉस को भी ट्रूली सुन रहे हैं? क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और वो एक थर्ड लेवल है पार्टनरशिप का, बिकॉज जब आप पूरी तरह से समझते हैं तो काम को गलत करने की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन अगर आप इसको एक और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप कोशिश करिए। व्हाट इफ आई आस्क यू 17 into 8? 17 into 8, 17 into 8, कितने लोग बता पाएंगे बिना सोचे? आपको याद करना पड़ रहा है, राइट। कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है, राइट? लास्ट टाइम कितने पिछले ऑलमोस्ट एक साल में साइकिल कितने लोगों ने चलाई है? बहुत कम लोगों ने, राइट? लेकिन अगर आप में से सबको यह साइकिल दे दी जाए, आप बिना सोचे समझे उसका पैडल लेके आप उसे चलाना शुरू कर देंगे, राइट? बट क्या कोई यहां आकर मुझे ये समझा सकता है कि वो जो साइकिल का बैलेंस है उसका फॉर्मूला क्या है? कोई नहीं बता पाएगा कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगता है, हमें नहीं पता। बट समवेयर किसी ना किसी तरह से वी गॉट द बैलेंस। जब भी हम जिंदगी में कोई भी चीज करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, एंड वी ट्राई एंड गेट थिंग्स, वी गेट इट फॉर लाइफ। बट जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस हर बार उसको याद करना पड़ता है। सो जब भी आप कोई पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्राई एंड गेट थिंग्स एंड यू गेट इट फॉर लाइफ, एंड दैट पार्टनरशिप विल बी फॉर इटर्निटी। एंड जब आप उस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी लीडरशिप हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह के वर्क एनवायरमेंट में हो, यू विल ऑलवेज एक्सेल। थैंक यू वेरी मच।

0: शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रेड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है, और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की, और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से ही तमाम। थैंक यू।
1: नमस्कार, आज हम मेवात की बात करने जा रहे हैं, और मेवात में जो रीड इंडिया का प्रयोग है उसका बात करने जा रहे हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेवात। मेवात इज ए लोकेलिटी वेयर मेवातीज मोस्टली मुस्लिम्स आर लिविंग। This locality is just 35 kilometers away from Gurgaon, the mega city, and 50 kilometers away from Delhi, in the most developed, growing industrial state of Haryana. And if you go to that state, people are in a pathetic conditions. Most of the truck drivers, the maximum truck drivers that we have, are from Mewat. The rate of illiteracy is very high. Women are not allowed to go to the school and do the proper schooling. The situation of male literacy is also not very prominent. There is a complete sense of ignorance. People don't know how to do, what to do. And there is an inherent history of Mewat. They were the warriors. They fought against the Mughals. And Mughals didn't take care of them. They thought that they are the warriors, they are the looters, they are the nefarious people, they are not the good people, so they were always sidelined by the Mughals. Then came the British. They were the real freedom fighters. You can find many villages in Mewat where in one mound 30-35 men were buried because they were the freedom fighters. In 1857 and also in the later phase of Indian freedom movement, if the Mewat is being properly studied, explored, if the historians are taking interest into it, then you will realize the role of Mewat in the freedom struggles. There are many people in Mewat who often call me and say, Misra Sahab, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू व्हाट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात। रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंचर्ड into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Gita Malhotra with her team went there, and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Gita Malhotra and the entire team of Reed India and the Reed Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Gita ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land, and they themselves constructed the library. Reed India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. and then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat, and they are powerful women. And the new beginning was made, and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. That was Firozpur, Jhirka, Nuh, Tavru, Punahana, Hathin, and Nagina. Now, the Hathin part is in Palwal district, and the remaining is in the Mewat district. So, before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and the experience of Read India, her innovations, and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, I remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So, Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. After presence, I have seen people stitching their vision, decision, and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, you know, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, you know, this is a new discovery that you have created. Please.
2: Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I am so thankful to you for giving this gesture to me. You know that I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. मेरा जो सोच है आप मुझे अपने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन में 2012 में ले गए मुझे 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी 2012-14 कुछ ऐसे ही है मुझे पक्का याद नहीं है बट हाँ 7 साल पहले की बात है मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी ज्वाइंट शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शी केम इन मे इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there, and Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study kare. जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है तो आई वॉज कन्विंस्ड आई विजिटेड द एरिया आई सैट विद हिम आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस द लैंड आई वॉज द ओनली वुमेन ऑल वर मैन बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area मुझे वही काम करना है, मुझे उन्हीं लोगों के साथ काम करना है. बिकॉज वन थिंग विच आई एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज आई एम अ ग्रेट ऑब्जर्वर फॉर कल्चर एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल, दे गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. फर्स्ट टाइम द वुमेन came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's, on each other's lap. And they welcomed me. They said, hum aapko दिल से स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत वेलकम है. आप हमारे लिए, हमारे बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समुदाय के लिए कुछ करिए. दैट चेंज माई माइंड 100%. आई सेड वॉट एवर चैलेंजिंग इट वुड बी, बट आई हैव सिलेक्टेड ए कम्युनिटी. नेक्स्ट वेरी डे आई कॉल्ड माई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. And he, वो इतने generous थे, मैं ये acknowledgement हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने generous थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग बनाइए, आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वाज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वाज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वाज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो डॉक्टर मिश्रा अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज मिस्टर आर एस दलाल ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ही सपोर्टेड अस अ लॉट एंड टिल टुडे ही इज सपोर्टिंग अस। तो आपने लॉन्च में
1: He's a bubbling star and energized, you know, he's an energizer. He's emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire haveli for the reed activities, you know.
2: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेंटर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए। तो दैट इज he extended to us and till now he is working towards making that Jhajjar village, Mehndipur village, the Bodha village, a beautiful village where one can go and even, you know, spend days together. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड इंडिया के जितने भी सेंटर हैं वो कम्युनिटी टूरिज्म को भी सपोर्ट करते हैं बिकॉज होम स्टेज आर वेलकम देयर बाय द कम्युनिटीज एंड वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट पीपल कम देयर एंड होम स्टे तो है ही है पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट। और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा। उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी पर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी इतना तो मैं कह सकती। और मैं वेजिटेरियन थी और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। बट व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही है क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे। तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ। और अभी डॉक्टर मिश्रा यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन।
1: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा अनुपमा। तो जो डॉक्टर अनुपमा थी शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर और शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी व्हाट यू कॉल इट MDA। और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी। शी ऑल्सो टोल्ड मी डॉक्टर मिश्रा लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर। मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का। लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर। और हम वहां गए, जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को फैला रही थी। उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे जो फोटोग्राफ मेरे पास है। तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशंस, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारी चीजों को हमने देखा। Then I realized कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है। हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे। शुरू में थोड़ा सा हुआ लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं। और हमने उनकी सारी जानकारी ली, वहां पे हर एक घर में दो चार भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे। हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं और 12 में वो बन गया था। तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट, वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता। लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? The mother was hidden inside her and the mother said, look, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
2: ओवर टू स्मिता। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। एज राइटी सेड, इट्स अ वेरी वेरी रिच कल्चर इन दिस कम्युनिटी, वेरी वेरी वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी। As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4-5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is the

0: बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया। महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहेंस किया। और कल्चरल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी, और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा। और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉरपोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था। और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया। और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए। तो ये एक ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम। जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर 1 साल का एमओयू साइन होता है, और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में। बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में, मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल, दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, कैचिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर लाइव्स वाज व्हाट रीड हैज डन। दीज आर द 3 मेजर अचीवमेंट्स वी हैव डन इन दिस एरिया। डॉक्टर मिश्रा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर व्हाट आई हैव सेड?
1: Yes, ma'am. Without any political motive, you know, Reed has gone there as an organization to work without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood. They are well respected people, well-educated people, well-cultured people, their culture glory is restored. So these the women are well-respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know. Area that is really very very great. That is
0: all I wanted to say. Memory goes back when we saw power to hai nahi to computer kaise seekhenge bacche.
1: Yes.
0: Oh, power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library, and there is no power cuts, and the children can come, enjoy it there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are their own language. Because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
2: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है। ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि अब पढ़ाई कर लो। हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या हो, कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो। उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार। तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में लिखने में, हमारा मन भी

0: गया है। फिर वो हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी कुछ ना, सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है कि ना, हर चीज में आती है। अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं, बच्चे ये है हरफ को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो,
1: नाम अपना पढ़ ले भैया, हमने इसलिए पढ़े, हम अनपढ़ थे, हमने आवाज दी भैया हम पढ़ लिख जाएंगे, तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पर करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं, बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब कर आते हैं बैंक में जाके, इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे।
0: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको, पढ़ सको, एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे। जब ये भैया पढ़ान लगे हैं यहाँ स्कूल यहाँ खोल दिए हो तो आगे पढ़ाने,
2: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
0: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए यहाँ पे देख देख के चैट में, पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें, अब हम अपने काम कर ही ले जाइए भैया बताऊ
1: सर्वे और पढ़ाओ से पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए, इसीलिए मेरा सीख लूंगी कुछ तो कुछ काम कर बैठूंगी, परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो हम करने तो जाने।
3: नाम ये सरदार पढ़ाने आवे, हम लोग हम पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए, हम बोले हम पढ़ेंगे, हम तो पहले कुछ नहीं आवे, हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले,
4: हम पता तो एनआर भी ना आवे अब तो एनआर ने भी सीख ले, अरे बेचारा आया पढ़ने सुखवीर पहला को ना भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े हम बुढ़ापे में कहा पढ़ेंगे, तो बेचारा कई बार आया फिर हम पढ़ने लग गए, कई सीखो हमने पढ़ना, हम पे अनार भी नहावे या फिर या भी सीख गई नाम भी सीख गई अपना।
1: मेरा नाम अमता है, आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ, पहले इन लोगों ने आकर हमारे गांव में सर्विस करी थी, हमने जानी क्यों कर रहे हैं, और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ के नहीं पढ़ना सीखे हैं, और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है, और हमारे गांव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है, और हम बचत पढ़ते हैं सभी और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है।
5: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी की रहने वाली, मुंह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम, हाँ अक्षर जान गई हूँ, मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
6: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के की रहने वाली हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
7: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के में रहने वाली हूँ, मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा, हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
8: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव में तारा अक्षर का स्कूल खुला है, ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें इन लोगों की बात समझ में आई और पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया, ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे, और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना लिखाना कुछ नहीं जानते थे, अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं, फार्म वार्म भर देते हैं, पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है, कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे कितने नहीं दे रहे, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते हैं।
5: अपना नाम कांति।
2: कौन से गाँव से? यहाँ
5: छाए से।
2: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है?
5: इतना फर्क है, पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें, पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
9: मेरा नाम मीना है, छांसे के रहने वाली हूँ, पहले कुछ ना बनाओ अब हम देखना पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो, हिसाब जोड़ जो 100-200 रुपया है 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
6: मेरा नाम बबीता जी है, छाए से रहने वाली हूँ। पहले कुछ नहीं आता था, अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के। इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें, लोग के सीखे बात अच्छा पढ़ा लिखना।
10: हम तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जिन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गांव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
11: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया, बिगाड़ी में मेरी ड्यूटी है, वहाँ पे मैं 3 बैच चलाता, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह से वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप बहुत खुश हैं इसमें आकर।
12: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी अमेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है, छायसा, बिघावली और स्वामी का। इसमें लगभग 90 से 100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गांवों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक गांव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
13: मैं पूरे अपने गाँव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहाँ आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से, अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे. हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मैं बात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया. I would like to show that film, Dr. Mishra, Read in Taro.
1: इस फिल्म के में जो भी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनलीनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का जो है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, तो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwars, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Nihalgarh and Sheikhpura. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, starting in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. So the funds for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching and feeding to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other REED centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwadis and the villagers to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating positive environment at the REED centers and at their homes. REED India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is creating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है, तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ECD का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है, लड़कियों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद ही BA करके BED कही हुई है, तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को कैरियर की कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने परंतु करने के बाद JBT किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन की सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पे पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के सिखाते, जिससे उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते। बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ईसीडी का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं अकेडमी भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती है और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रूपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, आठ जिला में पढ़ता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं, औरत है, जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती है, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मैं बी ए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी बदौली टोला रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली 5 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरे पापा बैंड का काम करते हैं और वे बैंड में गाना गाते हैं। मेरे से छोटा एक भाई है और एक बहन है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। एक दिन एयर इंडिया के स्टाफ मेरे गाँव में सर्वे करना आया, जहाँ इन्होंने हमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया। यहाँ आकर मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग कम्प्लीट करी। यहाँ आकर मुझमें काफी कॉन्फिडेंट भी आया और स्किल भी अच्छी हुई। पहले मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और अब मैं लोगों से कम्युनिकेट भी कर पाती हूँ। एक दिन इंडिया के स्टाफ ने मुझे जॉब के बारे में बताया और मैंने होलीचरण इंटर कॉलेज में जाकर अपना रिज्यूम लगाया और सर्टिफिकेट भी दिया। वहाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में मैं क्लियरली पास हो गई थी। होलीचरण इंटर कॉलेज में अब मैं एज अ कंप्यूटर टीचर जॉब कर रही हूँ। यहाँ मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैं अपनी सैलरी से काफी खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे काफी खुश है। मैं रीड इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है और मुझे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दी। रीड इंडिया का स्टाफ और रीड इंडिया को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
2: मेरा नाम आशा नाज है, मैं रामपुर यूपी के एक पटवाई नाम के गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैंने 2019 में अपना बीए पूरा किया था और बीए के साथ साथ मैंने स्पीकिंग, एंटरटेनर्स, लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली है और क्राफ्टिंग एंड ड्राइंग मेरी स्पेशलिटी है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मेरे पापा, मम्मा, मेरे 2 भाई। मेरे पापा की टायर सेलिंग की दुकान है। मेरे घर में मेरे पापा और मेरे बड़े भाई कमाते हैं, जिसमें मेरा छोटा भाई और मैं पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मैं एक पटवाई गाँव से हूँ जहाँ पे पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन मेरा था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने ड्रीम्स खुद से पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, जिसके लिए मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता जो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे। फिर 2017 में मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में रीड इंडिया नाम से एक सेंटर खुल रहा है जहाँ पे तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं ओपनिंग में आई, मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे कंप्यूटर और लाइब्रेरी में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी। मेरी फैमिली वालों को रीड स्टाफ पे बहुत भरोसा हो गया था। मैं अपना ज्यादातर टाइम सेंटर पर ही बिताया करती थी। फिर मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में ही रीड इंडिया की तरफ से एक स्कूल भी खुल रहा है जहां पर टीचर की जरूरत है। फिर मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया। वहां पे 15-20 लड़कियों का इंटरव्यू हुआ जिसमें से थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच रीड इंडिया मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच।
3: आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा चौहान है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, मैंने एमए बीएड किया है, मैं रामपुर ज्वाला नगर में रहती हूँ। मैंने बहुत सारे पर्सनल कोर्स किए हैं जैसे कंप्यूटर, सिलाई, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया है और कुछ मेरी हॉबीज भी हैं जैसे बुक रीडिंग करना, डांस करना, क्राफ्टिंग। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, 2 बेटे, मेरे पिताजी।

गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो अब रिटायर्ड हैं, और मेरे हस्बैंड एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर हैं, जो कोरोना की वजह से उनकी जॉब छूट गई, तो मैं ही एकमात्र महिला हूं अपने परिवार में कमाने के लिए, और मेरे फैमिली की कंडीशन काफी बेटर नहीं है, और सब कुछ मेरी जॉब पे ही टिका हुआ है। जैसे मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पता चला कि आगापुर में एक लाइब्रेरी है, तो वहां मैं पढ़ने के लिए जाती थी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट वहां से पढ़ती थी, अपनी स्टडी जारी रखती थी। तो वहां के स्टाफ ने मुझे बताया कि स्कूल ओपन हो रहा है, वहां पर रिक्वायरमेंट है टीचर की, मैंने अपना रिज्यूम लगाया, मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। मैंने वहां जाकर काफी सारे कोर्स करे, जैसे सिलाई, कंप्यूटर, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया। मोस्टली एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मेंटेलिटी कैसी होती है बच्चों की, पेरेंट्स को कैसे डील किया जाता है, एक्टिविटी द्वारा बच्चों को कैसे डील करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उन बच्चों को कैसे खेल के द्वारा पढ़ाएं, शौक उनके कैसे उनकी मेंटेलिटी को समझें, उनकी उनकी बातों को समझें, ये सब मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन से सीखा है। और मेरे अब आगे ही लक्ष्य है कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, और इसके लिए मुझे रीड वाले भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू रीड इंडिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।

0: अभिता और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर से छोटे से मोहल्ले कलकत्त के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए हैं, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैं अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, तबरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद यहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी, घर के खुद के पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था बार बार, ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ फर्स्ट आई, बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई, घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे रेड नौकर जो है अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया और रेड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल। तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रेड इंडिया सेंटर चलाया। और मेरे इस सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़की से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे बाद में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने देने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैर पर खड़ी हुई है। उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा भी रही।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
1: जी मैम,
0: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अमिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अमिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ, मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे, मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई
2: कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई फरा के जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है, तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए, तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है, तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं, तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी। और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई, और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहाँ पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं, जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150-150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों, लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
0: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है, रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोले जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं, और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया, अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसिस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से, और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी। क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर, एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली, जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ।
2: थैंक
0: अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: यू मैम। मैम ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली को सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने

0: कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी, और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़कियां ऐसी हैं जिनको कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़कियां ऐसी हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद खुद उठा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा, जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
0: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है। स्विमिंग ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीट में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं। उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का, तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंग बूट स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम

0: भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंग बूट स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेस बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेस बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली, मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं इस पे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे, अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी वो चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20 20 30 30 चुन्नी बांटी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000 1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग फिर जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
0: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में एक ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है, उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां
1: वेरी गुड, बहुत
0: कर रही
1: अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं
0: हैं।
1: बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो। प्लाजो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आविदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया
0: मैम,
1: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
0: पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेट वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस ये कहती है मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट करारे और पटियाला शलवार, ट्यूलिप शलवार, धोती शलवार, और यही सारा कुछ साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
0: जी
1: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी, कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं, उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना
0: टेक्नोलॉजी
1: चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए। वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आके बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अभिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
0: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीड के जरिए हूँ और मैं रीड के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीड इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीड इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीड इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ। और अपने आप पूरे करूं, अपने और अपने परिवार को।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अबिदा। मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है। और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं। और उस फलों का जो जो उसका फायदा है, वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
3: नमस्ते रीड इंडिया, मेरा नाम रश्मि ओझा है, मेरी एज 20 साल है। मैं बमरगढ़ गांव में रहती हूँ। मेरी एजुकेशन BA प्लस RACIT प्लस PTT का एग्ज़ाम भी दिया है। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दे सकूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना और उनको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी किसान और प्लस सिलाई भी का कार्य भी करते हैं। मम्मी घर का काम व मजदूरी भी करती हैं। एक बड़ी दीदी हैं जो सिलाई का कार्य करके हमारे घर में घर के खर्चों में सहयोग करती हैं। इसी से ही हमारी इनकम होती है। जब विश्वजीत सर के द्वारा मुझे पता चला कि रीड इंडिया सेंटर पर महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो मैंने उसमें जाके भाग लिया और नर्स सिटीजन ट्रेनिंग का फॉर्म भरा। उसमें हमें विश्वजीत सर ने 3 मंथ की ट्रेनिंग करवाई, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे बच्चों को किस माध्यम से पढ़ाया जाता है, उनको कम से कम समय में किस माध्यम से समझाया व पढ़ाया जाए, सबके बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों को लेसन प्लान के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से और पजल्स के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। यह सब कुछ हमने ट्रेनिंग के माध्यम से जाना। इस ट्रेनिंग के बाद मुझ में एक नया परिवर्तन आया, क्योंकि मैं पहले किसी के सामने ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, ना अपनी बात रख पाती थी, और आज मैं मंच पर अपनी बात बोल भी सकती हूँ और समझा भी सकती हूँ। मैं रीड इंडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस ट्रेनिंग करने का अवसर प्रदान किया।
4: नमस्ते रीड इंडिया, मेरा नाम गुंजन प्रजापत है। मैं बारा जिले के कैलवाड़ा कस्बे से हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैंने नर्सिंग और ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके अलावा मुझे सिंगिंग, एक्टिंग, कॉमेडी करना अच्छा लगता है। हमारे परिवार में हम दो लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी। मेरी मम्मी की मंथली इनकम 10 से 15 हज़ार रुपये हो जाती है। मैं रीड इंडिया से बचपन से जुड़ी हूँ और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं रीड इंडिया से, लेकिन मैंने हेल्थ वर्कर की जो ट्रेनिंग है वो ली थी, जिसमें मैंने पूरे सेशंस अटेंड किए। निधि मैम ने जैसा जैसा समझाया वैसा फॉलो किया। उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट आया उस सेशंस में, तो मैंने उसके बाद नर्सिंग में अप्लाई किया फॉर्म, और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। निधि मैम के जो नोट्स थे, जो उन्होंने जैसा बताया था, उसको मैंने पढ़ा और मैंने इससे नर्सिंग में कॉलेज भी टॉप किया। रीड इंडिया से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत डेवलप हुआ। मुझे पहले मैं बोलने में झिझकती थी, लेकिन अब मैं अच्छे से बोल सकती हूँ, मेरी बात सबके सामने रख सकती हूँ। इस वजह से मैंने स्टेट लेवल पे एक कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, जिसमें मैं पूरे राजस्थान में थर्ड आई थी। और रीड इंडिया से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रीड इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरा सपना यही है कि मैं आगे चल के एक अनाथ आश्रम खोलूं, जिसमें मैं लोगों को फ्री में उनकी कुछ मदद कर सकूं। जैसे रीड इंडिया ने हमें इतना कुछ प्रोवाइड किया, ऐसे मैं भी आगे चल के जो जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करवाना चाहती हूं, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। थैंक यू रीड इंडिया।
5: मेरा नाम जूली खान है, मैं 19 साल की हूँ और मैं भवरगढ़ कस्बे में रहने वाली हूँ। मैं अभी बीए टीचर्स ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मुझे पढ़ाई का भी शौक है, और मैं मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छा अच्छा खाना खाने का भी शौक है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जिसमें हमारे 15 से 16 सदस्य हैं, और उसमें मेरे पापा और मेरे चाचू खेती का काम करते हैं। हमारे बस खेती बाड़ी की जाती है, इसके अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं है, जिसमें हमारे मंथली 8 से 10 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है। हम जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं अगर अपने घर वालों को कुछ पैसा कमा के दूंगी, उनकी हेल्प करूँगी, तो उससे वो फर्क पड़ेगा कि छोटे भी इससे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने रीड इंडिया में सुना रिया मैम से कि उसमें बहुत सारी कोर्स और ट्रेनिंग होती है। मेरा इंटरेस्ट ब्यूटी वेलबिंग में था, तो मैंने उसमें नाम लिखाया। हमने वहां पर पार्लर की चीजें सीखी और पार्लर का कोर्स सीखा, और मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें मैं घर पे पार्लर का काम करती हूँ, जिसमें मेरी 3 से 4 हज़ार रुपए इनकम हो जाती है। और उसमें 3 से 4 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है, तो खुद का खर्चा खुद निकाल लेती हूँ। इसके लिए मुझे अपने घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें मैं अपने घर वालों का सपोर्ट भी कर देती हूँ। रीड इंडिया ज्वाइन करने के बाद मुझ में काफ़ी बदलाव आया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और तर्क वितर्क करने की क्षमता भी बढ़ी, और 10 इंसानों के सामने अपनी बात रखने की भी क्षमता बढ़ी। थैंक यू रीड इंडिया।
6: नमस्ते रीड इंडिया, मेरा नाम पूजा गुजर है, मैं राजस्थान के बारा जिले के घड़ावली गांव की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है और मैं बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ, और मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा है। मैं कबड्डी कुश्ती की प्लेयर हूँ, मैंने 5 बार स्टेट खेल चुकी हूँ कबड्डी में, और मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल चुका है। और मैं एक जॉइंट फैमिली से मैं रहती हूँ, मेरी फैमिली में 9 से 10 फैमिली मेंबर है, जिसमें मैं हम 6 बहन है और एक छोटा भाई है। हमारा व्यवसाय पशुपालन का है, और हमारे फैमिली में सिर्फ हमारे पापा जी कमाने वाले हैं, उससे हमारे ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती, 5 से 6 हज़ार रुपये इनकम हो पाती है, जिससे हमारा घर खर्चा तक नहीं चल पाता। इसलिए मैं अपने पापा जी कुछ काम करके हेल्प करना चाहती हूँ, तो तरह मेरी एक दिन मुलाकात मीना मैम नेम से हुई, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया के बारे में बताया। तो रीड इंडिया सेंटर से फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से ली। उसके बाद मैं एक RSIT कोर्स कर रही हूँ ताकि मैं राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ। और अब मैं RSIT कोर्स में बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है और रेड इंडिया सेंटर पे आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ा है। तो थैंक्स फॉर रेड इंडिया।
7: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं मोहम्मदपुर से आई हूँ। आज मैं आपको पिता के ऊपर शायरी सुनाऊंगी। वो जमी मेरा वो ही आसमान है, वो जमी मेरा वो ही आसमान है, वो खुदा मेरा वो ही भगवान है। क्यों मैं जाऊं कहीं उसे छोड़ के, पापा के कदमों में सारा जहान है। मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ईसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। खुशियों से भरा हर पल होता है, जिंदगी में सुनहरा हर कल होता है। मिलती है कामयाबी उनकी जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। थैंक यू।
8: गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज पूजा राजपूत। मैं आपको बेटी बचाओ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। कलियां जो तोड़ी तुमने, तो फूल कहाँ से लाओगे, बेटी की हत्या करके तुम बहू कहाँ से लाओगे। माँ धरती पर आने दो, उनको भी लहराने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ गई वह भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो। लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर आंगन दमकाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो, अब जीवन ज्योत जलाने दो। थैंक यू।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలిగుట్ట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకి చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడింగ్.
1: మా ఊరు పేరు రంగంపల్లి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడకనాథంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడకనాథం పక్కనే కడతెట్లపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా మంది. రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షామి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such thoughts. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. जी हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया. हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक और बेबी मेकर और बहुत से सलवार कुर्ता ब्लाउज पेटी को बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर सेमराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य हैं, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमलपाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं, अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम बिंदेश सिंह है। हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर, और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: सुन है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदार है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके, और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीखकर हम आगे में रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसी लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे, जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक मतलब शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था, जो चल रहा है इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है, जिससे मतलब हमारी जो श्वास नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके चाहे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट एड इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। साथ ही क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर किडनी इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेशन थी, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
15: मैं निर्मला पांचाल बोल रही हूँ और गांव भवरगढ़ की रहने वाली हूँ। और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान रेड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई गई थी उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टेली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टेली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवाएं से जो करे वह प्राप्त किया जाता है उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल धरस्य अधरस्य। धरस्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वो धरस्य संपत्ति होती है। अधरस्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अधरस्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
16: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रेड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
17: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय, परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
18: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मलर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सीखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
19: हेलो नमस्कार रीड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परानिया की रहने वाली हूँ, और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ, और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रीड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
20: रीड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी थी, और ऑनलाइन

0: चाहिए, उसने हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं बेचते, हम इसमें सता रहे हैं। और भी है बहुत सारे, जो भी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो टेलिंग में, जो उसमें भी हम बढ़िया तरह से सीख गए। हमारे मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें स्टोर पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं के भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। टेलिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
1: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, ओटीपी, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी, मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी, मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारी ओटीपी, ये सब मैं उनको भी इन सब करके जागरूक करवाऊंगी।
2: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक बीएससी किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचें के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। ये लिंक से कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम हमें भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें हैशटैग, @ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
3: मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ, और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, और इस पे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी, और इनमें वो शहद, घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम, ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था, और इसको तीन तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के सेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में, और रीड इंडिया में यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था, और इसमें मीना दीदी भी थी, और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट बोयल तहसील सावर डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी, जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना

0: प्रोडक्ट शेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे एप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना, ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन, अपना मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें, और ओटीपी वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
1: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रेड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। इसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है, और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रेड इंडिया।
2: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया, और अब पेंटिंग बनाने के लिए बेबी पेंटिंग ये बना ली मैंने, और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाला बाद वो प्लाजो।
3: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
2: हाँ, दो बार ले गए थे।
3: दो बार आप लेके गए।
4: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ, और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान भी नहीं थी, अब ये तो बहुत महंगे महंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है बिनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ से सीखने लगी, और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार बना देती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान, मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है, और कोई भी मतलब बुरा उरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम मिल रहा था, और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था, और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिस पर मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
5: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनू सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है, पहले मुझे कुछ नहीं आता था, और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं, और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार, प्लाजो, पैंट, बहुत सारे
3: ब्लाउज। खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
5: कैंची भी चलाने नहीं आती थी।
3: अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
5: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
3: हाँ,
5: और फिर अपने छोटी से शॉप,
3: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
6: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ, और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे, मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी, और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत रीड इंडिया की तरफ से। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए। बड़े खुशी से आते हैं बच्चे, कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे। तो बच्चे, गरीब बच्चे नहीं सीख पाते, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने,
3: लगन है सीखने की।
7: उनको मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने ऑनलाइन सेविंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, अब मैं इसके बारे में सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ और जानकारियां मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
8: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज, ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेडियो टेस्ट सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने रखता है। हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे FM रेडियोज को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रेडियो सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं, बट कभी जाना नहीं। जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ, ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
9: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
10: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। यह कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए, और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में कॉम्पिटिशन होते हैं वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
11: मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है, इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
12: मेरा नाम रंजिता जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ, और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा, और मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ, और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना चाहती हूँ।
13: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
14: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं वहाँ रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है, और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी, और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी बाहर के भी, और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
15: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कम्प्लीट हो जाएगी, और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
16: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गाँव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग, एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिजाइन, बाजू, सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
17: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है, मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
18: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिजाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिजाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए

0: भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रीड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
1: मेरा नाम नीनू है। मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी जो मेरी इसके पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ सावाद मोहम्मद को। थैंक यू सो मच।
2: मेरा नाम किरण राजपूत है। मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रेड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
3: हेलो, मेरा नाम आशु है। मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
4: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी। मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया। हर्बल प्रोडक्ट जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया। मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सबने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रेड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।
5: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था, तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला, तो मैं रेड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
6: हाय, माझं नाव सामी आहे। मी जोगेश्वर आहे। माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते। त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
7: हाय, मेरा नाम है रेशमा अभिरव जोगिनकर। मैंने 12वीं की हूँ साइंस से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ, बेसिक टेलर कोर्स का। और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कॉटन। ब्लाउज फ्रॉक और पंजाबी सूट. थैंक यू.
8: हाय, माझे नाव अक्षता अशोक कांबळे. मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे. त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जात आहे आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते. थँक्यू.
9: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडवीलकर. माझं शिक्षण टीवाय बी ए मधून झालेलं आहे. मी इथे रेड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे. त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकले आहे. थँक्यू. रीड इंडिया, माझं नाव नौशीन वजीर जोगिलकर. माझा शिक्षण 12वी. मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास. 3 महिन्याचा कोर्स आहे. त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेलं आहे. हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत.
10: आपकी उम्र
11: 22.
10: रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
11: कंप्यूटर के पार्लर की.
10: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं.
11: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं.
10: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
11: कंप्यूटर ही कोचिंग दे रही है और कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब कर रही है
10: यहाँ पे. आपका नाम क्या है?
11: स्वाति.
10: आपकी उम्र?
11: 24.
10: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
11: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का.
10: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
11: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
10: बेसिक सीखा आपने. और पार्लर में?
11: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग.
10: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
11: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम हो रही है.
10: और पार्लर का?
11: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है.
10: अच्छा. जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
11: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया.
10: गुड. आप आगे क्या करना चाहती हैं?
11: मैम पार्लर में करना है, पार्लर खोलना है.
10: अपना पार्लर खोलना है?
11: जी.
10: अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
12: जी. माझे नाव आदिती संजय वाळंदकर. माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली. रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो.
13: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे ताठे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही ताठे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत.
14: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर. माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरा मॅडम रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
15: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ. वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे इथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
16: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
17: मेरा नाम लक्षा है, मैं दी इंडिया पटवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पटवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है. अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस सीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं. इस सीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ. उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ.
18: मेरा नाम निशा है, मैं पटवाई रेड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना यह है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ. मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद.
19: मेरी एज 21 है, मैं लास्ट ग्रेड पर रहती हूँ. मैं रेड इंडिया सेंटर एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है. मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पैंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है. और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना. और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर. और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ. और मैं पहले मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ. पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ. मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है.
20: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है. मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ. या कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है. जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैं रेड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ.
21: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 इयर्स है. और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा. और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी. मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं. तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ. इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी. फिर मैंने मुझे यहाँ पर रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई. मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है. इसके लिए मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है. और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है. पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी. और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ. मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है. पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल. यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके. और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है. इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से कम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती. और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही. मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ. और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ इस पर. उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ. और मेरे डिडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरे डिडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच डिडिया सेंटर.

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र, मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी सवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: surgió Me.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे उस क्षेत्र की जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाला है, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई के उद्घाटन के बाद ये विषय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: सुबिमल जी, हमारे कई श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और आज की डिजिटल दुनिया में इनका इतना महत्व क्यों है?
3: देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये आज के डेट में एक एसेंशियल ड्राइवर बन गए कि स्मार्टफोन से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे हैं जिस तरीका से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आगे आ रहा है, तो हर काम में आज में ये चिप्स की महत्व इतने बढ़ गए हैं, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ गए हैं। और इसके जो बेस होते हैं ये होते हैं कि ये सिलिकॉन की एकदम पतला सा स्लाइसेस होते हैं जिसको वेफर्स कहा जाता है, और ये स्लाइस ये प्यूरिफाइड क्वार्ट्ज से बनता है और इसके बाद फैब्रिकेशन के माध्यम से ये जितने जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो सर्किट्स होते हैं उसको रेगुलरली एच किया जाता है ये इसी वेफर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। और हम सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो फ्लैट है, लेकिन एक कॉमन चिप जो हमारे सामने होते हैं जो एक मिलीमीटर थिकनेस जिसके होते हैं इसमें करीब 30 माइक्रोस्कोपिक लेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने दिखने में छोटा सा और आसान सा लगता है उसका अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। और इसी से हर तरीका की आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स और हमारे घर के किचन के भी इक्विपमेंट्स को ये चिप्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं और इससे काम करते हैं वो।
2: जी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में एक नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उसकी परिकल्पना से निर्माण तक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रातिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली, कुछ कंपनियों से बातचीत भी की और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों से साझेदारी भी हो रही है।
4: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।
2: सुविमल जी, पीएम ने अभी जिस साझेदारी की बात की है, कुछ देशों के नाम लिए उन्होंने, उससे सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत को किस तरह का लाभ होगा उस साझेदारी से?
3: देखिए, प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शिता है, इसीलिए उन्होंने उसी समय 20 साल पहले ये सोचा था कि किस तरीका से ये चिप्स की महत्व रहेगा, और आज जब देश में इनकी सरकार ने 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रखे हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में है, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कई सारे कंपनीज कई सारे देशों से इसमें जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि भारत, जापान, थाईलैंड ये सीजी सेमी की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो अभी जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक पहलू था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाए। तो मैं समझता हूं कि ये जो साझेदारी है ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग देशों की, इससे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होते हैं, देखिए हम थे तो काफी देर से शुरू किए हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में जितने सारे चीज है, जैसे लिथोग्राफी, इसके साथ सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से ये चिप्स की फैब्रिकेशन होते हैं, और इसके बाद जो पैकेजिंग होते हैं उसमें और किसी कंपनी की और किसी देश की कैपेबिलिटीज होते हैं, तो ये जो होल ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जो प्रयास है, उसमें हमें कोऑपरेशन के माध्यम से चलना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसमें लगे हुए हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ महीना पहले आपने देखा था कि नेदरलैंड्स की कंपनी ASML, जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये चिप्स बनाने के लिए, उन्होंने भी टाटा के साथ एग्रीमेंट की कि ये हमारे साथ इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी देंगे। तो मुझे लगता है कि यही माध्यम से ये कोऑपरेशन जो है, ये साझेदारी, ये कई सारे देशों का बीच में भारत के साथ चलेगा, और ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है कि आप किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सस्टेन करे, और उसको सिक्योरिटी की तरफ से भी अगर देखा जाए, उसके क्रिटिकलिटी की तरफ से भी देखा जाए, तो ये पार्टनरशिप में भारत एक देश बन रहा है पूरे दुनिया के सामने कि हम भी इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़ गए।
2: प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सेबी कंडक्टर का उत्पादन हमारे देश को कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है।
4: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ, और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
2: सुविमल जी, क्या लगता है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इस परिवर्तन के लिए देश को किन नीतिगत और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता होगी?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम समय में भारत ये जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन होते हैं एडवांस फैब्रिकेशन की तरह, उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि अब हम इस वक्त सीजी सेमी ओसेट की बात कर रहा है सनाट गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल इनॉग्रेट किया, लेकिन इसके अलावा एक टाटा का प्लांट भी ओसेट की आसाम की जगी रोड में, इसमें भी काम हो रहा है, और इस साल के अंत तक इसका भी चिप प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री जिस अप्रोच से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिशा दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी और फंडिंग की तरफ से भी काफी अच्छा स्केलिंग अप हुआ है। अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया था कुछ महीना पहले, और जिसमें से हमारी जो 2026-27 की बजट में 8,000 करोड़ रुपया की बात आई थी ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, तो ये मुझे लगता है कि पॉलिसी की सपोर्ट, जितने सेमीकंडक्टर सेटअप्स आए उसमें और पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके से सरकार की तरफ से दिया जाए, और फंडिंग अवेलेबल रहे चाहे सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, बहुत सारे संस्था इस और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आज ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने आप खुद इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इकोसिस्टम जो शुरुआत में एक क्रिएशन की तरफ थे, आज वो कंसोलिडेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें से ये आईएसएम 2.0 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आपके महत्व दिया गया है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी, प्लस एक सोवरेन चिप आईपी की जो प्रयास हो रही है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डिजाइन टैलेंट हमारे देश में है, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिंक्स, ये सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो चिप्स में काम कर रहे हैं ग्लोबली, उनकी आरएनडी सेंटर्स हमारा देश में, जैसे इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और इस सब को देखते हुए नीति आयोग के जो 10 साल के एक रोड मैप रखा गया है, 120 से 150 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हमारा 2035 होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिसी सपोर्ट जिस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री का खुद का इस क्षेत्र को पर नजर है, और इसके साथ साथ जो फंडिंग अवेलेबिलिटी हो रहा है, ये पूरे वैल्यू चेन में मुझे लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं, तो ये सस्टेन तरीका से ये सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में रहना चाहिए।
2: जी, आपने जैसे बताया कि ये चिप डिजाइन में भारतीय प्रतिभाएं काफी समय से जानी जाती हैं, विख्यात हैं, और अब इसके निर्माण में भी कदम बढ़ाने से हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें कोई स्थान मिल सकता है। अगर आगे हम देखें, तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है भारत में।
3: या जरूर, सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा कहा गया है कि आप इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, लेकिन अगर देर से भी आए, लेकिन स्टेडीली जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हाथ दिए है, जिस तरीके से इसको डिफ्यूजन की तरह सारे देश में लेके गए, और जो डिजाइन की तरफ में जो हमारा एक प्रयास रहा है, अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी एक गोल दिया गया है कि 100 से ज्यादा एडवांस डिजाइन आईपीस इस देश में अगले कुछ साल में करना है, तो मुझे लगता है ये जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च जापान और ईयू के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्षेत्र में बहुत मैं समझता हूं कि चेंजेस आएंगे बड़े कम समय में, क्योंकि इस पर फोकस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी बात रह जाती है कि हमारे जो स्किलिंग है इस देश में, और हम किस तरीके से ज्यादा वो ट्रेन मैन पावर उसी स्किल सेट के हिसाब से हम प्रयास करें, और उसमें भी कई सारे संस्था आज कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो यंग फोर्स है, जो अपने हो सकता है पढ़ाई दूसरा क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन इसमें जो स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनको दे, और वो भी एम्प्लॉयबल रहे ये सारे प्रयास में। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच और होल ऑफ द सेक्टर अप्रोच से जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हमारी एक अर्ली स्टेज एफोर्ट बहुत अच्छे रहे, और उससे कंसोलिडेट करते करते आके हम इस क्षेत्र में अपना नेसेसिटी के अलावा भी ग्लोबली हम एक सिक्योर सप्लायर भी चिप्स के लिए बन सकता है।
2: जी, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यदि हम सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश और नवाचार करते रहेंगे, सुविमल जी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को सरल और सारगर्भित ढंग से आपने समझाया, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
0: सुर्खियों में
5: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
6: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
5: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
6: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
5: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
6: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
5: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
7: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
8: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
7: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है, वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहां कहां किस स्तर पर दिखेगा।
8: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
7: जी,
8: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है? तो ये जो

0: बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं, उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं, कि जहां पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें, ये पांच खास बातें हैं जो वीवीजी राम जी को एक नए स्वरूप देती है और जो कि आज से लागू हुआ।
1: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल यह है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
0: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहां पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जीओएस स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है, अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें यह समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहां पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया, इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
0: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहां पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रूपये थी, अब वो 327.40 रूपये है। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का और राज्यवार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 379 रुपए है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो

0: 182 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, दो तिहाई आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास, इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
0: यहीं पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहां पे है कि नहीं, हमारे लिए यहां पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं। अब आपने कहा कि यहां पे जरूरत नहीं है, फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहां पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है। तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पे बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
1: यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
0: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए, ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जाकर के उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर बीवीजी रामजी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक, जिसको कहते हैं ना, ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
1: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, समय के हिसाब से अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
1: हम पीछे न रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, संगीतम मूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था, तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई, छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे, लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया, तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था, और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है, उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है। मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: धन्यवाद सोनू जी।
1: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
2: सोनू जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है, और गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है, और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फोसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया इस बैठक के बाद।
1: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: गाइडेड बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इंडिया सीक्स टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स कोऑपरेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम्स दैट आर रेसिलियंट फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड environmentally sustainable and people-centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of Sarvesham Urjam, that is, energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है, और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
2: सोनू जी देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल, छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है। एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है। और खास करके जो आपने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है अप जाती है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है। स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो स्टोरेज की, कि भाई सन चला गया विंड चली गई उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही बट इसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
1: जी, सो बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
2: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनिए हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की, उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है, और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
2: देखिए, सोच नहीं है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं काम। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं काम। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेन Z जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना, इसको यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार हैं, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व हैं या ऑटो रिक्शाज वगैरह हैं, सब सीएनजी पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है, और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना मतलब ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट थी, उससे बढ़कर आज वो 154 गीगावाट से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
2: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 गीगावाट से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है। और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग फिर कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है डीपीआई, जो हमारा पेमेंट सिस्टम, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है, और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद समझे।
0: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: CIBC सुर्खियों में स्वच्छ देश के लिए अनमोल संदेश सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू पद्मश्री 2026।

0: అవునా ఆయన పాంచ్ ఛే సౌ సాల్ పహలే ఎన్వైరన్మెంట్ కో సాఫ్ రఖనే కే లియే బోలా థా జబ్ పవన్ గురు పానీ పితా మాతా తర్త మహత్ అప్నీ మాతా పర్ కుచ్ గందగీ ఫహలే తో సబ్సే బురా ఇన్సాన్ హమ్సే కోయీ నహీ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ
1: ਯੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ DIG ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸੜਕੋ ਕੀ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ 6 जून 1938 को पंजाब के संगरूर जिले के एक फौजी परिवार में जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू को विरासत में मिले थे देश प्रेम और अनुशासन। एक मेधावी छात्र रहे इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया। ये जहाँ भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते।
2: कोई शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पीपी के ऐसे ही फेंक देते थे। यूजुअली उनको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, भाई यहाँ पे क्यों रखा है। दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है।
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंदरजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है। उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया।
0: धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई। कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम। अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर तो बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाना याद रह गया।
1: एक रिटायर्ड DIG को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा। किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया।
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंकते हैं। अब हमें लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं तो हम इधर फेंकते नहीं।
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया। पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझकर करते रहे हैं।
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क, ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाए इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें।
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है या व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा है। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम।
1: सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
3: मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रेड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से। तमाम थैंक यू।
4: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर IK धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
5: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है। जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
4: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
5: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फैटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में।
4: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
5: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
4: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
5: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
4: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
5: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त, क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं, तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें, उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं क्योंकि हमने रेडियो में सुना, हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मजर। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नाउ स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें, और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
4: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
5: ये बिल्कुल کنسرن ہے, ایک تو بریسٹ کینسر کی وجہ سے کنسرن ہے اور دوسرا بیبی کے لیے بھی کنسرن ہے کہ دا بیبی ڈزنٹ گیٹ دا مدرز ملک, ہی از ناٹ گیٹنگ دا بیسٹ نیوٹریشن اور شی از ناٹ گیٹنگ دا بیسٹ نیوٹریشن, سو دونوں طرف سے کنسرن ہے.
4: ڈاکٹر دھون, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور بریسٹ کینسر کو لے کر اتنی ساری جانکاری آپ نے ہمارے لسنرز کو دی, ہمیں دی, آپ کا بہت بہت دھنیواد. لیکن میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ ہمارے لسنرز کو اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے.
5: سب سے اچھا سسٹم تو یہی ہے کہ اپنا لائف سٹائل اچھا رکھیں. لائف سٹائل میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ٹوبیکو کا استعمال یا سگریٹ کے رستے یا تمباکو کھانے کے رستے یا نسوار رکھنے ناک میں ڈالنے کے رستے, یہ تو بالکل بند کرنا چاہیے, کیونکہ نہ ہی یہ کئی جگہ کینسر کا روگ کرتا ہے. باقی اور لائف سٹائل, اوور ویٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کینسر کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے, اور خاص کر بریسٹ کینسر کے لیے مہیلاؤں کو یہی ایڈوائز ہوگی کہ دے شوڈ گیٹ دیئر چلڈرن ارلی ان لائف, دے شوڈ بریسٹ فیڈ دیم فار اے ایئر, ایئر اینڈ ہاف اور ٹو ایئرز, اینڈ دیٹ ول بی اے بگ بونس, اینڈ دے شوڈ فیل دیئر بریسٹ ونس اے منتھ, اے ویک اور 10 days آفٹر دیئر پیریڈز, اینڈ اف دے نوٹس اینی تھنگ رانگ, کچھ غلط ملے تو فوراً اپنے کنسلٹیشن کریں.
6: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम. आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम.

0: ना इसी का नाम
1: इससे क्या हुआ है?
0: है।
1: तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
0: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है। एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
0: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
1: अच्छा,
0: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर यह रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रूमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आप आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस,

0: रिमेटॉइड अर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
1: कोकिला, अर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
2: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
1: बाय।

0: लोग एवरी डे उनका ध्यान तो जाता है टीवी की वजह से, मतलब दो व्यक्ति हर तीसरे मिनट टीबी के रोग के कारण मारे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा टीबी फैला हुआ है, तो दवाइयों की उपलब्धता की समस्या नहीं है, समस्या ये है कि मरीज कई बार ये दवाई समझता है कि मुझे इन्फेक्शन थी, 1-2 महीने में मुझे आराम आ गया, मुझे आगे दवा की जरूरत नहीं है, वो दवाई बंद कर देता है, और बंद करने की वजह से इन्फेक्शन 3-4 महीने में दोबारा लौट के अधिक मात्रा में और खतरनाक रूप से सामने आ जाता है। टीबी की इस समय सबसे ज्यादा समस्या है कि हमारे को कम्युनिटी तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करें और लग के करें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल इन्फेक्शन है।
1: डॉक्टर साहब, किस किस तरह की टीबी होती है और उनके इलाज में क्या कोई खास डिफरेंस है क्या?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की, चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या 1 साल का चाहिए, परंतु दवाइयां सेम रहती हैं। और डॉट्स के तहत ज्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
1: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को, यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
0: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं, और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट हमने पूरे साल मेहनत करके अक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
1: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
0: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं, और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, और पेशेंट्स को वहां पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है, और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था। तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
0: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयाँ 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे। मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयाँ आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सैनिटोरियम का इलाज किया जाता था, ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में, पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए, और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं, और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है। सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके, और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
1: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या ये सही है?
0: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है। अगर आप स्वस्थ वातावरण में, ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी, जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं। हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
1: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
1: अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
2: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
1: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
2: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
1: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
2: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
1: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
3: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
4: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
5: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
4: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है।
3: ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है।
4: एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
2: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओह, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
2: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
2: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
3: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
6: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
3: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाँव न चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीज यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक सी आदमी को वॉट्स हैं, तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है, उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा, जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए, तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलेनिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
2: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाई एस आर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा, हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया।
1: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मिरेकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए। और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
0: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तड़का सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को, जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ, उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
2: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ।

0: रो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले।
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायिकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

घाट पर, जहां हम आपको बताते हैं प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों के फायदों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी औषधीय पौधे की जो देखने में सुंदर तो है ही, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी कमाल के हैं। हम बात कर रहे हैं कैथारेंस रोजियस यानी सदाबहार के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और उपयोग। दोस्तों जानते हैं कैथारेंथस रोजियस क्या है। व्हाट इज कैथारेंथस रोजियस? दोस्तों कैथारेंथस रोजियस, जिसे हम आम भाषा में सदाबहार कहते हैं, एक छोटा सा झाड़ीदार पौधा है जिसकी फूल गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग में खिलते हैं। ये मुख्य रूप से मेडागास्कर का मूल निवासी है, लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर में उगाया जाता है। अब जानते हैं आयुर्वेद और औषधीय उपयोग या मेडिसिनल यूजेज इन आयुर्वेदा। दोस्तों सदाबहार सिर्फ सजावटी पौधा ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते, फूल और जड़ें कई बीमारियों के इलाज में काम आती है। अब जानते हैं स्वास्थ्य लाभ या हेल्थ बेनिफिट। सदाबहार की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसे पानी में उबालकर पीने से डायबिटीज पेशेंट्स को फायदा होता है। कैंसर के इलाज में सहायक, हेल्प्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन नामक यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस पौधे की पत्तियों को उबालकर पीने से आपको लाभ हो सकता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। त्वचा रोगों में लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर स्किन डिजीजेस। सदाबहार के पत्तों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाने से मुहासे, खुजली और फंगल इन्फेक्शन में राहत मिलती है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक स्किन ट्रीटमेंट है। घाव भरने में मदद करता है, हेल्प्स इन वूंड हीलिंग। इस पौधे का रस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। अब जानते हैं सावधानियां, प्रिकॉशंस। दोस्तों सदाबहार का उपयोग औषधीय रूप से करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसे अधिक मात्रा में न लें क्योंकि यह विषैला भी हो सकता है। कोई भी घरेलू उपचार अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके फूल गुलाबी, लाल, सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। कैथारेंथस रोजियस के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। कैथारेंथस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है जिसका अर्थ है शुद्ध फूल। रोजस का अर्थ है लाल। इस पौधे में लगभग 130 एल्कलॉइड होते हैं। विंका एल्कलॉइड का एक मुख्य स्रोत है। इसे पहले विंका रोसिया के नाम से जाना जाता था। रूपात्मक विशेषताएं, कैथारेंथस रोजस एक बारहमासी छोटा शाक या उपझाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। तना सीधा, ढीला, लचीली लंबी शाखाओं वाला, बैंगनी या हल्का हरा होता है। पत्तियां सरल, फूली हुई, विपरीत, अग्रस्थलीय, डंठल युक्त, अंडाकार, आयताकार, 4 से 10 गुना, 2 से 4 सेंटीमीटर चिकनी, रोमिल, आधार नुकीला या क्यूनिट, शीर्ष कुंज शीर्षाकार तथा पार्श्व तंत्रिकाएं 10 से 12 जोड़ी होती है। डंठल 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। पुष्प विशेषताएं, पुष्पक्रम पीछे की ओर या कक्षीय या अंतिम सायम या एकल युग्मित और लघु डंठल नुमा होता है। फूल का रंग गुलाबी, सफेद तथा नलीदार होता है। पराग कोशों के क्षेत्र में फूला हुआ कोरोला ट्यूब का गला रोयनदार होता है। पुंकेसर में 5 पुंकेसर होते हैं जो कोरोला ट्यूब में शामिल होते हैं। तंतु बहुत छोटे, अधिवृक्कीय होते हैं। पराग कोश वर्तिकाग्र के ऊपर एक शंकु जैसी संरचना बनाते हैं। जयांग में 2 अंडप होते हैं जो नीचे की ओर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वर्तिका क्षेत्र में संयुक्त होते हैं। अंडाशय 2 होते हैं, स्वतंत्र और एकल शैली, डंबल कलंक के साथ। निषेचन के बाद अंडप अलग हो जाते हैं और 2 फल बनाते हैं जो लंबी रोमों की एक जोड़ी बनाते हैं। बीज छोटे आकार के व काले रंग के होते हैं। 1000 बीजों का भार 1.2 ग्राम होता है। तो दोस्तों यह था कैथारेंथस रोजियस यानी सदाबहार के फायदे और उपयोग के बारे में हमारा वीडियो।

अगर अपने भारत के शहरों में, भारतवर्ष के शहरों में अगर आप एक फलदार पौधा लगाना चाहते हैं, वो तो आप जामुन लगाइए। जामुन जो है वो एवरग्रीन भी होता है, जामुन में घनत्व बहुत होता है, इसका जो हरियाली का, इसकी जो क्षमता है, इसका क्राउन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत तेज उगने वाला है, जल्दी कीड़ा नहीं लगता और नो नॉनसेंस पौधा है। इसको एक बार आपने लगा दिया, इसको आपने दो साल इसकी सेवा कर दी, पानी वानी अच्छा डाल दिया, तो ये बहुत बढ़िया निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में इसको परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया निकलेगा। जामुन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब देखिए बाकी जो हमारे जितने भी फलों के वृक्ष है ना, वो छोटे साइज के रह जाते हैं, जैसे चीकू हुआ, फिर आप नींबू ले लीजिए, आप अमरूद ले लीजिए, आम जो है स्लो ग्रोइंग है, वो धीरे धीरे उगता है, तब तक जो है गाय भैंस बकरी उसको अटैक कर जाती है। जामुन एक ऐसा है, आप देखेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम सर्वाइवल हुआ उसका, गाय ने भी खाया, भैंस ने भी खाया, नीलगाय भी आके खा गई, उसको बकरी भी चर गई, लेकिन फिर भी वो इतना रॉबस्ट पेड़ है, जैसे पीपल का वृक्ष होता है, ये उगता ही रहता है, उगता ही रहता है। अब जैसे यहां से भी बहुत जगह से इसकी प्रूनिंग हुई थी, ये देखिए यहां कोई काट के गया है, यहां काट के गया है, ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच किसी ने काटी है, चॉप की है, फिर यहां से निकलना शुरू हो गया। तो इसकी जो ग्रोथ की क्षमता है, इसकी जो फैलने की क्षमता है, वो बड़ी प्यारी है। इसीलिए मैं जामुन प्रेफर करता हूं शहरों के लिए भी, है ना। और इरिगेशन कैनाल्स हैं, आपकी जो मेड़े हैं फार्म्स में, जो खेतों में, आप वहां पर भी जामुन लगा सकते हैं। जामुन का जो फल है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, आपको अगर आप उसको कमर्शियली भी करना चाहते हैं, मार्केट में भी उसको बेचना चाहें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है, बंदरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, गिलहरी बहुत अच्छी आती हैं, इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत आती है, और फर्स्ट क्लास छाया आती है, इसमें बहुत ही ठंडी छाया है इसकी। तो जामुन का पेड़ आप जरूर लगाएं।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार हम आपसे जुड़े विषय जो हैं उनको शामिल करते हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो भी आपसे जुड़ा है। आज हम आपको जानकारी देंगे उन्नत बकरी पालन के बारे में, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, और यही वजह है कि बकरी पालन एक रोजगार का जरिया भी बन चुका है। यही जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में। जी हाँ, और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानकारी लेते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं वो उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेत खलिहान में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं?
1: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपनी आर्थिकी उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं
0: जी।
1: और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा, जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
0: जी।
1: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
0: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो, क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो?
1: देखिए, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
0: जी,
1: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहां की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
0: जी।
1: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
0: जी,
1: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
0: जी,
1: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
0: जी,
1: ये अति उत्तम है।
0: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन हम कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं?
1: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20, 25, 50, 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
0: जी,
1: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए, जिसमें के बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा, और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
0: जी।
1: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में, और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
0: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है, और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है। आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान हैं या दर्शक हैं, किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया
0: जी,
1: कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
0: जी।
1: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें। अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
0: जी,
1: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
0: जी।
1: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
0: पहचान इसके हम कह सकते हैं,
1: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं उनकी अलग अलग पहचान है
0: जी।
1: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
0: जी,
1: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें?
0: बिल्कुल,
1: तो एक तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरे के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप है वो भी शुद्ध नस्ल के हों।
2: जी
1: दूसरी बात यह है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा।
2: जी
1: और हम आमतौर पे 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं।
2: जी
1: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं? और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं, एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
1: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियां हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए।
2: जी
1: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
2: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी हो, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
1: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस।
2: जी
1: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं।
2: जी
1: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ है वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हो।
2: जी
1: दूसरा हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूंगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें।
2: जी
1: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आए।
2: जी
1: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
2: बिल्कुल, इसलिए जरूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं। आइए हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, आपसे हम ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बेड़े में हमें यहाँ पर शेड में हम देख पा रहे हैं तमाम जो बकरियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ संस्थान में हमने देखा अलग अलग जो शेड हैं वो बनाई गई हैं, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
1: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है
2: जी
1: कि जो नर और मादा है उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए।
2: जी
1: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है।
2: जी
1: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
2: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हमें है, कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं?
1: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं।
2: जी
1: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना, भूसा, चारा दिया जाता है।
2: जी
1: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी
2: जी
1: फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे।
2: जी
1: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है स्ट्रेस शो करती है तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
2: जी,
1: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
2: जी।
1: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
2: जी,
1: कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए,
2: एक औसत उम्र हम मान सकते हैं,
1: औसत उम्र जो है, और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
2: जी,
1: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम, वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को, और उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है।
1: देखिये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
2: जी,
1: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
2: जी,
1: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
2: जी,
1: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
2: जी,
1: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है। तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं, अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है
2: जी,
1: ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
2: जी,
1: ठीक है ना, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है।
2: बिल्कुल,
1: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भ धारण कराने के लिए तैयार है
2: जी,
1: और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है, इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
2: जी।
1: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी।
3: क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार, हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में, शुक्रवार शाम 7:30 पर।

0: तो बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
1: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है
0: जी।
1: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए,
0: जी
1: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए,
0: जी
1: उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती हैं।
0: जी
1: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
0: बिल्कुल
1: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं।
0: जी
1: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं।
0: जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
1: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की
0: जी
1: सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं।
0: जी
1: यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सू बबूल है, मलबेरी है,
0: जी
1: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं। और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं
0: बिल्कुल
1: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है,
0: जी
1: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की ही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी है कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पे संभावनाएं जो है वो काफी है, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा जब आप इनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। और आज यहाँ पर हम पहुंचे थे मखदूम में, जैसा कि हमने आपको बताया डॉक्टर सिंह जो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ से लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जानकारी लेकर जाते हैं। उसके बाद एक बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं। एक यहाँ पर और भी जो किसान हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं जानकारी लेने के लिए, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं और यहाँ इस संस्थान से कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
1: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ और कम टाइम में, कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
2: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाजार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
3: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला और 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे। एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: केंद्रीय भर्ती अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ के निदेशक जो हैं मनमोहन सिंह चौहान जी, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती है। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया, जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुंचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रख रखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है, या जखराना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रखरखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं। जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें, तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रखरखाव कैसे हो सके। अगर उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिकों
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, और इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, दूध में मुख्य गुण कुछ ऐसे हैं जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है।
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी के दूध के बराबर मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इस ढंग से हैं, ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके।
0: जी,
1: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है।
0: जी,
1: इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है, जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है।
0: बिल्कुल, उसको बढ़ा सकता है।
1: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
0: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक यानी हमारे जो किसान है उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर आगे बढ़े?
1: अब सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है, जिसमें हम की सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है केवी के हैं, किसी जो है विज्ञान केंद्र है, वहां तक हम पहुंचाते हैं, और ताकि वहां पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं, तो इससे एक तो ये है कि कम से कम उसमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें, और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
0: बिल्कुल, देखिए जो किसान है वो अच्छे से और ज्यादा अच्छे से ना सिर्फ एक आजीविका के रूप में बकरी पालन कर सकते हैं बल्कि पूरे परिवार का उससे भरण पोषण भी कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: साथ ही हमारे दर्शक जो है वो और अच्छे तरीके से अब समझ पाए होंगे कि अगर वो उन्नत तरीके से बकरी पालन करते हैं और उसके साथ साथ देखिए जो वैज्ञानिक पहलू हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा, तभी एक उन्नत ढंग से आप बकरी पालन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: हाय, वेलकम एवरीबॉडी. दिस इज सेशन ऑन लाइफ स्किल्स. हमने पहले भी काफी सेशंस लाइफ स्किल्स पे करे हुए हैं, लेकिन जो अभी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक तो एक्सेंचर का जो चल रहा है स्किल्स टू सक्सीड, उसके अंतर्गत भी और इन जनरल हमारे सभी सेंटर्स में हम लाइफ स्किल के सेशंस लगातार करते आ रहे हैं. तो ये जो सेशन है ये करीबन 10 भाग में बांटा जाएगा, ये जो पूरा सीरीज है. तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है. वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें जहाँ पे मैं सेशन दे सकूँ. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बातचीत के जरिए कुछ ऐसी की स्किल्स को समझेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसमें वो काम आती है. तो शुरुआत करते हैं लाइफ स्किल्स से. सो वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जो ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ स्किल्स, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? हम कोशिश करते हैं समझने की एक साथ. कोई भी, कोई सही या गलत आंसर नहीं रहेगा.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर फ्रॉम रामपुर.
0: जी अकबर जी, मुझे पता था आप ही जवाब देंगे सबसे पहले.
1: नो एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट
2: आई आल्सो नो दैट
1: मेरा ये फर्स्ट सेशन है लाइफ स्किल्स पे. मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है इस पे, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ा सा लगता है कि लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो डेली हमारा रूटीन रहता है, हम लोगों से मिलते हैं और जो भी हम इंटरेक्शन रहता है, कल्चरल हैबिट्स हैं हमारी, तो उसमें जो काम आने वाले स्किल्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से मिलना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन तक बात पहुंचाना, तो उसके जो हमारे काम आने वाले स्किल्स हैं, हम उसको लाइफ स्किल्स शायद बोलते हैं.
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक हम इसी को कहते हैं. कोई और ऐड करना चाहेगा? अकबर ने जो कहा, थैंक यू अकबर,
1: वेलकम मैम.
0: किसी और ने अनम्यूट किया था अभी? तना.
3: हेलो, हाँ जी मैम, मैं चांद खान बोल रहा हूँ.
0: जी चांद बताएं.
3: मैम जैसे कि लाइफ स्किल्स को मैं भी पहली बार सेशन ले रहा हूँ, तो इसमें कि मेरा एडिसिक जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है हमें, किस तरीके से अपने आपको मेंटेन करना है, तो उन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है और इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में.
0: जी जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा, हम इसको बेसिक शब्दों में बांट सकते हैं. लाइफ मतलब जिंदगी, और स्किल मतलब वो कला जो जिंदगी जीने में या जिंदगी को आसानी से जीने में हमें हेल्प कर सके. तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, तो जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत होती है. तो मोटे मोटे भाग में लाइफ स्किल्स को दो मेजर एरियाज में बांटा गया है. एक है हार्ड लाइफ स्किल्स, खाना खाना, चलना, बोलना, ये जो हम बचपन में सीख लेते हैं, जो बचपन में हम जैसे माइलस्टोन कहते हैं, अगर बच्चे का बर्थ होता है तो एक बर्थ चार्ट बनता है, उसका माइलस्टोन होता है कि अच्छा अब उसने इतनी उम्र में अपने आप खाना खाना सीख लिया है, इतनी उम्र में वो खुद से जाके अपने काम कर सकता है, चलना सीखा है. तो ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं, ये हम शुरुआत में सीख लेते हैं. और किन चीजों की जरूरत होती है, हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. मान लीजिए हम कहीं अकेले हैं, हमें कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, तो आज की जिंदगी में तो ये भी, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग रह गए थे. मेरी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेल थे. फीमेल्स को तो जनरली हम लोग सिखा देते हैं, बट क्या हम अपने मेल जनरेशन को भी सिखा रहे हैं खाना बनाना कि नहीं? ये है हार्ड लाइफ स्किल, की मतलब बेसिक चीजें, क्या हमें बेसिक क्या कहते हैं, तार लगाना आता है, बल्ब चेंज करना आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं, किसी और पे हम निर्भर ना रह सके, बेसिक जो हमारी चीजें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें. तो ये हो गई हार्ड लाइफ स्किल. उसके अलावा होती है सॉफ्ट लाइफ स्किल्स, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे. ये सॉफ्ट जो स्किल्स होती हैं, इनको कुछ भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे, और फिर हर एक सेशन में एक लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम खुद से भी पढ़ें. हमारी लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें हैं उस पर्टिकुलर लाइफ स्किल के ऊपर जिसमें हम आज के दिन पे बात करेंगे, तो अगले सेशन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ उस पर नया पढ़ के आएंगे, और जो भी चाहें वो लोग शेयर कर सकते हैं. तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम आज बात करेंगे. अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हमें बारे में हम आज बात करेंगे। तो अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया लाइफ स्किल्स समझने के लिए। तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर दैट अनेबल्स ह्यूमन बीइंग्स टू डेवलप डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइकोसोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर सकें, और जो चीजें बदलती जा रही हैं, एनवायरमेंट जो रोज बदलता जा रहा है उसमें एक अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि एक रेजिलियंट, जो चीजें बदलती जाती हैं उसके साथ हम बैठ न जाएं, अपने आप को चेंज करते रहें, लगातार चेंज करते रहें, ऐसी स्किल्स हमें अपने में डेवलप करनी है जो हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हमारे अंदर लीडरशिप लाएं, एक ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव लाने का भाव अंदर आए, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करते रहें, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोशल स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि हम अकेले तो कहीं भी कुछ काम नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं हमें आसपास लोगों से बातचीत करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है। तो हम कैसे इसको पॉजिटिवली अपने अंदर डेवलप कर सकें कि हमें बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सके। बहुत ही सरल शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसको बताया गया है। इसकी आप अगर नेट पे जाएंगे तो कई डेफिनेशंस हैं। तो जिस तरह मुझे लगता है कि जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी, शेयर करी है आप लोगों से। बट अगर आप चाहें, अगर आपको हिंदी में कोई डेफिनेशन मिलती है तो जरूर आप अपनी स्लाइड्स में इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने बेनिफिशरीज के

बाद इस पर चर्चा करेंगे। हमने बात करी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर और अडैप्टिव बिहेवियर और रेजिलियंट बिहेवियर लेके आता है। पर हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर वक्त जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर वक्त हम किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं। अगेन, चाहे वो पर्सनल सिचुएशन है, घर की कोई सिचुएशन है, या प्रोफेशनल ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें पहले से हमारे पास 3 काम थे, वो प्रोजेक्ट में एक दो काम और आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। तो अब इन सब चीजों को सॉल्व करने की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ये लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती हैं। जो हमें मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करती है लाइफ स्किल्स की, जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद कार्य करें, दूसरे को ब्लेम ना करें या सिचुएशन को ब्लेम ना करें। हम जब दूसरों से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात करें, ग्रुप ग्रुप की कोलैबोरेटिव वे में बात करें और कॉपरेशन में बात करें। तो ये सब चीजें हमें डेवलप करने में लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं, इसलिए हमें ये लाइफ स्किल्स जानना जरूरी है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स होती क्या, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को किन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स को कई कई डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है। तो इनको हमने कई अगर आप चाहेंगे, अगर आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो कई बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। लेकिन WHO ने 1999 में ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो लाइफ स्किल्स को उन्होंने मेजर जो लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड थी उनको इन 6 की एरियाज में बांट दिया था। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चल सकते हैं, और शब्द हमें डिफिकल्ट लगे तो हम उसका आसान वाला शब्द भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल स्किल। दिस ब्रॉडली डिस्क्राइब्स द स्किल्स नीडेड टू गेट ऑन एंड वर्क विद अदर पीपल, पर्टिकुलरली टू ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेज इधर इन राइटिंग और वर्बली। कहने का मतलब ये है इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेट हम कब करते हैं? जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं, या फिर हम लिखित में कर रहे हैं। जब हम वर्बली करते हैं तो हम डेफिनेटली किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा के प्रयोग में किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। अगर हम नॉन वर्बली कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, कभी भी किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी, तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करती है, हम उन पे भी चर्चा। और तीसरा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आज की टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गई है प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम ये व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तब किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो ये चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बोलना तो हम सीख जाते हैं बचपन में, भाषा तो हम सीख जाते हैं, बट भाषा का सही प्रयोग और जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, जो जो मकसद है हमारा बात करने का वो दूसरे तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और किसी और को हर्ट ना करे, किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशन को या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करे। तो इन सब चीजों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर डाला जाता है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सबसे मुश्किल और यही एक स्किल है जो सबसे आसानी से भी एक्वायर हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बात करी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है। अब लगातार चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में तो कुछ ना कुछ हर वक्त हमें लगेगा कि प्रॉब्लम ही चल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लाइफ ये डिस्क्राइब करती है कि प्रॉब्लम को पहले समझें, उसे तोड़ें, उसे भागों में तोड़ें और उसका सॉल्यूशन या तो खुद या तो दूसरों की मदद से निकालें और उस पे हम एक्शन लें। तो ये भी एक कला होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास गीता मैम का,
जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हम अंदर तक जाते हैं कि कोई ऐसा इश्यू क्यों आया। वो इश्यू आने के बाद हम उस पे सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हम सबको साथ में लेके उस पे एक एक्शन प्लान बनाते हैं, और वो एक्शन प्लान पे हम अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक कला है जो कि जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जो कि आप काफी लोग हैं जो अपने अपने सेंटर्स में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 10 लोग से ज्यादा लोगों के आसपास आपके लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम से अपने आप को सेफ करके चल सकता है हमेशा। तो ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नए आइडियाज लेके आने में हेल्प करती है। ये हमारे अंदर होता है, हर हर इंसान के अंदर होता है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, बट हम इसे और कैसे निखार सकते हैं, ये भी एक कला है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू आइडियाज हैं, अभी हम जो सुबह एक कॉल कर रहे थे अब हमारे साउथ के सेंटर्स में, तो हम बात कर रहे थे कि जो रोज बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे, ठीक है किताबें पढ़ के चले गए, ठीक है अब कंप्यूटर्स हो गए, ये एक रेगुलर रोजमर्रा की चीजें चल रही हैं, बट व्हाट इज द क्रिएटिविटी, व्हाट न्यू थिंग वी आर ब्रिंगिंग इन। सो अगेन दिस इज अ लाइफ स्किल दैट यू नो वी ऑल शुड हैव, सो दैट हमारा जो काम है वो कभी भी रिडंडेंट नहीं हो, हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आते रहें और हर वक्त कुछ ऐसा नया करें कि जो हमारी ऑडियंसेस हैं, यानी कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, उनको भी उन न्यू आइडियाज से या न्यू सर्विसेज से फायदा हो। बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, कहीं भी आप काम के लिए जाते हैं बाहर या कुछ भी करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन इनोवेटिंग योर सेल्फ सो दैट कि आप एक जगह पे स्थिर ना रह जाएं। वो कहते हैं कि खड़ा पानी जो होता है उसमें गंद जल्दी मतलब लग जाता है, गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पानी अगर बेहतर रहेगा तो उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह, मतलब कीप मूविंग अहेड, व्हाट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें नयापन लेके आए। अगली लाइफ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस या फिर एम्पथी। हम अपने आप को समझें, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आए, और हम ये समझें कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं। एम्पैथी बहुत डीप मीनिंग होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर एक पूरा सेशन रखेंगे, बट ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये काफी हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो क्यों होती हैं। जब एब्सेंस ऑफ एम्पैथी होता है या एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, उसके बाद कहते हैं कि असर्टिवनेस, मतलब आप बात कह रहे हैं तो उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है अपनी बात को सामने वाले के यहाँ रखने के लिए। असर्टिवनेस का मतलब है उन अपनी बात को कहने का, रखने का एक तरीका होता है जिसमें कि आप अपने किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप अपनी बात सामने रखें भी और आपको गुस्सा या आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत भी ना पड़े और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए। क्योंकि जब हम कोई बात अपने सामने वाले के यहाँ रख रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी आवाज तेज करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन होता है, प्रोवोकेशन होता है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहीं कई हद तक पर्सनल, जब हम आपस में बात करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है या हम अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं या भाई बहनों से भी बात कर रहे हैं या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो एजर्टिवनेस मतलब बात, अगर आपको लगता है आपकी बात सही है तो उन्हें किन शब्दों में लेके आए। इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट देन इट इज अ स्टेप अहेड, ये एक स्टेप अहेड है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल आज के टाइम में है इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है कि जो चीजें हमारे हमें सेटबैक्स लेके आ रही हैं या जो हमारे थ्रेट्स हैं के ऊपर कोपिंग अप, मतलब उनको पहले तो समझना कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा उसको उसको अपने अंदर लेके आना, ठीक है अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम आगे ग्रो करेंगे। तो दैट इज अ रेजिलियंस एज अ की लाइफ स्किल। तो ये 6 लाइफ स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, कोई कुछ इस बारे में कहना चाहेगा?
किसी का कोई एग्जाम्पल है तो वो शेयर कर सकते हैं, किसी भी छह इनमें से कोई भी छह में से उठा के हम किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं, इफ समबडी वॉन्ट्स टू एड। मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, वी आर ऑल लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स टुगेदर। तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर इनमें से कोई भी आप उसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, किस तरह से आपको लगता है ये लाइफ स्किल हेल्प करती है, या रेजिलियंस में, जो हमने छह लाइफ स्किल्स देखी हैं उनको हम अगर चाहें तो इन इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स तो हम कहते ही हैं इनको, पीपल स्किल भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं और इंट्रापर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। सबको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं फर्दर रीडिंग करते हैं या कुछ और किताबें हैं आपकी लाइब्रेरीज में पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और जो हमने पहले देखे थे ये वाले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये कहीं ना कहीं इन बॉक्सेस में हमें फिट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हेल्प करेगी, इंटरनल स्किल्स में हेल्प करेगी, सोशल स्किल्स में हेल्प करेगी, पीपल स्किल्स में हेल्प करेगी। अगर हम रिलियंट हैं तो अगेन हमें इंट्रा इंट्रा पर्सनल करेगी, इमोशंस की हेल्प करेगी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो, लाइफ स्किल माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ स्किल्स सीखने से पहले या अपने अंदर लाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग को उसके वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ, हमें अगर लाइफ स्किल एक्वायर करना है तो उसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। अगर लाइफ स्किल हमें सीखनी है तो पहले तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, वो जो कांट में से टी है उसे हमें काट के बाहर फेंकना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर सकते हैं। इसमें भाषा का नहीं मायने है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कोई भाषा का मायने उतना नहीं है, मायने है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, और कुछ जिनको भाषा तो अच्छी आती है लेकिन जब वो बोलते हैं तो मन नहीं करता है उनको सुनने का। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ स्किल विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज बट द वे यू कम्युनिकेट। सो इसी तरीके से हमें आई कांट डू इट में से टी निकाल के पहले तो फेंक देना पड़ेगा। अपने आप को जानना पड़ेगा, हु एम आई। इस लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए करने से पहले हमें अपने आप से जरूरी है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी बहुत जरूरी है। ये हमें मानना बहुत जरूरी है कि मैं अलग हूँ, मैं एक भीड़ का पार्ट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा दिखता हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं ये पहनता हूँ, ये पहनती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अलग हूँ। लेकिन मुझे अपने आप से प्यार है। अगर आप खुद से प्यार कर भी यू विल बी बेटर एबल टू डिवेलप योर स्किल्स कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें, क्योंकि लाइफ स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप जब लोगों के अंदर हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को समझें भी, अडाप्ट भी करें आपकी आपके जो आपके जो भाव हैं या जो आपके थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरमेंट रहे, एक कोई झगड़े का या लड़ाई का एनवायरमेंट नहीं रहे। ये हमें प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए, या अपना जॉब रिटेन करके रखने के लिए। हम हमें ना कहना भी आना चाहिए, लेकिन ना कहने का भी तरीका होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हाँ ही कहें। अगर आपके आपकी कोई आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप नहीं कर सके, टी आपने हटा तो दिया, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको ये एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में कहाँ पे ना कहना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी राइट्स एज ए इंडिविजुअल या एज ए एम्प्लॉय चाहिए, और आपको राइट्स के साथ साथ ज्यादा जरूरी है कि ड्यूटीज भी पता होना चाहिए। जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी ये लाइफ स्किल आपको हेल्प करेगा
कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है मेरे वर्क एनवायरनमेंट में। चैलेंजेस आते रहे।

0: टू लिया है और इस सेंटेंस को कैसे पूरा किया है। ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में इसके मतलब बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है आई लाइक हु आई एम बिकॉज, मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि, यहां तक लिखा हुआ है, आगे आपने भरना है। ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी लगती है खुद में, वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा करना है। दूसरा ऑप्शन है आई फील हैप्पी व्हेन, आगे आपको पूरा करना है, मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ जब, जब के आगे आपको पूरा करना है। तो देन आई विल आस्क रैंडमली एनीबॉडी, सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है हिंदी या इंग्लिश समझने में, बिकॉज साउथ से भी लोग हैं, सो आई कैन रिपीट माई सेल्फ इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, बट आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी रैंडमली पिकिंग अप द पार्टिसिपेंट्स। ओके, शैल वी स्टार्ट शेयरिंग आवर फीलिंग्स, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा?
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम आविदा कलकर सेंटर से. हेलो
0: जी,
1: मैम.
0: जी बताएं, आपकी आवाज एको हुई।
1: जी मैम, मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और उसको सराहा जा रहा है, और बस मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरी मेहनत कामयाब होती है और जिस मकसद के लिए मैं मेहनत करती हूँ वो मकसद पूरा होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ.
0: जब आपकी मेहनत आप कामयाब होती है तब आप खुश होते हैं।
1: जी मैम.
0: अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा?
2: मैं आई स्पीक मैम. सीमा बात
0: हाँ जी
2: कर रही
0: सीमा
2: हूँ.
0: जी।
2: आई हैव रिटन आई लाइक हु आई एम बिकॉज आई गिव वैल्यू टू रिलेशनशिप, वेदर इट इज माई प्रोफेशनल प्रोफेशनल रिलेशंस और माई पर्सनल बोथ. एंड आई फील हैप्पी व्हेन आई कंप्लीट माई टारगेट. अगेन वो मेरे घर की कोई चीजों के हो या मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी हो, जब मेरी चीजें पूरी हो जाती है तो आई फील सो रिलैक्स्ड एंड आई फील सो हैप्पी फॉर दैट.
0: तो सीमा जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जब जो आप इनमें यूज करते हैं, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है यू नो मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक यू हैप्पी, मेक मेक्स हेल्प्स यू मेक बीइंग हैप्पी और यू नो लाइक योरसेल्फ?
2: हेलो, कैन यू हियर मी?
0: नाउ वी कैन हियर यू।
2: हेलो, एम आई ऑडिबल?
0: हाँ जी, आप ऑडिबल हैं।
2: हेलो, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है मैम इधर थोड़ा.
0: ओके नो प्रॉब्लम, वी मूव
2: आई थिंक आई यूज माई प्रेजेंस ऑफ माइंड.
0: प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके ओके, वहां नेटवर्क इशू आ रहा है, वी मूव ऑन टू समबडी एल्स। कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा इन दोनों ऑप्शंस में से? इसने क्या लिखा है? जी
3: मैम शैलजा हियर. मैम
0: शैलजा मैम।
3: मैम आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई एम रियली विद अ स्मॉल किड्स बिलो 5 इयर्स टू लिसन टू देयर ब्यूटिफुल टॉक, दैट बेबी टॉक और व्हाट एवर इट इज. एंड आई ऑल्सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई कैन डू समथिंग फॉर समबडी, इट कुड बी अ स्मॉल हेल्प और कुड बी अ स्मॉल एडवाइस, व्हाट एवर इट इज.
0: What kind of life skill do you think you are using? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको help? Positive thinking?
3: I didn't get you, ma'am.
0: आप ऐसी कौन सी लाइफ स्किल यूज करते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह की ऐसी एक एसेंस है आपके अंदर जो ये चीज आपको हैप्पी करती है?
3: I think it is something emotional, ma'am.
0: It's emotional. Okay, very good. Thank you.
4: Good afternoon, ma'am.
2: That can be joy of giving, ma'am.
0: Joy of giving.
3: Joy
0: very
3: of
0: good.
3: Giving, yes.
0: Yes, yes.
4: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon, ji.
4: It's Divya.
0: Anji Divya.
4: I like who I am because I have some different abilities. Like I can easily connect with people.
0: Very good. Very interpersonal skill है जो हमने सबसे पहली skill पढ़ी थी. आपको ये लगता है कि वो आपको मदद कर रही है इन सब इसको आपको positive effect देने में?
4: Yes, ma'am. Because whenever I talk with, I always use positive behavior, even politeness.
0: Okay.
4: Yes, ma'am.
0: All right. Thank you, Divya.
5: Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I feel happy when I'm teaching something to others, like as social people, student, and center beneficiary. So the main thing is happy is teaching, ma'am. It includes social.

0: सोशल स्किल, इंटरपर्सनल एंड माय पर्सनल स्किल मैम.
1: तो आप खुश होते हैं, यू आर
0: या मैम,
1: हैप्पी। मार्गरेट ने कहा कि वो खुश तब होती हैं जब वो किसी को कुछ पढ़ाती हैं, जब वो एक इंटरपर्सनल स्किल को यूज करते हुए, सोशल स्किल्स को यूज करते हुए, जो उन्हें आता है वो दूसरों से शेयर करती हैं। करेक्ट मार्गरेट?
0: यस यस यस मैम, यस
1: ऑल
0: मैम,
1: राइट ऑल राइट, थैंक यू मार्गरेट।
0: वेलकम मैम.
2: मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम हल ढूंढी लेती हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो।
1: जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो तो क्षमता है वो आप अपने अंदर समझते हैं, रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमने एक स्किल पढ़ी थी, ये आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर, इसलिए जब भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप उसे सॉल्व करवाते हैं तब आपको अच्छा लगता है। ऑल राइट, थैंक यू
3: मैम, मैं बोलना चाहूंगा चांद खान.
1: जी, बताएं।
3: मैम, आई फील हैप्पी व्हेन माय टारगेट एंड माय प्रॉब्लम सॉल्व एंड माय ऑफिशियल टारगेट कंप्लीटली.
1: जब आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो
3: जी
1: जाता
3: जी
1: है तब आप
3: यस
1: खुश हो जाते हैं। ठीक
3: जी मैम, जी मैम.
1: है जी, ठीक है, थैंक यू। कोई और बोलना चाहेगा कि हम आगे बढ़े?
4: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड
4: हेलो
1: आफ्टरनून. हाँ जी
4: मैम, मैं देव सेंटर औरंगाबाद बिहार से बोल रही हूँ।
1: हाँ जी
4: मैम मुझे, मैं रीड इंडिया में स्टिचिंग ट्रेनर हूँ
1: जी
4: और मुझे स्टिचिंग सिखलाने में, बच्चे को एडवाइस देने में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है।
1: जी
4: फर्स्ट टाइम उन लोग बहुत नर्वस रहती हैं, उनको एडवाइस देकर हम बहुत उनका अच्छा फील करवाते।
1: पहले पहले आप कह रहे हैं आप नर्वस रहते थे और अब आपको लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हैं,
4: हाँ यस मैम,
1: ऐसा क्यों हुआ? पहले नर्वस लगते थे, अभी अच्छे से कर पा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट
4: बच्चे
1: लाइफ
4: जो आते
1: स्किल आप.
4: हैं मैम, स्टूडेंट जो आते हो बस नर्वस रहते हैं, बट उनको हम समझाते हैं, जब फ्रेंडली बात करते हैं, जब फ्रेंडली सिखलाते हैं तो अच्छा लगता है, तो मिलजुल कर रहते हो, बहुत खुशी मिलता है मुझे।
1: अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं वो नर्वस होते हैं शुरू शुरू में, बट आपके साथ जब मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो आप
4: हाँ
1: उनको
4: यस
1: हेल्प करती हैं कॉन्फिडेंट बिल्ड करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. सो वी स्टॉप हियर टेकिंग मोर. हम यहीं पे रुकते हैं फीडबैक लेने के लिए. तो सभी ने ये बताया कि जब वो कुछ काम करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तब वो या तो खुश होते हैं या उनको खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने आप को पसंद करते हैं. हमें ये भी देखना है कि कोई काम नहीं होता तब क्या हम अपने आप को हेट करना शुरू कर देंगे? क्या अगर हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने सुने अभी, सभी ने ये बोला कि जब ये मैं कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके उस काम में तब क्या होगा? तब आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, आई विल नॉट फील हैप्पी देन, आई विल नॉट लाइक हु आई एम देन. तो इन्हीं सब चीजों को हमें अपने अंदर लाना है कि बाहर की सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ इमेज है, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. उसे हमें ये देखना है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें शायद हम और मेहनत करें तो वो सिचुएशन फिर से अच्छी हो सकती है. तो जब सब अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें लगता है कि हम अब बहुत अच्छे हैं. जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप तो बहुत मेहनत करते हैं. लेकिन तब क्या है, किसी वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब हम अपने बच्चे से क्या बोलते हैं? और कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं. कोई काम नहीं होता, बनती बात बिगड़ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है? उस वक्त भी हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है. ये एक सर्कल हमें बनाना है अपने आसपास, हर एक इंसान के लिए. जो आप अपने लिए बनाएंगे, आप अपने आपके जो सर्कल में लोग हैं उनको भी बताएंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए. अपने आप में ये बोलना कि मैं सक्षम हूँ, आई एम इनफ, मुझसे लोग प्यार करते हैं, आई एम लवेबल, आई एम ब्रेव, मैं हार्ड चीजें कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं इन चैलेंजेस के लिए बना हूं या बनी हूं, मैं इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ और माई फीलिंग्स आर ओके. ओके कोई भी अंदर मेरे फीलिंग आ रही है वो ठीक है, मैं इस चीज जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ। मिस्टेक्स मुझे हेल्प करते हैं सीखने में, मैं इन चार्ज हूँ कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ एक सिचुएशन को, मैं इन चार्ज हूँ कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ एक सिचुएशन को। ये एक सर्कल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो हमें हर दिन तो करना ही चाहिए, खुद के बारे में खुद को एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं टफ हूँ एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या मैं अलग हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपने आप से, क्योंकि जब हम अपने आप से खुश होंगे तब हम पॉजिटिव लाइफ स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे और हम मदद करेंगे दूसरों में भी ये लाइफ स्किल्स इनकलकेट करने के लिए। तो जब हमें लाइफ स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि लाइफ स्किल इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने वो 6 लाइफ स्किल्स पढ़ भी लिए हैं कि कौन से 6 लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सो टुडे वी आर टेकिंग फर्स्ट लाइफ स्किल विच इज द कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बुक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो बुक डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि कम से कम 2 लोग चाहिए इस स्किल को यूज करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल दैट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद इंटरैक्ट विद अदर पीपल। कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व्स आवर एबिलिटी टू टेक एन आइडिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बी एबल टू कन्वे देम टू द अदर्स इन अ मैनर दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो हमारी एबिलिटी डिफाइन करती है कि हम कुछ आइडिया को, कुछ इंस्ट्रक्शन को या किसी बात को पहले तो समझें, उसे दूसरे तक पहुंचाने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें, और दूसरे को वो समझ भी आनी चाहिए। आपने कह दिया और दूसरे को समझ में नहीं आया या आपने सही तरीके से नहीं कहा उसके बारे में और दूसरे को समझ नहीं आया, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बिल्कुल फेल हो जाती है। आपका कहना ही, आपका शब्दों का यूज करना ही जरूरी नहीं है, किस तरह से आप कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीजें कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट रहती हैं। इसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन भी हो सकते हैं। जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है क्योंकि यही एक स्किल है जो इंसानों के पास है, जो ये हम शब्द जो हम बातचीत करने की जो एबिलिटी है ये सिर्फ इंसानों के पास ही है। जो हम एक जगह से, अभी मैं एक जगह से करीबन 70 लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये एबिलिटी जो है ये हमें सबसे अलग करती है, चाहे वो कोई स्पीशीज है उससे अलग करती है और विद इन ह्यूमन बींग्स भी हम सेट अपार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे संदीप महेश्वरी के देखे होंगे या फिर किसी गुरु के देखे होंगे या फिर शिवानी बहन के देखे होंगे या फिर किसी ओरेटर के देखे होंगे। कुछ लीडर्स आपको बहुत इंस्पायर करते हैं बोलते हुए, क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग है, वो हर चीज को साथ लेते हुए, चाहे नॉलेज है उनको, एक से ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है उनको, और वो उस चीज को कैसे अपनी भाषा में, अपने बोलने के तरीके में उसे लेके आते हैं, वो एक कला है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, रीडिंग, जितना आप पढ़ेंगे, जितना शब्दों को समझेंगे, जितना दूसरे लोगों को सुनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंस होता है सुनने की शक्ति का। जितना दूसरों को सुनेंगे उतना आप कोशिश करेंगे ऐसी चीजों को पिकअप करने के लिए जो आपके अंदर अडेप्ट हो सकती हैं। ये स्किल बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल जगह पे यूज होती हैं। स्पेशली जो रिटन कम्युनिकेशन है ये तो प्रोफेशनल में बहुत ही काम आती है। तो जब आप अपने बेनिफिशियरीज से भी बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, आप उनसे ये कहिए कि ये सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना इसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे उतना वो प्रोफेशनली हमें हेल्प करती जाएगी। बहुत सारी किताबें हैं हमारी लाइब्रेरीज में भी, ऑनलाइन ई बुक्स भी अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, किस तरह से हम हाव भाव का, जो हाथ हम हिलाते हैं, आंखों का, हमारा आई कांटेक्ट कैसा है अपने ऑडियंसेस से, ऑडियंस चाहे एक हो, चाहे आप एक ही जन से बात कर रहे हो, बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड करेगा आपकी बात को, तो किस तरीके से हमें बात करने, किन शब्दों का, ऐसे कौन से टॉप शब्द होते हैं जो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है सेल्फ प्रैक्टिस से इस कम्युनिकेशन स्किल को हर रोज पॉलिश करने का। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है सेल्फ प्रैक्टिस, लिसनिंग टू गुड स्पीकर्स हु इंस्पायर यू, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, एनी अदर लैंग्वेज, हूसोएवर इंस्पायर्स यू, एंड किताबें पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े से 5 मिनट ऊंची आदत नहीं डालेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। द मोमेंट यू नो यू स्टार्ट, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए, फोन तो अभी सभी के पास है, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए और उसमें अपनी आवाज सुनिए कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ सरल शब्द हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख पा रहे हैं, एक ही बात को 10 बार बोलने की जरूरत पड़ रही है सामने वाले को समझने के लिए। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट इजिली एक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल, बट इसको जो पॉलिश करना है वो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, सुनने से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमें ओरली, रिटन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशंस जब बनाते हैं या अपने आप में आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं उसमें हमारी मदद करती है। तो जो बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये एक पहली स्किल होगी। कल मैम ने लीडरशिप सेशन में एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी, जो कि IAS के तैयारी के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसकी तैयारी के लिए हो रही थी। तो जब आपकी पहली बेसिक स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही वीक रहेगी, आप अगला स्टेप नहीं ले पाएंगे। IAS या कोई भी बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें रिटन एग्जाम तो होता ही होता है, बट ओरल एग्जाम भी होता है। क्यों? वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से बात रखते हैं। आप अगर कोई भाव को नहीं भी जानते, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो घबराइए नहीं, ना कहना भी सीखे कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के या मैं समझ के आपसे इस चीज में बात करूंगा। बट उससे पहले वो कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर, यू हैव टू गो बैक टू द पॉजिटिव सेल्फ इमेज, कि मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे सब चीजों के बारे में पता हो, लेकिन जो मुझे पता है और जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसको मैं सरल भाषा में और साफ शब्दों में दूसरे तक ले जा सकूं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट, किसी जो सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती है। जो बड़े बड़े कंट्रीज में डिप्लोमैट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बोलते हैं कि ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बात करता है। तो डिप्लोमेटिक रॉन्ग शब्द नहीं है, डिप्लोमेटिक मतलब कि दोनों साइड्स को या दो या तीन साइड्स की जो बातें हैं उनको समझना और बिना किसी के भाव को नुकसान पहुंचाए हुए एक एक सेंट्रल पोजिशन पे आना। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हेल्प करती है, नेगोसिएशंस में बहुत हेल्प करती है। किसी सिचुएशन में जब आप पढ़ जाते हैं कि आपको इधर की बात भी सुननी है उधर की बात भी सुननी है, तो ये एक स्किल है जो बार बार काम आती है। कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं पता ये लाइब्रेरी में है कि नहीं, बट ये किताबें ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने इनके बारे में इनके पढ़े हैं तो मुझे लगी ये सरल भी है और ये हेल्प कर सकती है कम्युनिकेशन स्किल को, जो कि पहली लाइफ स्किल है एक्वायर करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए। तो अगर आप चाहें आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेनिफिशरीज को भी कह सकते हैं कि वो ये बुक्स रेफर करें। टेड टॉक्स जो है, बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, आप बस उनको सुनिए। जब आपका फ्री टाइम होता है 5 मिनट, एक टेड टॉक को सुनिए, बहुत आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके जो सिचुएशंस हैं लाइफ में। ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, देयर आर मेनी मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड प्रोबेबली उनकी स्ट्रगल हमसे कई कई गुना ज्यादा है। बट वो कैसे उसको ओवरकम करके आए हैं, तो इन सब चीजों से बहुत बहुत हेल्प मिलती है, जो ये जो सेल्फ लोग अपने बारे में बात करते हैं जो कि टेड टॉक्स में है। तो अभी आज का सेशन हमारा कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स को समझने का था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने का था, और अपने आप से पहले तो अपनी सेल्फ इमेज को क्लियर करना है कि क्या मतलब अपने आप में सेल्फ डाउट लाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से कम मतलब मेरी जो अपनी इमेज है, अपनी इमेज को सबसे ऊपर रख के उसको और किस तरह से निखार सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती है। और हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो पहली लाइफ स्किल्स है उसके बारे में। सो इफ यू वांट वी कैन गो डीपर इनटू इट, बट आई वुड लाइक टू लीव इट हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो जाएं और कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ के, नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, हम पहले 5 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। तो अगर कोई लाइव एग्जाम्पल लाइफ से देना चाहता है या कुछ किसी ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में बताना चाहता है, सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज ये सेशंस आपने आगे अपने बेनिफिशरीज को देने हैं। सो द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी एबल टू यू नो डू जस्टिस टू द सेशंस। सो वी विल क्लोज द सेशन हियर, बट अभी भी हमारे पास 7 मिनट हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट इफ समबडी कैन शेयर, उनको कुछ अच्छा लगा इसमें या वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। पैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? डू यू थिंक?
5: आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग, इट्स अ वंडरफुल सेशन, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर दैट लाइफ स्किल्स आर डे टू डे लाइफ, what we do, how perfect we are, how our behavior is, and how our attitude is. So these all combination of all makes the personality, and that is the wonderful session, I would like to say that. My only request to all everyone is that they must practice it, because this is purposely added into our program activities. Because we don't want to focus on only livelihood, beauty and culture, education. Because unless and until your personality is evolved, you will not be able to achieve anything. So these were very well thought of and added. And we are not the experts, as Smita has said. But hum isko kar rahe hain kyunki hum aapas mein baatcheet kar rahe hain aur isko hum apni soch ko us taraf bhi lekar ja rahe hain. Right? तो ये वैल्यू भी ऐड करता है, हमारे काम में भी वैल्यू ऐड करता है, हमारी पर्सनालिटी में भी वैल्यू ऐड करता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो सब इसकी बात कम्युनिटी के साथ करें। इसमें ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बढ़ता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी का उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंक्रीज होता है। राइट? तो आप प्लीज इसको अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी लेकर आइए, 10 मिनट इसके ऊपर बात करिए और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलिए जो रिफ्लेक्ट करें कि हाँ आप एक बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है? तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन स्मिता, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर
5: टेक केयर, बाय बाय।
1: All right. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye.

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून। सेशन के लिए सब तैयार हैं?
0: यस मैम।
1: आज का जो सेशन है बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने लिया है। थोड़ा हटके मैं बात करूंगी आज काम के बारे में, तो लिंक करूंगी करूंगी, बट हम बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है और हमें लाइफ के साथ कैसे डील करना होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू जॉइन द सेशन वेल इन टाइम। मैं शुरू कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही एक बेसिक चीज से कि हम लोग सब, बर्थ होता है हमारा, है ना, और हम आज जो भी है यहाँ पे सबका किसी ना किसी टाइम पे बर्थ हुआ है और हमारी एक डेट ऑफ बर्थ भी है और ईश्वर ने हमें एक लाइफ दी है, राइट? और जो हमें लाइफ दी है ईश्वर ने, वो ही डिसाइड करता है कि हमें किस फैमिली में बर्थ लेना है, कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से पेरेंट्स हमें पालेंगे, हम किस घर में रहेंगे, ये सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आता है। पर भगवान हमें क्या देता है? एक जिंदगी, एक लाइफ। वो लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझे इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बर्थ हमारे हाथ में नहीं है पर लाइफ हमारे हाथ में है, और जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपना बेस्ट अपने बच्चों को नहीं देता है ना। जो पेरेंट्स, और हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं और एक लाइफ की डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, बट खाली 3% लोग हैं जो बर्थ के बाद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। वो 3% जो लोग हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में किया होता है, तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बना पाते हैं। 97% ऑफ द पीपल लिव अ कॉमन रूटीन लाइफ। हम लोग भी कॉमन रूटीन लाइफ ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस का रूटीन का काम करते हैं। ज्योति, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी स्क्रीन में आपके डिस्टरबेंस आ रही है। आप कभी आगे देखते हो, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है।
2: सॉरी मैम, वो थोड़ा सा ना बच्चे सिटिंग कर रहे थे 2 मिनट की, बस अब नहीं
1: नहीं,
2: करेंगे
1: वो मेरी
2: कुछ
1: मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जो
2: जी
1: मैं
2: मैम।
1: थॉट प्रोसेस लेके बोलना चाह रही हूँ वो फिर हट जाता है दिमाग से, ठीक
2: नहीं मैम,
1: है?
2: सॉरी
1: हाँ,
2: जी।
1: तो 97% लोग जो हैं इस दुनिया में कॉमन रूटीन लाइफ जीते हैं, जो एक एक रूटीन है कि सुबह उठना है, रात को रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हम नहीं दे पाते हैं। हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है अपनी रूटीन लाइफ से और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने आज बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे वी डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन व्हाट वी डू नॉर्मली, जो हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट रहती है और इसके ऊपर आसपास घूमती है। क्लीनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेडिटेटिंग हो गया, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर गुड हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये एक रूटीन लाइफ है। जब तक हम इस रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं अपनी लाइफ से, बट अगर हम कुछ हटके करने की सोचें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो हम रूटीन लाइफ तो हर कोई जी रहे हैं, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो डिफरेंटली करते हैं, चीजें सेम होती हैं लाइफ की। सबको पैसा चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए। एवरीथिंग इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये शिव खेरा की स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कोई आसमान से कोई चीज तो उतरती नहीं है कि वो जो अलग से करते हैं, बट वो उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं। हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम क्यों कैसे कर सकते हैं अलग से चीजें, वो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अभी तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है?
2: यस मैम,
1: शिव खेरा की स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। एंड हाउ दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अपनी जो पावर्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। नॉर्मली जो हम रूटीन में काम करते हैं, हम अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं है, इट्स बियॉन्ड माई फैमिलीज डिसीजन, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तो हम अपनी जो पावर्स हैं, जो इंटरनल पावर्स हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट वॉट यू डू, बट आर फोकस शुड ऑलवेज बी वॉट यू कैन डू। मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, बट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस में कभी कभी डेविएट हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं जब, तो हम बहुत बड़े अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं अच्छा आज मेरी सैलरी 5,000 है, अगर मैं 10,000 कमाना शुरू कर दूं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया कमाने की अपना गोल सेट कर लूं और उसकी वो गोल अचीव करने के लिए मैं कैसे चीजों को डिफरेंटली कर लूं, अगर वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं, वो गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो हम एक रूटीन में ही रह जाते हैं। उस रूटीन से हटके हम अपने बड़े ड्रीम्स जो हम लेते हैं कभी कभी, हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, हम सब लोग नॉलेज गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो सब रीड सेंटर से जुड़े हैं, और सबको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। बट अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल बनने की सीढ़ी से कहीं अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। और ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गोल सेटिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है करेज। अगर मैं करेज नहीं रखती हूँ कुछ भी करने का, जो मैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं हार्नेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन वर्क से ऊपर नहीं उठ पाती। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया मैंने जो बोला कि हमें जीवन मिलता है, पर जीवन और जिंदगी में बहुत फर्क है। हम जीवन तो जीते हैं, पर जिंदगी को कैसे शेप देनी है वो हम नहीं सोच पाते हैं। हम एक छोटी सोच लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर हम अगर अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 5,000 से 50,000 का सैलरी कैसे हमने कमानी है, या कैसे अपने बिजनेस में 5,000 से 50,000 कमाने हैं, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ साथ हम अपना करेज भी मेंटेन रखें और अपने पोटेंशियल को भी हार्नेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास अपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप है। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
2: जी
1: हम
2: मैम,
1: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं, और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने करेज को भी आगे किया है, अपने पोटेंशियल को भी बढ़ाया है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स डिफरेंटली सो दैट दे कैन मीट विद देयर गोल्स, दे कैन रियलाइज देयर ओन ड्रीम्स। कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं कहना चाह रही थी वो सबको समझ में आ गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो अपना जीवन जीते हैं, हम घर पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं, और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है। बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पर नॉर्मली 70%, जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं, और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं। और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ, अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है, और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है अगर आज हम नहीं सोचते हैं, तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, आपके गोल्स वहीं के वहीं रहेंगे, 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी, मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे, और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज। करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी। लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन। तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात कर रही हूँ। एक वर्ड है आपने सुना होगा, हेल्प, हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ। ये जो हेल वर्ड है, जो हम अपने ही दायरे में अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर हमारे अंदर की सोच वो क्या है, वो हमारी है। वो सोच पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे वर्ड्स पे आप जरूर एम्फेसाइज करें, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमें कहता है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोच को बदलता है। पर अगर हम अपनी सोच पे कंट्रोल रखें, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट्स आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट लाइफ, तो हम अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। 97% ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में रूटीन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं। माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है। वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है। हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है, उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं। वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, बट हाँ ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है। तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा है हंगर। हंगर क्या होता है? ग्रीन। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये। आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं। तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट, जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी। एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है, जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है। चौथा पॉइंट है एंगर। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वही होता है ना, गिव एंड टेक प्रोसेस। अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा, वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है। इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत। कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है। सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है। और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। पर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है। चाहे हम जिस जरूरी नहीं है कि हम एक महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये जो वैल्यूज हैं हमें लेकर जाएंगे। और अगर हम इन वैल्यूज को एक्सटर्नल सराउंडिंग से दबने नहीं दें तो हम अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग, जो आप लोगों को सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रियलाइजेशन कि आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है विद प्योर प्योर, मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें। इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से। लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का, और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है, मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं। बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन 5-6 मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हुई, मुझे इस उलझन से बाहर आना है। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमें बहुत आदत होती है हम सेल्फ बूस्टिंग करते, मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। हम कितने सच्चे हैं अपने लिए, ये एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन है जो हमें हर रोज अपने लिए करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरे के मुंह के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर वी आर हैविंग डिफरेंट फेस, बट अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में, इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर दे। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे, जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं। अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू। अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने 6 डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन, बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ, और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के, और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती, तो वो उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए जो हीरे थे, और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो

0: करेंगे। और ये जो जेम्स हैं आपकी लाइफ के, आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करें। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
1: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी। बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
0: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की। और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न? प्लीज।
1: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने पीएचडी साइकोलॉजी में की
0: नहीं, मैंने पीएचडी तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
1: है? मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
0: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखी, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ की एक्सपीरियंस ही है।
2: मैम हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
0: हाँ बोलिए।
3: हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। आपकी मीटिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी। आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट बताया मुझे तो बहुत ज्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए और मतलब जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और अपना एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
2: जैसे पढ़ाई वाला
3: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो बस पढ़ते ही रहे, उस पर यह नहीं सोचें कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं। ये सब सोच कर रखना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए।
2: आपका जवाब देखते हैं।
0: बिल्कुल, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा है तो उस 1 घंटे को कैसे जुडिशली अच्छे से यूज करना है सीखने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, हम भटक जाते हैं। और अगर हम हमेशा हमारी अलार्म बजता रहे कि हाँ हमें ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जीना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम अनजाने में भी करते हैं ना, उन पे भी हम कंट्रोल कर पाते। अब सब लोग ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैंने आज जो बताया है कि मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। ठीक है, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी? पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के।
1: नमस्ते मैम, जय गुरु जी मैम।
0: जी
1: हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है, आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको देखो शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाते हैं, सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही, सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से होगी, और अपने लिए नहीं लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चलाया जाए, लोगों के साथ इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज एक छोटी सी कोशिश है।
0: जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है वो मैं नहीं चला रही हूँ, पर हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं मैं कौन

0: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक एक घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज में बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो मैम हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग सोच रहे
1: जो मैंने वैल्यूज की बात करी है ना,
0: हैं।
1: नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे, तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं, हम उनको अचीव,
0: अचीव नहीं कर सकते मैम हम लोग।
1: बल्कि अगर जो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना। हाँ, तो ये
0: थैंक
1: बहुत जरूरी।
0: यू मैम।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है। हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी है। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे, जो आप जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे, आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें, क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता। ये जो
0: नहीं
1: मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैंने कम से कम 100 बारी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
0: यस
1: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
0: 100%। थैंक
1: हाँ,
0: यू मैम,
1: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सबको, और
0: थैंक यू मैम।
1: आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको और मराठी में बताएं, ठीक है?
0: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है, जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली।
1: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।
0: थैंक यू मैम।
2: हेलो मैम।
1: हाँ जी, हेलो, नमस्ते,
2: मैम नमस्ते, कैसे
1: मैं
2: हो आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ।
2: मैम आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच सच में।
1: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? प्रॉब्लम्स
2: ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम।
1: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलना है वो आपके हाथ में।
0: पर मैम
1: इतनी
0: सीरियसली, आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम, ऐसे लगता है जैसे आपने भी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका एक सेशन लिया था, उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर
1: मैं
0: दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग। बहुत अच्छे से आगे इस पे कोशिश करेंगे।
1: कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
0: जी मैम,
1: दैट
0: जी मैम,
1: वो जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए। प्लीज
0: जी मैम, जी मैम, जी
1: बना,
0: मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक
3: नमस्ते
1: यू।
3: मैम, आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाले है, इसलिए हम आपका आभारी है। और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए, और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गए, हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा, तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम, और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित होता रहता है। थैंक यू मैम।
4: थैंक यू सो मच तुषार। और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
0: थैंक यू मैम इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की, बिल्कुल गुरु जी ने चाहा तो बहुत जल्दी। थैंक यू मैम।
4: थैंक यू सुमन। All the best to everyone. Thank you so much for sparing your time and listening to me.
5: Namaste ma'am. आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमें काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
4: ठीक है सर।
1: गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून, कैसी हो? ठीक है
1: अच्छी हूँ। आप कैसे मैम? मैम आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
4: आप बस फिर उसको याद रखना है अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है ना
1: जी। मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
4: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचोगी। ठीक है
1: थैंक यू मैम।
6: नमस्ते। गुड इवनिंग मैम।
4: जी क्या हाल है मीना?
7: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
4: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
7: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
4: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो आप, मुझे पक्का विश्वास है,
7: जी है ना?
4: हाँ। और गुंजन भी आगे बढ़ेगी बहुत।
7: जी मैम अभी वैकेंसी निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है अभी नर्सिंग की।
4: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
7: और मैं कोशिश भी करती हूँ जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती है उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
4: बहुत अच्छी बात है, सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते बिफोर आई टेक अनदर सेशन आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ।
7: जी मैम।
4: तभी इस सेशन का फायदा है, नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम,
0: सब
1: गुड
0: अच्छे हैं।
1: गुड
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम।
0: मैम।
1: बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम। गुड
0: है। कोई और कैसे हैं? सब
1: आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम। हम
1: मैम
2: अच्छे
1: अच्छे, गुड
0: अच्छे हैं। और
1: मैम
0: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
1: ठीक है मैम, अच्छे
0: ठीक है। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: है
0: वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी है।
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
1: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: ठीक है,
1: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
1: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम। हाँ
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही हैं शायद, है ना?
2: अच्छे
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
2: मराठी में
0: सांगले, सांगले का क्या?
2: बात करते हैं मैम।
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है? अच्छे
2: अच्छे हम सब।
0: हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? महाराज
2: तुम्हें
0: आपके पीछे मुझे
2: बोला
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा रितु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस।
1: यस मैम,
2: यस मैम,
0: तो
1: यस
0: आज
1: मैम।
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिसपे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 ईज की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सकें, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है, या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
1: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखूं सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 ई नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ व्हाट?
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: एब्सोल्युटली। मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं, और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है। तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त, ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
0: होते
2: हो,
0: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
2: जैसा फील कर होते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: हम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया।
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: 5,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छः,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी
0: सात,
2: कभी
0: खुश,
2: गुस्से भी होता है।
0: 8, 8 इमोशंस हो गए। तो बिल्कुल ठीक, 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए? मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
2: यस मैम,
0: फुल स्क्रीन दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ई क्यू भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं, इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता। अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूव किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं, ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में, तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना, सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें, उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? देखिए
2: मैंने देखी है मैम, मैम
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है, उसको उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूं और उसको मैं पॉजिटिव, मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको। वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयर ही गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता। बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना, तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है तब, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं। एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80-90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाई, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे, आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही, अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाएं? ये आपकी मर्जी है, अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे, रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी, बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है, हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है, क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला, अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उससे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स, जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए, नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट। अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है, या कोई गोल, या अब जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है, बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
2: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
2: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था, तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना, जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा, भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का, तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
2: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम.
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है. इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है. इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा. जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे. अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता. तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी कर रहा है, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं आता, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर. ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं. चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने. तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं. आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने. मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए. हेलो
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
2: बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है. इतना सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया. कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है.
2: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा आप बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आ रहा था कि नेगेटिव इमोशन जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं. हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा. अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते. अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है. इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है. हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है. अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके. एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं. हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है. एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक. तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है. कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता. तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते. कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है. वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं. बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है. जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है। आज के दिन की ये चार बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी, और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट। लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता। लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछिए ही मत। वो कोई मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
2: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूं, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
2: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, ई क्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को, कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी दिन, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट। बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
1: हेलो मैम, मैम
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
1: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जैसे
2: जितने मेरे पेंडिंग काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई, तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी। तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम, जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
1: हाँ सर,
2: लेकिन सबके अंदर होता है, वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, पर

0: हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप इस समय आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए
1: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते हैं, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता है, कपड़ा बांध देता है, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस हैं वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और वो हो ही गया, क्यों, क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखोगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना, आप मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, मुझे लगता था गुस्सा हंसी खुशी यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं, पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं, हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए, आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
2: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
1: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
2: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है, और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही, और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है।

0: पर आप लोगों से सीखा है, थैंक यू मैम इसके लिए।
1: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।

0: आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ दलजीत सचदेवा
1: और मैं चांदनी वर्मा।
0: नमस्कार
1: दलजीत, कहते हैं कि किसी भी चीज को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है, क्यों?
0: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि चीज खूबसूरत नहीं होती बल्कि उसे देखने वाले की निगाहें अच्छी होती हैं, उनका नजरिया खूबसूरत होता है।
1: बिल्कुल, और एक नजरिया होता है विज्ञान का, जो किसी भी घटनाक्रम को या किसी भी स्थिति को या फिर किसी भी वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापता है और फिर पहुँचता है एक ठोस नतीजे पे।
0: और तभी तो कहते हैं कि विज्ञान ने हमें जीने के नए मायने दिए हैं और हमारी सोच को नई दिशा,
1: और इसी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक चेतना जगाने का बीड़ा उठाया है विज्ञान प्रसार ने।
0: जी हाँ दोस्तों, विज्ञान प्रसार के माध्यम से आपको मिलती है विभिन्न विषयों की रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
1: और दोस्तों, आज वैज्ञानिक कार्यक्रमों के इस श्रृंखला में हम प्रस्तुत करते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या पर आधारित कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे सन यानी सूरज के बारे में।
0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हम सूरज के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चांदनी शुरू करें सीखने सिखाने का ये सिलसिला।
1: बिल्कुल, तो चलो सबसे पहले हम सूरज का परिचय प्राप्त करते हैं। सूरज पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी तारों की अपेक्षा ये पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा निकट है, और तारों के बारे में हम जितना भी जानते हैं उनके बारे में हमें सूरज के अध्ययन से ही पता चला है। जैसा कि हमने कहा कि ये बाकी तारों की अपेक्षा पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा नजदीक है, इसीलिए खगोल शास्त्रियों ने इसका विस्तृत अध्ययन करने में सफलता हासिल की है।
0: और खगोल शास्त्रियों के अध्ययन से ये पता चला कि सूर्य G2 टाइप मेन सीक्वेंस तारा है, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष से चमक रहा है। पृथ्वी, चंद्रमा और उल्कापिंड की रेडियो सक्रियता से ये पता चला कि ये इतने ही वर्षों से हैं, और पृथ्वी का तापमान शुरू से ही सुखद है और सूर्य की ऊर्जा से ही ये संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सूर्य की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब प्रयोगों और अध्ययनों के बाद ये पता चला है कि सूर्य के साथ साथ बाकी तारों की असीम ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। दलजीत, अब बात आती है सूर्य के आकार की, तो इसके बारे में तुम क्या कुछ बता सकते हो?
0: देखो चांदी, सूर्य अभी तक सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके 0.5 डिग्री कोणीय आकार और तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूरी के आधार पर इसके व्यास का आकलन किया गया है, जो करीब 1,392,000 किलोमीटर है। ये व्यास पृथ्वी के व्यास का करीब 109 गुना है और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से 10 गुना ज्यादा है। चांदनी, यहाँ एक खास बात और बता दूं कि सूर्य के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
1: हाँ, सूर्य पृथ्वी के आकार से करीब 3,33,000 गुना ज्यादा और बृहस्पति से करीब 1,000 गुना ज्यादा बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि सूर्य इतना बड़ा है कि ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर लेता है, और इसकी यही खासियत तारों को ग्रहों से अलग कर देती है। दलजीत, ये बताओ कि सूरज की संरचना कैसी है?
0: देखो चांदनी, ये अच्छा सवाल वैसे तुमने पूछा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ये पता चलता है कि ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 94% और हीलियम की 6% है। बाकी के तत्व बहुत ही थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.13% में है।
1: लेकिन दलजीत, कम मात्रा में पाए जाने वाले ये तत्व कौन कौन से हैं?
0: देखो चांदनी, सूरज की संरचना में जो तत्व काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं उनमें नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और आयरन है। तो ये तो बात थी कि सूरज किन किन चीजों से मिलकर बना है। चांदनी, अब तुम इसकी अंदर की संरचना के बारे में कुछ बताओ।
1: जरूर, सूरज का बीच का हिस्सा या इसका अंतर्भाग सूरज के आकार का 10% हिस्सा है। सूरज का यही वो हिस्सा है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके ऊपर के सभी हिस्सों के गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण ये हिस्सा काफी ज्यादा गर्म और सघन होता है। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए काफी ज्यादा तापमान और घनत्व की जरूरत होती है।
0: सूरज का अंतर्भाग करीब 16 मिलियन के है और इसका घनत्व पानी के घनत्व से करीब 160 गुना ज्यादा है और लोहे के घनत्व से 20 गुना ज्यादा है। हालांकि काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से सूरज का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ गैसों से भरा हुआ है। इसके अंदरूनी हिस्से में कहीं भी पृथ्वी की तरह पिघले चट्टान नहीं पाए जाते हैं। चांदी, अब तुम ये बताओ कि सूरज का रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन क्या है?
1: बताती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो श्रोताओ, जाइएगा मत, हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: विज्ञान प्रसार सूचना सेवा यानी विप्रिस भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों का संग्रह है। विज्ञान प्रसार अपने होम पेज दैट इज www.vigyanprasar.com को व्यवस्थित एवं सामयिक करने के अतिरिक्त सीडी रोम एवं अनेक सीखने वाले सॉफ्टवेयरों को विकसित करता है। ये होम पेज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य वेबसाइट है। विप्रिस 125 हिंदी एवं अंग्रेजी समाचारों को संकलित करके एक पुस्तक क्लिप सेट ग्राहकी आधार पर हर पखवाड़े प्रकाशित करता है। विप्रिस अन्य वैज्ञानिक निकायों एवं संस्थाओं की भी वेबसाइट बनाता है।
1: ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दलजीत ने मुझसे सूरज के रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बारे में पूछा था, क्यों दलजीत?
0: बिल्कुल ठीक, तो जल्दी बताओ भाई।
1: देखो, सूरज के त्रिज्या का करीब 85% भाग रेडिएटिव जोन कहलाता है। और ये वो हिस्सा है जहाँ गर्म अंदरूनी भाग से ऊर्जा फोटॉन्स के जरिए बाहरी परतों तक पहुँचाई जाती है।
0: और कन्वेक्टिव जोन?
1: सूर्य के त्रिज्या के बाहरी 15% हिस्से में ऊर्जा जिस विधि से पहुँचाई जाती है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। फोटोन रेडिएशन का प्रवाह ठंडे हिस्सों में आयनों द्वारा बाधित कर दिया जाता है और इन हिस्सों में गैसों के प्रवाह से ऊर्जा पहुंचाई जाती है। सूरज की सतह के ठीक नीचे का ये हिस्सा कन्वेक्टिव जोन कहलाता है।
0: बिल्कुल ठीक। और अब बात करते हैं सूरज की सतह की। सूर्य की सबसे अंदरूनी सतह फोटोस्फीयर है, इसे ही सूरज की सतह मानते हैं क्योंकि इसी के ऊपर से फोटॉन्स अंतरिक्ष में निकलते हैं। ये फोटोस्फीयर तकरीबन 500 किलोमीटर घना है और इसका तापमान करीब 5840 के है।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी संदर्भ में गैलीलियो ने पाया था कि सूरज की सतह पर छोटे छोटे गहरे हिस्से थे जिन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं और ये हिस्से फोटोस्फीयर के ठंडे हिस्से माने जाते थे। चूंकि ये हिस्से बाकी के फोटोस्फीयर से 1000 से 1500 के गुना ज्यादा ठंडे हैं, इसीलिए इनसे रोशनी उत्पन्न नहीं होती और ये गहरे नजर आते हैं। इन सन स्पॉट्स या गहरे हिस्सों की उम्र सिर्फ कुछ दिनों से कुछ महीनों तक की ही होती है।
0: और गैलीलियो ने ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने वाले सन स्पॉट्स की मदद से सूर्य की घूर्णन विधि का अंदाज लगाया। चूंकि सूरज गैसों से बना है इसलिए इसके सभी हिस्से सामान गति से नहीं घूमते हैं। सूरज की भूमध्य रेखा 25 दिनों में एक बार घूमती है, जबकि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा 26.5 दिनों में एक बार घूमता है और भूमध्य रेखा से 60 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा घूमने में 30 दिनों का वक्त लेता है।
1: दलजीत, बिल्कुल सही कहा तुमने। सूर्य पर पाए जाने वाले ये सन स्पॉट्स काफी दिलचस्प हैं। वर्षों तक इन सन स्पॉट्स का अध्ययन करने पर ये पता चला कि इन सन स्पॉट्स की संख्या एक नियत वक्त के साथ बदलती रहती है। इस सन स्पॉट साइकिल की शुरुआत में सन स्पॉट्स की संख्या न्यूनतम होती है और उनमें से ज्यादातर सन स्पॉट सूरज की भूमध्य रेखा से 35 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। करीब 5.5 सालों के बाद इन सन स्पॉट्स की अधिकतम संख्या होती है और उस वक्त ज्यादातर सन स्पॉट्स भूमध्य रेखा के 5 डिग्री कोण पर होते हैं।
0: बिल्कुल, ये सन स्पॉट्स
1: भूमध्य रेखा के 5 डिग्री कोण पर होते हैं।
0: बिल्कुल, ये सनस्पॉट्स अत्यधिक चुंबकीय शक्ति वाले क्षेत्र हैं और ये सनस्पॉट स्पेक्ट्रा की स्पेक्ट्रल लाइंस को प्रभावित करते हैं। हर स्पेक्ट्रल लाइन कई भागों में बढ़ जाती है और इन भागों के अंतर से चुंबकीय शक्ति की माप की जाती है।
1: बिल्कुल, और ये भी माना जाता है कि सनस्पॉट साइकिल के जिम्मेदार यही चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 11 साल के एक चक्र में सनस्पॉट ग्रुप का सबसे आगे वाले सनस्पॉट का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय होता है, जबकि सबसे पीछे वाले सनस्पॉट का दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय होता है। अगले 11 साल के चक्र में बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इस तरह से इस पूरे चक्र की अवधि होती है 22 सालों की।
0: जब सूर्य में सनस्पॉट की संख्या अधिक होती है उस वक्त ये हिस्से काफी चमकीले और धधकते नजर आते हैं। ये चमकीले हिस्से गैसों के बादल होते हैं जो सनस्पॉट्स के ऊपर बनते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं।
1: और सूरज की सतह से 40,000 किलोमीटर ऊपर का हिस्सा कोरोना या सूरज का वायुमंडल कहलाता है, जो अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है। कभी कभी चुंबकीय क्षेत्रों में बने घेरों का अनुसरण करने वाले हाइड्रोजन गैस के घेरे भी बन जाते हैं। ये शांत क्षेत्र कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो सिर्फ कुछ घंटों तक ही टिकते हैं और उनसे काफी मात्रा में गैस निकलती है जो फोटोस्फेयर से करीब 3,00,000 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है।
0: सूरज के जो धधकते हिस्से हैं, वो इसके शांत क्षेत्र से काफी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये केवल कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक ही जीवित रहते हैं और इन धधकते हिस्सों से काफी प्रायोनिक तत्व भी निकलते हैं। इन हिस्सों की खासियत ये होती है कि इनके द्वारा छोड़े गए तत्व इतनी ऊर्जा से निकलते हैं कि इन पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी असर नहीं पड़ता है। कभी कभी तो इन आयनों का विस्फोट जब पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो रेडियो कम्युनिकेशन में बाधा भी डालता है।
1: और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर यात्रा करने वाले इंसानों को इन शक्तिशाली आयन विस्फोटों के प्रभाव से बचने के लिए रक्षा कवच का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
0: सूर्य की सतह का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से ये पता चला कि इस पर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना है जिसे ग्रैनुलेशन कहा जाता है। ग्रैनुलेशन चमकीले बिंदुओं से बना है और ये करीब 700 से 1000 किलोमीटर तक फैला है। हर ग्रैनुल के बीच से गर्म गैस निकलती है जो इसके अंदर से बाहर की सतह तक ऊर्जा का संचार करती है। एक ग्रैनुल करीब 8 मिनट तक जीवित रहता है। चांदनी, अब तुम हमें सूर्य के वायुमंडल के बारे में कुछ बताओ।
1: देखो, हम सूर्य के अंदर के

0: हिस्से से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं तापमान और घनत्व घटता जाता है, और जैसे जैसे हम सूर्य के वायुमंडल की तरफ जाते हैं घनत्व के घटने का क्रम जारी रहता है। हालांकि फोटोस्फेयर के ऊपर तापमान बढ़ता जाता है, हालांकि इस तापमान वृद्धि का सही सही कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ सिद्धांतों के आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनिक वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स तापमान वृद्धि में सहायक होते हैं।
1: अब बात करते हैं क्रोमोस्फीयर की। देखो, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा के किनारे पर एक पतली गुलाबी परत देखी जा सकती है। यह रंगीन परत क्रोमोस्फीयर है, जो करीब 2000 से 3000 किलोमीटर मोटी है। क्रोमोस्फीयर का तापमान अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है। चूंकि इसका घनत्व कम है, इसलिए इस पर हाइड्रोजन की रेखाएं या हाइड्रोजन लाइंस देखी जा सकती हैं। चांदनी, क्रोमोस्फीयर के बारे में जानने के बाद हमें अब तुम ये बताओ कि ये कोरोना क्या होता है।
0: बताती हूँ भाई, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: विज्ञान प्रसार की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1989 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बड़े पैमाने पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के कार्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। विज्ञान प्रसार का प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर जहां तक संभव हो समाज में वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना तथा प्रसारित करना है।
3: आरंभ से ही विज्ञान प्रसार लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों एवं मासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता रहा है। विज्ञान प्रसार ने लगभग 100 से अधिक शीर्षकों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में हैं। पिछले वर्षों में प्रकाशित कुछ श्रृंखलाएं इस तरह से हैं: वैज्ञानिक जीवनी श्रृंखला, भारतीय विज्ञान की कालजयी कृतियों की पुनर्मुद्रण श्रृंखला, भारतीय वैज्ञानिक विरासत श्रृंखला, प्राकृतिक इतिहास श्रृंखला और स्वास्थ्य श्रृंखला। विज्ञान प्रसार द्विभाषी मासिक न्यूज़लेटर ड्रीम 2047 प्रकाशित करता है। ड्रीम 2047 में प्रकाशित बहुत से लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी पुनः प्रकाशित हुए हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोरोना की।
1: और तुम हमें कोरोना के बारे में बताने वाली थी।
0: बिल्कुल, सुनो, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उस स्थिति में चंद्रमा फोटोस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेता है। और इस गहरे चंद्रमा के चारों ओर सफेद मोती सा नजर आता है कोरोना, और इसका तापमान करीब 10 से 20 लाख के या यूं कहें कि बहुत ज्यादा होता है।
1: कोरोना अत्यधिक तापमान वाला क्षेत्र है, क्योंकि अणुओं से काफी इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ काफी आयन बचे हुए होते हैं।
0: लेकिन दलजीत, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकल जाते हैं?
1: भाई, वही तो बताने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से इनके अणु आपस में टकराकर इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और ये प्रक्रिया आयनाइजेशन कहलाती है। कभी कभी तो शक्तिशाली सौर गतिविधियों की वजह से तापमान 36 लाख केल्विन तक पहुंच जाता है।
0: दलजीत, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना का ज्यादातर हिस्सा सूर्य की चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से सूर्य के नजदीक ही होता है। एक्सरे से देखने पर ये हिस्से चमकीले नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र से दूर होने की वजह से ये गहरे नजर आते हैं, और इन्हें कोरोनल छिद्र कहते हैं। दलजीत, क्या तुम बता सकते हो कि सोलर विंड क्या है?
1: देखो चांदनी, तेज गति के आयन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकल आते हैं, और इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि ये एक सेकंड में कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं।
0: अच्छा।
1: और तेज गति से घूमते हुए ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन सौर मंडल के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, और इन्हें सोलर विंड कहते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। और इसी सोलर विंड के कण जब किसी ग्रह के नजदीक से गुजरते हैं तो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ग्रह के चारों तरफ बिखर जाते हैं। कुछ कण ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। जब ये आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो यहाँ वायुमंडल में मौजूद गैस इमिशन स्पेक्ट्रा बनाती है, जो उत्तर में ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिण में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है।
1: और इसी तरह पृथ्वी पर लाल ऑरोरा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर हाइड्रोजन के उत्सर्जन से बनती है, जबकि इससे थोड़ा नीचे बनती है हरी या ग्रीन ऑरोरा, और ये बनती है ऑक्सीजन के उत्सर्जन से। जब सूर्य की गतिविधियां काफी तेज होती हैं, उस वक्त इन सोलर विंड के कणों की संख्या और ऊर्जा दोनों बढ़ जाती हैं, और इस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में दिखने वाले ऑरोरा भी काफी बढ़ जाते हैं। चांदनी, ये बताओ कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है?
0: दलजीत, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तुमने। सूरज लाखों करोड़ों वर्षों से हर पल प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ये एक दिलचस्प विषय भी है। काफी अध्ययन के बाद खगोल शास्त्रियों को अब ये पता चल गया है कि सूरज अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इतने लंबे समय से इतनी ऊर्जा का उत्पादन करना अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। दलजीत, क्या तुम्हें पता है कि सूरज से कितनी ऊर्जा निकलती है?
1: चांदनी, वैज्ञानिकों को गणना के आधार पर ये पता चला कि सूरज से लगभग 4×10^26 वाट ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़े पावर प्लांट से भी 8×10^16 गुना ज्यादा है। जानती हो, हमारा सबसे बड़ा पावर प्लांट करीब 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है।
0: हाँ, और इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे 2.5×10^9 बड़े पावर प्लांट एक साल में जितनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उतनी ऊर्जा सूरज से एक सेकंड में निकलती है। अब सवाल ये आता है कि इतनी ऊर्जा का संभावित स्रोत क्या है?
1: और इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पानी बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है। अब अगर हम ये मान लें कि सूरज अपने अंदर के समूचे हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस अभिक्रिया में कर ले तो इससे निकली ऊर्जा सूर्य को केवल 18,000 साल तक चमकाने के लिए काफी है। वैसे तो ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से काफी कम है, इसलिए ये अभिक्रिया सूरज को सिर्फ 30 साल तक ही ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
0: दलजीत, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और ज्यादा प्रभावशाली अभिक्रिया होनी चाहिए, बल्कि ऐसी अभिक्रिया हो जो ऊर्जा उत्पादित करने में 100% सक्षम हो, और ऐसी अभिक्रिया सूरज को 10^13 वर्षों तक ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
1: और इसी संबंध में अध्ययन होते गए और लोगों की नजर में ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत आया।
0: और क्या है वो ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत?
1: देखो, इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम किसी चट्टान को जमीन के ऊपर हवा में पकड़ते हैं तो इसकी ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी के रूप में होती है।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम इस चट्टान को जमीन पर छोड़ते हैं तो इस ऊर्जा का निकास होता है। ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और ये चीजों को गर्म कर सकती है। ऐसा ही हुआ होगा सूरज की परतों के साथ। अगर सूरज की ये परतें केंद्र की तरफ दबें तो इससे गैसीय दबाव पैदा होगा और तापमान भी बढ़ेगा और गैसों से रोशनी भी निकलेगी।
0: बिल्कुल ठीक। इस शतक की शुरुआत तक तो वैज्ञानिक इसी धारणा के पक्ष में तर्क देते रहे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा या ग्रेविटेशनल एनर्जी सूर्य को सिर्फ 30 मिलियन साल तक शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय तत्वों की सहायता से सौर मंडल की पूरी उम्र का अंदाज लगाया और ये पाया कि सौर मंडल यानी कि सूर्य भी तकरीबन 4.6 करोड़ वर्ष पुराना है। तो फिर वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वो कौन सा स्रोत है जो सूर्य को इतने वर्षों से ऊर्जा दे रहा है।
1: और काफी अध्ययन के बाद पता चला कि ये स्रोत है न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय शक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र ऐसा कारण है जो सूर्य के प्रकाश को इतने लंबे समय से बनाए हुए है।
0: हाँ, और इसी के अंतर्गत आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं से एक अणु का केंद्र दूसरे अणु के केंद्र या न्यूक्लियस में परिवर्तित हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे काफी बड़े यूरेनियम के केंद्र हीलियम और लेड के छोटे न्यूक्लियाई या केंद्र में टूटते हैं फिजन की प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा ऊर्जा भी निकलती है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं, और इस तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है।
0: बिल्कुल,
1: एटॉमिक पावर प्लांट्स और एटम बॉम्ब ऊर्जा के लिए फ्यूजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तारे और हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन से ऊर्जा अर्जित करते हैं। क्यों जानने?
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने सूरज के बारे में विस्तार से जाना, जिसे हम देखते तो हर रोज हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये अपने अंदर इतनी जानकारी छिपाए हुए है।
1: बिल्कुल, और ये संभव हो पाया विज्ञान प्रसार के माध्यम से। तो यूं ही सुनते रहिए विज्ञान प्रसार के कार्यक्रम और अपनी सोच को दीजिए एक नई दिशा।
0: जी हाँ दोस्तों, और हमें लिख भेजिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016।
1: पता एक बार फिर, विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016।
0: तो आपके लिए तमाम खुशियों की कामना करते हुए मैं चांदनी
1: और मैं दलजीत
0: आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप तक किन लोगों के माध्यम से पहुंचाया गया, ये हम आपको बताना चाहेंगे। कार्यक्रम के श्रृंखला निर्देशक हैं डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन, शोध मृदुला बालाकृष्णन, सलाहकार डॉक्टर बीवी कामले, विमान बसु डॉक्टर जीके मदे, वाचन स्वर चांदनी वर्मा और दलजीत सचदेवा का, रिकॉर्डिंग संपादन और मिश्रण सदन लाल मेहता, और प्रस्तुति सहयोग प्रिया नटराजन और मृदुला बालाकृष्णन।
4: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
5: उपग्रह संचार क्या है? उपग्रहों के बिना विश्वव्यापी संचार प्रणाली की बात सोची भी नहीं जा सकती है। जाने माने विज्ञान कथाकार आर्थर सी क्लार्क ने 1945 में अपनी पुस्तक वायरलेस वर्ल्ड में विश्वव्यापी संचार प्रणाली के बारे में कल्पना की थी। यह प्रणाली ऐसे मानव युक्त अंतरिक्ष केंद्रों पर आधारित थी जो धरती के अपने अक्ष पर घूमने की रफ्तार से ही अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर काटते थे। भूस्थिर उपग्रहों की कल्पना भी उनके मन में तभी पैदा हो चुकी थी। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर आकाश में एक खास ऊंचाई पर घूमते हैं। इन्हें अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी को अपने अक्ष में एक बार घूमने में लगता है। ये उपग्रह भी पृथ्वी के घूमने की दिशा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए धरती के सापेक्ष एक ही स्थान पर रहते हैं और जमीन से देखने वाले किसी व्यक्ति को स्थिर नजर आते हैं। अगर भूतलीय माइक्रोवेव संचार प्रणाली से तुलना की जाए तो ऐसे उपग्रहों की वही भूमिका होती है जो रिपीटर स्टेशनों की होती है। भूतलीय रिपीटर स्टेशन सिग्नल प्राप्त कर उनकी प्रबलता बढ़ाते हैं और फिर इसे और बड़े क्षेत्र में प्रसारित कर देते हैं। लेकिन उपग्रहों को रिपीटर स्टेशनों की तरह इस्तेमाल करने का फायदा यह होता है कि इनका प्रसारण का दायरा, जिसे फुटप्रिंट कहा जाता है, काफी बड़ा होता है। धरती की आधी सतह से कुछ ही कम क्षेत्र में एक भू स्थित उपग्रह के दायरे में आ जाता है। इसलिए अगर पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में 88,000 किलोमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों में तीन उपग्रह स्थापित कर दिए जाएं, तो ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारी पृथ्वी इनके दायरे में आ जाती है। इस तरह दूर दराज के इलाकों को भी इस संचार प्रणाली के अंतर्गत लिया जा सकता है और उनसे सीधा संपर्क कायम किया जा सकता है। उपग्रह संचार प्रणाली के लिए प्रसारण भू केंद्र तथा अभिग्रहण भू केंद्र और इनके बीच संपर्क के लिए उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। दो भू केंद्रों के बीच रेडियो आवर्ती संपर्क को उपग्रह संपर्क कहा जाता है। उपग्रह संपर्क में उपग्रह को सिग्नल भेजने के लिए अपलिंक प्रणाली और उपग्रह से आए सिग्नलों को ग्रहण करने के लिए डाउनलिंक प्रणाली लगी रहती है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
1: अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
2: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
1: नहीं नहाओगे तो वैसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
2: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
1: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
2: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
3: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
4: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
5: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
4: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
2: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
2: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
2: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
4: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं।
3: ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
6: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें। कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
3: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो?
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक किसी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलेनिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: सो अभी तक किसी को किसी सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट टू सेशंस जो हमने करे थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
1: मैम अंजुम का जो कि स्टूडेंट है ब्यूटी की, उनका सवाल है, वो एक बार एक सवाल करना चाहती है मैम, आप प्लीज उनका आंसर दीजिए।
0: मैम अंजुम बोल रही हूँ। आप टीवी के बारे में पूछना चाह रही हैं?
1: यस मैम, यस मैम।
0: क्या पूछना चाह रही है टीवी के बारे में?
1: मैम वो जो आपने कल बताया था ना, तो वो थोड़ा समझने क्लियर समझ नहीं आया। उसके लक्षण क्या है, उनके जैसे क्या कर सकते हैं उनसे बचने के लिए, थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया।
0: टीबी जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, और टीबी के जो लक्षण होते हैं वो खांसी होती है लगातार 3 से 4 हफ्ते तक, उसके साथ अगर ब्लड आता है और चेस्ट में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बुखार चढ़ना, थकावट होना, ये सब उसके लक्षण हैं। इससे कैसे बचा जाए कि आपके एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, और घर में रहना है, अगर किसी को भी टीबी होता है उसको घर में रहना है, मास्क पहनकर रहना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करना है। टीबी जो है

की टीबी आपको है या नहीं। और ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी मेडिकेशन है, जो आपको दवाइयां मिलेंगी उसको दवाइयों को लेना है, टाइम से टाइम लेना है, अपना अलग रहें, अपना अलग कमरे में, जो भी टीबी का मरीज है उसको अलग कमरे में रखें, और उनके जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनको भी सावधानी बरतनी है, कहीं इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिसका प्रश्न था उसको समझ आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पे। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो किशोर अवस्था जो स्थिति होती है, जो हर बच्चे के दौरान, हर बच्चे की जिंदगी में आती है, हर इंसान की जिंदगी में मैं बोलूंगी आती है, हम भी उस स्टेज से गए हैं जिसमें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, मानसिक स्थिति में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, ये बच्चा बच्चा नहीं रहता है और हम उसको बड़ा भी नहीं कर सकते। ये बच्चे और बड़ा होने के बीच का पीरियड होता है, जो हम कहते हैं 10 से 18 या 19 साल का पीरियड होता है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक और मानसिक चेंजेस होते हैं, और आपके हाव भाव में आपका बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं, हर हर किसी में दिखने को मिलते हैं। तो इसके तीन स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली की उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल 14 से 16 साल, और लेट की होती है 17 से 19 साल की उम्र। तो अर्ली जो एडोलेसेंस होता है, अर्ली मतलब जल्दी जो आता है हमारा 10 से 13 साल की उम्र में आता है, इसमें मूड चेंजेस बहुत होते हैं। मतलब आपकी बच्चे के मूड चेंज बहुत होगा, बच्चा जो है अपनी चैलेंज, अपनी इंडिपेंडेंट मांगता है, चैलेंजेस को फेस करता है, जो उसकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस उसको फेस करता है, फैमिली मेंबर्स लोगों से दूर जाना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उनके काम में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, उनके काम में कोई उसको बोले ना। तो ये सब चेंजेस दिखते हैं अर्ली एडोलेसेंस में। फिर मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है, जब 14 से 15 साल के होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ये लोग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, एंड इसमें बहुत ज्यादा ख्वाब भी लेने शुरू कर देते हैं। बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो कभी पॉसिबल हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे, और खासकर दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा शुरू करते हैं कि दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे, आज मेरा ये नया दोस्त बना, कल वो आकर बोलेंगे कि नहीं आज मैं उससे नहीं बात करा, उसने ये कर दिया तो आज मैं दूसरे दोस्त बन गया। तो दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट रिस्क हो जाता है, किस संगति में वो जा रहे हैं, किस फ्रेंड से वो मिल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत होता है। खासकर ये स्टेज जो होती है लड़कों की या लड़कियों की, जो भी है, गलत संगति में जाकर गलत आदतें शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली ये स्टेज होती है। फैमिली के साथ लो पेरेंट्स से दूर होना, पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू हो जाना, एक अपनी वैल्यू बनाना, किसी को कुछ ना बताना, शायद ये स्टेज आती है। फिर लेट एडोलेसेंस जो होती है 17 से 18 या 19 साल, उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, तो उस गोल की तरफ वो लोग पढ़ाई भी और अपनी सोशल जिंदगी भी उस गोल की तरफ लेकर जाते हैं। अपनी फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनकी जो शारीरिक चेंजेस बॉडी में आए हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का, और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना और अपनी एडल्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना, ये एक एडल्ट लेट एडोलेसेंस में होता है। अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था क्या होती है कि हमारी जो शारीरिक चेंज बच्चों में दिखते हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी आपकी फिजिकल चेंजेस, आपकी शारीरिक चेंजेस बॉडी में जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो,

0: को हम शारीरिक चेंजेस को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। कोई जात नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। हर बच्चे के, हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनकी जिंदगी में ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो चेंजेस होता है सबसे ज्यादा, जो बड़ा चेंज है, वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना 8 से 9 साल या 10 साल की उम्र में होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं शुरू होते। ऐसा है, ये हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है। आपकी, आपको शरीर जो भगवान ने दिया है और मुझे जो शरीर भगवान ने दिया है, हम दोनों को अलग अलग शरीर दिया है। चाहे चीजें अंदर सेम है, पर जो अंदर की फंक्शंस हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिसिटी, मेरी इम्यूनिटी, बहुत फर्क करती है। तो हर किसी की बॉडी पे ये फर्क पड़ता है कि कब पीरियड शुरू हो रहे हैं और कब जल्दी हो रहे हैं या लेट में हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को ये पीरियड्स 8-9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में हो जाते हैं, किसी किसी को 13-14 साल की उम्र में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस दिखती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना, मतलब चेस्ट बढ़ना, हेयर ग्रोथ होना, आपका फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी ऑर्डर, शरीर से स्मेल आना, और क्रैम्प्स पड़ना, शरीर में दर्द होना, ये सब हमें देखते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब अंदर बॉडी में होते हैं तो ये सब चीजें हमें शरीर में दिखने को मिलती हैं। वेट में गेन होना भी एक मेजर शारीरिक चेंज है। प्यूबर्टी इन बॉयज क्या होता है, लड़कियों, लड़कों में क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? आवाज जो है उनकी, वो भारी हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, उनके भी शरीर में एक्ने, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस दिखने हैं, शरीर में बॉडी ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लड़के लड़कियों में अलग अलग चेंजेस होते हैं, पर ये हर एक किसी की जिंदगी में आता है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, हर एक औरत को, हर एक लड़की को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। आप सबको ही पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आती हैं तो एक औरत प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, और ये हमारे हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं, और हर महीने ये साइकिल आती है। किसी का 25 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 दिन का साइकिल होता है, कि उनको 30th डे पे ही आता है, किसी को आगे भी बढ़ जाता है। पर मैं यही सबको एडवाइस करूंगी कि अगर किसी को मेंसेस में प्रॉब्लम है तो गायनिक, गायनिकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके लिए, उससे ही संपर्क कर कोई मेडिकेशन शुरू करें, अपने आप से कोई मेडिकेशन नहीं शुरू करें। अब मेंसेस, जब पीरियड्स के दौरान हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हाइजीन होता है उसका ध्यान रखना है, और सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत ज्यादा ध्यान। आज भी बहुत सी औरतें जो हैं कपड़ा यूज करती हैं जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज, कौन सा डिजाइन, और किस किस चीज आपको, किस चीज कंफर्टेबल है, कौन सा सैनिटरी नैपकिन आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे आपको, उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और first 2 days, पहले 2 दिन जो हैं, हमें 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि first 2 days बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है तो बहुत गंदी स्मेल भी आती है बहुत लोगों के में से। तो फिर हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में ना जाए दोबारा से, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज कर सकते हैं। और सैनिटरी नैपकिन को चेंज करने के बाद उसको रैप कर डस्टबिन में थ्रो करना है, न्यूज़पेपर में रैप कर डस्टबिन में थ्रो करें, मेक श्योर डस्टबिन जो है आपके रूम में ना हो, किचन में ना हो, ऐसी जगह हो जहां पर स्मेल, उस सैनिटरी नैपकिन्स में से स्मेल किसी भी घर के अंदर ना आए, और जो फ्रेश पैड लगाकर अपने हाथों को, सैनिटरी नैपकिन लगाकर अपने हाथों को पानी से और साबुन से वॉश कर लेना है। ये हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ ही साथ हमें नहाना भी है, रोज नहाए, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से जरूर नहाए, लूज कपड़े पहने, जितना हो सके लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, रैशेस पड़ने का डर रहता है, और बहुत सारा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी पिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना खाएंगे, आयरन खाएंगे, क्योंकि आयरन हमारे ब्लड में, ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जो सबसे बड़ी डिजीज हो जाती है, वो होती है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन होता है, ये एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें चेंज करना चाहिए, चाहे आप कॉटन का यूज करो, चाहे आप दूसरा कोई भी मटेरियल का यूज करो। यूटीआई इन्फेक्शन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, जो बहुत, जिनको बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है, तो उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने का डर होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या है, व्हेन जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक में एंटर करता है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स से ही ये ठीक हो पाता है, और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके पानी पीना है, ताकि यूरिन के थ्रू वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी से बाहर जाए। अगर हम पैड्स नहीं चेंज करेंगे तो बैक्टीरियल पैड में इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो हमारे यूट्रस में जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। और यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो, अगर हम हाइजीन भी नहीं मेंटेन करेंगे तब भी हो सकता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का हेवी क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्या यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो इरेगुलर साइकिल, मतलब बहुत लोगों को साइकिल डिले होते हैं या बहुत टाइम के बाद होते हैं, ऐसा भी प्रश्न होता है। यूटीआई इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लेना, मतलब आपस में लेना देना नहीं है। अगर आपने मिस किया है तो कहीं आपको स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, पर यूटीआई इन्फेक्शन से कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल चेंजेस होते हैं तो हम लेट, हमारे जो पीरियड्स हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी और इमोशनल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इस दौरान बहुत होते हैं, तो हमें अपने आपको स्ट्रेस नहीं करना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, ताकि हम जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरली होती रहे। क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप यूरिन करेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, सडन, मतलब एक अर्ज होती है यूरिन करने की पर आपको यूरिन नहीं आता है, और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा उधर, तो ये सब लक्षण दिखते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ यही यूटीआई का ट्रीटमेंट यही है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर हम अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो हम इन्फेक्शन, हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और इट कैन बी डेंजरस, ये एक यूटीआई इन्फेक्शन डेंजरस भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है?
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी शशि जी।
1: मैम मेरी यहाँ पे काफी सारी गरिमा ग्राम में बहुत सारी लड़कियां हैं, और ये सेशन
0: जी
1: आज का जो है बहुत अच्छा है मैम, और सभी लड़कियों के सवाल है वो वन बाय वन पूछना चाहती हूँ मैम, उनके क्वेश्चंस के मैम आंसर वो क्लियर कीजिए प्लीज मैम। सबसे पहले पूछना चाह रही है अंजुम।
2: हेलो मैम,
0: हाँ जी
2: नमस्ते मैम। मैं
0: नमस्ते।
2: पूछना चाहती हूँ कि मैम हमारे जो फिजिक्स आते हैं ना, तो मतलब कमर इतने तेज हैं, दर्द होते हैं, तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, जो पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्स आते हैं, ये एक नॉर्मल हर एक लड़की को होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। उसमें आप दवाई भी, मैं तो कहूंगी उसमें दवाई भी नहीं लेना चाहिए। ये जो पीरियड्स क्रैम्स या पेन होते हैं, ये एक नॉर्मल बॉडी का साइकिल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है।
2: हेलो मैम।
0: आप? हाँ जी
2: मैम ऐसा होता है ना कि मतलब कई एक मतलब इस महीने मतलब पीरियड नहीं आता है 1 महीने तक, वो क्यों होता है ऐसा?
0: देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अपनी अपनी शरीर है, अपना अपना बॉडी है। अगर मिस हुआ है पीरियड तो
2: हाँ, मिस हो जाता है कई बार।
0: मिस हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से बात करनी है। आपका वो अगर ज्यादा मिस होता है तो अल्ट्रासाउंड होकर आपके
2: नहीं
0: जो
2: मैम,
0: प्रॉब्लम्स।
2: तो नहीं होता है, एक ही
0: हाँ
2: महीने
0: जी,
2: मतलब मिस होता है, उसके अगले महीने आ जाता है।
0: तो वो आपकी बॉडी का, जो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, मैंने बताया, किसी को 15 दिन में भी दोबारा शुरू हो जाते हैं, किसी को 25 दिन में होते हैं, किसी को 30 दिन में होते हैं, किसी को 35 डेज में होते हैं। सो ये अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है। पर अगर
2: डॉक्टर के
0: आप
2: पास जाने लगते।
0: इसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
2: ठीक,
0: और
2: थैंक यू मैम। हेलो मैम,
0: हाँ
2: मैम
0: जी
2: आप कि इसमें हमें साफ सुथरा मतलब नहाना चाहिए, तो मैम
0: हाँ
2: हम
0: जी
2: बोलते हैं कि इसमें रोज नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि
0: नहीं
2: उस
0: नहीं
2: सर
0: आपको रोज नहाना है, रोज नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, नहीं तो बीमारियां लग सकती हैं
2: मैम
0: शरीर
2: बोलते हैं
0: में।
2: सर धोने से वो फिर से ज्यादा हो जाता है।
0: ये सब बातें हैं, इनको प्लीज मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप रोज नहाएं ऐसा नहीं है, सिर भी धो सकते हैं, रोज काम तो सारे ही करने हैं, ऐसा नहीं है ना। तो नहाना तो चाहिए, रोज नहाना चाहिए और सिर भी धोना चाहिए।
2: अब मैम वो जब इस टाइम पर इचिंग होता है तो क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
0: इस टाइम पे अगर आपको ईचिंग होती है तो इसका मतलब आप जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं, या आप अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दें। अगर आप सैनिटरी नैपकिन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो सैनिटरी नैपकिन हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हो सैनिटरी नैपकिन को। और
2: क्या
0: हाइजीन मेंटेन कर कर रखना है, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
2: ओके मैम, मैम थैंक यू मैम। इतने सारे सवाल से बचा। हेलो मैम,
0: हाँ जी
2: मैम अगला क्वेश्चन सोनी का है, जो थोड़ा सा पूछने में शर्मा रही है, तो मैं उसका क्वेश्चन मैं आपको मैं बता देती हूँ मैम। उनका क्वेश्चन है कि जैसे कपड़ा वो यूज कर रही हैं, उस टाइम पे वो धो के इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है?
0: शशि जी, सबसे पहले तो सोनी को बोलिए कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर दें,
2: ओके मैम,
0: क्योंकि कपड़ा धोकर इस्तेमाल करेंगे उससे तो 101% इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
2: ओके मैम,
0: तो कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है।
2: मैम वो बोल रही हैं कि पैड हम इस्तेमाल करते हैं, तो पैड से उन्हें थोड़ा सा जैसे जलन के टाइप में या रैशेज हो जाते हैं, तो
0: तो
2: वो
0: इसका
2: उसके
0: मतलब उनको जो सैनिटरी नैपकिन वो यूज कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रहा है। आप कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन भी यूज कर सकते हैं।
2: हेलो मैम,
0: हाँ जी
2: गुड आफ्टरनून, मैं सरोज बोल रही हूँ मैम। क्या कहते हैं,
0: हाँ
2: मेरा तो पीरियड शुरू होता है ना, तो 1.5 से पहले ही हर बार ही आता है, 6 दिन 10 दिन पहले ही आता रहता है रेगुलर।
0: ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 25 दिन की साइकिल होती है, लोग
2: मेरी
0: कहते हैं
2: मैम
0: महीने की साइकिल है, पर
2: तो आता है।
0: 25 दिन
2: हेलो
0: की साइकिल है ये।
2: मैम,
0: हाँ जी
2: मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ मैम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बच्चों की मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे कॉपर्टी हो गया, जैसे मैंने फ्रीडम 5 यूज कर रखा है, तो मुझे ना डेट के दौरान मतलब काफी ब्लैडिंग होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप?
0: आपने जो भी यूज किया है तो उसके लिए आपने डॉक्टर से संपर्क किया है या डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है?
1: हाँ जी मैम, डॉक्टर से ही मैंने लगवाया था प्राइवेट क्लिनिक से, तो मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। बस डेट के दौरान ना, पहले तो ब्लीडिंग कम होएगी, फिर उसके बाद अगर फ्लो बढ़ेगा तो मतलब लगातार मतलब 8-9 दिन तक चालू रह जाता है।
0: ये इसका एक साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है इसका, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप डॉक्टर से संपर्क, जिससे आपने लगवाया है या कराया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत
1: जी
0: ज्यादा, इसका मेजर साइड इफेक्ट यही है कि मेंसेस बहुत ज्यादा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है,
1: हाँ जी हाँ जी, मुझे ब्लड फ्लो
0: पेन
1: ही
0: भी
1: ज्यादा
0: होता है
1: हो रहा।
0: बहुत।
1: जैसे हाँ, पहले तो मेरा मतलब प्रॉपर्टी लगी थी सफदरजंग से, एम्स से, तो मतलब उसमें मेरे को क्या था कि बीपी की प्रॉब्लम, मतलब मोटापा बढ़ना और मतलब कई सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन मैंने वो हटवाया तो ये यूज करा है तो इसमें मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ भी और चीज नहीं होता, बस यही होता कि डेट के दौरान पहले तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा 3-4 दिन तक, उसके बाद फ्लो बढ़ता है तो 10-11 दिन ले लेता है, फिर 5-6 दिन
0: हाँ तो ये
1: नॉर्मल
0: इसका
1: रहता
0: साइड इफेक्ट है मैम, तो आप प्लीज डॉक्टर से संपर्क करें इसके बारे में भी।
1: है। जी मैम, एक बार डॉक्टर मैम ने मुझे दवाई भी दी थी तो उससे भी कोई कमी नहीं हुआ, ये फिर मतलब वैसे ही है, सेम टू सेम
0: हाँ जी, ये जो
1: वैसे ही चलता है।
0: आप, हम लोग ये IUD लगा लेते हैं, कॉपर्टी लगाते हैं, तो वो उससे ये साइड इफेक्ट्स शरीर में आते हैं।
1: मैम, इसे आगे के लिए कोई दिक्कत हो सकती है या फिर मतलब कोई, जैसे ये साइड इफेक्ट है, इसे कोई कल को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी इसमें?
0: अब देखिए, ये अगर आपने लगवाया है ये साइड इफेक्ट से, जरूर शरीर में तो कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ऐसा तो
1: जी
0: नहीं है
1: जी
0: कि नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो एनीमिक भी हो सकते हैं।
1: जी जी मैम, पहले तो मतलब जैसे ब्लड पतला आता था डेट के दौरान, अब गाढ़ा गाढ़ा ब्लड आता है मैम मेरे को। ठीक
0: तो ये सारी साइड इफेक्ट्स ही हैं उसके।
1: है मैम, तो मैं उन्हीं मैम से फिर जाके मतलब कंफर्म
0: हाँ
1: करती
0: जी,
1: हूँ।
0: डिस्कस कर लीजिएगा।
1: हाँ जी, उनसे डिस्कस करती हूँ। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।
2: हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता है।
0: हाँ जी,
2: मैम मेरी एज 25 साल है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स में बहुत मतलब पेन होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सिर में ज्यादातर दर्द है, चिड़चिड़ापन रहता है मेरे।
0: क्योंकि हमारे शरीर में जो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, वो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी से
2: कमजोरी,
0: बात
2: हाँ
0: बात नहीं करना, पेन होना, ये एक आम है। ये हर हर औरत की जिंदगी में ये इस दौरान 6 दिन के दौरान जरूर होता है।
2: मैम, कमजोरी बहुत रहता है, थकान ऐसे थकी थकी से
0: हाँ
2: रहते हर
0: जी
2: टाइम।
0: हाँ जी, क्योंकि हमारे शरीर से, बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है, तो इसलिए आयरन हम लें, अच्छा
2: मैम
0: डाइट
2: खाने के लिए
0: लें,
2: क्या क्या इस्तेमाल करें इसमें?
0: प्रोटीन रिच डाइट जितना हो सके प्रोटीन खाएं, रोटी खाएं, दालों का इंटेक करें, अनार का जूस लें, अनार खाएं। आजकल तो अच्छा सैलेड आ रहा है, जो चुकंदर होता है वो ले सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
2: मैम परहेज क्या करें इसके लिए?
0: परहेज ये है कि आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मिर्ची वाला नहीं खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है, ये सब परहेज हम कर सकते हैं।
2: थैंक यू मैम।
1: मैम, अगर सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेना पड़ जाता है, तो इसमें ले सकते हैं क्या हम दवाई वगैरह?
0: हाँ जी, आप ले सकते हो, पर ज्यादा ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है।
1: मैम, मेरा तो ऐसा होता
0: अपने
1: पीरियड के दौरान कि मतलब 2-3 दिन लगातार हो जाता है सर दर्द, तो वो मुझे मतलब ड्यूटी पे आना पड़ता है, तो पेन किलर नाश्ते के बाद पेन किलर लेनी पड़ जाती है,
0: आप ले
1: क्योंकि
0: सकते
1: पूरा
0: हैं।
1: सर में प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे राइट साइड में नस में कुछ मतलब क्लॉक बता रखा है, गांठ वगैरह नॉर्मल, तो उसके लिए मेरी दवाइयाँ चलती हैं। बट पहले मेरे को सर दर्द नहीं होता था, मतलब हर एज में अलग अलग रूल हुए हैं मेरे साथ, पहले जैसे पैरों में दर्द होता था, फिर कमर और पेट में दर्द हुआ, फिर जैसे शरीर में दर्द हुआ, टांगों में दर्द हुआ, मगर जो है ये अभी जो है कुछ टाइम से मेरे सर में दर्द शुरू रहने लग गया है। ये सर में बहुत दर्द हो जाता है मैम, मुझे 2-3 दिन तक पेन किलर लेनी पड़ जाती है लगातार, कभी तो रोज रोज लेना पड़ जाता है।
0: हाँ, ये माइग्रेन के पीछे ही है आपका। माइग्रेन
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: जब अटैक आता है तो फिर वो 2-3 दिन तक लगातार हमें पेन किलर्स लेनी पड़ जाती हैं।
1: जी। और मैम सर ने मतलब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरा सर दर्द थोड़ा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आपको जैसे ही दर्द शुरू हुए तो आपको दर्द की गोली लेनी ही लेनी है, तो मुझे
0: हाँ,
1: तुरंत
0: क्योंकि
1: लेनी पड़
0: माइग्रेन में
1: जाती है।
0: डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपने दर्द की गोली नहीं ली तो फिर वो ब्रेन, मतलब सर बहुत तेज दर्द हो सकता है तो ब्रेन
1: हाँ
0: जरा
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: भी।
1: तो वो बोलते हैं कि फिर रोकना मुश्किल हो जाता है दर्द को,
0: हाँ
1: इसलिए
0: जी,
1: आपको जैसे ही लगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना ही लेना है। तो
0: हाँ जी, हाँ जी, वो तो माइग्रेन में का है ही है, लेना ही है।
1: हाँ, तो मैं मतलब अगर डेट के दौरान ले रही हूँ मैम, इसका कोई वो तो नहीं होगा ना साइड इफेक्ट आगे को मेरे
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं नहीं
1: ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू।
2: नमस्ते मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ। मैम मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2-3 साल से ना, मैं पहले तो सही आती थी पीरियड से 4-5 दिन लगातार, लेकिन अब पिछले साल से 2 साल से ना, मैं बस 2 ही दिन होती हूँ, तीसरे दिन मेरा पीरियड खत्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मैम?
0: एज क्या है आपकी?
2: मैं 37 साल की हो गई मैम।
0: अच्छा,
2: जी मैम,
0: वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
2: बस 2 दिन आता है मैम, पैरों में थकान बहुत, कटन, और फिर तीसरे दिन बंद।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: ये 2 साल से हो रहा है मेरे साथ मैम।
0: ये हर किसी को होता है। देखिए, थकान, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, हर किसी को होता है। बॉडी टू
2: बस
0: बॉडी
1: दोस्तों के
0: डिपेंड
1: लिए था
0: करता है।
2: सर।
0: तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं।
2: जी मैम, थैंक यू मैम।
3: किसी और को कुछ पूछना है?
1: नो मैम,
0: नामिका, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन, वी कैन कंक्लूड द सेशन।
3: सो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल।

पता नहीं पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है, और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की, और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से ही। तमाम थैंक यू।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति

0: का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है, जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
1: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाई एस आर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा, हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
0: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मेडिकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए, और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
0: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तड़का सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों, उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बाढ़वार अगर ज्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
2: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: रो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले।
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11306 और 1800-11306। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायिकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: Hi friends, welcome to Jeete Raho once again.
1: Kisi ki muskurahaton pe ho nisaar, kisi ka dard mil sake to le udhaar, jeena isi ka naam hai.
0: Isse kya hua hai? Tumhari tabiyat to theek hai na bablu?
1: Of course, mujhe kya hua hai? Anyways, aapse milkar bahut khushi hui Miss Kokila MBBS, main aapke liye kya kar sakta hoon?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
0: अच्छा?
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओह, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूँ तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू. एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं.
1: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है. जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी. हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों. पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं. महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है. समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है. इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं. आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न. लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान. आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है. पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस. पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की. इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं. बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं. हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है. कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं. वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है. लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है. कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं. और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की. ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है. मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है. इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है. अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है. रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है. जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है. खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है. अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की. इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं. अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं. अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है.

वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक

0: बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है, और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपके बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। अर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: आज किसानों की जागरूकता के लिए कार्यक्रम है जिसमें पराली जलाने जल संरक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा।
1: तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पराली जलाते हैं इसको बोलते हैं बर्निंग, मतलब पराली को जलाना। तो ये मतलब आप लोग सब लोग यहाँ पर धान की ही खेती होती है तो आप सब लोग जानते हैं कि धान मतलब पराली को जब धान कट जाता है तो धान की पराली को जलाना पड़ता है। क्यों जलाते हैं? एक उसके दो तीन कारण होते हैं कि एक तो जैसे जहां दीमक की समस्या होती है तो वहां अगर पराली खेत में छोड़ देंगे तो एक तो दीमक लग जाती है उससे तो अगली फसल में नुकसान होता है। दूसरा ये होता है कि खेत ढंग से तैयार नहीं होता, अगली फसल की बुवाई के लिए खेत ढंग से तैयार नहीं हो पाता। बहुत कम धान का जो हमारे पास में धान और गेहूं बुवाई का जो समय होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है तो उसमें धान का जलाने से ही उसका सॉल्यूशन हो पाता है, उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जो सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है, जो दुनिया भर की मशीनरी दे रही है या उसके लिए और भी जैसे हैप्पी सीडर वगैरह आ रहे हैं या मल्चर वगैरह आ रहे हैं तो उनकी कॉस्ट इतनी है कि उसको किसान खरीद नहीं पाता या उसको अगर उससे भी लेता है किराए पर जैसे आपके यहाँ सेंटर चलते हैं तो वो भी इतने महंगे पड़ते हैं कि किसान उसको उसको जलाना आसान लगता है। जमीन तो बोल दी नहीं, जमीन तो नहीं बता रही है कि सर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बीमार हो रही है, तो जमीन भी बीमार हो गई है। तो जमीन बीमार कैसे होती है? एक तो मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, आप जो जमीन में खाद दे रहे हो नाइट्रोजन पोटास और फॉस्फोरस दे रहे हो ये पौधा ही लेता है ना, हवा में उड़ता तो नहीं है, उसी पौधे में है। आपने जला दिया तो वो तो सब धुआं बन के उड़ गया, तो आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास और सल्फर क्योंकि ये ज्यादा निकलते हैं तो ये आपके जल के सब हवा में उड़ते, तो आपकी जमीन से धीरे धीरे करके कम हो रहा है।
2: अभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो खेती है ना जिसके चार प्रमुख अंग हैं जल जंगल जमीन और जल कहते हैं, जल के बारे में हमें पता है, जंगल को हम समझते हैं, जमीन को हम समझते हैं, एक चीज की हमें जानकारी है, जानकारी हम क्या बांटते हैं कि कोई हमें बाहर से आएगा वो हमें कुछ बता के जाएगा और फिर हम उसकी बात तो करेंगे, जबकि जानकारी वो चीज होती है जो प्रैक्टिकल किसी ने कर रखा है, हमारे गाँव में किसी ने कर रखा है, किसी किसान ने कर रखा है, उस प्रैक्टिकल को हम वापिस अपने खेत में अगर अप्लाई करें उस चीज को हम जानकारी समझते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले आगे किसानों को ट्रांसफर हो रहा है। आज जितनी भी समस्याएं हम जिनको बहुत बड़ी समस्या मानने बैठे हैं ना, इन समस्याओं के मूल में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे सबसे मोटी बात यह है खेती अकेले करने का काम ही नहीं है, जब से हमने खेती अकेले अकेले करनी शुरू करी है तब से समस्याओं के ढूल बढ़ने शुरू हो गए। खेती है मिलजुल के करने का काम, जैसे हमारे यहाँ पर था जंगवार जो सब कुछ शेयरिंग बेसिस पे होता था, आज एक किसान के खेत पर काम है बाकी लोग उसके खेत पर आगे उसका काम करा दिया, लेबर के पैसे बच गए, खाना खा लिया, उसका काम समझवा के दूसरे के खेत पर चले गए, फिर तीसरे खेत पर चले गए। जब तक ये सिस्टम हमारे चल रहे थे तब तक खेती टोटे का काम नहीं था, खेती में पैसे भी बचा करते थे और सारे सिस्टम उसके मजबूत थे। और खासकर बात क्या थी, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थी घर की मानस मजबूत था। आज हरियाणा एनीमिया में नंबर दो पे है, नंबर एक पे आसाम है, महिलाओं में एनीमिया पे नंबर दो पे हरियाणा, इतनी उत्पादन होने के बावजूद। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपनी जो तमाम जितनी भी जानकारियां थी हमारे सिस्टम थे एक एक करके हमने सबको, हमारे खेत में 150 किस्म का कीड़ा है जो साल भर में हमारे खेतों में आता है। हमें एक बात बता दी भी मित्र कीट शत्रु कीट, कीड़ा हमारा नाम ही नहीं जानता, कीड़े को पता ही नहीं ये किसकी जमीन है, कीड़े के तो दो ही काम है अपना पेट भरना और अपने बच्चे पालना, तीसरा काम नहीं कीड़े का। हमने ये कीड़े छेड़े पहले, फिर ये छिड़ गए और छिड़ गए उसके बाद ये ऐसे छिड़े हम 50 साल हो गए इनको मारते मारते मरे नहीं, हमने ये और ज्यादा ऐसे बिगाड़ लिया सिस्टम कि हम कॉटन में 10 स्प्रे से लेके 11, 12, 13, 14 स्प्रे तक चले गए। असली चीज क्या है, हमारे को बहुत सारे छोटी छोटी बातों की जानकारी मिली, जैसे आज हमारा विषय है पराली ना जलाना, पराली कोई नहीं जलाता, खाने जलाते, पराली कोई नहीं जलाता, जो फाने बचते हैं वो फाने फाने जलाते हैं, और एक फाने हाथ की कटाई में कोई फाना नहीं बचता, मशीन की कटाई में फाना बचता। हमने अपनी सुविधा के लिए हल निकाला, दूसरी समस्या हमने साथ की। अब चक्कर क्या है, हमारी जो सॉइल है ना जी, उसका हाजमा कमजोर कर लिया। असली कारण, असली समस्या ये है कि पराली अगर खेत फाना अगर खेत में है तो गलता नहीं, उसके लिए हमें यूरिया मारना पड़ता है। अब वो जो हमने हाजमा जो कमजोर कराया उसका, उसकी वजह क्या है, हमारे को मिट्टी की समझ नहीं। अगर हम मिट्टी की समझ बताते हैं हमने, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं कमजोर खत्म होती है। जैसे इस समय समझेगा पानी पानी खेतों में खड़ा है, आप वहीं पानी हटा के खोदना शुरू करो, एक डेढ़ फुट के बाद सूखा है, पानी नीचे नहीं जा रहा। वो पानी नीचे क्यों नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा कि हमने जो पानी जाने का सिस्टम था उसको अपने हाथ से बंद किया, और वो पानी जाने का सिस्टम क्या था, केचुआ। केचुआ को खाने को क्या सामान चाहिए, फसल शेषी या उसको हम थोड़ी बहुत गोबर की खाद घेर दिया करते थे, बाकी अपना वो गुजारा खेत में करता रहता। अगर हमें खेत में चलते हुए कीड़ों के बारे में पता लग गया, ये कीड़ा ये करता है, ये कीड़ा ये करता है, ये कीड़ा, तो हमारे मन में से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म हो जाएगा तो हम सप्रे जब करेंगे, जब वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर मामला जाएगा।
3: अगर हम पेंडिस्ट्रॉल चलाते हैं ना, तो उसका एनुअल मतलब पूरे साल में जितना हम अपना न्यूट्रिएंट खत्म करते हैं खेत से, 3.85 मेट्रिक टन ऑर्गेनिक कार्बन, जो कार्बन हम खेत से उड़ाते हैं, 49,000 टन नाइट्रोजन खेत से उड़ता है, 20,000 टन फॉस्फोरस खेत से उड़ता है, और 34,000 टन पोटेशियम खेत से उड़ता है। इन्हीं चार की बात की थी उन्होंने, उसके अलावा सल्फर मैंने इसमें लिया नहीं है। ये चार मेन न्यूट्रिएंट है, और इसके लिए हम स्प्रे भी बहुत करते हैं। यूरिया हम डालते हैं नाइट्रोजन पूरा करने के लिए, सारे लोग डालते हैं, दो कट्टे की जरूरत है पर हम 4 से 5 डालते हैं। डीएपी हम बहुत डालते हैं, वो नाइट्रोजन के लिए डालते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पे इसी चीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये फैक्ट है, ये एग्रीकल्चर फैक्ट्स है, ये जुटलाए नहीं जा सकते। अब इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब हमारे आमतौर पे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है इसका। एक टन अगर हम एक टन पराली जलाते हैं, उससे क्या रिलीज होता है गैसेस, जो सर बात कर रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन में। अगर हम एक टन पराली जलाते हैं, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 199 केजी ऐश या राख हम ये पैदा करते हैं। अब आप ये देख लो, ये तो सिर्फ एक टन की बात है, 500 टन हम पैदा कर रहे हैं, उसमें 365 टन चार फसलों में से आ रहा है। तो ये गैस कहीं ना कहीं जाके कहां इंपैक्ट कर रही है, इन्वायरमेंट में। अब उस इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, सितंबर के महीने में इतनी बारिशें पहले हुई हैं, जितना नुकसान इस बार पिछले 4-5 दिनों में बारिशों से हुआ है, इतना नुकसान पहले आपने देखा है, आप सब लोग इतने पुराने बुजुर्ग हैं। फसल चक्र दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है, जिस टाइम पे आपको बारिशें चाहिए उस टाइम पे बारिशें नहीं है, सूखा है, और जिस टाइम पे आपको बारिशें नहीं चाहिए फसल कटाई की तरफ आती है, उस टाइम पे या तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ जाएगी या फिर हद से ज्यादा बारिश पड़ जाएगी। भीषण गर्मी आपने पिछली बार कनक के टाइम पे देख ली, अच्छी बड़ी फसल थी, मार्च के महीने में टेम्परेचर इतना ऊपर चला गया जितना पहले कभी नहीं हुआ, 15 मार्च से लेके आपका 20 अप्रैल के बीच में जो टेम्परेचर रहा है वो 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर था आमतौर से, ग्लोबली की बात कर रहा हूं, सिर्फ उस 15-20 दिन के समय में। और उसका असर किस पे आया, आपकी फसल पे, कनक का झाड़ घट गया, दाना श्रीबल कर गया, दाना बिल्कुल ही सूख गया, और उसकी वजह से आपको फसल पे इम्पैक्ट आया। तो ये सारे मुद्दे जितने हैं ना जी, ये सब इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं से इस चीज पे जुड़ा हुआ है कि अगर हम अपनी खासतौर पर अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे हम हमेशा नुकसान में रहेंगे। तो पराली ना जलाना कहीं ना कहीं पे हमें दो चीजों की तरफ ले जाता है, देखो हमने फसलें भी बच्चों की तरह पालनी है, और हमने आने वाली नस्लों को, अपनी आने वाली पुश्तों को कुछ देके जाना, तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं पे नेचुरल फार्मिंग और पराली ना जलाना जरूरी है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि हम सिर्फ दो चीजें आने वाली जनरेशन को देके जा सकते हैं, अपनी अगली पुश्तों को, घर मॉनेटरी पैसा पुसा यह सब एक तरफ है, उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, खेती के लिए जमीन और पानी। इन दो संसाधनों पर अगर हम ढंग से काम करके जाएंगे ना, तो हमारा आदमी बन के पैदा होना, वो हम अपना कर्तव्य निभा के जाएंगे। लंबे समय तक अगर हमको सस्टेनेबल खेती करनी है उसके लिए ये दोनों चीजें जरूरी है, और इसमें आप सब मेरे को लगता है आने वाले समय में आपका ध्यान इस तरह गया है और आप बढ़ चढ़ के इसको अपनाएंगे और आने वाले समय में इस तरफ अच्छी डायरेक्शन में काम करेंगे।
4: मैं यूं भी नहीं कह रहा सारी जमीन में एक साथ कर लो, आप आधे किले में दो किनार में, छोटा जमींदार दो किलिया वाला एक किनार में कर लो, थोड़ा थोड़ा हाँ करना शुरुआत करनी शुरू करो, अपने खाने जोगा करो। आप ना इस तरह क्या करेंगे, सारी मई आ जाए करो। प्रणाली की बात ये बात है, सरकार ना आपने 1000 रुपए देगी। एक और प्रैक्टिकल तरीका, झूठ बोलते जी ड्राइवेंज लोग नेगेटिव सोच है ना, जिस तरह कहीं बैठा है ना चपाड़ में कहीं भी, वहां ड्राइवेंगे ना ना ना प्रणाली नहीं कटती है कहा क्यों जा रहा है इतने का डीजल लगे जगह, जबकि उसने प्रैक्टिकल तो करे नहीं है जी। उसने वही बात था एक किले के अंदर ना जी, जिस तरह सपोज करो हम अपने खेत में गेहूं वास्तव तैयार करा दूर करा उसको पैरों के साथ फिर पड़ेवा करा, तो ना दूर आप दूर कर ले उसको थोड़ा खंडाया खड़ूगा प्राणी में, और उसके ऊपर वेट रख लो थोड़ा थोड़ा सा प्राणी पैरों के ऊपर, जिस तरह सर ने बताया कि महंगे साथ हैं मेरे पास आ रहे हैं देख लूंगे आप जैम डीप लोडर सब कुछ है, पर जरूरत नहीं पड़ती नहीं ढक्का रख गए जी मान लिया तरपाल में उनकी जरूरत नहीं पड़ी। ऐ रे इतना आसान तरीका जी, उसके ऊपर एक कट्टा या दो कट्टा वजन का पीछे धर ले, दो कट्टा उसके गदर ले खंडाएगा प्राणी में दूहरे यो करका अपने वो कर जाओ, रह जा कुछ भी हमने आलू तक लाए प्राणी में गन्ना तक बोए जा जी कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा हो सकता है जहाँ 1000 खर्चा हुआ ना जी रफ सब दे रहा है वहां आपका 1500 खर्चा है सिर्फ इतना फर्क है, और 1000 रुपया सरकार आपने इस साल जो भी आग नहीं लगाने का ना प्राणी का आप ऑनलाइन खाते में करवाइयो आपके खाते में कौन मंगाओगे या इस बार जरूर देगी सरकार। देखो कहीं तो मैं अपनी सरकार ही खुद बेस्ती करना चाहता, कहीं हमारी कमियां कहीं सरकार की कमियां, पर इस बार मनो लग रहा कुछ आसार है 1000 रुपया पर एकड़ देगी देगी।
3: गिरता जल स्तर बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा पंजाब दोनों के लिए, और अगर हम देखें तो वाटर जो जल स्तर है वो इस लेवल पे जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार कहीं ना कहीं पे 3-4 सालों में कुछ जिलों में पाबंदी भी लगाएगी कि आप धान को रोपाई करके मत लगाओ, ये आएगा टाइम, क्योंकि देखो नीचे रिप्लेनिशमेंट हो नहीं रही है, पानी नीचे धरती पे जा नहीं रहा है, तो ये कई जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, और इसकी तरफ सीधी बिजाई एक बहुत उपयुक्त चीज है जिसकी वजह से ये सब चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। सीधी बिजाई में भी बहुत सारे अपने पंगे हैं, जिसमें पहला पंगा तो खरपतवार रोकने का ही है जो बहुत बड़ा पंगा है, तो खरपतवार अगर कंट्रोल हो जाए तो आपका काफी हद तक आप लोग भी सीधी बिजाई कर रहे हैं। इस चीज के लिए सवाना एक नई पहल करके आ रही है, सवाना की टेक्नोलॉजी आ रही है नई फुल पेज के अंदर कुछ डेमो भी लगाए हुए हैं, और फुल पेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहला चीज है जब भी आप सीधी बिजाई करते हो पहली प्रॉब्लम उसमें आती है जमाव की, उसके लिए मशीन की कैलिब्रेशन प्रॉपर होना जरूरी है कि आप जो मशीन जिसे सीधी बिजाई करते हैं उसको इतनी गहराई पे डालना है कितनी गहराई पे उसको फैलाना है वो सब जरूरी होता है, उसके लिए भी सवाना पहल कर रही है। कहीं ना कहीं पे आपके बीच में हमारी एक टेक्निकल टीम अलग रहेगी जो उस लेवल पे जाके आपको मदद करेगी जब आप सीधी बिजाई को अपनाएंगे। दूसरा है जमाव का, जमाव कई जगह पे देखा गया है कि सीधी बिजाई में कम आता है। तीसरा आता है उसमें पंगा जो आता है कि इनिशियल जो शुरुआती दौर में आपको फसल दिखती है बहुत कमजोर दिखती है, जब आप उसको रोपाई की फसल से देखते हो मुकाबले उसके बनिस्पत आपको लगता है कि यार ये फसल होगी नहीं, और आपका दिल टूट जाता है कि इसको भाग के मैं दोबारा रोपाई कर लेता हूं इतने खेत में भी अगर हम सीधी बिजाई करते भी है तो। और चौथा पंगा आपका खरपतवार का है ही है, इसको दूर करने के लिए जो फुल पे टेक्नोलॉजी है उसमें सवाना ने एक काम किया है, उसमें एक सीड ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं, बीज का उपचार आपको करके दे रहे हैं। उस बीज उपचार में पहली चीज है कि आपको जर्मिनेशन पूरा मिलेगा, जितना भी जमाव है सीड का पूरा बेहतर रहेगा खेत में। दूसरा है उसमें हमने न्यूट्रिएंट मतलब जो आपको पोषक तत्व जो आपको खेती को बढ़ाने के लिए या फसल को ताकत देने के लिए जरूरी होते हैं वो पोषक तत्व इसमें आपको सीड ट्रीटमेंट में जो हम उपचार करके दे रहे हैं बीज का उसमें मिला के दे रहे हैं, तो जब आप उसको किसी भी और सीधी बिजाई के बनिस्पत आप उसका कंपेयर करोगे आप उसको साइड बाय साइड देखोगे तो आपको यह पता लगेगा कि इसका जो बढ़ाव और जो इसकी बढ़वार है वो बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले, तो आपका मन उस फसल पे ठहरेगा कि ये फसल चलेगी और ये मेरे को सीधी बिजाई की तरफ सही रास्ता दिखा रही है। तीसरी चीज उसमें आती है आपकी वीड कंट्रोल के लिए, नदीन के पूरे बेहतर कंट्रोल के लिए, उसके लिए एक दवाई आपके बीच में आएगी, वो दवाई आप सिर्फ 2 स्प्रे करने हैं। 3 तरह के घास होते हैं, जिसमें होता है घास, दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले और तीसरा होता है सज्जे जिसको बोलते हैं। जो हम दवाई आपके बीच में लेके आ रहे हैं वो तीनों तरह के कबाड़ को एक साथ खत्म करेगी, और वो आपने प्री इमरजेंस मतलब आपने पहले नहीं डालनी, जब भी आपकी नदीन की अवस्था 2 से 3 पत्ती की स्टेज में आएगी, वो किसी किसी खेत में या किसी एरिया में 10 दिन के अंदर आती है, कहीं पे 15 दिन के बाद भी आती है, तो एक स्प्रे आपने उस दवाई का उस दौरान करना है और एक स्प्रे उसके हफ्ते से 10 दिन के बाद करना है। सिर्फ इन 2 स्प्रे मात्र से तीनों तरह के घास, घास चौड़ी पत्ती और सेजेस, तीनों एक साथ कंट्रोल होंगे और आपका नदीन का पंगा इस तरफ से खत्म हो जाएगा। जहां पे आपका नदीन कंट्रोल हो गया वहां पे सीधी बिजाई आपके लिए कामयाब है। सीधी बिजाई कामयाब होगी तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन खेत में बना रहेगा और आपको खर्चा भी आपका खेती में कम से कम 5 से 6 हजार रुपए एकड़ का कम होता है, क्योंकि आपकी रोपाई में आज की डेट में कितना रुपया लेती है लेबर आमतौर पर 3500 के आसपास, उसके बाद कद्दू करते हो डीजल भी लगता है, उसके बाद आपको खेत में पानी भर के रखना पड़ता है, ये सारी दिक्कतें सीधी बिजाई में दूर हो जाती है। और सीधी बिजाई आने वाले समय में खासकर हरियाणा पंजाब में अगर हमने धान के फसल चक्र में रहना है तो ये जरूरी हो जाएगा, तो इसकी तरफ हम लोग एक तकनीक लेके आए हैं और इसमें भी आपका सहयोग हमारे को चाहिए पड़ेगा आगे के लिए, उसकी तरफ भी हम लोग काम करेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने के लिए। मैं रीड इंडिया और लखनौरा विलेज की तरफ से सवारा सीट्स की टीम, कवलजीत सर, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और यही सेशन हम आगे करते जाएंगे, आज बस शुरुआत है। तो प्लीज सेंटर पे आते रहिए, एक बार ही आपको स्टाफ से भी नॉलेज मिलेगी और कोई भी आपका डाउट होगा जो आज सेशन हुआ उससे रिलेटेड, प्लीज अपना डाउट स्टाफ से जरूर शेयर करिए ताकि हम अगला सेशन जो है उसी टॉपिक पे करवा सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, शुक्रिया।

0: एंड वेलकम टू जीते रहो।
1: हाय फ्रेंड्स।
2: कुहू, मैं बहुत दिनों से एक बीमारी के बारे में जानना चाह रहा था, पर
1: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में जानने से तुम झिझक रहे हो?
2: एक्चुअली थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इस बीमारी के बारे में सोचते ही मुझे मासी का दर्द याद आ जाता है।
1: यू मीन कैंसर? आई नो, ये बीमारी एक साथ कई जिंदगियां बदल देती है।
2: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल्स भी निकलते रहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या और इसका नाम कैंसर कैसे पड़ा।
1: आइए देखते हैं।
3: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयों से है। हमारे शरीर की ये मूलभूत इकाइयां हैं कोशिकाएं, यानी सेल्स। शरीर में इनकी संख्या अरबों में होती है। ये कोशिकाएं शरीर के हर एक अंग के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स इत्यादि। इन्हीं कोशिकाओं के विकास के आधार पर हमारा शारीरिक विकास होता है और इन्हीं से बनते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। टिश्यूज असल में कोशिकाओं का एक समूह है। हम सबके शरीर में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स में बदल सकती हैं और उस ऑर्गन का विशेष काम करने लगती हैं, जैसे किडनी और लिवर की सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स किडनी सेल्स में परिवर्तित होती हैं तो कुछ लिवर सेल्स में। वहीं कुछ स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स में बदल जाती हैं तो कुछ मसल्स की सेल्स में। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। इस परिस्थिति में कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है और इसी वजह से नई कोशिकाएं भी बहुत तेजी से बनने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। इससे टिश्यूज में अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। जहां तक इस बीमारी के नामकरण का सवाल है तो इसके पीछे भी इन्हीं ट्यूमर्स का हाथ है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ने जब एक ममी के ट्यूमर को देखा तो उन्हें जो आकृति दिखी वो केकड़े यानी क्रैब के पैरों से मिलती जुलती थी। लैटिन में केकड़े को कैर्सिनोस कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम रखा कैर्सिनोमा, जो आगे चलकर कैंसर कहलाने लगा। कैंसर दो तरह से शरीर में फैलता है। इनमें एक तो इन्वेजन है और दूसरा मेटास्टेटिस। इन्वेजन के तहत कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेटिंग यानी उत्पन्न होने वाले अंग के पड़ोसी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली गांठ इसका एक उदाहरण है। लेकिन मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स ओरिजिनेटिंग अंग के साथ साथ दूसरे अंगों के सेल्स में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स पहले लिम्फ यानी लसिका और ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाते हैं। कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण कई बार कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे कोलन कैंसर में दस्त, कब्ज और मल के साथ खून का आना, और ब्लैडर कैंसर में पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा नहीं करते। जैसे हमेशा थकान लगना, क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा वजन का घटना, भूख न लगना, बुखार आना, त्वचा का काला हो जाना, खुजली होना और असहनीय दर्द होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन सिम्टम्स का या तो पता नहीं चलता या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

0: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के सिम्टम्स की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैंसर शरीर में फैलता कैसे है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे पाचन तंत्र, हड्डियां या फिर कोई और अंग।
1: मोटे तौर पर कैंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा ये कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। शरीर के किसी भी अंग की बाहरी या अंदरूनी सतह यानी एपिथेलियल टिश्यूज में होने वाले कैंसर इस श्रेणी में आते हैं। लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर, सर्वाइक्स यानी बच्चेदानी का कैंसर और माउथ कैंसर कार्सिनोमा के प्रमुख उदाहरण हैं।
2: कैंसर की दूसरी कैटेगरी है सार्कोमास। इस कैटेगरी में कैंसर सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, वसा और मांसपेशियां। कैंसर की अगली कैटेगरी है लिम्फोमास। लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है।
1: लिम्फोमा के बाद आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है।
2: अब सवाल उठता है कि कैंसर होता कैसे है। आम धारणा तो यही है कि इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें एक तो शरीर के अंदरूनी कारण है, जैसे हेरिडिटी, असंतुलित भोजन और हॉर्मोन्स। कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे सिगरेट और तंबाकू का सेवन, शराब, कुछ कार्सिनोजेनिक रसायन, अल्ट्रावायलेट किरणें और न्यूक्लियर रेडिएशन इत्यादि। इन दोनों वर्गों के अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खास किस्म के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
0: अब बात आती है इनके डायग्नोसिस की। कैंसर के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अर्ली स्टेजेस में सिर्फ पता ही लगाते हो या फिर ठीक भी करते हो तुम लोग?
0: जी हाँ बबलू जी, अर्ली स्टेजेस में पता चलने पर कैंसर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये तो देख लें कि कैंसर का पता कैसे चलता है, यानी क्या है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स।
2: कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इलाज में काफी फायदा होता है और इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अक्सर कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं, जब किसी अंग में कैंसर के कारण सूजन हो जाती है या कोई अल्सर जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता या ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में इलाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं, मगर अब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड्स उपलब्ध हैं जिनसे अर्ली स्टेजेस में ही कुछ खास तरह के कैंसर का पता चल जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है पैप स्मियर। ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेक्निक है जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रोसेस में एक छोटे ब्रश या स्क्रेपर से सेल्स का सैंपल ले लिया जाता है, फिर इन सेल्स को एक स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यदि किसी तरह की असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो ये कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैमोग्राफी भी एक तरह की एक्सरे तकनीक है जो खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफी कारगर है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए भी कैंसर का पता चल जाता है। अगर पेशेंट को नॉन हीलिंग ओरल इन्फेक्शन है तो माउथ कैंसर के लिए उसकी जांच की जाती है। लंग कैंसर में मरीज को लंबी खांसी हो सकती है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है और मरीज की सांस भी उखड़ी रहती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर मरीज की लंग कैंसर के लिए जांच की जाती है। अगर बार बार दस्त या कब्ज हो जाए जो 3 सप्ताह से ज्यादा चले तो बाउल कैंसर के लिए जांच जरूरी हो जाती है। उल्टी के साथ खून आने पर लिवर कैंसर की जांच जरूरी होती है।
1: अगर 2 और 3 सप्ताह से ज्यादा लो ग्रेड फीवर हो और उसकी वजह का पता न चले तो ब्लड कैंसर के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लो ग्रेड फीवर कई तरह के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या बगैर किसी वजह से वजन घटे तो भी ब्लड कैंसर के लिए जांच करवाई जा सकती है।
2: अगर पेशेंट में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC करते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक बारीक पतली सी सुई ट्यूमर स्थित जगह पर डालकर कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। पैथोलॉजिस्ट फिर इसका परीक्षण करते हैं। ट्यूमर, लिम्फ नोड और बोन मैरो कैंसर का पता लगाने के लिए FNAC या बायोप्सी की मदद ली जाती है। बायोप्सी के लिए कैंसर वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कैंसर टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मल टिश्यूज जहां सुव्यवस्थित होते हैं वहीं कैंसर टिश्यूज का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े अव्यवस्थित से लगते हैं। कैंसर सेल्स जितने अव्यवस्थित होते हैं कैंसर उतना ज्यादा जानलेवा होता है।
4: एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये गांठ, जैसे गले में गांठ है और गांठ के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस आया है, तो ये गांठ का कैंसर कहां से आया है इस विषय में हम फिर कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे हम CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कैंसर किस स्टेज का है, कहां तक गया है। पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद उसका स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग के लिए कुछ जांचें होती हैं जो मैंने अभी बताई, वो की जाती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
1: कैंसर को मोटे तौर पर 4 भाग में बांट सकते हैं। कैंसर जिस अंग में हुआ है अगर उसमें ही रहे और उसका फैलाव और गहराई थोड़ी हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर का फैलाव अगर बढ़ जाए और आसपास के अंगों में फैल जाए तो इसे सेकेंड स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर फैलकर आसपास के रीजन और लिम्फ नोड्स में फैल जाए तो इसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में कैंसर भयानक रूप ले चुका होता है। अब कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, हड्डी और फेफड़ों तक फैल जाते हैं।
4: यदि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इससे पूरे बचने की पूरी पूरी संभावना है। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ने के बहुत से फायदे हैं। एक, कि आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं, तो इसका इलाज बहुत सरल है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, खर्चा इलाज का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा, डिसफिगरमेंट, यानी कि अगर बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको निकालने के लिए उतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और यदि छोटा सा ट्यूमर है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है, 2 दिन 2-3 दिन अस्पताल में रहना है, उसके बाद घर चले जाना है, नॉर्मल लाइफ आपकी जल्दी आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। आजकल कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम कैंसर को जड़ बड़ी बड़ी अर्ली स्टेज में, इवन स्टेज 1 से पहले की स्टेज में भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में छोटा सा छोटा लीजन भी हमें दिखाई दे जाता है, जब तक गांठ बनी ना हो उससे पहले भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, हम स्त्रियों में करते हैं पैप टेस्ट, जो गर्भाशय यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद है।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। कोकिला, एक बात बताओ, अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता चल जाए तो क्या वाकई कैंसर का इलाज संभव है?
0: देखो बबलू, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मरीज की उम्र क्या है, उसकी सेहत कैसी है, बीमारी किस स्टेज में है और
3: ये सब तो ठीक है मैडम कुहू जी, लेकिन ये तो बताइए कि कैंसर का इलाज क्या है?
0: बबलू, एक सवाल का जवाब खत्म नहीं होता तुम दूसरा सवाल दाग देते हो। खैर, आइए देखते हैं क्या है कैंसर का इलाज।
2: कैंसर का मरीज कितना ठीक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है और किस स्टेज में पहुंच चुका है। कैंसर के शुरुआती स्टेज में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण उपचार। एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद प्राथमिकता होती है बीमारी की रोकथाम कर मरीज की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाना। इसी आधार पर कैंसर के इलाज को चार वर्गों में बांटा गया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी। सर्जरी में ट्यूमर और उसके आसपास जिन जगहों पर कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कुछ कैंसर के एडवांस स्टेजेस में सर्जरी का इस्तेमाल रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी लगभग 6 दशक से कैंसर के इलाज का एक प्रमुख विकल्प बन गया है, चाहे कैंसर फर्स्ट स्टेज में एक अंग तक सीमित हो या एडवांस स्टेज में शरीर के कई अंगों तक फैल चुका हो। और शायद यही वजह है कि आज कैंसर के 50% मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। रेडिएशन एक खास तरह की ऊर्जा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मशीनों के जरिए बीम के रूप में प्रवाहित की जाती है। गामा रेज कैंसरस सेल्स को मार देती हैं।
4: इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कोई डिसफिगरमेंट होता है, सिर्फ रेज आती हैं और ट्यूमर को बर्न करती हैं और ट्यूमर जब खत्म हो जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, टट्टी के मार्ग का कैंसर, स्वरपेटी का कैंसर इनमें बहुत ज्यादा है और कभी कभी छाती स्तन के कैंसर में भी यूज किया जाता है। रेडिएशन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी यूज की जाती है। रेडिएशन के अपने बहुत से फायदे हैं, बिना ऑपरेशन बिना किसी के आप ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। दूसरा, ऑर्गन सेव होता है, जैसे कि स्वरपेटी आपकी बच सकती है, आप आवाज बोल सकते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, पेशेंट को सॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी खाने का स्वाद नहीं आता है, और लंबे टर्म में ये फाइब्रोसिस वगैरह करती है जिससे पेशेंट को बाल जहां जहां रेडिएशन लगती है वहां बाल चले जाते हैं जो आजीवन चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते वो लाइफ में बाद।

0: जीते रहो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पर जारी है और यकीन मानिए इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
1: कैंसर के इलाज की अगली कैटेगरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी असल में एक ड्रग थेरेपी है। इसके तहत मरीज को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स के विकास यानी ग्रोथ और विभाजन यानी डिवीजन को प्रभावित करती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां किसी भी स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं को मारकर उनका विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार कैंसर सेल्स के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, कमजोरी, कभी डायरिया या कभी कब्जियत, बालों का झड़ना, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ना। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और टेस्टिकुलर कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी और रेडिएशन के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर फिर से ना हो। हार्मोन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का एक प्रकार है। कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में हमारे शरीर के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। इसलिए हार्मोन थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उन हार्मोन्स के बनने को कम करती हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं।
2: जानती हो कोकिला, मुझे अंकुश फिल्म का वो गाना याद आ रहा है।
0: अच्छा, कौन सा गाना? जरा हम भी तो सुने।
2: इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: तुमने ठीक कहा बबलू। दोस्तों, इस बीमारी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पेशेंट का आत्मविश्वास। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और हाँ, एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अपने खान पान में हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान से हम काफी हद तक इस भयावह बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
2: बाय एंड डू टेक केयर। जीते रहो।
1: हमारे शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। मोटे तौर पर कैंसर को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC या बायोप्सी करते हैं। कैंसर का इलाज चार तरीकों से किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।

0: ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन।
1: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ज्ञानवाणी लखनऊ पर, और आज मैं ज्योत्सना हूं आपके साथ लेकर आपका अपना फोन इन कार्यक्रम बात बतेगी। श्रोताओं, युग परिवर्तन के साथ विचारों के मापदंड ही नहीं बदलते बल्कि रीति और नीतियां भी करवट ले जाती हैं। एक समय था जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज का युग ऐसा नहीं है। विधि की ये कैसी विडंबना है कि एक ही वृक्ष पर लगे दो पुष्पों में से जो एक अधिक सुरभित और सुरम्य होता है उसको अभिशाप समझ लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे को कष्टमय होते हुए भी वरदान। पुत्र के जन्म पर घर में तवे ढोलक और नपीरी बजने लगती है, लेकिन वहीं जब एक कन्या का जन्म होता है तो माता पिता के चेहरे पर उदासी की छाया क्यों छा जाती है। आज इन्हीं सब प्रश्नों को अपने मन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मेहरोत्रा को, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी। तो मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। और अपने श्रोताओं को एक बार हम अपना विषय फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522298787 यानी 0522-2987-847। और मैम, आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आपसे है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण क्या है।
2: महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगता है महिला सशक्तिकरण का मापदंड करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात जो इसके पीछे है, और मैं बहुत बार इस बात के ऊपर चर्चा भी करती हूँ कि ये हमारा अपनी सोच है, अपना एटीट्यूड है जो हमारे बिहेवियर में बदल जाता है, और हम अपने बिहेवियर को थोपने की कोशिश करते हैं समाज पे। तो अगर हमारी सोच बदल जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए, हमारे एक्शंस बदल जाएं और हमारा बिहेवियर बदल जाए तो हम इक्विटी की बात कर सकते हैं, हम बराबरी की बात कर सकते हैं, हम महिलाओं को उतना ही दर्जा दे सकते हैं जितना हम पुरुषों को देते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। और मैम, जैसा कि हम महिलाओं को ढेर सारे नाम देते हैं, देवी, सती,

0: में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी, हर क्षेत्र में वो थी। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि उसमें बहुत अंतर अब आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है?
1: देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करूंगी और बहुत रिसर्च की बात भी नहीं करूंगी। जो हम कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के हाथ में शस्त्र थे, या जैसे झांसी की रानी की बात करें या कुछ और महिलाओं की बात करें, पर आप देखिए कि मदर टेरेसा भी थी। मदर टेरेसा के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, पर मदर टेरेसा ने साइलेंटली कैसे औरतों को सपोर्ट किया और अपने कार्यक्रम करते हुए दिखाया, अपने जीवन की पूरी रचना के बारे में लोगों को बताते हुए बताया कि एक महिला भी इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो मैं उसमें कहूंगी कि महिलाओं को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती तो स्काई इज द लिमिट फॉर अ वुमेन। बहुत ऊंचा उठ सकती हैं वो, और अगर परिवार उनको सपोर्ट करे तो समाज भी कहीं पीछे हट जाता है।
0: बिल्कुल मैम। और लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें महिला सशक्तिकरण जैसे दिवस मनाने की जरूरत पड़ी?
1: महिला सशक्तिकरण का दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने समाज को बार बार बार बार रिमाइंड करें कि जो आपका इक्वल पार्टनर है, हकदार है इस समाज का, उनका राइट है अपनी जिंदगी जीने का, अपना इवन जन्म लेने का, जिंदगी जीने का, माँ बाप से उतना ही प्यार लेने का जितना हम बेटों को करते हैं, उनको भी उतनी ही एजुकेशन चाहिए जितना हम बेटों को देते हैं, उनको भी उतने अधिकार चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च की बात करती हूँ तो आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और आप देखिए, अभी समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वो काम करती हैं, पर स्टिल अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 48% जो हमारा पोर्शन है महिलाओं का, उसमें से मैं कहूंगी कि 40% भी उस लेवल तक नहीं है जो फुल्ली एजुकेटेड है और टेक्नोलॉजी में आगे अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो ये जो फर्क हम देख रहे हैं आधुनिक समाज में और पिछड़े समाज में, इस गैप को भरने की जरूरत है। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और अगर हम इस गैप को नहीं समझेंगे, ये जो इतनी बड़ी विडंबना हमारे सामने आके खड़ी हुई है कि हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम खाली शहरों की बात करते हैं, हम गांव को भूल जाते हैं। और गांव में अगर महिला से आप चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी उसकी सोच बड़ी है, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर देने की जरूरत है समाज को कि उन महिलाओं की तरफ भी देखिए जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं। तो सोच और अपॉर्चुनिटी का आपस में बहुत गहरा तालमेल है, इस तालमेल को समझने की जरूरत है।
0: और मैम, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
1: ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और शिक्षा अपने में ही एक संपूर्ण, मैं बोलूंगी कि एक टॉपिक है, और सशक्तिकरण एक अलग है। हम कहते हैं कि महिला पढ़ जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी, पर ये बात नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पढ़ के भी अपने परिवार में बहुत ही डिफरेंस महसूस करती हैं। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्स रेशो महिलाओं की बच्चों की जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बहुत कम है, और 2011 के जो आंकड़े हैं, आज हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और मैं आंकड़ों के ऊपर अभी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में अलर्ट हुआ था कि 2011 में जब हमारी सेंसस हुआ और हमें पता चला कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा, जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो बहुत ही डाउन है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे सामने आए थे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड देवर अदर स्टेट्स ऑल्सो, पर उसमें क्यों

0: क्या हमारा सेक्स रेशो, क्योंकि ये अर्बन एरिया में जो बहुत ही सक्षम थे, पैसे वाले थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एबॉर्शन अपना एक राइट समझ लिया था, जो बहुत ही गलत था। इसीलिए चाइल्ड सेक्स एबॉर्शन पे भी सरकार ने कानून बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गैप है ये पढ़ाई की वजह से आया। पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसमें लड़कियों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई, और उनको वो राइट भी नहीं मिला कि वो इस समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उनके पैदा होने से पहले ही उनको एबॉर्शन से खत्म कर दिया गया।
1: बिल्कुल। और जैसा कि हमारे साथ सर भी हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ जानकारी कि इग्नू का एडमिशन सत्र कब से शुरू हो रहा है।
2: जी मैडम, इग्नू के अगर हम जुलाई 2021 सेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे एडमिशन इस साइकिल के लिए ओपन है, और जिन लर्नर्स को इग्नू से यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उनके पास अवसर है कि वो 15 जुलाई तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म्स भर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय का लिंक है एडमिशन का, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या अपने स्किल्स को बढ़ाना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो वो इग्नू के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। और अभी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए हैं, जैसे एमए इन उर्दू, एमए इन ज्योतिष और जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज पे तमाम कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। फिर डेवलपमेंटल स्टडीज पे पीजी डिप्लोमा इग्नू ऑफर कर रहा है। सीएसआर में इग्नू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नया कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है डिप्लोमा लेवल पे, और उर्दू लैंग्वेज में पीजी हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं समझता हूं कि लर्नर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे, और जो डिस्टेंस मोड में अभी तक नहीं ऑफर हो रहे थे उनको विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में ऑफर कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम हमारे खास तौर से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी इस समय ऑफर हो रहे हैं। तो जिन लर्नर्स के पास समस्या है कि वो डिस्टेंस से भी नहीं कर पाते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम घर बैठे अपनी पढ़ाई करें अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप्स को यूज करते हुए, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो इग्नू के हैं वो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को समय नहीं गंवाना चाहिए और एडमिशन के लिए जो लिंक हमारा खुला है उसमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपना एडमिशन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। और टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे
2: जी,
1: तो उसके बारे में सर।
2: जी, टर्म एंड एग्जामिनेशन हमारा जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था वो 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी। और मैम, हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, तो इसमें आपने बताया कि शिक्षा की क्या भूमिका है, अब इसमें परिवार का क्या योगदान होता है?
0: सबसे बड़ा योगदान परिवार का है, और उससे बड़ा योगदान है कि जो मैरिड कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक हस्बैंड को स्टैंड लेना है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बैन क्यों हुआ कि हमें स्क्रीनिंग नहीं करानी बच्चे की कि वो लड़की है या लड़का, जो सेक्स सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है वो भी नहीं करानी, अबॉर्शन भी नहीं कराने, और जब परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनकी सोच अभी नहीं बदली है, तो एक हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर स्टैंड लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है माइंडसेट को चेंज करने का। क्योंकि हम बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलके डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें ये स्टेप्स लेने हैं, तो क्यों नहीं इस संदर्भ में भी। और जब शिक्षा की बात है तो अब बहुत समय बदल गया है, बहुत परिवारों की सोच बदल गई है, यंग कपल्स की सोच बदल गई है। वो डिफरेंस है जो लड़की और लड़के की शिक्षा में, अभी मुझे शहरों में तो इतना नजर नहीं आता है, पर हाँ उसका बहुत बुरा हाल है गांवों में। गांवों में अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं पकड़ा और नहीं शिक्षा की तरफ पेरेंट्स की सोच बदली तो ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के आने से टेक्नोलॉजी उनके लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, उसको हाथ से छूना भी उनके लिए बहुत दूर की बात है और टेक्नोलॉजी को यूज करना तो आई थिंक मैं इसके बारे में पिछले 15 साल से चर्चा कर रही हूं और अभी भी वो गैप एक ड्रॉप इन द ओशियन के लेवल पे फिल हुआ है और उसमें भी ड्रॉप का जो साइज है वो डिफाइन करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि जस्ट अ सिंपल ड्रॉप। तो अगेन आई वुड से कि ये सब माइंडसेट की बात है और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हैं आज और अपने पैरों पे खड़े होके जब उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को इतना सक्षम समझती हैं कि वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं तो द ओनली थिंग इज दैट कि कैसे हम जो एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए पीयर लर्निंग भी बहुत बड़ी एजुकेशन है हमारे देश में और अगर एक महिला अपने एक्सपीरियंसेस दूसरी महिला के सामने शेयर करती है कि कैसे उसने अपने बच्चों की देखभाल की और अपने गर्ल चाइल्ड को उन्होंने हायर एजुकेशन दी और उसको हायर एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि 12th पास करा दी, हायर एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डॉक्टर, तो ये सोच आस्ता आस्ता शहरों में तो बहुत सिखा रही है पर गांवों में सोच है, सपना है पर उस सपना को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं।
1: बहुत अच्छी बात। और जैसे आपने कहा कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो इसी तरह महिला सशक्तिकरण में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आप बताइए।
0: बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार भी चला रही है जहां पे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और गुड़गांव में तो मैंने एक यूनिवर्सिटी भी देखी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है और इग्नू जैसे भी ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अगर मेरा आप एक्सपीरियंस जाने तो जिस संस्था की मैं कंट्री डायरेक्टर हूं रीड इंडिया, हमने 30,000 से ज्यादा औरतों को सक्षम बनाया है लाइवलीहुड ट्रेनिंग पे, जो वो आज अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और इससे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन मैं ये जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको बताना चाह रही हूं कि लड़कियां, क्योंकि ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम था और मैं दावे से इस बात को कह सकती हूं कि 30,000 औरतों को अगर हमने सक्षम बनाया है तो 15,000 औरतें तो अपने पैरों पे आज खड़ी हैं जिनका डिले इन मैरिज भी हुआ है। अभी 25 साल की लड़कियों ने भी शादी करने की थोड़ी सी रोक लगाई है, अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज किया है क्योंकि पहले हमने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है तभी हम शादी करेंगे। तो डिले इन मैरिज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन कि वो बच्चे नेचुरली सोच बनेगी कि कम पैदा करने हैं और इतना प्रेशर नहीं होगा कि अगर कम बच्चे करने हैं और लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए एक बैलेंस्ड परिवार के लिए तो ये सोच अपने आप बदल जाएगी। तो शिक्षा का और रिलेशन जो है जब हम एम्पावरमेंट का करते हैं तो इस तरह से हमें उनको कंपेयर करना है और लोगों को समझाना है।
1: बिल्कुल मैम। और जैसे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की जो घटती संख्या है इस समय उसके क्या दुष्परिणाम है?
0: देखिए हमारे यहाँ पे हर 10 साल के बाद सेंसस होता है तो 2011 का जो सेंसस था उन्होंने हमारे सामने अलार्म खड़ा किया कि सेक्स रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है और अभी 2021 में सेंसस होना चाहिए और मुझे नहीं पता कि कोविड की वजह से सरकार इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर चाहे सेंसस हो या ना हो सरकार को नॉन गैर सरकारी संस्थाओं का साथ देकर लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जहां पे हम कहें कि लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का। और मैं हरियाणा में रहती हूँ, हालांकि मैं पैदा और पढ़ी और बड़ी तो दिल्ली में हुई हूँ, पर आज के समय मैं हरियाणा में रहती हूँ और हरियाणा में अभी भी सोच बदलने की बहुत बहुत जरूरत है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, सही बात है, लेकिन शिक्षा बहुत ज्यादा रिलेटेड है इन सारी चीजों से, क्योंकि केरला में देखिए ज्यादातर लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, तो वहां पे मतलब गर्ल चाइल्ड का रेशियो भी ज्यादा है ना, तो शिक्षा तो मैटर बहुत ज्यादा करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों की जो सोच है ये कैसे, क्योंकि परिवेश जो हमारा माहौल होता है, परिवेश होता है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में रह रहे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, और लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए बेटा इम्पोर्टेंट है, और पहले यही चाहिए, लड़की बहुत ज्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को या एक स्त्री को क्या करना चाहिए?
0: मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दोबारा से ये रिट्रेट कर दूं बात, क्योंकि शिक्षा का अपना महत्व है, और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम उस एज ग्रुप को लेते हैं जो 35 to 55 है महिलाओं का, या हम 40 से 65 तक की महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट का मतलब भी नहीं समझा, उनको जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं करी, और ये मैं रूरल एरियाज की बात कर रही हूं, तो उस संदर्भ में मैं कह रही हूं कि अगर हम उनको इस बात के, उनके साथ बैठ के इस बात की चर्चा करें, और वो तो अब स्कूल भी नहीं गई हैं, एजुकेटेड ही नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब है जो वर्ग एजुकेटेड नहीं है उनके साथ हम कैसे उनका माइंडसेट बदलें कि महिला को उतना ही दर्जा अपने परिवार में देना है जितना हम पुरुष को दे रहे हैं, तो वो चीज बातचीत करने पे आएगी, पीयर लर्निंग पे आएगी, और समाज में जब हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तभी आएगी। और यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाएं बहुत ज्यादा काम कर रही हैं गांव में जाके लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए। जहां पे मैं शिक्षा की बात कर रही हूं, जब शिक्षा बहुत जरूरी है, ये तो मैं नहीं कह रही हूं कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर शिक्षा अभी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, उसमें मैंने बोला कि वो भी करते हैं, पर जो माइंडसेट वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वो एजुकेशन का उसका डायरेक्ट लिंक है, वो तो है ही है, तभी समाज बदलेगा। पर हमारा समाज बटा हुआ है जहां पे 70% ऑफ, और हमारा जो पॉपुलेशन है अभी यूथ है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं, जहां पे 65% यूथ है और हमारी 70% पॉपुलेशन गांवों में रह रही है, और जब तक हम यूथ का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, यूथ को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, यूथ के बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, तभी हमारा ये जो गैप है महिला सशक्तिकरण का ये कम नहीं होगा।
2: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपकी जानकारी के माध्यम से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए और उन्होंने ये समझा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता की बात करें तो जागरूकता भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हमें समाज को भी सशक्त बनाना पड़ेगा, समाज में ये मैसेज देना पड़ेगा कि महिलाएं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं, खासतौर से अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, और हमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जहां तक रीड इंडिया के विषय में मैं जानता हूं, तो रीड इंडिया की जो अप्रोच है वो काफी मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें आप विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रयासरत हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम रीड का जो है, रीड महिलाओं, जहां भी महिलाओं से रिलेटेड सेंटर्स हैं या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहा है, वहां पर लाइफ स्किल्स की चर्चा जरूर होती है, लाइफ स्किल्स के बारे में महिलाओं को बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप बताएं कि लाइफ स्किल्स क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: लाइफ स्किल्स तो एक जीवन को व्यतीत करने की शिक्षा है, और जब हम आम जिंदगी में, ये जो आपने आज महिला सशक्तिकरण की बात करी है या एजुकेशन की बात करी है, ये लाइफ स्किल्स के एक आई शुड से दैट एक कॉइन के दो साइड्स हैं। हम एजुकेट तो कर देते हैं, एकेडमिक एजुकेशन दे देते हैं, पर बच्चों को कभी लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सिखाते हैं। जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उनको फैमिली से मिलती हैं, और फैमिली अगर उन संस्कारों को, उन कल्चर को पीछे ही छोड़ देती है, तो वो लाइफ स्किल्स की बात समझते नहीं है दूर दूर तक। तो आज हमारे देश में जहां पे कल्चर इतना रिच है, आप कह रहे हैं कि औरतों के हाथ में शस्त्र थे और हमारी हिस्ट्री ये कहती है,
2: शास्त्र दोनों
0: दोनों थे और अभी हमारी हिस्ट्री ये कह रही है, और पर आज के टाइम पे अगर हमारा कल्चर ही हमारी वैल्यू सिस्टम बनता है और वैल्यू सिस्टम ही हमारी लाइफ स्किल्स बनती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, अपनी लाइफ स्किल्स को भूलते आ रहे हैं। तो आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करें? और लाइफ स्किल्स क्या है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी क्या होती है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, और वो जानना, होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे लाइफ की, जिंदगी को, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसकी शिक्षा दी जाती है। कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे एक महिला की इज्जत करनी है, कैसे अपनी बहन की इज्जत करनी है, कैसे अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में, कैसे अपने आप को सक्षम बनाना है शिक्षा के द्वारा और स्किल्स के द्वारा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। और इसके संदर्भ में मैं एक युवा पीढ़ी को ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि उड़ान भरना तो बहुत आसान है, पर उड़ान की अगर डोर मजबूत नहीं है तो गिरना उससे भी आसान है।
2: जी, बिल्कुल
0: तो
2: सही।
0: इस चीज को, अपनी जिंदगी की उड़ान संभाल के चलने से, संभाल के उड़ने से, वैल्यू सिस्टम से, स्किल से अगर हम चलें, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहने में बहुत दूर नहीं रहेंगे।
2: जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने, और इस समय भारत सरकार इस विषय पे काम कर भी रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बहुत ही मतलब प्राइमरी सेक्शन से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात है, और मैं समझता हूं कि आगामी एकेडमिक सत्र से ये चीजें शुरू भी हो जाएंगी, तो ये बहुत शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके मन में ये सारी चीजें नहीं होंगी और महिलाओं को वो समान मतलब बराबर का दर्जा देगी। मैडम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड पे काम करती है, आपने महिलाओं को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स दिलाई, उनको लाइफ स्किल्स के विषय में अवगत कराया है, और खासतौर से आपका जो मॉडल है रीड का, कम्युनिटी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का, तो वो भी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस करता है। तो मैम, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग्स जो आप लोग दिलवाते हैं या सरकार दिलवा रही है, कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल साबित होती है। तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहेंगी जहां पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी दिलवाई और महिलाओं ने समाज में एक अच्छा काम किया, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
0: जो रीड का मॉडल है, हम एक गांव में जाते हैं, बात करते हैं, सीधा कम्युनिटी के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि रीड आपके लिए किताबें लेकर आ रहा है, कंप्यूटर्स लेकर आ रहा है, आपकी महिलाओं को कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देना चाह रहा है, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो हम यहां पे एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बना देते हैं। जो लोग संस्कारी हैं और इसके वैल्यू समझते हैं, विजनरी हैं, वो हमें कहते हैं ये हमारा घर खाली पड़ा है, आप इसमें बना दीजिए, और यहाँ पे हम सारे समाज को बुला के, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे आके सेंटर को चलाएंगे, लाइब्रेरी को चलाएंगे। तो ये प्रयास मैंने 2007 में शुरू किया था, और आज 2021 है, अभी तक तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं जिस गांव में जाती हूँ उस गांव में मुझे बहुत ही सहानुभूति कह लीजिए या इज्जत कह लीजिए या रिस्पेक्ट कह लीजिए, लीजिए वो मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं हरियाणा के, उन्होंने जब देखा कि मैं मेवात में काम कर रही हूँ, और मैंने 2012 में या 13 में उनको बुलाया एक हमारी लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करने के लिए, तो उन्होंने तब से मुझे बोला कि मेरी हवेली खाली पड़ी है मेहंदीपुर गांव में, हरियाणा में, झज्जर में, तो आप उसको सेंटर बना दीजिए। और 2014 से उस हवेली में हम काम कर रहे हैं। तो जो विजनरी लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ, अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ वापस करें, तो वो लोग बहुत आगे बढ़कर आते हैं। और जहां तक कीर्ति जी आपने पूछा है कि महिलाओं ने कुछ किया है या नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो हम कहते हैं इम्बाइबिंग ग्रास वुमेन लीडर्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स। वो हर हफ्ते हमारा कार्यक्रम आता है, आज भी 4 से 5 था। हमने महाराष्ट्र की एक लड़की को उस कार्यक्रम में बुलाया था, और यूपी से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में 2 महिलाओं को हमने प्रोग्राम में बुलाया था। और एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है, फरा उसका नाम है, और आज वो 25 साल की है, और वो कहती है मैंने अभी भी शादी नहीं करनी है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जहां वो 16 साल की थी, उसके पेरेंट्स शादी करना चाह रहे थे उसकी, आज वो 10वीं पास होने के बाद उसने कहा कि मैं ये कम्युनिटी लाइब्रेरी को चलाऊंगी और अपने गांव वालों को शिक्षित करूंगी। और उसने एक प्री स्कूल भी चलाया जिसमें 300 से ज्यादा छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और सेंटर भी चलाती है जिसमें महिलाएं सिलाई सीखती हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस का कार्यक्रम करती हैं, कंप्यूटर्स सीखते हैं बच्चे, और प्रोफेशनल कोर्सेस भी करते हैं। और जब पिछले हफ्ते मैं उससे चर्चा कर रही थी, तो उसने कहा कि मैंने अपनी कमाई से अपने माँ बाप के लिए घर भी बनाया है, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे, जो समाज के लोग थे, कहते थे कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा घर इतना टूटा फूटा था कि हम रात को सोते थे तो पानी छत से गिरता था। तो मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि आपका अगर दामाद घर में आएगा और पानी गिरेगा छत से, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। आज आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि आपको घर बना के दे रही है, और कल को मैं शादी करती हूँ और दामाद आएगा तो आपको इज्जत की नजर से देखेगा। तो पहले मैं खुद सक्षम हूं, फिर मैंने अपने परिवार को सक्षम किया, फिर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को सक्षम किया, आज मैं शादी के लायक हूं और मैं शादी कर सकती हूं।
2: बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई, और ये जो आपने एग्जांपल दिया, मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तमाम महिलाएं सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहेगा ये। हाँ, और मैडम इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर करी, आपने कमिश्नर साहब का एग्जाम्पल बताया, तो ये मॉडल रेप्लीकेट करें और महिलाओं के जो अधिकार हैं या महिलाओं से रिलेटेड जो तमाम सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यक्रम चला रहा है वो जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
0: हम ये जितने भी महिलाओं के प्रति स्कीम्स हैं
2: जी,
0: हम सारा अपने सेंटर के थ्रू महिलाओं को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं अभी मेवात का एक एग्जांपल देती हूँ कि महिलाएं तो खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चों की हायर शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है, और 70 महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे डाले कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, और 70 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन लेके दी सरकार के पैसे से कि वो अपने घर का कार्यक्रम चलाएं। और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को पैसा भी दिया गया कि वो अपने बेटियों की शादी करें। तो स्कीम बताना एक बात है, पर स्कीम को प्रैक्टिकली लागू करके उनको बेनिफिट दिलाना ये अलग बात है। और बेनिफिट कौन दिलाएगा? वो समाज में जो लीडर्स हैं वो ही दिला सकते हैं। अगर हम सरकार के अगेंस्ट ही चलते रहेंगे तो हम कैसे महिलाओं को सक्षम बनाएंगे और कैसे हम उन तक ये जो कार्यक्रम है लेके जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं कहती हूं आज का ये युग है, आप सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा कर रही हैं, बट आज का समय हमें फिर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, हमें एक गांव में एक पुरुष और एक महिला की जान पहचान, जो जान पहचान है उनकी पूरे गांव के साथ होनी चाहिए और गांव की जान पहचान एक परिवार के साथ होनी चाहिए। अगर वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ है और उनको सक्षम बनाते हैं, यही एक मैसेज है आज के युग में सक्षमता की बात करने का। कोई भी इंडिविजुअल लीडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले नहीं कर सकती है उस हद तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, पर जो ज्ञानी हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको टेक्नोलॉजी आती है, वो हैंड टू हैंड अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में उनका हाथ पकड़ के चलें, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है।
2: जी मैम, और इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि सरकार काफी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं आपके इस विजन को सपोर्ट करती है। मैम, इसी क्रम में ये जानना चाहूंगा मैम कि जैसे अभी कोविड का समय आया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, मगर उन्होंने वेबिनार्स आयोजित करने शुरू कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आयोजित करनी शुरू कर दी, जूम ऐप और तमाम बहुत सारी एप्स ऐसी हुई जिसका ऊपर यूज करना शुरू कर दिया गया, तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ा और बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा। तो मैम, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और उपयोगी कैसे साबित हो सकती है हम सभी लोगों के लिए, इसकी जानकारी हमें दो।
0: पांच चीजें हैं जो मैं पिछले बहुत सारे सालों से ये बोलती हूं सबको। एक तो एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग गैप, क्योंकि एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजी को तो वो समझेंगे कैसे। फोन खरीदने के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं गांव में, और शहरों में तो लोगों के पास पांच पांच फोन है बिकॉज दे कैन अफोर्ड। और अफोर्डेबिलिटी दूसरी बात है कि पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी बात है एडेप्टेबिलिटी, जो हम पॉपुलेशन के वर्ग को अगर हम डिवाइड करें, यूथ के पास फोन है पर 30-40 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं मलेशिया की कम्युनिटी लाइब्रेरीज में गई थी जहां पे ओल्ड पॉपुलेशन के लिए अलग से एक सेक्शन है, जहां पे वो ओल्ड पॉपुलेशन आती है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता पर वो सीखना चाहते हैं, और वहां पे टाइम डेडिकेटेड किया हुआ है कि आप 2 घंटे आइए, हम आपकी क्लास लेंगे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देंगे और कैसे मोबाइल को यूज करना है, कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है, ये सारी जानकारी भी हम उनको देंगे। तो कौन कर रहा है ये? लर्नेड पीपल आर डिवोटिंग देयर टाइम कि वो दूसरे लोगों को सिखाएं। तो टेक्नोलॉजी की लर्निंग भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और पांचवा जो पॉइंट है जो मैं यहां पे सबसे जरूरी कहना चाहूंगी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स और उसकी कॉन्टिन्यूटी। उसकी कॉन्टिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि पिछली टेक्नोलॉजी को सीखते ही वो डिप्लीट हो जाती है, और जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि इट्स अ मार्केट ट्रेंड, अगर हम मार्केट ट्रेंड को अलग कर लें और सिखाने की कला को अलग कर लें, तो मुझे लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स यहां पे बताए हैं, हम उनको बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे जुड़े कुछ कानून हैं ऐसे जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं? और जैसा कि समय भी है, बहुत कम रह गया है, तो एक बार अपने श्रोताओं को हम पुनः बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गीता मल्होत्रा को। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, और अब तक जितने भी श्रोताओं ने सुना होगा वो अवश्य ही बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो अब
2: मैं, आपने जो सवाल पूछा उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर जैसे अगर अपने प्रदेश सरकार की हम बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए जो यूपी पुलिस है उसने काफी काम किए हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो विंग है, महिलाओं के लिए तमाम हेल्पलाइंस उन्होंने लॉन्च करी है, डायल 112, विमेन पावर लाइन 1090, तो इस तरह की हेल्पलाइंस हर स्टेट में है। तो अगर महिला इन हेल्पलाइंस को यूज करती है, तो मैं समझता हूं कहीं भी जो क्राइम है उनके अगेंस्ट, वो अगर हो रहा है या नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये हेल्पलाइंस कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी साबित होंगी। और जो लीगल लिटरेसी की बात कर रही हैं आप, या कानून से रिलेटेड जो भी सवाल आपने पूछा, तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। तो वो लोग इस हेल्पलाइन से अगर हेल्प लेते हैं तो उनकी जो कानून के प्रति जो जिज्ञासा है या जानकारी वो करना चाहते हैं, उनको जरूर मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई।
0: ज्योत्सना जी, जब आपने कानून की बात करी है तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी।
1: जी मैम,
0: हम कानून की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले कार्यक्रम में ये बोला है कि हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच। एक महिला रात के 10 बजे के बाद सड़क पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है, क्यों? कौन है समुदाय कौन बना रहा है, एक महिला और एक पुरुष? अगर पुरुष की सोच ठीक है तो महिला को डर की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। हमने समुदाय में ऐसी सुरक्षा लानी है महिलाओं के लिए कि उनको कानून की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हम कानून के पीछे भागते रहेंगे तो हम कानूनी शिक्षा के बारे में ही जानकारी दे पाएंगे, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो हमने वैल्यू सिस्टम की बात करी है, जो कल्चर की बात करी है। मुझे लगता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, और जो शिक्षा शुरू होती है वो परिवार से शुरू होती है। और अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि एक लड़की और लड़का समान है, और अगर आपको समाज में इसका कहीं पे ये नजर आता है कि रिलेशनशिप क्या है, अगर उसको संभाल के आगे चलना है, तो उतनी नॉलेज तो पेरेंट्स भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने बात कही। और कुल मिला के बस यही है कि अगर हमें सशक्त होना है तो शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का संचार हो, हमारे अंदर सभी सद्गुणों का संचार हो। और जैसा कि कहा, माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, तो बिल्कुल ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। और सर, जैसा कि हम आज वीमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें इग्नू का क्या रोल है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ
2: जी इस, क्योंकि समय कम बचा है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। ये जानकारी मैं खास तौर से अपने लर्नर्स को देना चाहूंगा जिन्हें एडमिशन लेना है, जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने भी अपने फीडबैक के दौरान, अपने सेशन के दौरान बताया कि सबसे जरूरी है कि महिलाओं को उनके विषय में जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास है कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो महिलाओं को तमाम सहूलियतें दे रही हैं, तमाम योजनाएं उनके बेटरमेंट के लिए लागू हो रही हैं, उनके विषय में हम लोग बताएं। तो इसके लिए हम लोग तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें ग्रामीण महिलाओं को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इग्नू के कार्यक्रमों में जुड़ें। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग्स आयोजित करते हैं, और वहां पर हम लोग जो वहां उस समुदाय के जो नॉलेजेबल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, और उनके द्वारा ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिससे जो है सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है, महिलाओं का उत्थान हो सकता है, महिला पुरुष मिलजुल के देश की उन्नति में, देश की प्रोग्रेस में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो ये हम लोग बताते हैं। और उसके बाद जो इग्नू द्वारा जो महिलाओं से संबंधित जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जो उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे जो महिलाओं के लिए यूजफुल हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इग्नू फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित कर रहा है, उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और मैं समझता हूं 50-60% केसेज में लोग कन्विंस होते हैं और एडमिशन लेते हैं। महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां पर केवल महिलाएं ही पढ़ाई करती हैं, और उनसे संबंधित कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिसमें जिससे उनका अध्ययन और जो उनके नॉलेज का लेवल है हम लोग उसको बढ़ा सकें। और जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम कर रही हैं, जो हमारी विमेन स्टूडेंट्स हैं, उनको सहूलियत मिले। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इस समय इम्प्लीमेंट कर रखी है, उसको पूरा फॉलो करता है, वैसे ही सारे कानून जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये प्रयास है कि महिलाओं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें, जैसे कि वो शिक्षित हो सकें और सशक्त हो सकें।
1: बिल्कुल सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपके कार्यक्रम का बहुत बहुत आई शुड से कि थैंक्स टू यू एंड डॉक्टर कीर्ति की जिन्होंने मुझे बुलाया, और मैं वैसे तो गुड़गांव में रहती हूँ, आज मैं लखनऊ में थी तो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपनी बात कहने की, और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भी मैंने छोटी बात बोली अगर उसका अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि शिक्षा हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है, तो अगर आप शिक्षित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सब के साथ जैसा कि मैम ने बताया, मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों में ये संस्कार आप बचपन से डेवलप करिए कि बच्चे सुबह उठते ही करें सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करें और अपने बच्चों को एक अच्छा और नेक और सच्चा इंसान बनाएं, तो जीवन में हम सब प्रगति की ओर जरूर अग्रसर होंगे। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को, लेकिन सुनते रहिए ज्ञानवाणी लखनऊ FM 105.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, जहां कार्यक्रमों का सिलसिला रहेगा जारी रात्रि 10 बजे तक।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: धन्यवाद सोनू जी।
1: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आंकते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
2: सोनू जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है, और गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है, और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फोसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया इस बैठक के बाद।
1: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: गाइडेड बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिया सीक्स टू स्ट्रेंथन ब्रिक्स कोऑपरेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम्स दैट आर रेसिलियंट, फ्यूचर रेडी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड पीपल सेंट्रिक। इंडियाज ओन एनर्जी जर्नी रिफ्लेक्ट्स दिस अप्रोच फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेषां ऊर्जम, दैट इज एनर्जी फॉर ऑल। आवर विजन एक्सटेंड्स बियॉन्ड मीटिंग टूडेज एनर्जी नीड्स। इंडिया सीक्स टू बिल्ड अ फ्यूचर रेडी एनर्जी सिस्टम दैट इज डिजिटल, सेंट्रलाइज्ड एंड कंज्यूमर सेंट्रिक। क्लीन पावर, स्मार्ट ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है, और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
2: सोनू जी देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल, छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है। एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है। और खास करके जो आपने बात की इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है अप जाती है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है। स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो स्टोरेज की, कि भाई सन चला गया विंड चली गई उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही बट इसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
1: जी सो बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
2: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनिए हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कॉपरेशन प्लेटफॉर्म, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की, उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पर हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है, और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
2: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं काम। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं काम। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेंजी जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना, इसको यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, आप क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, सब सीएनजी पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है, और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट थी, उससे बढ़कर आज वो 154 गीगावाट से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
2: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 गीगावाट से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है। और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है डीपीआई, जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सहारा है, और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद समझे।
0: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज ए लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3 4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू।

Now we are able to ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट, तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि देवर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड, ओ गॉड, इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे. और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग. तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टॉवर पे जाना है. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसके टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से. बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ

0: फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आवर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. We focus on problems rather than the solutions. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे brain में 80% जो negativity है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें positive सोचने ही नहीं देते. पर हमें अपने आप को, अपने mind को, अपने brain को ऐसा tune करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर. Focus on gaps and resolve the problems. The last point is very, very important. कि हम अगर gaps को analyze कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन gaps को कैसे resolve करें, तो हमारे problems के बहुत सारे solutions हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. Next, I'm talking about the best qualities of a good leaders are vision. Great leaders have a vision. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. Maine bahut simple words mein pehli do slides mein bataya. Ye definition hai ki great leaders विजन होती है. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. दे कैन सी द फ्यूचर, वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ. दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है, करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइम कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है, कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए. आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर. आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता. आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि 1 साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूअसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट. और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है. सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है. हम कैसे करें उसको हमें करना है. जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है. इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा. द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट. इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट. तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट. इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मींस दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, व्हिच मेनी पीपल स्ट्रगल टू डू. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता, जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर, एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन। इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टूडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो एनजीओ पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ, तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं, कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और एक महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे एलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स. दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट. तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे. दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट. द फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस. आप किस पे फोकस कर रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है. आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो. जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए. जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड. बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे. मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा. मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी. बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते. तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया. इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट. और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं. दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट. Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट. The last point is cooperation. Gain the cooperation of others by making a commitment to get along well with each key person every single day. रोज आप अपने connections, अपनी networking, अपने staff का teamwork को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे refine करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है. विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये सातों पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया है अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर. राइट, लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल हम कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमैनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 years ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमैनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं, और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट. दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल. ये सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 points मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में. अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है. पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के. फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है. इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट. और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है. रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस. अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन. आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है. तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं. हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं. तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है. द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट. मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम. हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 3 points हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा. उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम. और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसेवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं। हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे, अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट? दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट? हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट? बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम, हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना? ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्दी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको, एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसका। ठीक है, 5 मिनट हैं हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को, और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज के, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ,
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल।
1: हमेशा कोई
0: पर
1: चीज हो जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम बिना हम ना सुनने कि अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं, हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम। हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। यही आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया,
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से. जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं. आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक जेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 3-4 दिन से मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा. बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है. तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पर करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा. वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है. तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ. रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है.
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है. और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो. पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए. तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है. देयर एंड देन यू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: यस बिल्कुल. और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे. तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था. लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो.
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी.
2: जी
0: हम डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको. हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस.
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है?
2: यस मैम.
0: थैंक यू सो मच. और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स तो आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें, उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है, तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। ये बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं ये बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज

0: तो देखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है, जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है, वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है, तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है, तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे, उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
2: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
1: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
2: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
1: अब इलाज की बात करें।
0: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड।
3: विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
0: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
3: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी।
0: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है. इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है, जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है. अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए.
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है. कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो. और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की. इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं. आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो. ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख हैं टोनोमेट्री. इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है. दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे

0: ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट। इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है। ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है। यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं। सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है। इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं। इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
1: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
2: यही कोई 15 बार।
1: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
2: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है। कुछ नया नहीं बता सकते?
0: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। क्योंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
3: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
0: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्राइकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्राइकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
1: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
2: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
1: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
2: बबलू,
1: बाय फ्रेंड्स,
2: तुमसे मैंने
1: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
2: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
1: बबलू,
0: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

0: रीड इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ है वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच गीता जी।
0: वंदना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि हमें 6 महीने के बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है, तो घर के सिस्टम को ही हमें स्कूल में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: वंदना जी, अगर आप शहर की बात करें तो सब माएं तो नौकरी करती हैं, और बच्चा जब जगता है उससे पहले ही वो दफ्तर चली जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो 1 घंटा ही बचता है उनके पास, बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है। इस केस में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
1: ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि माँ बाप के पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज छोटे होते बच्चे के अंदर हमें डालनी है, उस टाइम पे वो मदर जो है वो एक वर्किंग वुमेन का रोल प्ले करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो ये आपको देखना है कि आप बच्चे को वो वैल्यूज कहाँ से देंगी। या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मोंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकल्केट कर सके।
0: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में 3 बातें आ गई हैं, और 3 बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है। पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं, तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मोंटेसरी स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें?
1: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है. सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है. जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर जॉइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता. बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया. 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं. तो जो आजकल की जेनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती. सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना. सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए. बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी. माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है. तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही है. वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है.
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही हैं, पर हमें देने का तरीका बदलना है.
1: जी.
0: देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है. हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है, और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है. उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है. मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हम आज हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रखरखाव है स्कूल में, और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं. और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का.
1: थैंक यू सो मच.

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसके शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गर्म और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिएं। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सेबेशियस ग्लैंड। यही सेबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकलकर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
3: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
2: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेस के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओह, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा, नहीं मुझे।
0: कुछ नहीं होगा बबलू, घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हम में से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं। एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीज यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो हैं, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं।
4: अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलानिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, आज का विषय है स्ट्रेस यानी कि तनाव। तनाव क्या होता है, तनाव का क्या कारण है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव हम सब के लिए बहुत आम हो गया है और बहुत सारे लोग इस तनाव से जूझ रहे हैं। हर रोज हम सभी अपनी जिंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई बार ऐसी हालत आ जाती है कि हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते हैं। तनाव होना एक सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। तनाव होने पर हमारे शरीर में एड्रेनलिन, जो एक किस्म का हार्मोन है, वो पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है, सनसनी महसूस होने लगती है और कई बार शरीर में रोएं भी खड़े हो जाते हैं। श्रोताओं, अक्सर हमने ये सब देखा होगा पर हमें महसूस नहीं होता है कि हम तनाव में होते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक रहता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमारी बीमारियों से भी निपटने की क्षमता कमज़ोर होती है। इसका मतलब साफ है कि तनाव उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपको हर 5 मिनट में करो या मरो की स्थिति में जाना पड़ता है। क्या इस स्थिति में निपटने का कई आसान तरीका हो सकता है? ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये पता लगा सकें कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसका कारण क्या है, तो हम मुश्किलों से अधिक स्पष्ट तरीके से निपट सकते हैं। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब कि ज़्यादा तनाव लेने से क्या होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और उम्र कम हो सकती है। तनाव के कारण कई गंभीर मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से कई बार हम लोग काम करते हुए भी लंबे वक्त तक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्यों होता है स्ट्रेस। आजकल जैसी भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव एक आम बात हो गई है। इंसान एक दूसरे को देखकर भी तनाव पैदा कर लेते हैं। तो क्यों होता है ये तनाव? आपके काम को लेकर आपको तनाव होता है, बेरोजगारी पे पैसा, नौकरी में बदलाव होना, बच्चों का घर छोड़ना, मौसम, आपके मूड को लेकर आपको तनाव होता है, बुरी आदतों का शिकार होना, हिंसा या बुरे व्यवहारों का शिकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे हमें तनाव होता है। थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बनी रहे जो ये जीवन से जुड़ी बाकी चीज़ों को भी खराब कर सकती है। वैसे भी तनाव इसलिए कभी नहीं होता है क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि हमेशा इसलिए होता है कि आप उसकी मौजूदगी होने के बाद भी तनाव को रहने दे रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तनाव होने पर हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में तो हो सकता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लगातार नौकरियों और घर को बदलते रहेंगे ऐसे हालात में तो आपको हालात नहीं बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। श्रोताओं, अगर हम तनाव में होते हैं तो अक्सर हम उनको ढूंढते हैं जिनके साथ हम अपने दिल की बात को बांटते हैं या अपने दिल को हल्का करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब तक हम अपनी दिल की बात किसी को बताएंगे नहीं तो हमारे दिल में से तनाव या हमारे मन में से तनाव ख़त्म नहीं होगा। हम सभी जानते हैं, जब हम किसी के साथ बहुत मिले हों, जुड़े हों या उनसे बहुत प्यार करते हों और उनके साथ अपनी दिल की बात शेयर करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, कई बार जब हम तनाव में होते हैं तो आसान से भी उपाय हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे वही बात सुनकर हमें ऐसे रास्ते सुझा देते हैं जो हमारी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। इसलिए दूसरों के सामने ईमानदारी से बात रखिए और दोस्तों को हर वो बात बता दीजिए जो आपको परेशान कर रही हो। श्रोताओं, अब हम जानते हैं कि तनाव के प्रबंध क्या होते हैं, इसके कुछ टिप्स होते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ वो क्या होते हैं। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में रहते हैं, चाहे उसकी कीमत तनाव भरी ज़िंदगी के रूप में चुकानी पड़ती है। तनाव हमारे स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है और धीरे धीरे खोखला बनाता चला जाता है। तनाव हमारे मन पर, हमारी सोच पर प्रभाव डालता है। तनाव हमारे शरीर और दिमाग पर भी जोर डालता है। हर वो इंसान जो तनाव में है उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए उसका तनाव कम हो सके। आइए जानते हैं। तनाव पर विजय पाने के लिए सबसे पहला उपाय है आत्मविश्वास। हर इंसान को अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो कोई भी काम गलत नहीं कर रहा है, और अगर गलत कर भी रहा है तो उसको सही करने में उसको कोई संकोच नहीं होगा। हर वो इंसान जो तनाव में है उसको सुबह सुबह सूर्य नमस्कार या कुछ योग आसन करने चाहिए जिससे उनका मस्तिष्क शांत रह सके और वो आगे का अपना दिनचर्या अच्छे से कर सके। हर वो इंसान को गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से है। यदि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो मन को बल प्राप्त होता है और व्यक्ति कठिन समय में विचलित नहीं होता है। गायत्री मंत्र आत्मा की शुद्धि करता है। ये वो गुण है जो किसी भी समस्या को लड़ने की और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की ताकत देता है। हमें अपने लिए जीना चाहिए। अपनी इच्छाओं और अधिकारों के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की इच्छाओं और अपेक्षाओं के लिए जिए, क्योंकि दूसरों की इच्छाओं पर आप कभी भी पूरे नहीं उतर सकते। खाने का रखें ध्यान। तनाव को कम करने के लिए थोड़ा खाएं और आराम से खाएं। भाग दौड़ कर खाना, बेसमय खाना, अधिक खाना, शराब का सेवन लेना तनाव को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। अगर आप तनाव में हैं तो चाय कॉफ़ी का सेवन अधिक ना करें। चाय कॉफ़ी में पाया जाने वाला निकोटिन तनाव बढ़ाता है। आपने तनाव को कम करने के लिए कोई भी बुरी आदत ग्रहण ना करें। इससे अच्छा ये है कि व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान लगाएं। इससे तनाव कम होता है। गाने सुने। गाने सुनने से भी मस्तिष्क को आराम मिलता है और वो शांत रहता है। हल्का शांतिदायक गाना सुनने से और उस पर नृत्य करने से तनाव अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या है आपका मनपसंद काम? जब भी स्वयं को काम से बोझ तले दबाव महसूस करें, सभी काम छोड़कर सोचें कि इसमें से मेरा मनपसंद काम क्या है। पहले उसे पूरा करें, दूसरा काम बाद में करें, ताकि बोरियत ना हो। आप तनाव प्रबंधन तकनीक अपना कर अपने बर्ताव और अपने लाइफस्टाइल और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपने स्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है तो आप कम से कम अपना नज़रिया तो बदल सकते हैं। बिना बदलाव के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अच्छी आदतों को अपना कर और पॉजिटिव सोच रख कर और कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहें। तनाव को अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। टहलने जाएं और अपने दोस्तों से मिलें। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाते हैं। हमें मालूम होता है कि इसका सामना हमारे बस में नहीं है। ऐसी चीज़ों के बारे में अधिक सोचना व्यर्थ है, क्योंकि चाहकर भी हम कुछ नहीं खास कर सकते। किसी दूसरे कार्य में अपना मन लगाएं और तनाव से दूर रहें। लंबी सांस लें, इससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और गलत निर्णय लेने से खुद को बचा सकते हैं। शांत रहें। कई इंसान बेवजह बोल रहे होते हैं, उनकी बातों को ना सुनें, उनका तनाव अंदर से बोल रहा होता है। तो ऐसे में आप शांत रहें और वहाँ से कहीं और चले जाएं। विटामिन सी का प्रयोग करें, ये एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से तनाव को हराता है। गाजर, संतरा, मौसम्बी, नींबू, खट्टे फल अपने आहार में शामिल करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप अपने ज़िंदगी में तनाव से दूर रह सकें
2: और दूसरों को भी बता सकें कि तनाव से दूर रहना कितना ज़रूरी है और सेहत के लिए अच्छा है। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सभी श्रोताओं को मंजू
4: और महिपाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हैजा बीमारी पर।
3: हैजा रोग वीबीओ कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है
4: और इसका असर आपकी आंतों में होता है, जिससे उल्टी दस्त लग जाते हैं।
3: अभी कल की ही तो बात है, मेरी सहेली सुनीता अपने बच्चों को लेकर कल इंडिया गेट पर घूमने गई थी, मगर वहाँ पर उसने न जाने क्या खा लिया कि वो और उसके बच्चे सभी बीमार हो गए, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।
4: आप ठीक कह रही है, आजकल गर्मियों के मौसम में सभी बच्चों का दिल ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कटे हुए फलों को खाने का करता है
3: और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। गंदे पानी का सेवन और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
4: हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के मल में पाए जाते हैं और जब मक्खियाँ उस मल पर बैठती हैं तो उनके पैरों की गद्दियों में ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं।
3: ये मक्खियाँ खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं और जब कोई इन वस्तुओं को खाता है तो यह उसकी आंत में पहुंचकर बीमारी पैदा करती हैं।
4: देखिए, यह बीमारी खुले में फल, खाद्य पदार्थ व अन्य प्रकार की खाने की वस्तुओं के सेवन से फैलती है। दूषित पानी ना पिएं, खुली जगह पर मल त्याग ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें।
3: इस रोग में जबरदस्त दस्त होने के कारण

0: मिट्टी में पानी बहुत अधिक होता है और उल्टी के साथ पतले दस्त लग जाते हैं, जिससे कि शरीर का सारा पानी दस्तों के कारण शरीर से निकल जाता है।
1: इस कारण तो शरीर कमजोर हो जाता होगा और मरीज की हालत तो बहुत बुरी हो जाती होगी।
0: आपने सही कहा, इस बीमारी में बुखार नहीं आता, बस रोगी निढाल, थका थका सा, कमजोर व शक्तिहीन हो जाता है। प्यास जल्दी लगती है, पल्स मंद पड़ जाती है, यूरिन कम आता है व बेहोशी सी महसूस होने लगती है।
1: तो फिर मंजू, हमारे श्रोताओं को क्या करना होगा? क्या इसका कोई वैक्सीन भी बना है? अगर हाँ तो जरा इसके बारे में तो बताओ।
0: देखिए महिपाल, यह एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी को फैलने से रोकती हैं, मगर इसका एक वैक्सीन भी बना है जो कि 6 माह तक ही क्रियाशील रहता है।
1: तो मंजू, सबसे पहले डॉक्टर से इसका इलाज लेना चाहिए और जब तक मरीज को बार बार नमक शक्कर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। यह किसी भी डिस्पेंसरी व अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। इसे पिलाकर भी रोगी के शरीर में लवणों की पूर्ति की जाती है।
0: हैजा से बचने के लिए खुले में बिकने वाली वस्तुओं को ना खाएं और हमेशा अपना खाना ढककर रखें।
1: दोस्तों, उल्टी दस्त लगने पर तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल या नर्सिंग होम में इसका इलाज करवाएं।
0: और हाँ, जहाँ भी जाएं साफ सुथरा खाना ही खाएं।
1: मंजू, हैजा बीमारी पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: मेरा नाम शालिनी है और मैं विवेक विहार से हूँ। हैजा फैलने का मुख्य कारण ये है कि हम जब साफ सुथरा खाना ना खाएं और बाहर की कटे हुए फल जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं उनको खाने से जो कीटाणु आते हैं उन सब की वजह से हैजा फैलता है।
3: मेरा नाम अमी है। सड़ी गली चीजें अगर कहीं खाते हैं या उससे हैजा हो जाता है या कहीं गंदगी फैली होती है, वहाँ अगर आप रहते हैं या उस जगह से भी हैजा होता है, मतलब जहाँ भी गंदगी होती है बस वहाँ से मतलब हैजा हो जाता है बस ये।
4: मेरा नाम सिल्वी है, मैं साकेत में रहती हूँ। हैजा मेनली खुले में खाना रखने से और उसको खाने से होता है, तो जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें और खुला खाना को हमेशा ढक के रखें।
5: मेरा नाम निर्णय है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। हैजा बीमारी का मुख्य स्रोत गंदगी होता है और जो मक्खियाँ जो भी बाहर खाने से वो हैजा बीमारी फैल जाता है।
6: I'm Madhu, I live in Kutub Enclave and as far as my knowledge goes, cholera is caused by the pathogen called Vibrio cholerae. It's a waterborne disease and we have to be careful about the kind of water we drink. In our home, we've got the 0B fitted onto the drinking water tap so that we are able to drink filtered water.
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैजा बीमारी पर।
1: मंजू, इस विषय पर आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी गीता जी।
7: डॉक्टर संजीत, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चे शिकार हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि खुला सामान जो मार्केट में बिक रहा है उसको नहीं खाना है, तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
8: देखिए, एक तो है कि ये जो बीमारी है ये मेनली अनहाइजीनिक और इनसैनिटेशन कंडीशन में ज्यादातर ये फैलती है और पेरेंट्स इसके सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको सिखा सकते हैं कि कैसे सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक washing of the hands, हाथ धोने का, can reduce this epidemic by leaps and bounds. और ये एक public health problem है जो कि by simple mechanisms, no cost, just by awareness और by behavioral change हम इसे combat कर सकते हैं।
7: इसका मतलब संजीत जी कि बच्चों को जो माता पिता हैं वो ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं,
8: हाँ,
7: बाजार से खुला खाना न खाएं, ज्यादातर जहां मक्खी वगैरह हो उस जगह को साफ रखना चाहिए, भोजन ढक के रखना
8: चाहिए और गर्म भोजन खाना चाहिए। जहां आप कट फ्रूट्स और जहां ज्यादातर फ्लाइज बैठते हैं वहां से ये ज्यादा फैलती है। ये बीमारी इज ओनली ट्रांसमिटेड इन मैन, इट इज मैन इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
7: डॉक्टर साहब, एडल्ट्स भी इसका शिकार हो जाते हैं, ये मेरे को लगता है कि टोटल इग्नोरेंस है।
8: हाँ जी, और ये एडल्ट्स में ज्यादा प्रेवलेंट भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है बच्चों से, बट ये एडल्ट

0: एडल्ट्स में भी होता है, क्योंकि एडल्ट्स ज्यादातर आजकल बाहर खाना भी पसंद करते हैं, और कट फ्रूट्स और ज्यादातर अनकुक फूड या कुक्ड फूड जो कोल्ड हो गया है और उसपे मक्खी बैठा है, उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है।
1: और बीमारी का अगर सही तरीके से उसकी प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं, और इलाज के बारे में नहीं पता है, तो ये घातक भी हो सकती है।
0: हाँ जी, इसका मेन कारण है कि इससे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, इसके कारण शॉक होता है, और शॉक के कारण एक आदमी मर भी जा सकता है। और ये बहुत लिमिटेड टाइम विद इन 24 आवर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से डेथ देखा गया है। आजकल हैजा घट गया है, पर ये एक एंडेमिक साइकिल होता है, और ये साइकिल लास्ट साइकिल हमने जब देखा था वो 1967 में देखा था, और ये इंडोनेशिया में हुआ था, पर उसके बाद स्पोराडिक केसेस हर टाइम देखा गया है। भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी, और इसका प्रिवेंशन के लिए अभी वैक्सीन्स भी है, और बच्चों में ज्यादातर जब मेले होते हैं या रथ यात्रा होता है तो मास वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक ज्यादातर इम्यूनिटी उसी टाइम के लिए ही देती है। बट टू हैव टू वैक्सीनेशंस अपार्ट इन अ मंथ्स टाइम गिव्स फुल इम्यूनिटी, पर एडल्ट्स में एक ही बार वैक्सीन की प्रयोग से कॉलेरा कॉम्बैक्ट किया जा सकता है।
1: तो ये बच्चे को इसका वैक्सीनेशन कब लगता है?
0: देखिए, जैसे दूसरा वैक्सीन है वैसे इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है।
1: अच्छा,
0: ये एज इन वेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हैं कि तीर्थ में और जहाँ बहुत लोग जा रहे हैं, तो वैसे आप 1 month अहेड आप एक वैक्सीन ले सकते हैं, एंड देन जस्ट बिफोर यू लीव यू कैन टेक अनदर वैक्सीन।
1: तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं?
0: हाँ, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, पर एडल्ट्स में 2 doses की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि उनका प्रीवियसली कुछ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहता है, तो इसमें एक ही डोज ऑफ वैक्सीन इज गुड एनफ।
1: तो ये तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी बाहर जा रहे हैं या जहां पे बहुत सारे लोग हों, तो अपने बचाव के लिए 1 महीना पहले वैक्सीन ले सकते हैं इसकी, तो हम कुछ हद तक बीमारी से बच जाते हैं। तो डॉक्टर संजीत, ये जो प्रिवेंशन है वो तो इट्स ऑफ कोर्स बेटर देन क्योर, पर आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जैसे बच्चा अगर हैजे का शिकार हो जाता है तो माता पिता को एकदम क्या लक्षण से पता चलता है कि ये हैजा का शिकार हुआ है?
0: इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं और उल्टियां भी होते हैं, और ये जो दस्त होता है ये बहुत वाटरी होता है, और बॉडी वेट का जितना वजन होता है उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इसमें। और ये जो दस्त होता है इसको हम लोग राइस वाटर स्टूल बोलते हैं, क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं, जब आप राइस बनाते हैं तो उसका
1: उसकी मार का जो कलर होता है वैसे दस्त का कलर होता है।
0: और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉल्ट्स का, ये लीड करता है जनरली हाइपो वॉल्यूमिक शॉक को, जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है।
1: ये शॉक इंसान को या बच्चे को लगता है कि जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और उसको बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है।
0: हाँ, कमजोरी तो महसूस होती है, पर इसमें सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं।
1: हाँ, हाँ.
0: और क्रैम्प्स के बाद आपको आपका जो पल्स है
1: हाँ,
0: वो बहुत थ्रेडी हो जाता है।
1: थ्रेडी मतलब?
0: थ्रेडी मीन्स आप फील करना मुश्किल हो जाता है। और कई जगहों में तो आप फील भी नहीं कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और आपका जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी लॉस होता है इसमें।
1: अच्छा। पीलापन आ जाता है स्किन?
0: नहीं, पीलापन तो नहीं आता है इसमें, पर इसमें ज्यादातर जब क्रैम्प्स होता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है।
1: तो इसका मतलब इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ORS घोल भी पिलाते रहने की जरूरत है घर पे।
0: वो बहुत जरूरी है ORS घोल पिलाने में, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है, हम तो घोल जो पिलाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा है, तो इंट्राविनसली भी फ्लूइड्स देके इसको बैलेंस मेंटेन करना होता है।
1: और कितने दिन का ये इलाज होता है, 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में?
0: ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, जनरली 4 to 6 days में आप सही हो जाते हैं,
1: अगर आप समय पे डॉक्टर
0: के पास
1: पहुंचे।
0: एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, पर देर आर 2 schools ऑफ थॉट वेदर टू गिव एंटीबायोटिक्स और वेदर नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स, पर क्योंकि खाली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी वेदर इट कैन बी टेकन केयर ऑफ,
1: तो वो तो उस समय डॉक्टर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये तो पक्का है कि जैसे ही उल्टी और दस्त हो
0: तुरंत ही डॉक्टर के पास
1: जाना बहुत जरूरी है,
0: और पेशेंट को आइसोलेट करना का भी बहुत
1: अलग से उसको रखने की जरूरत होती है। इसका क्यों ऐसे है?
0: क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन, सो इट इज बेटर टू आइसोलेट देम फॉर अ वाइल, तो उससे क्या होता है कि दी स्प्रेड यू आर एबल टू स्टॉप दी स्प्रेड ऑफ दी डिजीज।
1: बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं इसके ऊपर?
0: एक है कि खाना खाने के पहले हाथ धो के खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और ज्यादातर बाहर के कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उसको घर लाके धो के खाना चाहिए, ये मेरा सुझाव होगा।
2: तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मंजू और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल। ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, क्योंकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से क्यों इसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेन्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है, और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा?

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु जैसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु जैसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हों, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है, फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि एक डेढ़ साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। बच्चा इस दुनिया में ऑटिज्म के साथ ही आता है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। कोई दवा ऐसी नहीं है जो इसका उपचार हो। हाँ, कई बार ऑटिज्म के लक्षण बहुत तीव्र हो जाते हैं और माता पिता को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आने लगती हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लक्षणों को कुछ कम कर देंगी, लेकिन ऑटिज्म हमेशा रहेगा।
0: इंदु जी, ऑटिज्म और मंद बुद्धिता में क्या अंतर है?
2: ऑटिज्म और मंद बुद्धि में काफी अंतर है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी, हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है और यहां बोल सकते हो उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है, तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी, तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों। और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से। तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या।
0: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
2: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है। परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना, जो चीजें हम लोग इतने आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की ही जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं, इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सकें और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सकें उतना अच्छा होगा।
0: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
2: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना, और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है, तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से, तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
0: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
2: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है, इसका नंबर है 011-264-6650। और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-6650, ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-4054-0991। और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
0: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके, और दूसरे लोगों की तरह इसकी इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
0: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि यह क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।
1: दोस्तों, ऑटिस्टिक लोगों की काबिलियत को पहचानते हुए उनके खास गुणों को समाज के साथ जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशा और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर आई के धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
2: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है, जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
1: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
2: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह, हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फैटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में।
1: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
1: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
2: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
2: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़ जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं क्योंकि हमने रेडियो में सुना तो हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मजबूत। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ना स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
1: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
2: ये बिल्कुल कंसर्न है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि इफ द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन, सो दोनों तरफ से कंसर्न है।
1: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
2: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल या सिगरेट के रास्ते या तंबाकू खाने के रास्ते या नसवार रखने नाक में डालने के रास्ते ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को यही एडवाइस होगी कि दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, दे शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर अ ईयर, ईयर एंड अ हाफ और टू इयर्स एंड दैट विल बी अ बिग बोनस एंड दे शुड फील देयर ब्रेस्ट्स वंस अ मंथ, अ वीक और 10 डेज आफ्टर देयर पीरियड्स एंड इफ दे नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मिले तो फौरन अपने कंसल्टेशन करें।

0: डॉक्टर बॉबी, जैसे कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीबी के बारे में हमें बताएं कि ये क्या कैसी बीमारी है।
1: टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब संक्रामक रोग जो कि हवा से एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और खांसी और हवा से बैक्टीरिया फैल के एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले जाता है। इसलिए टीबी एक काफी खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अगर एक घर में हो तो बाकी के जो सदस्य घर में रह रहे हैं, या अगर वो कहीं काम करने जा रहा है, जो बाकी के मेंबर्स हैं उसके ऑफिस में आसपास, उनको भी टीबी होने का खतरा होता है। इसी वजह से टीबी काफी तेजी से जो है हमारी सोसाइटी में फैलने का डर रहता है।
0: तो टीबी का रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है?
1: टीबी की रोकथाम के जो उपाय हैं, उसमें सबसे पहला है जल्दी से जल्दी टीबी का डायग्नोसिस करना। किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है, या बुखार रह रहा है साथ में खांसी है, या खांसी के संग बलगम में खून आने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऐसे व्यक्ति की तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। जांच की सुविधाएं हमारे कम्युनिटी में डॉट सेंटर में, टीबी सेंटर्स में उपलब्ध हैं। ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। इन सुविधाओं में बलगम की जांच ये सबसे पहले की जाती है। मरीज को 3 दिन तक सुबह का बलगम लाने को कहा जाता है, उसको उसकी डब्बी दी जाती है, डब्बी में वो बलगम लेके आता है और उस बलगम की जांच के द्वारा हमें पता चलता है कि इस मरीज को कहीं टीबी का रोग तो नहीं हो गया।
0: अगर किसी को टीबी हो गई हो तो उसका देखभाल और इलाज किस तरह से किया जा सकता है?
1: टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, परंतु टीबी का जो इलाज है वो अन्य इन्फेक्शंस की तरह छोटा नहीं है। अन्य इन्फेक्शंस का इलाज 7 से 14 दिन 20 दिन तक चल के होता है, परंतु टीबी के मरीज का इलाज कम से कम 6 महीने डॉक्टरी निगरानी में करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा इलाज सरकार द्वारा फ्री किया जाता है डॉट सुविधा के तहत, जिसमें पेशेंट को अपनी निगरानी में दवा खिलाई जाती है। टीबी के मरीज को अगर अच्छी तरह से खुराक दी जाए, टीबी के मरीज को एक बंद कमरे में ना रखा जाए, शहर पे भेजा जाए और खुराक में हाई प्रोटीन दिया जाए, तो टीबी तकरीबन सभी केस 95% केस पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और एक बार पूरा इलाज देने के बाद उनको दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती।
0: टीबी के इलाज क्या बहुत महंगा है?
1: टीबी का इलाज महंगा नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों में जो डॉट सेंटर है वहाँ टीबी का इलाज मुफ्त में किया जाता है, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो एक तरीके से फ्री भी है। अगर प्राइवेटली भी पेशेंट अपना इलाज कराता है तो ये इलाज कोई महंगा नहीं है। दिन की 15 रुपए की दवाई से इसमें ट्रीटमेंट शुरू होता है और 2 महीने के बाद ये 15 रुपए से भी दवाई जो है 7-8 रुपए की रह जाती है।
0: और इनकी जो दवाइयां हैं वो क्या आसानी से उपलब्ध हैं?
1: टीबी की दवाइयां सरकारी संस्थानों में आसानी से उपलब्ध हैं, पेशेंट को दी जाती है, बल्कि पेशेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बना दिया जाता है हर मरीज के नाम का और दवाई उसमें हमेशा अवेलेबल रहती है। टीबी की दवाइयां हर केमिस्ट के पास उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे देश में टीबी इतनी ज्यादा है कि तकरीबन बोला जाता है कि हर दिन 5,000 लोगों को टीबी का डायग्नोसिस किया जाता है देश भर में। तकरीबन 1,000 लोग एवरी डे उनका देहांत हो जाता है टीबी की वजह से, मतलब 2 व्यक्ति हर 3 मिनट टीबी के रोग के कारण मारे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा टीबी फैला हुआ है, तो दवाइयों की उपलब्धता की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मरीज कई बार ये दवाई समझता है कि मुझे इन्फेक्शन थी, 1-2 महीने में मुझे आराम आ गया, मुझे आके दवा की जरूरत नहीं है, वो दवाई बंद कर देता है और बंद करने की वजह से इन्फेक्शन 3-4 महीने में दोबारा लौट के अधिक मात्रा में और खतरनाक रूप से सामने आ जाता है। टीबी की इस समय सबसे ज्यादा समस्या है कि हमारे को कम्युनिटी तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करें और लग के करें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल इन्फेक्शन है।
0: डॉक्टर साहब, किस किस तरह की टीबी होती है और उनके इलाज में क्या कोई खास डिफरेंस है क्या?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की, चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या 1 साल का चाहिए, परंतु दवाइयां सेम रहती हैं और डॉट्स के तहत ज्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
0: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है, इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
1: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट्स हमने पूरे साल मेहनत करके एक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
0: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
1: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को वहां पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शियस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था, तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
1: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयां 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे, मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयां आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सैनिटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में, पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है, सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
0: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या ये सही है?
1: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है, अगर आप स्वस्थ वातावरण में, ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं, हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
0: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो उसको तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है। लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे। जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है। सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं। सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है। सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है। और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज। तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है, इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के, एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है। और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं। रीडिंडिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है। वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेस दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15 15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं। शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5 10 सालों से जुड़े हैं, तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है, और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा। कभी कभी हम ऐसा भी सुन देंगे, अब एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो 4 लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते। वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं उनको हम नहीं भूल सकते। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल?